ये समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुवाई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं।

0: मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर

0: का मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थित में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर

0: दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन

हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक

हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलंब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओ, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहाँ के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है, तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा, जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में, ऐसे जंगल जहां पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा, वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा। आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा। तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा, वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती, है तो काल्पनिक लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेश ही उसके साथ क्या करता है?

है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: মহামানবীর সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा

0: ಕಾವಿಡಯುಷ್ಕಲ ಬಂಗ ಬಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಜಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉತ್ಕಲ ಜಲಧಿತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ ತವ ಶುಭಯಾಶಿಷು ಮಾಗೇ ಕಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ ಜನಗಣ ಮಂಗಲದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ.
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं. भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है. वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं.
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती. इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी. प्रस्तुत अंश उसी कविता का है. जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी. उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार. द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक. सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ. ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है. कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है. ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था. बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले. स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते. घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया. मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया. ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर-दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत

0: उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा, अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी।

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं। जहां सीखने की आजादी है, अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात

0: अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुम, लता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: जरूरी काम करो, कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, हाजिर है आरजे अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और ये हैं पशुपालन विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
8: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है, या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है, जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं

0: उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर्य डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती है।
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है और अब ज़रूरी होता है कि हम जाने कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
0: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले कर जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी एनजीओ के द्वारा भी और कॉम्फेड के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें कि श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी से फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसिमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AM PM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है, एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24-26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहाँ कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें, तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीके से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का कुछ गाय छोटी होती हैं और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है या पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावे भी कुछ सावधानियाँ हैं जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
0: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है तो

0: तो सबसे पहली चीज है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
0: और दूसरी चीज है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे जरूरी है समय। और तीसरी चीज है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायोकैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर होल्स्टीन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्टोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं?
0: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या आप सरकार के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है, दूसरी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति जो थोड़ा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जो जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

0: सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहां हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहां भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है, और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर आप अगर इसे एक रोजगार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय

सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम
अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25

सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, सीओ 7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी, जहां हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में। कई बार हमारे किसान भाई बहन उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, और अब बहुत जरूरी है कि हमारे किसान भाई बहनों तक ये बात पहुंचे कि उर्वरकों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि अब हमें नैनो उर्वरक की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में

0: हाथम करते हैं तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक

0: इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
1: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद है और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
1: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
0: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30-40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15-20% होती है एवं पोटाशियम का 60-70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है जो 1-5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी
1: बढ़ेगी। जी तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
0: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है। तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
1: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी, बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे

0: बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या ICR हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा भी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसकी फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि है, या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके के पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको, उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग, तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था। तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीक है, तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है। नानो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे, लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करें तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद हूँ आपको।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
6: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
7: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूँकि वर्षा भी होते रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
6: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
7: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं जिस खेत में, मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन न लगा करके, सब्जी न लगा करके

उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूं है इसको लगाते हैं कम से कम एक साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है। और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्य दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजीम है, कार्बेंडाजीम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन

0: लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो, चूंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खर पतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खर पतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है, वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं इसको किसान भाइयों आप लोग जरूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है, तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है, और इसमें जो है और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है, बैगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं, तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है इसकी संख्या घट जाती है, और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैंगन के।

प्रूडेंस फूड बोर्ड के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का, तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड फूड बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैंगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है जो नीम का जो तेल है उसका, जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड फूड बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है, और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ये येल्लो वेन मोज़ेइक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक
पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों, इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है

0: जैसे थायोमेथोग्राम 25WG, इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोग्राम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोग्राम 25WG एक टाड़ा के नाम से भी आता है, एक टाड़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी आधा ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो एलोवेरा मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में टुकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोग्राम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई को जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम ज़रूर करता है लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है, कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपना कर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को, खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?

0: 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, हाय कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का

0: जवाब कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी

0: में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में है अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में है अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ग्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो FM 3। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से।

0: आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: mentions the competencies. The third column explains the learning outcomes aligned with the competencies. The fourth column is for teacher's assessment, and the fifth column is for self-assessment. CG1, C1.1, LO, portrays scenes from nature as observed in different times and seasons. CG2, C2.1, imaginatively uses visual elements to create patterns seen in nature. CG2, C2.2, LO, identifies the foreground, middle ground and background in any given picture and uses these spatial divisions in their artwork. CG3, C3.2, LO, creates a basic color wheel by mixing primary colors to obtain secondary colors. CG3, C3.2, LO, follows the steps of creating low relief artwork using a suitable medium. Overall participation in class. All these LOs to be assessed by the teacher and self. Teacher's observations to be mentioned in the lines given. Other comments are also to be mentioned in the lines given. Chapter 2 ends here.
1: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Muhammad Faizan Khan. Production assistant, Mukul Singh. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi.
2: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो, नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
4: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
9: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
12: जोड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों चाहे सक

0: शक्ति वाले खरपतवार हो चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आजकल आपने बहुत सुना होगा कि मखाना की खेती करनी चाहिए और मखाना की खेती से बहुत लाभ मिलता है। तो वो लाभ कैसे मिलता है? तो उसमें एक सबसे अच्छा पहलू ये भी होता है कि मखाना के प्रसंस्करण से भी आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं, कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रसंस्करण क्या है, इसके कितने चरण होते हैं, आइए सभी के बारे में विस्तार से समझते हैं डॉक्टर पंकज कुमार से। सर आप हैं आणविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मखाना का प्रसंस्करण क्यों जरूरी है?
6: मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मखाना का प्रसंस्करण जो है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही कठिन कार्य है। अब ये कठिन कार्य क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम लोग ने पिछले बार भी बातचीत किया था कि हार्वेस्टिंग करके लाना और उसके बाद प्रसंस्करण के लिए आगे की विधि व्यवस्था को करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मखाना का बीज इतना हार्ड होता है, उनका बीज इतना कड़ा होता है जिसको मतलब जिससे लावा निकालना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसके कई चरण होते हैं। तो इनका प्रसंस्करण जो है बहुत कठिन होता है। वर्तमान समय में आज भी जो है कि आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की बहुत भारी कमी देखी गई है। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ जो है यंत्र बनाए गए हैं, लेकिन वह भी जो है 100% जो है अभी तक फार्मर्स किसान तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें कि हमारे विश्वविद्यालय बहुत इसके लिए तत्पर हैं और किसानों को मदद के तौर पे इसकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मशीन के द्वारा भी अगर देखा जाए तो मशीन की दक्षता, उसमें करने की कैपेबिलिटी जो है वो कितनी है, कितने समय में कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि कई तरह के इसमें बीज होते हैं, तो उनके प्रसंस्करण में बीजों का आकार को लेके जो है काफ़ी समस्याएं होती है। तो मखाना प्रसंस्करण में आप देखेंगे मैम कि कई बिंदु हैं और उनसे मशीनों के से पहले जो है इसको बीज को सुखाया जाता है और सुखाने में भी आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सूखने से भी हमें लावा की मात्रा घट जाती है, कम सूखने से लावा अच्छा नहीं बन पाता है, तो ये सब सारी समस्याएं प्रसंस्करण में होती हैं।
1: सर अभी आप बीजों के बारे में विभिन्न बीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो बीजों का क्या श्रेणीकरण करना ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है?
6: बहुत अच्छा सवाल है मैम ये, क्योंकि देखिए अब मखाना में कहा जाता है कि बीज का जो आकार है वो 4 mm से लेके 14 mm तक वेरी करता है, मतलब अंतर होता है। तो देखा जाए तो 6 से 8 प्रकार का जो है इसमें आकार होते हैं।

0: और हर आकार के लिए अगर आप जहाँ पे प्रसंस्करण होता है वहाँ पे देखेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं या जो इनको लावा निकालने की प्रक्रिया वो चलनी चलनी हमारे भाई बंधु समझते होंगे, तो कई आकार के चलनी होते हैं, तो वो प्रसंस्करण से पहले बीजों का चलनी के थ्रू से एक जैसे आकार को अलग अलग करना आवश्यक है। अब सोचा जाए तो इसमें भी वैज्ञानिक सोच है, क्यों अलग अलग किया जाए, क्यों नहीं सबको, जब हमको सबसे लावा ही निकालना है तो क्यों नहीं सबको एक साथ ही भूंज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? अगर ऐसा हुआ तो जो बड़े आकार का बीज है वो ज़्यादा सरफेस एरिया जो है अपने जो कढ़ाई में हो लेगा और छोटे आकार को नहीं मिल पाएगा, तो कुछ लावा जो है बनेंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए बीजों का श्रेणीकरण करना बहुत आवश्यक है ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में अपने बीज से लावा को निकाल पाए। तो जैसा कि हमने बताया कि बीजों में जो आकार है वो 6 से 8 ग्रेड तक विभक्त किया जाता, मतलब बायफर्केट किया जाता है, ताकि उसमें यूनिफॉर्म जो सामान्यतः हीट जो है, ताप जो है, उस तक पहुंच पाए। क्योंकि बीजों को जो भूंजने के लिए पहले उसमें थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप किसान भाई अगर देखेंगे जहां बीज से लावा बनाया जाता है वहां 6 कढ़ाई रखा जाता है, 6 कढ़ाई में भी मतलब आप देखेंगे एक आकार के बीज के लगभग 10 दाना 15 दाना ही वो लोग रखते हैं, और हर 1 से 2 मिनट के अंतराल में कढ़ाई से इस कढ़ाई से उस कढ़ाई में, उस कढ़ाई से इस कढ़ाई में करते करते लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि ज़्यादा हीट भी ना हो और कम हीट भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो उसका मॉइस्चर जो है वो, जो नमी कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा हीट करने से क्या होगा, सॉरी कम हीट करने से क्या होगा कि उसमें नमी रह जाएगी तो लावा नहीं बन पाएगा। तो जो ये तापमान का जो है, मैं बताना चाहूँगा कि हर कढ़ाई में जो है कि लगभग 1 से 1 मिनट से 2 मिनट रखते हैं, और ये तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस से लेके 335 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं जो अभी थोड़ा देर पहले ये बताने का कोशिश कर रहा था कि मशीन यही टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मशीन अपना काम सही से नहीं करके और लावा का जो निकलता है वो थोड़ा सा कम निकल पाता है मशीन से। लेकिन जो हमारे किसान भाई जो खुद से प्रोसेसिंग करते हैं वो इस तापमान को कढ़ाई टू कढ़ाई करने के कारण जो है वो कर पाते हैं, और उसमें जो लास्ट वाला कढ़ाई से निकाल करके उसको एक थापी बोलते हैं जो कि लकड़ी का बना होता, उस पर रखते हैं और उससे मारते हैं और अचानक से जो है वो थापी से लावा बन के निकलता है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि बीजों का श्रेणीबद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। आपको अगर अच्छे लावा निकालने हैं बीजों से तो आपको श्रेणीबद्ध करना ही होगा।
1: जी सर। सर टेम्परिंग क्या होता है?
0: बिल्कुल सही सवाल है मैम। टेम्परिंग जो है ये प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, कमरे में सामान्यतः जो है 48 से 72 घंटे तक बीजों को रखते हैं, जैसे कि प्री हीट करके, क्या है, थोड़ा सा तापमान देके बीजों को सुखाने का काम करते हैं और या भंडारण किया जाता है। यह सर्वाधिक जो है कि कहा जाए तो ये जो लावा निकालने से पहले का काम होता है। और ये टेम्परिंग क्यों किया जाता है, बिल्कुल सही है कि ये तो मतलब बीजों से लावा निकालने के, इनके पीछे वैज्ञानिक कारण, आप देखेंगे मखाना का जो सीड होता है, जो बीज होता है, बहुत ही हार्ड होता है, तो अंदर का जो पेरिस्पर्म होता है वो क्या करता है कि उससे अलग हो जाता है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि जैसे कि आम की गुठली को देखे होंगे कि थोड़ा सा वो जब सूख जाता है तो हिलाएंगे तो एक ढबढब का आवाज़ आएगा, तो इससे क्या होता है, वो वाल को छोड़ दिया है लेकिन उसमें नमी का मात्रा बना हुआ, तो उस नमी के मात्रा को बनाए रखना तथा उसके जो सीड का जो बाहरी कवच है उससे थोड़ा अलग हो जाए ताकि जब उस पर थापी पड़े तो वो सही से जो है हीट के कारण जो है बड़ा लावा बन के आए। और देखा जाए तो जितना भी मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, बड़े लावा का जो दाम होता है वो, जो दर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, छोटे लावा का जो है दर कम होता है। तो ये इसी चीज़ को

0: टेम्परिंग कहा जाता है।
1: सर मखाना की रोस्टिंग भी की जाती है, तो इस प्रोसेस को आप हमें विस्तार से समझाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, रोस्टिंग जो है टेम्परिंग के बाद का प्रोसेस कहा जाता है। इसमें भुने हुए बीजों को लगभग 200-300 ग्राम तक के लॉट को लगभग 230 डिग्री से 335 डिग्री सेल्सियस पर खुले कढ़ाई में आग पर भून लिया जाता है। जब बीज से कोई कर्कश का ध्वनि सुनाई देती है, तब इसको 5 से 7 बीजों को निकाल करके जो है लकड़ी के जो वही थापी जिसको बोलते हैं, कठोर सतह पे रखा जाता है और उससे बने हथौड़े से उस पे मारा जाता है। जोर जोर से मारने के कारण बीज का आवरण जो है वो टूट जाता है और अचानक दबाव पड़ने के कारण लावा बाहर निकल के आता है, जो कि मखाना का कर्नल भी कहा जाता है। बीज का जो खाने का हिस्सा होता है उसको, जो ऐसा मैंने अभी बताया, पेरिस्पम जो है वो लावा बन के निकल के आता है। तो यही है रोस्टिंग का प्रोसेस मैम।
1: जी सर, सर पॉलिशिंग क्या होता है और क्यों करते हैं पॉलिशिंग?
0: बिल्कुल मैम, देखिए पॉलिशिंग तो ऐसे ही शब्द से ही लगता है कि पॉलिश करने की प्रक्रिया है। पॉलिशिंग का मतलब है कि जब एक्चुअली आप देखे होंगे कि मखाना का, या हमारे किसान भाई देखे होंगे, मखाना का बीज जो देखने में लगता है वो काला लगता है, इसलिए इसको कोई ब्लैक डायमंड भी कहता है। और जब उस बीज से मखाना निकलता है तो वो पूरी तरह से व्हाइट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ब्रांड जो है उस पर चिपका हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा उजलापन में थोड़ा सा निखार नहीं आ पाता। तो इसके लिए, पॉलिशिंग के लिए जो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बांस के बने लकड़ी जो टोकरी होता है, जिसको टोकरी कहा जाता है, बांस से बने टोकरियों में मखाना का लावा को रख कर उसको रगड़ने का काम करते हैं। तो रगड़ने के कारण जो उसमें जो छोटा छोटा जो उसमें ब्रांड चिपका हुआ रहता है, जो सीड से निकलता है, वो हट जाता है। और दूसरी तरह से क्या है, नमी भी उसका चला जाता है, और नमी के जाने से जो है मखाना चमकने में बहुत ज़्यादा अधिक सफेदी के कारण चमकने लगता है। तो इससे जो है पॉलिशिंग करने से क्या है, आपके मखाना का रेट जो है वो बाजार में उच्च दाम में मिलता है। यही कारण है कि लोग पॉलिशिंग करते हैं इसका।
1: जी सर, सर अब आप हमें ये बताइए कि मखाना लावा कितने प्रकार के होते हैं और ये अलग-अलग दामों में क्यों मिलते हैं?
0: जी, देखा जाए मैम तो मखाना लावा का प्रकार ही मखाना का सही मूल्य का जो है निर्धारण करता है। जैसे कि मखाना के लावा मुख्यतः बाजार में जाएंगे तो तीन तीन तरह के आपको मिलेंगे, और उसको जनरली जो हमारे किसान भाई हैं सूता कहते हैं, जिसको MMB लोग साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं। तो 6 सूता वाला मतलब जो बड़े आकार का मखाना है, ठीक है, जिसको लावा भी बोलते हैं, वो आपको मार्केट में अभी के समय में, हालांकि इसका दाम आगे बढ़ते घटते रहता है, तो सबसे उच्च दाम में लावा मिलता है। उससे जो छोटा होता है, जो 4 mm से कम के होते हैं, 2 से 3 mm या 4 mm तक के जो होते हैं, उसको मुर्रा बोला जाता है। मतलब उसमें थोड़ा सा आपको बड़े बड़े लावा भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे। उसके बाद सबसे छोटा वाला जो होता है, जो मार्केट में नहीं के बराबर ही मिलते हैं, लेकिन वो लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं उनके यहाँ बच जाते हैं, उसको थुर्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि अगर आप सबको मिला दें तो एक चौथा प्रकार बोल सकते हैं जिसको मिक्स बोलते हैं। इस मिक्स में आपको सब तरह के लावा मिल जाएंगे, जिसके हिसाब से उनका रेट निर्धारण होता है।
1: जी सर, तो सर अगर हम संक्षिप्त में समझना चाहें मखाना प्रसंस्करण को, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैम इसमें देखा जाए तो सबसे पहले मखाना का जो बीज है उसको लाते हैं लोग, उसके बाद उनको गुनी गुनी धूप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप में, तो इसलिए मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे तक आप सुखाते हैं उसको। उसका साफ सफाई करने के बाद सुखा के, और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम इसमें 30 से 35% नमी बनी रहे, और धूप में सूखने के बाद जो है इसको प्री हीटिंग के लिए, जिसको हम लोग टेम्परिंग के भी कहते हैं, प्री हीटिंग के लिए इसको लेके जाते हैं, और प्री हीटिंग के बाद इसमें 70 से 72 48 से 72 घंटे तक रखते हैं। फिर इसको जो है आप मखाना के बीज को श्रेणीबद्ध कर लीजिए। श्रेणीबद्ध करने के बाद इनका जो है आप जो है क्या रोस्टिंग के लिए आप लेके जाइए। रोस्टिंग में आप विभिन्न तरह के ग्रेडिंग का जो है

0: लगभग 300 ग्राम के मखाना का लॉट बनाइए और उस तरह से उसमें 10 पीस बीजों को लेके आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर जब आपका लावा बन जाता है तो आप उसका पॉलिशिंग करिए। पॉलिशिंग करने के बाद भी आप उसको ग्रेडिंग करिए, लावा का भी ग्रेडिंग करिए। ऐसा नहीं है कि जो बड़े आकार का सारे मखाना का जो लावा होगा वो बड़ा ही होगा, तो इसलिए आप उसके मखाना के लावा का भी ग्रेडिंग करिए। 6 mm वाले को अलग रखिए या जो 6 सूता वाले को अलग रखिए, 5 सूता वाला, 4 सूता वाला को अलग रखिए और इस तरह से पैकेजिंग करिए, उसमें ब्रांड लगाइए और आप उसको सेल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर, तो इस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मखाना की खेती करते हैं तो प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दें, आपका मुनाफा कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें दीजिए अभी के लिए इजाजत। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक

0: सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे, मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने

0: ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़े, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए

0: हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। मैम है बीएससी सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
2: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुँचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम, सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुँचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का, इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकालकर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
1: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
2: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं जो कि कैंसर,

0: चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है, जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 ppm को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है, क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन चैम्बर, इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 ppm की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 degrees Celsius से 25 degrees Celsius और नमी 90 to 95% रखी जाती है, जिससे फल 24 से 48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच, पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें, इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को

0: MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
4: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें।

रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं। और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश

स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है। इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुवाई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखे। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखे। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब

है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? बहुत मुद्दत हो गई आपसे बात किए हुए। ना तो हमने कोई कहानी कही और ना ही कोई कविता कही। अब आपके बिना मन नहीं लगता। मन करता है कि आपके साथ बहुत देर तक बस बातें करते रहें, गपियाते रहें, बतियाते रहें। तो आज आपके साथ बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि वे कौन हैं। वे हैं आस्तिक सिन्हा। तो क्यों ना बच्चों, मैं आपकी तरफ से उनका स्वागत कर दूं। आस्तिक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं की तरफ से।
2: धन्यवाद।
1: अच्छा आस्तिक, ये बताइए, कभी आपने आम का बगीचा देखा है?
2: बिल्कुल।
1: आम के बगीचे में किसके पेड़ होते हैं?
2: आम के।
1: मैं टेस्ट कर रही थी आस्तिक को कि आस्तिक क्या जवाब देते हैं। भाई, आम के बगीचे में तो आम के पेड़ ही होंगे। तो आस्तिक हैं चतुर समझदार आपकी तरह। बच्चे चतुर और समझदार होते हैं और उनकी चतुराई और समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। किसे? बड़ों को। तो आस्तिक आम के बगीचे में होते हैं, आम के पेड़, ठीक है? तो कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े हैं?
2: नहीं।
1: नहीं। और अगर कभी कभी ऐसा लगे आपको कि पेड़ बहुत नीचा है और आप आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो क्या कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश की है?
2: हाँ।
1: ऐसी ही एक कहानी है हमारे पास आज सभी बच्चों के लिए। तो बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है आम की कहानी। आस्तिक तैयार है आम की कहानी सुनने के लिए?
2: बिल्कुल।
1: तो हुआ यूं कि झुमकी नाम की एक बच्ची थी। झुमकी आम के बगीचे में थी, सैर कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पता है आस्तिक उस पेड़ पर क्या था?
2: नहीं।
1: उस पेड़ पर लटका हुआ था एक पका हुआ आम। जब झुमकी ने आम देखा तो उसने सोचा अपने मन में कि ये आम तो मुझे ले लेना चाहिए।

0: वहां कौन आया? तभी वहां झुमकी का भाई आया, मिदना। मिदना के हाथ में थी गुलेल। झुमकी ने मिदना से कहा, भैया वो देखो आम, मुझे वो आम चाहिए, मुझे आम ला दो ना। तो मिदना ने कहा, ठीक है झुमकी, मैं ला देता हूँ। लेकिन कैसे लाएंगे? झुमकी ने पूछा। तो मिदना ने कहा कि मेरे पास गुलेल है, मैं गुलेल से निशाना लगाऊंगा आम पर और आम खट से टूट जाएगा, और जब आम टूट जाएगा तो तुम ले लेना। मिदना की ये बात सुनकर झुमकी बहुत खुश हो गई और ताली बजाकर हंसने लगी। उसके बाद आस्तिक पता है क्या हुआ?
1: नहीं।
0: उसके बाद हुआ कि मिदना ने गुलेल पर लगाया एक पत्थर, अपनी एक आंख बंद की, गुलेल का धागा खींचा और आम की दिशा में छोड़ दिया। खटा की आवाज हुई और निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। बताओ आस्तिक, निशाना कहाँ लगा था?
1: आम की डंडी पे।
0: जिस डाल पर आम लटका हुआ था निशाना वहीं लगा और खट की आवाज से आम टूट गया। लेकिन वहां पर एक काला कौवा भी था जो ठीक उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ था और देख रहा था कि कब ये आम टूटे और कब वह आम को ले जाए। तो अच्छा आस्तिक, ये बताओ कि क्या आम झुमकी को मिलेगा या फिर आम कौवा ले जाएगा?
1: कौवा ले जाएगा।
0: बिल्कुल सही। जैसे ही आम टूटा वैसे ही कौवा आम की तरफ लपका और उसने अपनी चोंच में आम की जो ऊपर छोटी सी डंडी होती है उसे पकड़ लिया और वह उड़ चला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। अब बताओ ये मुसीबत क्या हो सकती है?
1: आगे कोई शिकारी है।
0: हाँ ये भी हो सकता है। और क्या मुसीबत हो सकती है?
1: और आगे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो।
0: पेड़ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं और कौवे ने मधुमक्खी का वह छत्ता नहीं देखा और वह टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो सारी मधुमक्खियां भिन भिन भिन भिन करती करती कौवे से चिपट गई और उसे काटने लगी क्योंकि कौवे ने उनका घर तोड़ दिया था। अब बताइए आस्तिक, जब मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया तो क्या ये सही किया या गलत किया?
1: सही किया।
0: क्यों सही किया?
1: क्योंकि कौवे ने उसका घर तोड़ दिया।
0: मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत से अपना मधुमक्खी का छत्ता बनाया, अपना घर बनाया और कौवे ने देखा ही नहीं और सीधा भिड़ गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो मधुमक्खियों का छत्ता यानी उनका घर टूट गया। इस वजह से मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया। जब मधुमक्खी ने कौवे को काटा तो उसे बहुत जोर का दर्द हुआ और वह क्वां क्वां करके उसने मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला तो आज तक क्या हुआ होगा?
1: आम गिर गया होगा।
0: बिल्कुल सही। आम उसकी चोंच से गिर गया और सोचो कहां पहुंचा होगा?
1: जमीन पे।
0: आम जमीन पर नहीं पहुंचा। आम दरअसल गिर गया एक घोंसले में जो उसी पेड़ पर था, और जैसे ही आम उस घोंसले में गिरा, पता है आस्तिक उस पेड़ पर कौन थी?
1: नहीं।
0: चिड़िया तो नहीं थी, उस पेड़ पर बैठी हुई थी गिलहरियां। एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन की तीन गिलहरियां वहां थी और आम को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। तो वो ऐसे क्यों देख रही थी आस्तिक?
1: क्योंकि उन्हें भूख लगाई होगी।
0: हाँ आस्तिक, ये तो हो सकता है कि गिलहरियों को भूख लगी हो और वे आम को ललचाई नजरों से देख रही हो। लेकिन तभी एक और गिलहरी थी, खूब चतुर सयानी, उसने झट से घोंसले में से वह आम ले लिया, और जैसे ही उसने वह आम लिया और जैसे ही उसने उसे खाना शुरू किया, इससे पहले कि वह उसे खा पाती, घोंसले में जो अंडे थे उसमें से काऊ काऊ काऊ करते करते बहुत सारे बच्चे चीखे। पता है आस्तिक, ये तो कौवे का घोंसला था और अंडे भी उसी के थे,

0: खूंटे में से उसके बच्चे निकले और वे कांव कांव करने लगे। अचानक से ये कांव कांव की आवाज सुनकर गिलहरी डर गई, और जब गिलहरी डरी तो उसका मुंह खुला, और जब उसका मुंह खुला तो आज तक आगे क्या हुआ होगा?
1: आम नीचे गिर गया होगा।
0: आम नीचे गिरा और ये जा पहुंचा एक आदमी की पगड़ी में। अच्छा ये बताओ आस्तिक, ये आदमी कौन होगा?
1: कोई किसान
0: या फिर आम के बगीचे का मालिक। इसका नाम है सोहनलाल। सोहनलाल खूब मेहनत करते हैं, आम के बगीचों की देखभाल करते हैं, एक एक पत्ते को सहलाते हैं बहुत प्यार से। तो इसलिए खूब मेहनत करके वे थक गए थे और उसी आम के पेड़ के नीचे वे सुस्ताने लगे। अब सुस्ताना क्या था, ये तो उन्हें नींद ही आ गई। इतनी गहरी नींद आई आस्तिक उन्हें कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आम उनकी पगड़ी में गिर गया। और पता है आस्तिक, यहाँ पर दो प्राणी और थे। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन हो सकता है?
1: खरगोश।
0: दो खरगोश बहुत गौर से सोहनलाल को देख रहे थे। सोहनलाल को नहीं, उसकी पगड़ी में रखे हुए आम को देख रहे थे ललचाई नजरों से। तब तक कौआ भी आ गया था और पेड़ के ऊपर से गिलहरियां भी सोहनलाल की पगड़ी में झांक रही थी। अब इतने सारे लोग, इतने सारे प्राणी, सबकी नजर किस पर थी?
1: आम पर।
0: सबने सोचा कि आम तो हम ले ही लेंगे। तब तक झुमकी भी सोहनलाल के पास आ गई थी। उन्होंने झट से सोहनलाल की पगड़ी में से आम उठाया और खुशी के मारे वे चिल्लाने लगी, मिल गया आम, मिल गया आम। झुमकी की यह खुशी देखकर मिदना को भी बहुत खुशी हुई और उसने अपने गुलेल की तरफ देखा और कहा, शाबाश गुलेल, तुमने खूब निशाना लगाया। और झुमकी को मिल गया उसका प्यारा रसीला मीठा सा आम। झुमकी के हाथ में था आम और पेड़ पर सारे जो प्राणी बैठे हुए थे उसमें कौन कौन है? कौवा है, गिलहरी है, कौवे के बच्चे हैं, और नीचे जमीन पर जो बैठे हुए हैं खरगोश, सब के सब झुमकी की तरफ देख रहे थे क्योंकि झुमकी के हाथ में था मीठा रसीला प्यारा सा आम। झुमकी ने आम धोया और उसे अपने भाई मिदना के साथ बांटकर खाया। लेकिन पता है आसिक, झुमकी ने बाकी सब प्राणियों को भी आम के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए। तो झुमकी ने खरगोश के साथ, गिलहरियों के साथ, कौवे के साथ और कौवे के बच्चों के साथ मिलकर आम खाया। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आपको ये कहानी?
1: बहुत मजेदार थी।
0: मजा आया?
1: हाँ।
0: अच्छा आस्तिक ये बताओ, कहानी में ऐसे कौन से मोड़ थे जहाँ से कहानी बदल गई? हमें जैसा लगा कि कहानी तो ऐसे घटी होगी, लेकिन पता चलता है कहानी में तो ये हुआ ही नहीं। तो आस्तिक बता सकते हैं कि कहानी ने कहाँ से मोड़ लेना शुरू किया?
1: हाँ, कहानी ने वहाँ से मोड़ लेना शुरू करा जब कौवा छत्ते से टकरा जाता है।
0: शाबाश। और उसके बाद जब गिलहरी आम को पकड़ लेती है, उसके बाद कौन सा मोड़ आता है?
1: उसके बाद अंडे में से चूजे बाहर आके चिल्लाने लगते हैं और गिलहरी डर जाती है।
0: और जिसे आप चूजे कह रहे हैं, ये बच्चे किसके हैं?
1: कौवे के।
0: कौवे के बच्चे। और कौवे के बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? कुहू कुहू कहेंगे या फिर काव काव कहेंगे?
1: काव काव कहेंगे।
0: अगर अचानक आपके कान के पास यही आवाज आए, काव काव काव, तो आप भी डर जाएंगे ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: ऐसे ही गिलहरी भी डर गई थी। अब जब गिलहरी डर गई तो कहानी में आया तीसरा मोड़ और गिलहरी के मुंह से छूट गया आम और जा गिरा सोहनलाल की पगड़ी में, जहाँ से झुमकी ने वह आम उठा लिया। तो ये थी हमारी आम की कहानी। अच्छा आस्तिक ये बता सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक या इस कहानी का नाम आम की कहानी क्यों रखा गया होगा?
1: आम इतनी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार झुमकी के हाथ में आ ही गया।
0: हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आम के आसपास ही तो घूम रही है।

0: झुमकी ने आम को देखा और मिडना ने आम पर निशाना लगाया। कौवे ने आम पकड़ा, कौवे के मुंह से आम छूट गया तो गिलहरी ने पकड़ा, गिलहरी के मुंह से आम छूट गया तो गिरा सोहनलाल की पगड़ी में और फिर झुमकी ने वह आम उठा लिया। क्या आस्तिक इस कहानी का कोई और नाम भी हो सकता है?
1: हाँ,
0: बताओ तो जरा।
1: आम की मुसीबतें।
0: आम की मुसीबतें, झुमकी का आम, कौवे की चतुराई, गिलहरी का रोना और मिडना का निशाना। इस कहानी का कोई भी नाम हो सकता है। जब हम किसी कहानी का कोई नाम रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। या तो कहानी का नाम किसी एक खास व्यक्ति पर हो सकता है, किसी खास चीज पर हो सकता है, या फिर किसी घटना पर हो सकता है। इस कहानी में हमने कहानी का नाम किस पर रखा है? क्या किसी व्यक्ति के नाम पर रखा है या फिर किसी चीज के नाम पर रखा है?
1: हमने कहानी का शीर्षक किसी चीज के नाम पर रखा है।
0: और वह चीज क्या है?
1: आम।
0: क्योंकि आम के इर्द गिर्द ही कहानी की पूरी घटनाएं घूमती हैं, इसलिए हमारे केंद्र में है आम। इसलिए हमने कहानी का शीर्षक रख दिया आम की कहानी। बच्चों, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं रिमझिम में, और ये कहानी आप पढ़ सकते हैं NBT द्वारा प्रकाशित आम की कहानी में भी। चित्र कथा है, यानी इसमें चित्रों के सहारे ही कहानी आगे बढ़ती है। मैंने तो अपने एक अलग अंदाज से कहानी सुनाई, लेकिन बच्चों आप इसी चित्र कथा के आधार पर अपनी कहानी बना सकते हैं, अपनी नई कहानी बना सकते हैं और अपनी कहानी का कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। आप चाहें तो लड़की को कोई अपना नाम दे सकते हैं, जैसे बबीता, जैसे मुनिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। और आप लड़के को भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दिया मिडना। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मनोज रख सकते हैं, असलम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। और तो और आप कौवे का, गिलहरी का भी नाम रख सकते हैं, चाहे तो खरगोश के नाम भी रख दीजिएगा। तो नाम रखने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप नाम के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहानी का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा आस्तिक, आपने और सभी बच्चों ने ये कहानी सुनी, ध्यान से सुनी होगी मुझे उम्मीद है। तो आस्तिक ये बताइए कि कहानी में सबसे पहले क्या आया?
1: कहानी में सबसे पहले लड़की आई।
0: और लड़की ने क्या देखा था?
1: लड़की ने आम देखा।
0: उसके बाद क्या आया?
1: उसके बाद कौवा आया।
0: ठीक है, और कौवा तो उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था, लेकिन कौवे ने आम को पकड़ा, उससे पहले क्या आया?
1: उससे पहले मिडना आया।
0: और मिडना के हाथ में क्या था?
1: गुलेल।
0: तो लड़की के बाद आई गुलेल और गुलेल से टूटा आम, उसके बाद कौन आया?
1: गुलेल के बाद कौवा आया।
0: और कौवे के बाद कौन आया?
1: कौवे के बाद छत्ता आया।
0: छत्ते के बाद कौन आया?
1: छत्ते के बाद घोंसला आया।
0: और घोंसले के बाद कौन आया?
1: गिलहरी।
0: और गिलहरी के बाद कौन आया?
1: सोहनलाल।
0: सोहनलाल या सोहनलाल की पगड़ी?
1: सोहनलाल की पगड़ी।
0: पगड़ी सोहनलाल ने पहनी हुई थी, तो सबसे आखिर में आए सोहनलाल। और उसके बाद कहानी समाप्त होती है आम के ऊपर। तो कहानी शुरू हुई थी आम पर और खत्म हुई आम पर। लड़की ने, यानी कि झुमकी ने, एक आम देखा, उसने सोचा कि मुझे ये आम चाहिए ही चाहिए, और अंत में उसे आम मिल गया। अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि कहानी में इतने सारे पात्र हैं, कहानी में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, तो क्या चीज किसके हाथ में थी, कौन सी चीज कहाँ ऊपर थी और कौन सी चीज किसके अंदर थी? तो आप बता पाएंगे कहानी को याद करते हुए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए कि गुलेल कहाँ थी?
1: गुलेल मिडना के हाथ में।
0: शाबाश। और घोंसला कहाँ था?
1: पेड़ के ऊपर।
0: वेरी गुड। और कौवे के बच्चे कहाँ थे?
1: घोंसले में।
0: शाबाश। और पेड़ के ऊपर कौन था?
1: गिलहरी।
0: और सोहनलाल के सिर पर क्या था?
1: पगड़ी।
0: तो हमने ये देखा कि कहानी में बहुत सारी चीजें आई हैं। गुलेल

0: है, घोंसला आया है, घोंसले में बैठे हुए बच्चे आए हैं और गिलहरी आई है और सोहनलाल अपनी पगड़ी के साथ आए हैं। तो कोई चीज कहीं पर है तो और कोई चीज कहीं पर है। आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी कहानी बनानी है और आप चाहें तो अपनी कहानी के चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाना, उनमें रंग भरना बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कहानी बनाइए और हमारे पास लिखकर भेज दीजिए। और जब आप कहानी बनाएंगे तो तस्वीर बनाना मत भूलिएगा, और जब तस्वीर आपने बना ली है तो उसमें रंग भरना मत भूलिएगा। हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है आपका और आपकी बनाई हुई कहानियों का और तस्वीरों का। तो बच्चों, हमने इस कहानी में ये देखा था कि एक आम को कोई ना कोई ले जा रहा था। कभी कौवा ले गया तो कभी गिलहरी ले गई, है ना आस्तिक? ऐसा ही कुछ नानी के साथ हुआ। नानी की भी कोई चीज कोई चुरा कर ले गया था। आपको कोई गीत याद आ रहा है आस्तिक?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है।
0: तो क्यों ना आप वह गीत सुना ही दीजिए।
1: ठीक है,
0: तो लीजिए हम सुनते हैं आस्तिक से वह गीत, नानी वाला गीत।

0: बहुत मजेदार गीत सुनाया आपने कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छा, यहाँ पे चोरों को काला क्यों कहा गया है? क्या उनके मुंह पर कुछ काला काला लगा था? सोचो आस्तिक, और सोच कर बताना कि आखिर चोरों को काला क्यों कहा गया है, काले चोर ले गए?
1: उन्हें काला इसलिए कहा होगा कि वो दिखने में थोड़े काले हों।
0: हाँ, हो सकता है कि वे सांवले रंग के हों, इसलिए उन्हें काले चोर कह दिया हो, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि आप इस कहानी में जो अलग अलग पात्र आए हैं, आप उन्हें क्या नाम देना पसंद करेंगे? देखिए, शुरू में जब हमने कहानी कही थी तो हमने अलग अलग पात्रों को अपने हिसाब से नाम दिया था। लड़की का नाम रखा था हमने झुमकी, और लड़के का नाम रखा था मिदना। लेकिन आस्तिक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये कहानी को लिखते हैं तो आप इन पात्रों को क्या नाम देना पसंद करेंगे? तो हम शुरू करते हैं लड़की से।
1: मैं लड़की को नाम देना चाहूंगा गौरी।
0: और कौवे का नाम?
1: कौवे का नाम गर्व।
0: क्या नाम रखेंगे?
1: गर्व।
0: गर्व। और लड़के का नाम?
1: लड़के का नाम दर्श।
0: दर्श। और पगड़ी वाले आदमी का नाम?
1: मोहनलाल।
0: मोहनलाल। और आप खरगोश को क्या नाम देना पसंद करेंगे?
1: पहले खरगोश को हम कह सकते हैं हनी, दूसरे को कह सकते हैं बनी।
0: शाबाश। और आप गिलहरी को क्या नाम देना चाहेंगे?
1: मैं गिलहरी को नाम देना चाहूंगा जारुल।
0: तो ये था आस्तिक का कहना कि उन्होंने अलग अलग पात्रों को अलग अलग नाम दिए हैं। बच्चों, आप भी ऐसे नाम रख सकते हैं अपने अपने पात्रों के हिसाब से। किसी का नाम कुछ हो सकता है, तो किसी का नाम कभी कभी हम अपने नाम पर ही रख लेते हैं, हमें सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और हम विदा लेते हैं आपसे। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आस्तिक का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे, तो हम आपकी तरफ से आस्तिक का धन्यवाद करते हैं इस स्टूडियो में आने के लिए। आस्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और हमारे साथ कहानी कहने में मदद करने के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इतना मधुर सुरीला गीत सुनाने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो हमने धन्यवाद दिया आस्तिक का, और एक बार हम फिर दोहरा देते हैं कि आपको अपनी कहानी

0: यानी तस्वीरें कहाँ भेजनी है। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो। तकनीकी सहयोग विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
10: हर

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी एफएम ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस एन रे। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
1: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है। यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट, गंधी कीट, राइस हिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट धान की बभनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशियों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
0: जी डॉक्टर साहब, तनाभेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
1: तनाभेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे की बढ़ती कोमल में विधक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
0: जी।
1: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें वाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती, तना बेधा का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम बताना चाहते हैं, इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना बेधक का बचाया जा सकता है। तना बेधक व्यस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना बेधक कीट के अंडों को नष्ट करने

0: के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना भेदक की आर्थिक क्षति होने पर कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम, कार्बोफुरॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
1: जी, तो ये बात हो गई है तना भेदक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। अब मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए?
0: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुँचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिसे पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प एवं गुच्छ निकलने के बाद होता है, तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10 से 70% तक क्षति हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5 से 10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 मिलीलीटर या थायोमिथोएक्जेन दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुँचे।
1: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है, जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुँचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
0: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुंचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, जिसकी इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20 से 30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6 से 7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है, उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक

0: अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से, ताकि वयस्क कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हील दिखाई पड़े तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनोज डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें, जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
1: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें।
0: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिससे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का वयस्क हल्का बादामी रंग का होता है, तथा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। वयस्क मादा पत्तियों की सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं, तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ देती हैं, और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा, जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं, फसल ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेंढ को उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें, ताकि इस कीट के वयस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा क्लोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1,000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में एक और कीट सैनिक कीट, ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है, जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें।
0: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है, उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं, क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं, और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1,000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से

0: छिड़काव करें या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें, जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
7: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश

0: आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर,
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल

मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें।

मेघना, अर्कारिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आरजे अनु. आप सभी का स्वागत है हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में. और आज एक खास विषय आप सभी के सामने फिर से पेश है. और दोस्तों, अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हमारे किसान भाइयों को इसे उगाने में. जितना पौष्टिक ये होता है, उतनी ही मेहनत से इसे उगाया भी जाता है. लेकिन अब कुछ रोग और कुछ व्याधि इसमें लग जाए तो सारे के सारे मेहनत वहीं के वहीं धरे पड़ जाते हैं. तो आज हम कुछ रोग के बारे में जानेंगे, जिससे कि हमारे किसान भाई पहले से सतर्क रहें, रोग को पहचान सकें, और अगर वो रोग लग जाते हैं तो उन्हें उनकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं. तो आज अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की जो सब्जी हैं हमारे, जैसे कि मिर्च की बात करें हम, कद्दू की बात कर लें, भिंडी की बात करें, लोबिया या बोरा, साथ ही परवल की बात करें, तो ये जो सब्जी हैं वो प्रमुख तौर पर गर्मी में और साथ ही वर्षा ऋतु में आपको मिल जाएंगे खाने को, और बाज़ार में आपको मिल जाएंगे. तो आज हम इसी के कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे. तो आज का हमारा विषय है गर्मी और वर्षा ऋतु में सब्जियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां, और साथ ही उनका हम प्रबंधन कैसे करें ये. तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अंसार. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में. मिर्च से स्टार्ट करते हैं. मिर्च जो है हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में हम इसे खाते हैं. मिर्च में लगने वाले जो रोग हैं, आप उनके नाम बताएं, और साथ ही हम उनसे अपने मिर्च के इस पौधों को कैसे बचा सकते हैं उसकी जानकारी बताएं.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मिर्च जो है एक बहुत प्रमुख फसल जो है, सब्जी मानी जाती है, जिसका हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इसको यूज़ करते हैं, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे मुख्यतः गर्मी में और वर्षा ऋतु में सब्जी मुख्य तरीके से उगाई जाती है. इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, खास करके जो ये हमारी गर्मी में है और जो बारिश जो शुरू हो जाती है, इसमें बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं. तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब पौधा छोटे अवस्था में ही होता है, जुवेनाइल स्टेज में ही होता है, तो उसी में ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है. तो किसान भाई जब इसका मिर्च का बीज डालते हैं खेतों में या नर्सरी तैयार करते हैं, उस टाइम इसमें पौधों में गलन शुरू लगता है, जिससे शुरू में ही पौधे गल जाते हैं. तो वो क्या होता है कि हमको उसमें पौधे मिल नहीं पाते, जिससे हम लोग उसको मुख्य खेत में रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाते हैं. तो हम लोगों को ये बात देखने की ज़रूरत है कि जब हम लोग बीज डालें तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर जल जमाव ना हो, चूँकि नमी की मात्रा ज़्यादा होता है खेत में जब, तो उसी वक्त में इसमें जड़ों में गलन इसका शुरू हो जाता है, जिससे ये पौधे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं. तो जब भी हम लोग इसको इसका जो नर्सरी तैयार करें, जब बीज डालें, तो ऐसे जगह पे हम लोग नर्सरी का की जगह का चुनाव करें जहाँ पे पानी ना भरता हो, जल जमाव की समस्या ना हो. और जो भी हम लोग बेड तैयार करेंगे जिसमें हम लोग बीज डालते हैं, उसको मिट्टी से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के हम लोग बेड बनाएं, उसके अंदर बीज इसमें डालें, तो हम लोगों का काफ़ी हद तक इसमें रोग से हम लोग इसको बचा लेते हैं. दूसरी एक जो बड़ी समस्या मिर्च में आती है, जो अभी हम लोग देखने को मिल रहा है, जो बारिश भी शुरू हो गई है, इसमें फलों का सड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है. फल सड़ता है, और दूसरा इसकी जो टहनियाँ होती हैं, तने होती हैं, उसमें उसका सूखना शुरू हो जाता है, उस जिसको हम लोग डैम्पिंग, ये इसको हम लोग इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज़ बोलते हैं, हम लोग एंथ्रेक्नोज इसको श्यामवरण भी हिंदी में बोलते हैं. तो इसमें दो तरीके के लक्षण देखते हैं, एक तो ये फलों का सड़ना और दूसरा तनों का सूखना का. तो हम लोग पहले जब फलों की बात करते हैं, तो फल क्या होता है, फल वो सड़ना शुरू होते हैं जो थोड़ा सा मेच्योर, जो पक्के मेच्योर हो जाते हैं, जिनका पकने की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फलों में ये सड़न होती है और फल काले होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं. दूसरी समस्या जो इसमें दिखती है, जो लक्षण दूसरा जो हम लोग देखते हैं खेत के अंदर, उसमें टहनियाँ इसमें काली होने लगती हैं, ऊपर से सूख करके नीचे की तरफ बढ़ती हैं, और देखते ही देखते पूरा पौधा सूख के ख़त्म हो जाता है. और इसके अंदर एक प्रमुख बात यह है कि जो ये बीमारी जो लगी हुई है मिर्च के पौधे पर, ये जो मिट्टी में चले जाते हैं, फल टूट के मिट्टी में गिर जाते हैं, तो ये जो फफूंद है, ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं. जब हम दूसरी बार इसमें मिर्च की फसल दूसरे सीज़न में उगाते हैं, तो उसमें वो फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो मृदा जनित हो जाती है. तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें. तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें फफूंदनाशी का हम लोग स्प्रे करेंगे. तो पहला हम लोग जो छिड़काव करेंगे, मैंकोजेब दवा मार्केट में आती है, हम लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे.

और दूसरा जो हम लोग दवा का छिड़काव करेंगे, एक डाइफेनोकोनाजोल करके एक दवा मार्केट में आती है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, डाइफेनाकोनाजोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है। उसको हम लोग ले करके उसका 1 ml 2 लीटर पानी में उसका हम लोग घोल बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव हम लोग करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पे हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो समस्या लगती है वो धीरे धीरे कम होगी। और हम लोग एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई पौधा पूरी तरीके से सूख गया है तो उसको हम लोगों को खेत से फौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा तो उसे फिर वो आने वाले जब समय में जब हम दोबारा मिर्च लगाएंगे तो उसमें बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी एक समस्या जो हम लोग देखते हैं मिर्च के अंदर, वो पौधों का अचानक सूख जाना। पौधों में फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फल अच्छी तरीके से तुड़ाई हो रही है, अचानक हम लोग देखते हैं कि पौधा ही सूख गया। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है कि इसमें लक्षण जो दिखते हैं हरे भरे पौधों में कि जो पत्तियां होती हैं वो लटक जाती हैं। जो दिन में जब गर्मी होती है तो उसमें पत्तियां नीचे लटकी हुई होती हैं, और जब रात का समय होता है, शाम होती है, फिर पत्ती वो फिर से वो स्वस्थ दिखने लगती हैं। फिर जब दिन आता है दूसरे दिन तो फिर वो पत्ती सूख जाती है। तो ये 2-3 दिन इस तरीके से चलता है, 4 दिन चलता है, फिर वो फाइनली पौधा वो जो है सूख ही जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, उसके जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरी तरीके से, जिससे जो पानी जो पौधा लेता है ज़मीन के अंदर से वो पानी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल विल्ट जो हम लोग जीवाणु की वजह से जो सूखना पौधों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ी मिर्च की समस्या है। तो इसको किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि अगर जिस खेत में ये बीमारी अगर लगातार आ रही है, आप लोग मिर्च की फसल लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्षों तक हम लोगों को इसके अंदर फसल चक्र का अपनाएं। कोई भी जो मिर्च वर्ग के जो फसल है उसको हम लोग नहीं लें उस खेत के अंदर, अगर लेते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई इसमें मिर्च लगा रहा है खेत में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग मिर्च लगाएंगे तो हम लोग इसको दवा में इसको ट्रीटमेंट इसका देंगे, इसके जड़ों को हम लोग दवा में इसको डुबाएंगे फिर खेत में लगाएंगे। तो एक दवा मार्केट में के साइक्लिन करके आती है, जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसको हम लोग 1 ग्राम दवा जो है 20 लीटर पानी के करीब से घोल उसको हम लोग बना लेंगे और उसमें जड़ों को थोड़ी देर के लिए डुबा करके फिर हम लोग मुख्य खेत में उसको लगाएंगे। तो इससे जो है हमारी बीमारी की जो लगने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर खेत में पौधा लगा हुआ है, फलन हो रही है और अब पौधा सूख गया, तब तो हमको फौरन इसमें ऐसी दवा डालना होगा जो खेत में खड़े हुए फसल में उसमें दवा डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहली ध्यान देंगे जो दवा का छिड़काव करेंगे इसके जड़ों में देंगे, ताकि उसके वैस्कुलर सिस्टम में दवा जाए और जहां वो जीवाणु को मारे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवा आती है मार्केट में मुख्य तरीके से मिलती है, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके पौधों की जो जड़ों हैं जड़ों में उसको दवा डालना है, ताकि वो जड़ से वो दवा अंदर जाए पौधों के अंदर और फिर वहाँ अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम लोग इस जो कोई पौधा सूख रहा है और अगर हम लोग दवा पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो हो सकता है कि वो दवा प्रभावी ना हो, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। और जो एक मिर्च में हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जिसके अंदर पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में कुकड़ी भी बोलते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश हम लोग उसको कर्लिंग बोलते हैं। तो पत्ती उसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो वो एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको हम लोग लीफ कल वायरस की वजह से बोलते हैं, वो बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी होती है ये मुख्य तरीके से जो है एक कीट होता है जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से वो बीमारी एक पौधों से दूसरे पौधों में फैलती है। तो वो बीमारी ग्रसित पौधे से रस चूस करके वो स्वस्थ में जब भी जाएगी रस वहाँ से अपना खाना लेने के लिए, तो वो विषाणु वहाँ पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे खेत में वो कर्लिंग की समस्या आ जाती है, जो पत्ती ऊपर की तरफ ऐंठ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसमें पत्ती का ऐंठना ही नहीं होता है, पत्ती भी ऐंठती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, पौधा झाड़ी नुमा भी हो जाता है, और इसके अंदर अगर फल फूल लगते भी हैं तो वो छोटे और गठीले तरीके से हो जाते हैं, जिनका कोई मार्केट में उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो इसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कोई बीमारी दिखती है, तो अगर पौधे अगर खेत में अगर इस तरीके से अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है, तो फौरन उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देना है और इसको हम लोगों को फौरन खेत में इसको दवा का छिड़काव करना है, जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए दवा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का मार्केट में खूब अवेलेबल है। इसको हम लोग 1 ml/3 लीटर के हिसाब से, या दूसरी दवा थायामिथक्साम करके आती है 1 ग्राम/3 लीटर पानी के हिसाब से, इसका हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे।

0: तो इससे क्या होगा, जो सफ़ेद मक्खी है उनका खेतों में जो जो लगे हुए हैं उनको हम लोग नियंत्रित करेंगे, जिससे बीमारी जिससे फैलती है उसको हम लोग कम कर देंगे। इसको रोकने का और भी अच्छा तरीका है कि हम लोग नर्सरी अवस्था में ही इसको रोकना शुरू करें, क्योंकि नर्सरी में जब हम लोग बीज डालते हैं तो किसान भाई खुले में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पत्ती दो तीन पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी लगनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो बीमारी वायरस जो है फैलना शुरू हो जाता है नर्सरी की अवस्था से ही। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी नर्सरी लगाएं तो उसको हम लोग बारीक एक जाली आती है उस जाली से हम लोगों को नर्सरी को ढकना है। तो उससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो बीमारी जो वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं वो नहीं उसके अंदर जाएंगे नर्सरी के अंदर, और दूसरा और भी जो पत्ती को चबाने वाले कीट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो जो नर्सरी आपने तैयार करी है उसके पौधे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, और जब वो मुख्य खेत में जाएंगे रुपाई के लिए तो उसमें भी बीमारी कम आएगी। यदि आती है तो हम लोग इसका जो दवा अभी हमने बताया कि सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए उसका छिड़काव करेंगे। दूसरी बात है किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग मिर्च की फसल लगाते हैं तो हम लोग ध्यान दें कि अपने खेत के चारों तरफ कम से कम दो लाइन बॉर्डर के तौर पे उसमें हम लोग मक्का या ज्वार उगाएं। तो उससे क्या होगा, जो बॉर्डर वाली जो फसल हम लोग लगाते हैं उससे क्या होता है कि सफेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुसनी है, वो उनका एक प्रोटेक्शन हो जाता है किनारे किनारे मेड़ों पर। तो दो लाइन हम लोग मक्के की अवश्य लगाएं उसके किनारे किनारे खेत के मेड़ों पर, जिससे उसमें मधुमक्खी ये वही सफेद मक्खी का उसके अंदर प्रवेश उसके अंदर हम लोग उसको बाधित कर सकें। दूसरा एक इसमें जो कर्लिंग की समस्या आती है, किसान भाई देखते हैं कि कर्लिंग दो तरीके से हम लोग देखते हैं, एक तो जो कुकड़ी होती है ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं जिसको अभी हमने बताया जो विषाणु की वजह से होती है, एक दूसरी समस्या होती है पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो विषाणु नहीं है वो एक माइट होता है, छोटा कीड़ा होता है आँख से नहीं दिखता है, वो पत्ती के निचली सतह पर लग करके उसका रस चूसता है जिससे पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरह की से मुड़ती हैं और थोड़ी लंबी हो जाती हैं, तो माइट है उसके उस माइट को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन करके दवा आती है, स्पायरोमेसिफेन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका घोल करके छिड़काव करें कम से कम 2 बार 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो हम लोग इसको माइट को भी रोक देंगे, तो वो जो इस तरह से अगर पत्ती है तो वो ठीक हो जाएंगी वो।
1: तो ये तो बात हो गई है मिर्च की, मिर्च में लगने वाले रोगों के नाम बताएं डॉक्टर साहब ने आपको, और साथ ही इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो कद्दू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं सर, तो कद्दू में कौन कौन से रोग हैं कद्दू के पौधे में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम?
0: जी, कद्दू एक मुख्य फसल है जो गर्मी में और वर्षा ऋतु में दोनों में होती है, तो इसको इसमें मुख्यतः तीन बीमारियां आती हैं जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसान भाई इसमें इसको आप खेत में देखते भी होंगे, एक तो होता है कि पौधा पूरी तरीके से ही सूख जाता है अचानक, तो हम लोगों को देखना है कि उनके जड़ के पास में कोई कीट लगा, कीट तो नहीं लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी, इसको जड़ को हम लोग उसको देखना है उसको जा करके। तो अगर हम लोगों को जड़ों में अगर देखता है कि अगर कोई काले रंग का कोई घेर लेके घेरा हुआ या कवर कर रखा है तने को, तो हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई फफूंद लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो अभी हमने बताया है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बनडाजिम दवा आती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसको हम लोगों को जड़ों में उसका डालना है उस दवा को, वहाँ ड्रेंचिंग करना है उस दवा को। और अगर हम लोगों को मैं उस टाइम अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो हो सकता है ये बहुत प्रभावी ना हो, क्योंकि जड़ों से सूखना शुरू होता है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये है समझना है कि जो जड़ में फफूंद लगा है उसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो हम ये दो दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो इससे पौधों का सूखना रुकेगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं कद्दू का, तो सबसे पहले हम लोगों को वही देखने की ज़रूरत होती है, हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा हम लोगों को जो है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोगों के पास में ये जो मिलता है, हम लोग 100 किलो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1 किलो के करीब हम लोग जो मार्केट का जो मिलता है फॉर्मूलेशन उसको हम लोग मिला करके 14 से 15 दिन के लिए उसके छावदार स्थान पर रखते हैं ताकि उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरीके से फैल जाए। जब हम लोग गड्ढा बनाते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने के लिए, उसमें लौकी हो सकती है, परवल है, या आपका ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तो इन सब में जो हम लोग लगाते हैं बीज लगाते हैं, तो हम लोग पहले गड्ढा बनाते हैं, उन गड्ढे में पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट वो भी ट्राइकोडर्मा मिला हुआ उसको हम लोग पहले गड्ढे के अंदर भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से फफूंद होगा तो ट्राइकोडर्मा उनको रोकेगा, और जिससे हमारे जो पौधे निकलेंगे उसके अंदर उनमें जड़ों में इस तरह से कोई विकार या कोई बीमारी इस तरह से नहीं दिखेगी। तो अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में मिले हुए वर्मी कंपोस्ट को अगर हम लोग डालते हैं गड्ढों में तो उससे हम लोग बीमारी काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। दूसरा, पत्तियों पर जो एक बीमारी लगती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर की परत सी जम

0: जाती है, दो पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इस तरह से परत जमती है, तो देखते हैं कि पूरा पौधा ही सफ़ेद हो जाता है। जब हम लोगों की नमी बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है खेतों के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह से हम लोग बीमारी आने की संभावना जो बनी रहती है, तो हम लोग बीमारी आने से पहले ही मैंकोजेब जो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम जो दवा है उसको प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ही छिड़काव करके रखेंगे खेत में, जिससे उसके अंदर इस तरह से कोई बीमारी ना आए, पहले से ही हमने छिड़काव करके उसमें रखना है। दूसरी बात है जो हम लोग देखते हैं कि और भी फफूंदनाशी अगर मान लो बीमारी आ भी गई है खेत में, लग रही है बीमारी की बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग उसके अंदर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो है वो उसको हम लोगों को डालना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, क्योंकि उसमें फिर हम लोग कोई दवा डालेंगे तो काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो हम लोग हेक्साकोनाजोल आता है, टेब्यूकोनाजोल आता है, तो या हेक्साकोनाजोल या ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है, मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से जो दवा आती है इनका दवा हम लोग ले करके वो 1 ग्राम के हिसाब से इसको हम लोग लेके पत्तियों पर छिड़काव करना शुरू करेंगे, ताकि जो उस तरह से जो फफूंद ऊपर लगी है वो उसको हम लोग साथ समय ठीक कर सकें। अभी जो मिर्च ये कद्दू वर्गीय फसलों में जो हम लोगों को एक उभरती हुई समस्या जो दिख रही है वो विषाणु जनित बीमारियों की, तो अभी हम लोग देखते हैं जो लक्षण हम लोगों को मिर्च में टमाटर में जो दिखते थे पत्तियों के अंदर पीला हो जाना या पत्तियों के ऊपर कुकड़ी हो जाना, पत्तियां ऐड जाती हैं, उस तरीके की समस्याएं अब हम लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिल रही है। उसमें आपका खीरा, तरबूज, करेला, खीरा, इस सारे में जो है इस तरह की बीमारी दिखती है, जिसमें पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, मोज़ेक तरीके का दिखने लगता है, उजला हो जाता है और पत्तियाँ ऐड जाती हैं, तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी चीज़ करना यह है कि जो ये बीमारी वही मक्खी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है जो मिर्च के अंदर जो इस तरह से कुकड़ी या कर्लिंग उसके अंदर बीमारी को फैलाता है। तो हम लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत यह है कि अगर वो हम लोग ये बीमारी अक्सर लगनी कब शुरू होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो मिर्च उगाते हैं या टमाटर उगाते हैं, टमाटर मुख्यतः रबी की फसल है, जब टमाटर की फसल ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बीच में कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कद्दू लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो उसके अंदर जब जो विषाणु इसमें लगता था टमाटर के अंदर, वो विषाणु वो कद्दू वर्गीय फसलों में चला जाता है, तो टमाटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कद्दू वहाँ पे जो पौधा तैयार होता है उनमें मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको देखना है कि जब भी हम लोग इस तरीके से कोई बीज लगाएं किसी टमाटर के में या मिर्च में किसी फसल में, तो उसमें हम लोगों को टाइम से उसके अंदर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है, ताकि जो सफ़ेद मक्खी टमाटर या मिर्च में लगती हो वो इसके अंदर कद्दू वर्गीय फसलों में ना आने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आएँ तब हम लोगों के अंदर इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्साम जो अभी हमने दवा बताया है इसका हम लोगों को छिड़काव करना शुरू कर देना है। 7 से 8 दिन के अंतर पर इस दवा को हमको छिड़कते रहना है। दूसरी चीज़ है जैसे अभी हम लोग बताएं कि जो बॉर्डर वाली हैं, जो किसान जो मुख्य खेत है उसके किनारे किनारे पे हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन मक्के की या ज्वार की हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं, तो उससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत के अंदर जो प्रवेश होता है उसको हम लोग रोकते हैं, तो इससे हम लोग देखते हैं कि बीमारी को हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं।
1: अगर गर्मियों की बात करें, हमारे साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें, तो भिंडी अभी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो डॉक्टर साहब भिंडी उत्पादन के समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई रोगों के बारे में जानें और उनका बचाव कैसे करें, भिंडी के पौधे में जो रोग लगते हैं उनको पहचानें, तो कौन कौन से रोग इस पौधे में लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: जी जी बिल्कुल, जो भिंडी की फसल है हम लोग देखते हैं कि मार्च से ही आनी शुरू हो जाती है और अभी बरसात में भी खूब भिंडी मिलती है हम लोगों को। भिंडी हम लोग 2 सीज़न में लगाते हैं, एक तो हम लोग गर्मी वाला लगाते हैं, एक वर्षा ऋतु वाला लगाते हैं, दोनों अलग अलग में लगाते हैं। तो जो गर्मी में हम लोग लगाते हैं, जो मार्च के करीब लगाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जो भिंडी में है जो मुख्यतः जो बीमारी आती है वो मोज़ेक की समस्या है, जिसमें पत्ती एकदम गोल्डन की तरह मोज़ेक चमकती हुई दिखती है खेतों में, अगर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग येलो वेन मोज़ेक बोलते हैं, तो उस तरह से खेत में एक चमकदार पत्ती जो पीली उजली सी दिखनी शुरू हो जाती है। तो भिंडी में एक सबसे बड़ी बीमारी यही हम लोगों को दिखती है खेतों के अंदर। अब आते हैं हम लोग भिंडी के सीजन के ऊपर। जो भिंडी दो सीजन में जो हम लोग लगाते हैं, एक तो हम लोगों का लगाने का समय है जब हम लोग ये मार्च में लगाते हैं, दूसरा एक वर्षा ऋतु में जब

0: जुलाई वगैरह में लगाते हैं, जो अभी आ रहा समय, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो गर्मी में लगाते हैं मार्च के समय में, उसमें कम जो बीमारी होती है उसमें थोड़ा कम आती है, और जब हम लोग इधर देखते हैं जो बरसात में लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या आती है, है जिसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब भी किसान भाई लगाएं तो इसमें दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी हम लोग भिंडी लगाते हैं, जो चूँकि बीज जो मार्केट में मिलते हैं वो ऑलरेडी उनमें ट्रीटमेंट किया होता है, तो उस टाइम हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पत्ती में जब पौधे बीज डालने के बाद में जब दो तीन पत्तियां निकल आती हैं तो उसी टाइम से हमको छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जब पौधों में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाए, पौधा बड़ा हो गया, भिंडी निकलने फूल निकल रहे हैं, फल भी निकल ले रहे हैं, उस टाइम बीमारी आती है, तभी हम लोग दवा छिड़काव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब भी भिंडी में दवा का छिड़काव हमको करना है तो जब पत्तियां दो तीन पत्ती निकल के आ जाए पौधे के बीज लगाने के बाद में या सोइंग करने के बाद में, तभी हमको उसी टाइम दवा डालना है, क्योंकि बहुत छोटे पौधे छोटे अवस्था में ही बीमारी आ जाती है और वो पौधा बड़ा बड़ा बड़ा होते होते उसके अंदर वो लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि शुरुआती अवस्था में ही उसमें दवा डालना ज़रूरी होता है। तब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ध्यान देंगे कि सफ़ेद मक्खी जो गोल्डन मोज़ेक जो बीमारी आती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलता है, ये भी उसी ग्रुप का ही वायरस है। तो हम लोगों को जो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवा बताई, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्साम, इन दवाओं को हम लोगों को 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 8 से 12 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करना है, जब 3-4 पत्तियाँ निकल आए इसके अंदर, उसी चाहे बीमारी हो या ना हो, लेकिन हम लोग को दवा डालना ज़रूरी होता है। अगर हम उस टाइम दवा डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें ट्रांसमिशन या जो सफ़ेद मक्खी से जो वायरस फैलता है हम उसी अवस्था में सफ़ेद मक्खी को मार देंगे, तो पौधा बड़ा होते होते होते अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो बीमारी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तब हमारा फल फूल आता है उसमें हमको उपज भी मिलती है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में अगर विषाणु के लक्षण दिखने शुरू हो गए तब हम लोगों को उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर उसमें फिर हम लोगों के पास में एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना। तो अगर हमारे पास अगर किसान भाई भिंडी लगाए हुए हैं, अगर एक दो पौधे में अगर कहीं पर भी अगर इस तरह से लक्षण दिख रहा है तो हमको सबसे पहले उस पौधे को हटा देना है। हो सकता है कि उसी एक दो पौधे की वजह से पूरे खेत में वो बीमारी फैल जाए और देखते देखते पूरे पौधे पीले हो जाएं। तो अगर एक दो पौधे में अगर इस तरह से कोई लक्षण दिख रहा है तो बगैर कोई लालच किए बगैर कुछ उसमें दिमाग लगाए उसको हम लोग को हटा देना है, ताकि उससे बीमारी दूसरे पौधों में ना फैलने पाए। तो सफ़ेद मक्खी को जो मारने के लिए दवा है उसी को हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरा जो बॉर्डर के लिए भी हम लोग बात कर रहे थे, बॉर्डर पर मक्का या ज्वार की 2 लाइन हम लोग जरूर लगाएं इसमें।
1: तो ये बातें हो गई हैं भिंडी की, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम लोबिया यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में बोरा भी कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, साथ ही उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसे भी बताएं।
0: जी, बोरा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लोबिया या काउपी हम लोग बोलते हैं उसको, बोरा में हम लोग देखते हैं 2 बीमारी बहुत आम है यहाँ पर आती है। एक तो आती है कि जो पत्ते होते हैं उनमें काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, इसके हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। वो पुरानी पत्तियों जो पत्तियां होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं उनमें कम होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं उनमें इस तरह से काले धब्बे बनने शुरू होते हैं। तो कभी कभी वो काले धब्बे क्या होते हैं, पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और वो देखते ही देखते पूरे पौधे को गला देते हैं। जब इसमें फलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब फलियां आती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि काले काले से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये जो बीमारी आती है इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है, देने वाली जो बात है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैंकोज़ेब, बीमारी हो या ना हो हम लोग एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर कर दें। जब पौधा हमारा थोड़ा सा 4-5 पत्ती जब उसके अंदर आ जाए उसके अंदर छिड़काव हमको कर देना है, मैंकोज़ेब 2 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को उसके अंदर छिड़काव कर देना है। यदि उसके बाद अगर उसके अंदर बीमारी आ रही है, उसमें इस तरह से कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो पत्ती काली पूरी हो जा रही है या तने में कालापन आ जा रहा है या फलियों में कालापन लगने शुरू हो जा रहे हैं, तो डाइफेनोकोनाज़ोल जो दवा है वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से हम लोगों को दवा का छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो काले धब्बे जो हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक जो इसमें जो पत्ती में एक समस्या आती है वो गोल्डन मोज़ेक की है। गोल्डन मोज़ेक एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हम लोग देखते हैं कि पत्तियां उजली सी हो जाती हैं उसमें, वही बीमारी हमारे मूंग में भी आती है, वही बीमारी हमारी फ्रेंच बीन में भी आती है, वही बीमारी हमारी इसमें आती है अरहर में भी आती है। तो उसी वही ग्रुप का एक वायरस है जो

0: लोबिया की फसल में लगता है और हम लोग देखते हैं कि पत्तियां देखते ही देखते ही उजली हो जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाओं का छिड़काव, वही दवा का छिड़काव हमको इसके अंदर करना है 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 10 से 12 दिन के अंतराल पर। तो उससे क्या होगा, वो सफ़ेद मक्खी को हम लोग कम कर देंगे खेत के अंदर और जो पौधे होंगे जो निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे उसके अंदर।
1: अगर गर्मी की बात करें साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो जो परवल जो है वो खास सब्जी है इस ऋतु की, तो डॉक्टर साहब इसमें जो लगने वाले रोग होते हैं परवल के पौधों में वो कौन कौन से होंगे और साथ ही इसका रोकथाम हम कैसे करें?
0: जी, परवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे गंगा के किनारे या और भी आसपास के किसान जो है काफ़ी परवल उगाते हैं और उनका अच्छा रेट भी मिलता है हम लोग किसान भाइयों को। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें देखते हैं कि बहुत सारी इसके अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को दो चीज़ इसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं देखने आए खेत के अंदर। एक तो इसके अंदर जो इनकी लत है, जो वाइंस है, उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं पैदा हो रही जो पूरी लत सूख जाती है। उसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह पे हमको दिखता है कि काला घेरा या काला धब्बा दिखता है, वो तने को पूरा कवर कर लेता है। तो देखते देखते वो पूरे तने को पूरा काला कर देता है जिससे वो पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। पहले एक पार्ट उसका सूखेगा, एक तना सूखेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा और तनों पर फैल जाएगा लतों में और देखते देखते वो पूरा सूख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी इस तरह का कोई लक्षण दिखे, अगर कहीं थोड़ा सा दिख रहा है या किसी एक लत में दिख रहा है तो उसको हमको काट के हटा देना है। अगर इस तरह से लक्षण अगर किसान भाई खेत में देखते हैं तो फौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा हम लोग बोले 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका हम लोग खेत में फौरन छिड़काव कर देना है, इससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग पत्तियों में देखते हैं बीमारी आती है, वो एक धब्बा सा बनता है, काला धब्बा जो ब्लाइट अपीयरेंस एक देता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं पत्तियाँ वहाँ काली होकर गलनी शुरू हो जाती हैं। और इस तरीके का लक्षण हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पे फैलने के बाद जो फल निकलते हैं उन फलों में वो उस तरीके का लक्षण शुरू हो जाता है। वो काले पहले छोटे से दाग धब्बे बनते हैं, वो देखते देखते फिर पूरे पौधे पूरे फल को गला देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर किसी एरिया में अगर किसान भाई इस पर्वत लगाते हैं और इस तरह की समस्या दिखती है तो बीमारी हो या ना हो हम लोग मैंकोजेब का एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर करेंगे। उसको छिड़काव करने के बाद में भी अगर हमको कहीं पे दिख रहा है इस तरीके से कोई लक्षण तो हम लोग को मैंकोजेब और मेटल एक्सिल का कॉम्बिनेशन वाला दवा आता है जो मिक्स्ड होता है, उसको हम लोग 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके उसको प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग छिड़काव करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वो जो समस्या होती है उसको हम लोग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे खेत के अंदर से। लेकिन इसका साथ समय छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि फल फूल आने लगे या हम लोग भिंडी में इंतज़ार करें कि अब फल के तुड़ाई का वक्त आ गया या मिर्च में हम लोग सोचें कि मिर्च में अब फल आ रहा है या है अब बीमारी आ गई तो कोई छिड़काव करें, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोगों को समय से डरना है, बीमारी आने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत रहेंगे और उस टाइम बताए गए दवाओं का अगर हम लोग सही समय पर छिड़काव करते रहेंगे तो हम लोग बीमारियों को निश्चित तौर पर रोक देंगे और हम लोगों को अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: जी, तो किसान भाइयों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का पूरा मुनाफा मिले तो ज़रूरी है कि आपके जो सब्जियों के पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें। और डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं आपके सब्जियों के पौधे में और आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस वार्ता को सुनेंगे आप बहुत कुछ जानेंगे, रोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी आप में विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जहां हम बातें करते हैं खेती की और खेती में जो नई नई तकनीकें आती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक के बारे में हम आपको बताते रहते हैं और आज हाइड्रोपोनिक से जो जुड़ी नई चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। और विषय है हमारा हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लेट्यूस की खेती। तो आज इस विशेष जानकारी के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर अमृता, और मैडम वैज्ञानिक है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
6: हाइड्रोपोनिक क्या है एक बार फिर हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं।
8: देखिए मैं बताना चाहूँगी कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्व से भरपूर पानी में उगाते हैं। इसमें पौधे की जड़ें पोषक तत्व से भरी पानी में डूबी रहती है, जहाँ से वो आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों आवश्यक होती हैं। साथ ही पौधों को उपयुक्त रोशनी, तापमान और वातावरण की जरूरत होती है।
6: जी, अब लेट्यूस क्या है इसकी भी जानकारी दे दें।
8: लेट्यूस एक पत्तेदार सब्जी है जिसे हम सलाद में, बर्गर में और हेल्दी डाइट में इसे खूब इस्तेमाल किया जाता है। यह ना केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि यह फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। ये एक ऐसी फसल है जो कि विदेशों में खूब खाई जाती है और अब धीरे धीरे ये भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
6: जी, तो हाइड्रोपोनिक तरीके से अगर हम लेट्यूस की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
8: हाइड्रोपोनिक्स के में लेट्यूस की खेती करने के लिए सबसे पहले तो आपको बीज का चुनाव करना पड़ेगा। इसमें हम बता दें कि इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि बटर हेड, रोमेन और क्रिस्प हेड। भारत में रोमेन की किस्म काफ़ी लोकप्रिय है। और दूसरी बात है कि नर्सरी में अंकुरण की बात होती है, तो नर्सरी में हम लोग लेट्यूस के बीज को एक ग्रोइंग मीडिया में उगाते हैं, जैसे कि कोकोपीट, रॉक वूल, परलाइट, वर्मिकुलाइट, बायोचार इत्यादि माध्यम में अंकुरित किया जाता है। इसे अंकुरण निकलने में कम से कम 4 से 7 दिन लग जाते हैं, फिर हम इसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए

0: जाते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग में एक खास बात ध्यान रखने की होती है कि जब पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए, 15 से 20 दिन में लगभग ये 3 से 4 इंच का पौधा हो जाता है और उसकी जड़ें पूरी तरीके से विकसित हो जाए, तब हम उसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, जैसे कि न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक या डीप वाटर कल्चर में, उसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद पोषक घोल की बात करें तो लेट्यूस के लिए विशेष न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का तैयार किया जाता है, जिसमें कि मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। मुख्य में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि तत्व होते हैं और सूक्ष्म में क्लोरीन, बोरोन, जिंक इत्यादि होते हैं। तापमान और प्रकाश की बात करें तो लेट्यूस को ठंडी जलवायु पसंद है, आदर्श तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही रोजाना इसको 10 से 14 घंटे की रोशनी चाहिए, लेकिन सर्दियों की फसल को 8 से 10 घंटे की रोशनी पर्याप्त होती है सर्दियों की फसल में, और ये 45 से 60 दिन में लगभग पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही खास बात ध्यान रखने की जरूरत है, इसके पीएच और ईसी जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता बोलते हैं, पीएच इसको पीएच को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है 5.8 से 6.2। नहीं तो फिर क्या होता है कि सुबह सुबह जब हम पीएच मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे दिन जैसे ढलता जाता है वो अल्कलाइन की तरफ, क्षारीय की तरफ वो शिफ्ट करता जाता है। जब ये क्षारीय की तरफ शिफ्ट करता है तो हम इसमें फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल डालते हैं, और कभी कभी जब ये बेसिक की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो फिर हम लोग बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। कभी कभी पानी से भी इसे मेंटेन किया जाता है। दूसरी बात मैंने की थी विद्युत चालकता की, तो लेट्यूस के लिए 0.5 to 0.6 डेसी सेवन पर सेंटीमीटर विद्युत चालकता की जरूरत होती है। धनिया के लिए 0.8, पालक के लिए 1.2 से 1.4 में हम लोगों को इसका रख रखाव करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात होती है इसके चिलिंग वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर चिलिंग वाटर आप देंगे, ठंडा पानी, तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और सूर्य की रोशनी पड़ने से एक इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि शैवाल की उपस्थिति हो जाती है, जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। पानी पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर यह होती है, तो इसलिए हम लोग सिल्वर नैनो पार्टिकल, जिसको कि सिल्वर नैनो कण, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं, उसको डालने से पानी पूरा साफ हो जाता है।
1: तो ये तो बात हो गई किस प्रकार खेती करेंगे हाइड्रोपोनिक तरीके से। कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस तरीके से हम लेट्यूस की खेती कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा मिल सकता है?
0: फ़ायदे की बात करें तो लेट्यूस कम दिन की फसल है, जैसे 30 से 40 दिन में यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप प्रॉपर पीएच, ईसी और तापमान, पोषक घोल अगर आप देते रहेंगे तो 30 से 40 दिन में यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी फायदे हैं कि मिट्टी अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो रोग और कीट की संभावना भी कम हो जाती है। और क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में तापमान का और बाहरी वातावरण का नहीं प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम पूरे साल उगा सकते हैं, ताज़ा और साफ फसल ले सकते हैं, जिससे कि बाज़ार में हमें अच्छे भाव मिल जाते हैं। सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसकी मांग बहुत है। हाइड्रोपोनिक लेट्यूस की कीमत सामान से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यह केमिकल फ्री और हाई क्वालिटी की होती है।
1: अब थोड़ा सा हम स्टार्टअप की बात करते हैं, क्यों हाइड्रोपोनिक खेती को स्टार्टअप बनाए हम?
0: सबसे पहले युवाओं के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स खेती को स्टार्टअप बनाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज़मीन की कमी है, लोग अब हेल्दी और ऑर्गेनिक खाने की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि रेस्तरां और कैफ़े और सुपरमार्केट में लेट्यूस की भारी डिमांड है। कम जगह में, कम पानी में उच्च गुणवत्ता वाली खेती संभव है, तो इसलिए आप इसको एक बिजनेस अवसर में बदल सकते हैं। ये आपको प्रॉफिट देने वाली फसल है, क्योंकि ये 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। इसे 150 या 300 रुपये प्रति किलो का आपको रेट मिल जाता है, और लेट्यूस को एक टैग भी आप दे सकते हैं, पेस्टिसाइड फ्री है ये और फ्रेश है ये। और बात है कि 1000 वर्ग फुट में आप हर महीने 100+ किलो का उत्पादन इससे संभव है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें, मैं युवाओं को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोकेशन का ध्यान रखें कि आप घर की छत, बालकनी या शेड में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और सिस्टम सेटअप में शुरुआती निवेश 40,000 से 1.5 लाख तक की आती है। और बीज और नर्सरी की बात करें तो जैसे अच्छी किस्म के आप रोमेन या बटर हेड लेट्यूस के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अंकुरण के लिए आप रॉकूल, कोकोपीट, परलाइट, बर्मिकुलाइट इत्यादि आपको ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और फिर पोषक तत्व की बात करें तो आपको एक बैलेंस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि हो। और ग्रीन हाउस या नेट हाउस

0: जरूरत होती है इसमें, क्योंकि तापमान, नमी और रोशनी को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। आप चाहे तो इसे ऑटोमेशन से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहले इसे सीधे होटल में ले जा सकते हैं, आप कैफे रेस्तरां से टाई अप कर सकते हैं आप इसमें। फिर या तो आप ब्रांड बना सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि फ्रेश हाइड्रोपोनिक लेट्यूस का ब्रांड बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं आप, जैसे कि बिग बास्केट, जोमेटो, हाइपर प्योर से आप लोग इसे संपर्क कर सकते हैं। फिर या तो फिर स्थानीय सब्जी मंडी या सुपरमार्केट में आप इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टअप टिप्स की बात करें तो कम से कम आपको 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या इसकी ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर सरकार के कृषि स्टार्टअप की स्कीम है, FPO योजना की भी मदद आप ले सकते हैं। आपको छोटे से शुरू करने की ज़रूरत है, अनुभव लीजिए, फिर उसको स्केल कीजिए, बिजनेस प्लान बनाइए। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी
1: जी। तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लेट्यूस की खेती, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को दी गई। क्या कुछ फ़ायदे हैं, साथ ही अब स्टार्टअप के तौर पर इसके द्वारा जो खेती करते हैं तो क्या आपको क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी जानकारी आज आपको दी गई है। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं,

0: मीटर की दूरी पर लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 एफएम ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 एफएम ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
4: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से

400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथीन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: കൃഷി. नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और हर रोज हम बहुत सारी बातें लेकर आते हैं आपके लिए उपयोगी और बताते हैं कुछ अच्छी बातें. और किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही लाभान्वित हो रहे होंगे हमारे सुझावों से. हमारे जो यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आते हैं आप सभी को सुझाव देने के लिए, तो आशा करते हैं आज भी आप हमारे इस विषय से काफ़ी लाभान्वित होंगे. और आज का जो विषय है, यानी कि चर्चा का विषय है, वो है जीवन यापन के लिए मशरूम का उत्पादन. तो किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि अगर आपके पास भूमि नहीं है, आप भूमिहीन हैं, तो आप मशरूम का उत्पादन करके एक अच्छे तरीके से बाजार में आप मूल्य पा सकते हैं. यानी कि इसका उत्पादन करके आप अपनी जीवन यापिका बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं. और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र, जो बड़े वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में.
1: नमस्कार.
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये देखा भी जा रहा है कि बहुत ही लोग मशरूम की खेती कर करके और राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सस्ता माध्यम है मशरूम उत्पादन.
1: हाँ,
0: जो
1: हाँ.
0: लोग जीवन यापिका करते हैं इसे उपजाकर, और कहीं ना कहीं इसका जो एक ये फायदा है कि ये एक कमरे में ही इसका उत्पादन किया जा सकता है और अच्छी मात्रा में पैसे कमाए जा सकते हैं. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जीवन यापन के लिए इसे क्यों चुने. यही बातें हम कर रहे थे अभी भी, लेकिन अगर आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ होगा.
1: पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि मशरूम एक ऐसा फसल है और इसका जो खेती किया जाता है, बगैर खेत की खेती किया जाता है. कहने का मतलब ये है कि मशरूम की खेती करने के लिए किसी खेत की ज़रूरत नहीं होता है, बल्कि इसे हम कमरे में, जिसे हम मशरूम कच्छ कहते हैं, तो उसमें हम घर में भी मशरूम की खेती अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं. मशरूम की खेती करने के लिए यदि हमारे पास एक कमरा खाली है तो उसमें हम कर सकते हैं. यदि हमारे पास पक्के कमरे नहीं हैं तो झोपड़ी बनाकर भी इसका खेती आराम से किया जा सकता है.
0: जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को किसान भाइयों, कि आप आराम से एक कमरे में, अगर आपके पास ज़्यादा भूमि नहीं है, तो आप आराम से मशरूम की खेती कर सकते हैं बहुत ही कम जगह में. तो ये बात हो गई, यानी कि ये फ़ायदा है मशरूम उत्पादन का. तो डॉक्टर साहब, इसके बाद जब मशरूम उत्पादन की बात आती है तो दिमाग में आता है कि किस किस तरह के मशरूम का उत्पादन हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसके बाद जानना चाहेंगे हम कि कितने प्रकार के मशरूम का उत्पादन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और अगर क्रिया के बारे में बताएं, यानी कि प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कैसे इसका उत्पादन किया जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए.
1: किसान भाइयों, मशरूम की खेती करने के लिए पहले तो ये ध्यान देना होगा कि आप किस समय इसका खेती करना शुरुआत कर रहे हैं. यदि हमारा शुरुआत करने वाला है, इस व्यवसाय में आना चाहता है हमारा किसान और इसको अपना जीवन का एक जीव साधन बनाना चाहता है, तो निश्चित है कि इसके सभी बिंदुओं को जानकारी हासिल करना होगा, तब जाकर मशरूम की खेती शुरू करेगा तो निश्चित है कि हम अच्छा से अच्छा अपना लाभ कमा सकते हैं, व्यवसाय को चला सकते हैं. जहाँ तक बात है कि मशरूम की कौन कौन से प्रभेद हैं, कौन कौन से प्रजातियां हैं और ये कहाँ कहाँ मिलेगा और किस समय इसका चयन किया जाए कि अच्छा से अच्छा उसका उत्पादन किया जाए या खेती किया जाए, तो ऐसे यदि देखा जाए तो हमारे पूरे देश में लगभग 200 प्रभेद हैं जो पहचान किए गए हैं कि मशरूम के रूप में इसे उगाया जा सकता है और इसे धन कमाया जा सकता है. लेकिन अपने यदि बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में लगभग 10 से 12 प्रभेद हैं मशरूम के, जो पहचान किए गए हैं और उसे हमारे किसान भाई उसे उगाते भी हैं. लेकिन यदि हम बड़े स्तर की बात करते हैं और व्यवसाय की बात करते हैं तो

ऐसे में हमारे जो चार प्रभेद हैं मशरूम के, अपने बिहार राज्य के लिए वो जलवायु को देखते हुए, जगह को देखते हुए, मौसम को देखते हुए और व्यवस्था को देखते हुए, ये चारों प्रभेद भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आराम से पूरे वर्ष भर खेती कर सकते हैं। मशरूम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि उसके लिए जो मशरूम का कच्छ होता है या मशरूम का झोपड़ी होता है, इसके लिए कम तापमान का आवश्यकता होता है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ठंड के समय में इसको आराम से खेती कर लेते हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों पर, यदि जहाँ पर हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर कुछ मौसम देख लीजिए, जो मौसम में तापमान और जगहों के जगह पे यहाँ कम रहता है, यानी मशरूम को खेती करने के लिए कम तापमान का आवश्यकता होता है। तो कम तापमान यदि अपने इस बिहार राज्य में देखा जाए तो ज़्यादातर लगभग 5 महीने यहाँ दिखाई देता है, जो अक्टूबर मध्य से शुरू होता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 15 मार्च के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है, और जब ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो मशरूम का खेती नहीं कर पाएंगे। अब रह गई बात कि यदि हम ठंड के मौसम में मशरूम खेती करते हैं, बाकी समय में हमारा किसान क्या करेगा, तो इस तरह से और भी प्रभेद उपलब्ध हैं जो गर्मी के समय में कर सकते हैं, बारिश के समय में कर सकते हैं। इस तरह से पूरा इसका एक चार्ट बना हुआ है, एक कैलेंडर बना हुआ है, एक सारणी बना हुआ है, इसको देखते हुए पूरे वर्ष भर प्रभेद का चुनाव करके खेती कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा माना जाता है वो बटन मशरूम माना जाता है। बटन मशरूम की खेती करने के लिए जो तापमान होता है उसे 2 चरणों में हम बांट लेते हैं। पहला तो एक जो बुआई का चरण होता है जिसे हम बिजाई कहते हैं, वो यदि तापमान 18 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस है तो उपयुक्त पाया जाता है। और फिर जब उसमें फलन काय निकलता है, यानी जब उसमें फल बैठता है, तो उसके लिए और कम तापमान का आवश्यकता होता है, यानी लगभग 8 से लेकर 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तब जाकर उसमें फल बैठेगा। यदि इससे 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है तापमान तो इसमें फल नहीं बैठेगा, केवल सफ़ेद सफ़ेद रंग का बीज उगकर रह जाएगा। तो ये बटन मशरूम के लिए है। तो बटन मशरूम के लिए 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ही आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, दूसरा जो एक महत्वपूर्ण आपका मशरूम का प्रभेद है वह है ओस्टर मशरूम। और ओस्टर मशरूम की खेती करने के लिए, यानी ढेंगरी मशरूम का खेती करने के लिए, बहुत ज़्यादा कम या अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। जो कमरे का तापमान होता है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस यदि हमारा 5 डिग्री सेल्सियस कम है और 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा भी है, तब भी सफलतापूर्वक इसको हम आराम से खेती, ढींगरी मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये हमारे बिहार राज्य में जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगता है, अप्रैल मई जून में लगभग कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है मई जून के महीने में, तो ऐसे में जो हमारे अन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, या आदमी को कह लीजिए, आदमी का भी मतलब गर्मी की वजह से जीना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में यदि हम मशरूम की खेती करें तो यह संभव होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने असंभव को भी संभव करके दिखाया है, और धीरे धीरे इस प्रभेद का, यानी जो मिल्की मशरूम है, मिल्की मशरूम का धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये मिल्की मशरूम हम दूधिया मशरूम के नाम से जानते हैं, पूरा दूध की तरह सफ़ेद सफ़ेद होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पे भी पूरे अच्छी तरह से इसकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन तापमान इसके लिए ज़्यादा आवश्यकता होता है, यदि 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो आप दूधिया मशरूम खेती नहीं कर सकते। तो दुधिया मशरूम की खेती करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान का आवश्यकता होता है। यदि 45-46 तक भी पहुंच जाता है तब भी हम आराम से सफलतापूर्वक इसका मशरूम का, यानी दुधिया मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मशरूम आपको बताया। और जब बारिश का समय शुरू हो जाता है इधर जून के आखिरी सप्ताह में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, यहाँ तक कि अक्टूबर तक कभी कभी बारिश हो जाता है, तो ऐसे में बारिश के समय में भी आप मशरूम का चुनाव करके इस तरह से ढेंगरी मशरूम का चुनाव कर सकते हैं। और हमारा एक पुआल मशरूम होता है जिसे हम गर्मा मशरूम के भी नाम से जाना जाता है, तो जहाँ पर अधिक क्षेत्र में और अधिक मात्रा में
बड़े पैमाने पर

0: जहाँ पर धान का खेती होता है, तो धान के पुआल का कुट्टी भी बनाकर और धान का पुआल के बगैर कुट्टी बनाए हुए सीधे आप उसका छोटा छोटा बंडल बनाकर या उसका आटिया बनाकर गट्ठर बनाकर उसके ऊपर भी बुआई करके आप गर्मी के समय में इवें यहाँ तक कि बरसात के समय में भी आप एक गर्म मशरूम होता है या कह सकते हैं जो धान का पुआल मशरूम होता है उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों चार प्रकार के मशरूम हैं जो हम पूरे साल भर चार चार महीने के अंतराल पर यदि हम इसका चुनाव करें, गर्मी के समय में करें और बरसात के समय में करें, फिर ठंड का समय आता है उस समय करें, तो ये चारों प्रभेद को हम पूरे साल भर उसको उगा सकते हैं और आराम से व्यवसायिक तौर पे इसे हम देख सकते हैं या हम इसको अपना सकते हैं। और यदि आप इस चारों प्रभेद को अच्छी तरह जान लेते हैं और तो इसमें बात आती है कि बीज की मुहैया कहाँ से होगा, बीज का प्रबंधन के बारे में आपको जानना होगा, तब आप अच्छी तरह से इसका खेती कर सकते हैं और जीवन के रूप में इसका एक साधन बना सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की चार प्रकार के मशरूम हमारे बिहार क्षेत्र में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि तापमान आधारित होते हैं मशरूम उत्पादन, तो तापमान का आप खास ख्याल रखें और उस आधार पर जितने भी प्रकार के मशरूम इन्होंने बताया जो सारे तापमान किस किस मौसम में लगाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने चार प्रकार के मशरूम बताए, तो इन चारों प्रकार के मशरूम में सबसे ज्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि सस्ता और फायदा हमारे किसान भाइयों को किस मशरूम के प्रकार को अपनाकर हो सकता है?
0: सबसे शुरुआत में यदि हमारा किसान कम जानकारी मशरूम के बारे में है तो उसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिगनर, यानी शुरुआत करना चाहता हमारा किसान या हमारा किसान के अलावा भी हमारे जो युवा बेरोजगार है उसको भी अपना सकते हैं खेती के रूप में। तो जो ढेंगरी मशरूम होता है उसे शुरुआत के तौर पे देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम समय में लगभग एक महीने में ये बुआई से लेकर कटाई तक का कार्य इसमें हो जाता है और बुआई का जो इसमें विधि है बहुत सरल है और इसमें ज़्यादा साधन या संसाधन की जरूरत नहीं होता है। इसमें गेहूं का भूसा मिल जाए या इस तरह से जो हमारे फसल अवशेष होते हैं उसका मिल जाता है फसल अवशेष, तो उसका छोटा छोटा हम टुकड़ा बना लेते हैं या कुट्टी बना लेते हैं, फिर उसको हम उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के लिए कई तरीके हैं, गर्म पानी भी उपचारित किया जा सकता है या रसायन से भी उपचारित किया जा सकता है। रात भर के लिए इसको पानी में भिगो देते हैं, फिर सुबह निकाल कर उसके ढालू जगह पर रख देते हैं ताकि पानी पूरा भीगे हुए भूसे का निकल जाए। जैसे भूसे का पानी निथर जाता फिर उसको सुखा कर छाए में फिर उसमें हम बीज मिलाते हैं और बीज जो मशरूम का होता है उसे स्पान कहते हैं, यानी मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। तो जब हम बीज का उसमें मिश्रण बनाते हैं या लगाना शुरू करते हैं तो उसे बिजाई कहते हैं या स्पानिंग कहते हैं या बैगिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बुआई कर देंगे तो 10-15 दिन के लिए पीपी बैग को इसे बुआई किया हुआ छोड़ देते हैं तो देखते हैं पूरा भूसा जो उपचारित करके हम बीज लगाए थे मशरूम का पूरा चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद रंग का दही की तरह से एक परत जम जाता है। तो ये समझ जाते हैं कि मशरूम का जो माइसीलियम है यानी उसका जो शारीरिक का है वो पूरा फैल चुका है, अब इसमें ज़रूरत है कि पीपी बैग को खोल दीजिए और थोड़ा हवा पानी दे दीजिए, फिर इसमें से छोटे छोटे कलिकाएं निकलना शुरू होती हैं और फिर एक हफ्ते बाद पूरा 21वें-22वें दिन पूरा इसमें मशरूम बैठ जाता है। तो 3-4 दिन के अंदर पे आप तोड़कर एक महीने के अंदर पूरा इसको अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो एक महीना इसमें समय लगा और संसाधन भी इसमें कम लगे और इसमें और भी सामग्री जो लगते हैं कम लगे और आसान तरीका है ये बुआई का और कटाई का। तो इसलिए ढेंगरी मशरूम को बताया जाता है किसान भाइयों को कि आप यदि शुरुआत खेती करना चाहते हैं मशरूम का तो ढेंगरी मशरूम से करें। और इसका जो कीमत है बाजार में 100 रुपये प्रति किलो की दर से जाता है जो ताज़ा फल इसका होता है। और दूसरा एक मशरूम है वह है वाइट बटन मशरूम कहते हैं हम, तो जो हमारा वाइट बटन मशरूम होता है इसे हम बटन मशरूम भी कह सकते हैं। तो बटन मशरूम जो होता है वह ठंड के ही समय में हम कर सकते हैं या हमारे पास व्यवस्था है तो तापमान को हम कम करके यानी डाउन करके भी बटन मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो इसमें पावर का ज़रूरत होता है यानी बिजली की ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम पावर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो हम

0: एसी यानी एयर कंडीशनर नहीं चला सकते हैं, तापमान को हम 10 डिग्री सेल्सियस या 15-16 डिग्री सेल्सियस पे लाना है मशरूम का फलन का लाने के लिए, तो इसके लिए अच्छे रूम का ज़रूरत पड़ता है। यदि हम आप सीजन में करते हैं, बेमौसमी यदि हम बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं, हाँ। तो ऐसे में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पावर खर्च होता है और महंगा पड़ता है। यदि समय की बात देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी होली तक यानी मार्च तक हम आराम से बटन मशरूम का खेती कर सकते हैं, और इसके बाद का जब गर्मी बढ़ जाता है खेती करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मुश्किल तो होता जरूर है, लेकिन फ़ायदा इसमें सबसे ज़्यादा है। इसका जो कीमत है बाज़ार में 200 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक जाता है, तो ये बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है कि यदि मार्केट में इसका जो डिमांड ज़्यादा आता है, मांग ज़्यादा होती है, तो इसका जो दाम होता है बढ़ता है, 300 रुपये किलो जाता है। यदि उत्पादन हमारा ज़्यादा हो जाता है ठंड के समय में, खास तौर से दिसंबर जनवरी के महीने में।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको दो प्रमुख प्रकार के मशरूम बताए जो आप आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं इसका, और जीवन यापिका करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है ये, और कहीं ना कहीं बाज़ार में भी आपको अच्छे मूल्य मिल सकते हैं। और वो दो प्रकार के मशरूम थे ढिंगरी मशरूम और बटन मशरूम। और अगर आप शुरुआती तौर पर आप उत्पादन करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है मशरूम के बारे में, तो आप ढिंगरी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीज यानी कि जो मशरूम के बीज होते हैं उन्हें स्पॉन कहा जाता है, तो इसे खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
0: मशरूम का बीज यानी जो स्पॉन है उसे खरीदते समय जरूर ध्यान में रखें हमारे जो किसान भाई हैं या मशरूम उत्पादक हैं। हमारे जो मशरूम उत्पादक हैं या किसान भाई हैं, मशरूम का बीज खरीदते समय ज़रूर ध्यान दें कि जो आप मशरूम का पैकेट खरीदते हैं तो देखते हैं कि एक पॉलीथीन या पीपी बैग होता है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग का इस तरह से दही की तरह से जो दिखाई देता है, तो वही बीज शुद्ध होता है। ख़ास तौर से ये जो बीज तैयार किया जाता है मशरूम का, उसे हम स्पान कहते हैं। तो स्पान तैयार करने के लिए जो हम पोषा धार की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे दाने वाली फसलें होती हैं जैसे धान है या गेहूं है, तो इसका चुनाव करते हैं, तो इसे बहुत अच्छी तरह से, कभी कभी मकई का भी चुनाव कर लेते हैं बीज बनाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा जो बीज बनता है वो गेहूं के दाने के ऊपर हम इसको उगाकर बनाते हैं। तो गेहूं का जो दाना होता है पूरा सफ़ेद सफ़ेद रंग का, उस पर आवरण चढ़ जाता है और गेहूं के दाने को ढक लेता है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, तो ये समझ जाइए कि ये हमारा शुद्ध मशरूम का स्पान है। और ऐसा यदि नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि काले काले रंग के धब्बे उसके ऊपर दिखाई देने लगते हैं जो मशरूम का स्पान का बैग है, तो ये समझ जाइए कि शुद्ध बीज नहीं है, उसमें काले काले रंग का धब्बा बनेगा और तो इसमें एस्परजिलस नामक फफूद दूसरा फफूद आ जाएगा और बीज की गुणवत्ता को ख़राब कर देता है। इसी तरह से ग्रीन मोल्ड है जिसे हम ट्राइकोडर्मा कहते हैं, ये ट्राइकोडर्मा जो है ये मशरूम के बीज का दुश्मन होता है। तो ख़ास तौर से ये जो दो चीज़ें मैंने बताया, यदि भूरे भूरे रंग का या काले काले रंग का, तीसरा जो हल्का या गहरे हरे रंग का फफूद मशरूम के बीज के ऊपर दिखाई देता है, तो आप ऐसे बीज का चुनाव कतई ना करें। और यदि आप बीज चुनाव करके ले आते हैं, शुद्ध बीज चुनाव करके ले आते हैं और उसे रखने के लिए, मतलब यदि आप पास व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रिज वगैरह में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। यदि आज बीज खरीद कर ला रहे हैं, तैयार बीज है, तो उसे आप 2-3 दिन रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। इससे ज़्यादा रखते हैं तो उसमें कंटामिनेशन हो जाता है और धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा हो जाता है और बीज की गुणवत्ता खराब हो जाता है।
1: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश चंद जो बड़े वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आपसे यूं ही चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर गिरीश चंद्र हमारे साथ हैं और इनसे हम बातें कर रहे हैं आज के हमारे विषय जो है जीवन यापन के लिए मशरूम की खेती कैसे करें। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताया और अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आपने बताया कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बीज खरीदते समय, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मात्रा में भी कुछ ख्याल रखना चाहिए जब हम बीज खरीदते हैं तो।
1: हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, यदि हम शुद्ध बीज का चुनाव करते हैं तो निश्चित है कि जो हमारा उत्पादन है वो शुद्ध होगा और अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ बीज और शुद्ध बीज का चुनाव करें, और बीज के चुनाव के साथ साथ मात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि यदि आप मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसका जो ऐसा मैंने शुरुआत में बताया था कि बीज इसका 100 रुपया किलो आता है, और यदि आप ओइस्टर मशरूम का खेती यानी ढिंगरी मशरूम खेती करना चाहते हैं या दुधिया मशरूम खेती करना चाहते हैं या गर्मा के समय में आप पुआल मशरूम का खेती करना चाहते हैं जिसे हम पैडिस्टर मशरूम कहते हैं, तो इन तीनों मशरूम की खेती करने के लिए आप यदि 1 कुंतल गेहूं का भूसा है या इस तरह से पुआल कुट्टी है तो उसके लिए आप 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति कुंतल की दर से आप इस्पान का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप बटन मशरूम का खेती कर रहे हैं तो इसमें बहुत कम बीज लगता है, यानी 1 कुंतल यदि आप बटन मशरूम का कंपोस्ट लेते हैं तो उसके लिए लगभग 800 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम, यानी 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक बीज आप ये चुनाव करते हैं तो बटन मशरूम के लिए इतना मात्रा पर्याप्त होता है।
0: तो डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को इसकी मात्रा का ख्याल रखने के लिए भी कहा है और बातें बहुत सारी हो गई हैं आप सभी के साथ किसान भाइयों और बहनों। और आपको बताना चाहूँगी कि आज बाज़ार में मशरूम का बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक मांग है और इसलिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में अगर आप मशरूम उत्पादन करते हैं तो आप अच्छी तरीके से अपनी जीवन यापिका कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और अच्छे तरीके से मशरूम का उत्पादन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in

0: है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर,
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाई, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन RJ अनु के साथ। साथ ही आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं मैं खास कार्यक्रम आपका उन्नत कृषि। जी हां, हम बात करते हैं इसमें खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज भी लेकर आए हैं हम खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें, और साथ ही अच्छी बातें, और वो भी उपयोगी बातें। वैसे दोस्तों, अभी जो जलवायु है वो आप देख रहे हैं कि कितना परिवर्तनशील हो चुका है, और जलवायु को देखते हुए खेती करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सबोर्णा रे चौधरी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रोनॉमी। साथ ही आप सभी को बता दूं, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ ही मैम, यहाँ पर जैसा कि हमारा विषय है आज, तो जलवायु के अनुरूप क्या क्या सामान्य तकनीकी हो सकती हैं, वो भी खेती करने के लिए, उसके बारे में बताएं सबसे पहले।
5: जी, बहुत ही अच्छा विषय है आज के बात करने के लिए। तो इस बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी, तो एक कॉपी और एक पेन आपके साथ में रखिए, क्योंकि आज के जो विषय है इसमें बहुत सारे ऐसे बात होंगे जो आपको नोट करने की बहुत ज़रूरत होंगे। तो जो भी हो, आज के जो विषय है इस पर हम पहले बात करेंगे सामान्य क्या क्या तकनीकी है। अगर सामान्य तकनीकी की बात करें, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए जो हमारे पास बीज की प्रभेद है वो तीन तरह के होते हैं, जल्दी प्रभेद, मध्यम प्रभेद और देरी का प्रभेद। सबसे पहले हमें निर्धारित करना है हमें किस तरह के प्रभेद चाहिए, हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, किस क्षेत्र में हमें फसल लगानी है, किस फसल की लगानी है, और कितना एरिया हमारे पास है फसल को लगाने के लिए। तो जो बीज हम खरीद रहे हैं, उस बीज जिस दुकान से भी ले रहे, उस बीज का वैधता खत्म नहीं हो गया है, वैधता समाप्त नहीं हो गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बीज मिश्रित तो नहीं है, किसी और अन्य बीजों से मिश्रित तो नहीं है, या फिर कोई खरपतवार के बीज उसके साथ, या फिर कोई कूड़े का धूला का दाना तो उसके साथ मिश्रित नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बीज ले रहे वो उपचारित है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बीज लेते वक्त आप बीज का जो पैकेट ले रहे वो खुला हुआ या फटा हुआ है कि नहीं, बीज में टैग है कि नहीं, ये सब चीज़ें देख के ही हम लोग कोई अच्छे जगह से, जैसे कोई ऑथोराइज्ड दुकान से, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से हम लोग बीज खरीदे। और जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आधार बीज के लिए सफ़ेद टैग दिया जाता है, प्रमाणित बीज के लिए नीला रंग के टैग दिया जाता है, प्रजनक बीज के लिए पीला और सुनहरा रंग का टैग दिया जाता है। तो जनरली हम लोग जब बुआई करते हैं तो हम लोग प्रमाणित बीज को ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बीज ठीक है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास बीज सही आ गया, अगर आपके पास पता है आप कौन सा फसल को उगाने जा रहे, तो उसी सटीक मात्रा पे बीज लेने की बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात, बीज को जहाँ पे लगाएंगे, मतलब आपकी मिट्टी कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जैसे मिट्टी में वायु संचरण अच्छा है कि नहीं, मिट्टी में जीवाश्म अच्छे से परिमाण में है कि नहीं, पानी निकासी की व्यवस्था है कि नहीं, मतलब जल जमाव कहाँ पर ना हो, क्योंकि जल जमाव ज़्यादा हो जाएंगे तो पौधे में पीलापन आ जाते हैं, तो ये पौधे

0: अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो पानी निकासी व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं गोबर खाद, जैसे कोई ज़मीन अच्छा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से 150 क्विंटल तक गोबर खाद वो अंतिम जुताई के साथ मिला के रख देते हैं। 15 से 20 दिन के बाद ही हम लोग बुआई के तरफ बांटते हैं, तो क्या हुआ इसमें ज़मीन के जीवाश्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे 2-3 फैक्टर है जिसको हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है। और भी एक जैसे जलवायु परिवर्तन की बात आता है तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, मिट्टी को कम से कम उसकी डिस्टर्ब करें, मतलब मिट्टी को बोलते हैं शून्य जुताई, आप लोग सब जानते हैं मिट्टी को कम डिस्टर्ब करके अगर जो जुताई, मतलब बिना जुताई के हम लोग अगर शोइंग करें बुआई कर पाएंगे वो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा है। और भी है जैसे मल्चिंग बोलते हैं, मिट्टी का कहीं कोई भी जगह जो दो पौधे के लाइन के बीच में दूरी के बीच में जो जगह छूट रहा है उसको जैसे पुआल से कोई भी ऐसे चीज़ों से ढक के रखना ताकि आपकी जो मिट्टी का जो पानी है वो बाहर उड़ के ना जा सके, तो ऐसे कोई भी चीज़ों से ढक के रखना। क्रॉप रेसिड्यू जो है उसको जैसे खरपतवार पुआल जो हमारे पास ढेर लगा हुआ था उसको ना जलाना, ये सब सामान्य तौर पर कुछ विधियाँ हैं जो हमें खेती करने के सबसे पहले ये जानना चाहिए।
1: तो यहाँ पर आपने जाना किसान भाइयों की कौन कौन सी विधियाँ हैं, साथ ही मैम मुख्य रबी फसलों के बारे में भी जाना चाहेंगे हम।
0: जी अभी देखिए जैसे रबी का मौसम चल रहा है जो ये ठंडी मौसम में मुख्य रूप से क्या क्या फसल होती है आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आप लोग गेहूं के फसल करते हैं, मक्का के फसल करते हैं, सरसों के फसल करते हैं, फिर कोई कोई जगह पे आलू भी ले लेते हैं। तो जो हम पहले गेहूं के बात करते हैं, अगर हम गेहूं के बात करें तो जैसे हम पहले बोले थे एक कॉपी और एक पेन रख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा ऐसे हम लोग पॉइंट पे आएंगे, ऐसे बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे जो आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम अगर गेहूं के बात करते हैं तो गेहूं के लिए जो सीड रेट की जरूरत है, जो मात्रा की सीड की जरूरत है वो है 100 kg, और जितनी दूरी रखना है वो है 20 से 22 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरी लाइन के, गेहूं के जो दूरी रखना है वो 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। गेहूं में जो फर्टिलाइजर देते हैं उसकी मात्रा है 120-60-40, 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटेशियम। 120 kg जो नाइट्रोजन होता है उसकी आधी मात्रा अंतिम बुआई के समय में, और पूरी पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पूरी की पूरी मात्रा पोटेशियम अंतिम बुआई के समय में हमें दे देना चाहिए, और आधी मात्रा जो नाइट्रोजन हमारे पास बच रहा है, मतलब 60 kg जो नाइट्रोजन बच रहा है उसको उसके बाद आफ्टर कोई भी पानी देने के बाद सिंचाई के बाद उसको लगातार 40-42 दिनों के बाद फिर 20-22 दिनों के बाद दे देना चाहिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, गेहूं के लिए पानी देना बहुत ज़रूरी है, तो पानी का प्रबंधन होना बहुत, मतलब जैसे सिंचाई बोलते हैं उसको ध्यान में रखने के लिए 21 से 25 दिनों के बाद पहला सिंचाई, बुआई के 21 से 25 दिन के बाद पहला सिंचाई, फिर 35 से 40 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई, फिर 55 से 60 दिनों के बाद तीसरी सिंचाई करनी है। ये ध्यान में रखिएगा अगर गर्मी के मौसम है तो सिंचाई के अंतराल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या आपकी मिट्टी अगर बालू के परिमाण ज़्यादा है, बालू के भाग ज़्यादा है तो आपको सिंचाई के अंतराल कम कर देनी है, बोलते जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा। अगर बालू उतना नहीं है तो आपकी इसी अंतराल में पानी देने से ही सही रहेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट इशू आ जाता है जैसे खरपतवार बहुत हम लोग जानते हैं गेहूं को बहुत परेशान करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कृष्णनील, बथुआ, गुली डंडा, गेहूं का मामा। गेहूं का मामा तो ऐसा ही खरपतवार है जो बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल गेहूं जैसा दिखने में होता है, बहुत मुश्किल होता है उनको पहचानना और उनको अलग करना कि वो गेहूं ही है कि वो एक उइड है, एक खरपतवार है। तो इसी तौर पे हम कहना चाहते हैं जैसे पेंडीमिथालिन 30 EC, ये 1 kg, जैसे 1 kg AI पर हेक्टर के दौर से अगर 2-3 दिन के बुआई के 2-3 दिन के बाद हम लोग दे सकते हैं तो ये खरपतवार नियंत्रण हो सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा खरपतवार है तो हम लोग पेंडीमिथालिन के साथ साथ 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेंडीमिथालिन 1 kg AI पर हेक्टर 2-3 दिन के बाद देने के बाद 2,4-D 38 EC 0.75 मतलब 75 ग्राम के हिसाब से हम लोग 35 दिनों के बाद, बुआई के 35 दिनों के बाद दे सकते हैं। जैसे एक चीज़ लेकिन ध्यान में रखना है, अगर गेहूं फसल के बाद हम लोग को कोई चारा फसल लेनी है उसके बाद लेना है तो सल्फोसल्फ्यूरॉन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो सल्फोसल्फ्यूरॉन आपके आने आने वाला जो चारा फसल है उनको नुकसान पहुंचा देंगे। और एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसे जिंक सल्फेट के इस्तेमाल करना, ये क्या किस लिए होता है, जैसे लगातार कोई भी एक ज़मीन पे अब धान के पौधे, उसके बाद लगातार गेहूं के, ऐसे कोई

साइकिल ले रहा है, धान गेहूं धान गेहूं, तो इसमें आपके जिंक की मात्रा कम हो जाती है मिट्टी में। इसको ठीक करने के लिए 25 केजी के दर से जिंक सल्फेट पर हेक्टर में देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जिंक सल्फेट 25 केजी, उसके साथ 20 केजी यूरिया 1000 लीटर पानी में, मतलब 1000 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्प्रेइंग करेंगे उसमें धूप खिली हुई रहनी चाहिए, मतलब खिली हुई धूप में करना चाहिए। तो मोटा मोटी हम, लगता है हम गेहूं के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। अब हम मक्का के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मक्का भी यहाँ पे हमारे इस प्रदेश में बहुत मान्यता प्राप्त एक क्रॉप है। तो मक्का के बारे में जो बात करेंगे, इसमें बहुत दो तीन वैरायटी होता है, जैसे शक्तिमान का कुछ वैरायटी है, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, 3, 4, ये सब वैरायटी है। मोटा मोटी 150 से 155 दिन के वैरायटी होते हैं। इनके मोटा मोटी जो उपज क्षमता है वो 85 से 90 क्विंटल तक जाते हैं। इसके अलावा भी राजेंद्र शंकर मक्का 1, ऐसा भी एक वैरायटी होता है जो थोड़ा सा लंबे अवधि है, 155 से 160 दिन का वैरायटी है। इनका यील्ड के पोटेंशियलिटी, मतलब उपज क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, 65 से 70 क्विंटल तक ले लेता है। DHM 117 भी एक वैरायटी है जो 155 से 160 दिन का वैरायटी है, जिसका उपज क्षमता है 90 से 95 क्विंटल पर हेक्टर तक। लेकिन ये सारे रबी फसलों के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है, ये जितने भी सारे फसल है इसके शुरू के दिन में ठंडे मौसम इनको अच्छा लगता है, और जब बाली निकल जाते हैं तो थोड़ा सा गर्मी लेकिन शुष्क वातावरण, मतलब आपकी पानी नहीं होनी चाहिए, मतलब वर्षा नहीं होनी चाहिए। तो ठंडी के मतलब परिपक्का का टाइम में, यहाँ मोटा मोटी बोल सकते हैं बुआई के टाइम में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और परिपक्का का टाइम में 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन शुष्क वातावरण बहुत ज़रूरी है ये जितने भी रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए। तो जो मक्का का हम बात करते हैं, मक्का के बहुत अच्छा जो शोइंग टाइम है, जो लगाने के समय है, वो है 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। ये जो है जनरली बोला जाता है हाथिया नक्षत्र जो है वो समाप्त होने के बाद ही मक्का का समय आ जाते हैं बुआई के। तो मक्का के लिए हम लोग जो सीड रेट अपनाएंगे वो 20 केजी प्रति हेक्टर के दर से अपनाएंगे। जो दूरी होगा वो लाइन के बीच, जो लाइन के दूरी होता है वो 60 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एक मक्का का पौधे से दूसरी मक्का का पौधे का जो दूरी होगा वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो मक्का का पौधे लगाएंगे, मक्का के लिए भी सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंचाई करते हैं उसे 5 से 6 सिंचाई की मिनिमम ज़रूरत है एक मक्का का पौधे के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉन मंजूरी निकलने के बाद से बाली में दाना भरने के टाइम तक पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ये करते हैं ताकि बाली में जब दूध भरने लगते हैं उस टाइम में अगर आपके पौधे को पानी की कमी हो जाएंगे तो आपकी दाना भरने में दिक्कत हो जाएंगे एवं दाना नहीं भी भर सकता है। तो इसलिए पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। मक्का के लिए जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वो मक्का के लिए 150 75 50, 150 केजी नाइट्रोजन, 75 केजी फॉस्फोरस, 50 केजी पोटाशियम देते हैं। लगभग गेहूं के जैसा ही इसके सेम रूल है, गेहूं के जैसा ही इस पे पूरी की पूरी मात्रा फास्फोरस, पूरी की पूरी मात्रा पोटाशियम अंतिम जुताई के साथ ही दे देते हैं, और आधी मात्रा नाइट्रोजन, ये सारा हम अंतिम जुताई के साथ दे देते हैं, और जो बची आधी मात्रा है वो हम लोग आगे के तौर पे देते हैं। किस कहाँ पे देना चाहिए, जहाँ पे गेहूं इसकी जो प्लांट की हाइट जब 40 से 75 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट हो जाएंगे तो उसकी आधी मात्रा नाइट्रोजन छिड़काव कर सकते हैं, और उसके बाद में भी और आधी मात्रा नॉर मंजूरी जब निकलने लगते हैं उसके ठीक पहले हम लोग आधी मात्रा नाइट्रोजन दे सकते हैं। जो जैसे हम लोग खरपतवार की भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, तो खरपतवार के लिए एक बोला जाता है जैसे एट्राजिन, एक मक्का के लिए एकमात्र जरूरी खरपतवार नाशी है एट्राजिन। एट्राजिन 50% ये 1 केजी AI पर हेक्टर के दौर से 2 दिन, बुआई के 2 दिन के बाद ही हम छिड़क सकते हैं। अगर उससे भी खरपतवार आपके नियंत्रण उतने अच्छे से नहीं हो रहा है तो 25 से 30 दिन के बाद दोबारा उसी एट्राजिन का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये तो गया हमारी मक्का के बाद, आप थोड़ा आते हैं सरसों। सरसों भी आजकल के ज़माने में बहुत, क्योंकि हम लोग साग के तौर पे भी सरसों को अपनाते हैं, सरसों के बाद आते हैं। सरसों जो जनरली लगाते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक से नवंबर के सेकेंड सप्ताह से। लेकिन अगर 15 अक्टूबर तक हम लोग अगर सरसों का बुआई कर देंगे तो कीड़ा लगने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सरसों के लिए जो सीड रेट अपनाते हैं वो जनरली 4 से 5 केजी होना चाहिए, और

पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। सरसों के लिए, सरसों क्या सभी तेलहनी फसलों के लिए सल्फर एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। सल्फर की प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सल्फर आपकी तेल की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। तो ये सल्फर की प्रबंधन के लिए 20 से 25 केजी सल्फर की बुआई के समय देना बहुत ज़रूरी है, जितने भी तेल की फसलें हैं, तेलधनी फसलें हैं। अच्छा, और अगर हम लोग देखेंगे सरसों में जो पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, दो इरिगेशन की ज़रूरत है। 28 से 30 दिनों के बाद एक इरिगेशन की ज़रूरत है सरसों में, और दूसरा इरिगेशन जब फली बनना लगते हैं, फली बनने के समय में दूसरा इरिगेशन देते हैं। सरसों में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है माहू के निशान दिखाई देता है। वो माहू के निशान दो चीज़ों से जाएगा, एक क्या है, खेत में नमी है कि नहीं, खेत में नमी बराबर मेंटेन रखना चाहिए तो माहू के निशान से आप बच सकते हैं। और कभी कभी क्या है, मेड़ जो होता है ना फसल के बीच में, जो मेड़ है उसमें धुआं करना चाहिए, ये धुआं करने से भी माहू के निशान से आप जुड़ सकते हैं। जैसे एक चौड़ा पत्ती के खरपतवार नाशी की हम बात करें तो सरसों के लिए चौड़ा पत्ती खरपतवार नाशी है मेट सल्फ्यूरन मिथाइल। ये जनरली 8 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करते हैं। क्लोरीडिनोफॉप भी 50% क्लोरीडिनोफॉप सुखड़ी पत्ती के लिए इस्तेमाल करते, इसके डोज है 160 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे साग निकलने लगते हैं, जैसे साग हम लोग सरसों का साग खाते हैं, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, जैसे प्लांट के बीच में जो दूरी है, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको मेंटेन रखिए, उसके बीज वाले जो पौधा है उसी से साग निकाल के ले लीजिए ताकि आपकी वो दूरी मेंटेन रहे। और जब साग निकालने वाले हो तो नीचे का भारी पत्ता पहले उठाए, तो उसमें दो फायदा होगा, एक तो आपको साग मिल जाएंगे, नीचे के जो बूढ़ा हो गया है उसे भारी पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आपकी जो कीड़े का आक्रमण, फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट एक बीमारी आता है उसके से भी बच सकते हैं। तो साग निकलते वक्त पहले आपकी जो थोड़ा सा पुराने पत्ते हैं नीचे से उसी को पहले उठाएं। तो हम लोग सरसों के बारे में भी थोड़ा बात करें, और सब शेष जो हम बात करते हैं उस बात रबी फसल में तो बहुत सारे फसल है, अब बात करते करते बहुत समय भी हो जाएंगे, तो हम सबसे एक और फसल की बात कर देते हैं, वो आलू। आलू के बारे में हम जब बात करेंगे, वो आलू के बारे में ये बोला जाता है आलू सबसे संवेदनशील फसल है, क्योंकि आलू को ना बादल पसंद है, ना आलू को धूप ना निकलना आलू के लिए बहुत क्षतिदायक है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको खिली हुई धूप अच्छा लगता है आलू को। तो आलू के बारे में सबसे ज़्यादा जो हमारे कृषि बंधु प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो है पाछेती झुलसा। पाछेती झुलसा ऐसा एक है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेट ब्लाइट। इस लेट ब्लाइट के साथ जैसे होता है ना, पत्ते के नीचे काले या भूए रंग का एक गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं, इसके साथ जुड़ने के लिए आपको मैनकोजेब या फिर जीनेब या फिर डाइएथेन M45 या फिर Z78, ये सारा आप कोई भी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम कोई भी एक को लेके मिला के स्प्रेइंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी फेरोमोन ट्रैप, जैसे आप लोग देखते हो जलवायु परिवर्तन में आजकल बोलते हैं कि केमिकल के इस्तेमाल नहीं करके हम लोग फेरोमोन ट्रैप, मतलब वो जो ट्रैप बनाते हैं कीड़े मकोड़े को फंसाने के लिए, तो वो 1 एकड़ के लिए 5-6 फेरोमोन ट्रैप अगर 1 एकड़ जमीन में लगा दे तो तना छेदक जितने भी कीट है उनको हम मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल के अगर 1 ग्राम हर 1 लीटर पानी में मिला के अगर 12 से 15 दिन के बाद अगर हम आलू के खेती में छिड़काव करते हैं तो सीड ब्लाइट, मतलब सीड ब्लाइट से भी एक बीमारी है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो सीड ब्लाइट हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे जो स्टेम्स है, जो उनके जो शरीर है तन में बड़े बड़े गोल धब्बे मिलेंगे, उसमें बैगनी रंग का गोला घेरा हुआ गोल मिलेंगे, उसी से पता चलेगा स्टेम ब्लाइट है, उसको मुकाबला करने के लिए हेक्साकोनाजोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे थे पाले की मार, आलू के लिए ये भी बहुत दिखने के लिए मिलता है, ये पहले ही हम बता चुके हैं, खेत में हल्की सिंचाई हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा, मेड़ में धुआं करने की ज़रूरत है तो हम इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी इमिडाक्लोरोपीड हम दे सकते हैं, जो 125 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बाली में धूल जैसे गूड़ा जैसा दिखने लगता है उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। अब आलू के बाद थोड़ा फल के पेड़ में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं तना छेदक कीड़ा हो जाते हैं, तो एक सहज सिंपल सा हम तरीका बता सकते हैं, अगर तन में फल के पेड़ के तन में कोई

0: छेद हो जाए, कीड़ा कोई छेद बना ले, तो हम लोग क्या करते हैं उस छेद में वो रुई में मिट्टी का तेल लेके उस छेद में डाल देते हैं और डाल के उसको गीला मिट्टी से ढक देते हैं, उस छेद को बंद कर देते हैं। तो इसी से हम लोग फल के जो तन में जो छेद होता है उसमें से भी मुकाबला कर सकते हैं। ये थोड़ा मोटा मोटी जो जो भी रबी फसलें हैं, हम कोशिश किए हैं उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देने के लिए।
1: हाँ किसान भाइयों, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी, लेकिन जाते जाते मैम आपसे इस विषय से जुड़ी कुछ संदेश जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें।
0: अगर कुछ संदेश के बाद बोले तो जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है और होने वाला है, इसके साथ जुड़ने के लिए हम बस आपसे अपेक्षा करेंगे आप लोग जुताई जो करेंगे उसमें गहरी जुताई पे मत जाइए, मिनिमम जो जुताई जो हल्की जुताई में हो सकता है, जैसे आपकी गेहूं की फसल मक्का की फसल हल्की जुताई में आराम से हो सकता है, उस जुताई को अपनाइए, शून्य जुताई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो फसल के बीच में दो दो फसल की लाइन के बीच में जो दूरी है उसको ऐसे खुला मत छोड़िए, उसको पुआल से खरपतवार से किसी भी पुरानी चीजों से ढक के रखिए ताकि मिट्टी के जो अंदर की जो पानी रखने की क्षमता हो वो खत्म ना हो जाए। मिट्टी में ज्यादा से ज्यादातर ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों के यूज कीजिए, रासायनिक पदार्थों को छोड़ के रासायनिक खादों को छोड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अहम जो बात है जो जो जो समर के मौसम होता है, गर्मियों के मौसम होता है, उसमें कभी कभी हम लोग फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं है, खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें ऐसे कोशिश कीजिए उसको कहीं ढक के रखिए, या फिर कोई भी सामान्य क्रॉप को लेके भी उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम लोग चारे के रूप में या फिर कोई भी एक फसल से हम लोग उस फील्ड को खेत को कवर करके रखें ताकि हम लोग जलवायु परिवर्तन को और बढ़ावा ना देने से रोक सके।
1: तो किसान भाइयों आपने बहुत अच्छी जानकारी ली हमसे, यानी कि 90.8 FM ग्रीन पर आज हमारे साथ थी डॉक्टर सबुर्णा रे चौधरी मैम और बहुत ही अच्छी विषय के साथ ही आई थी और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ ही आई थी। आप सभी ने इनसे बहुत ही अच्छी जानकारी ली, तो आशा करती हूँ कि आप इन जानकारियों को अपनाएंगे, सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि अपनाएंगे और खेती जलवायु के अनुरूप आप खेती कर पाएंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी

0: खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
2: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
10: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग

0: बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस

है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए

0: बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे।

और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम
प्रति हेक्टेयर रखें, वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 गुना 45

छह मीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अल्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का. और फिलहाल आज जो विषय लेकर आए हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ये बाढ़ की स्थिति की बात करें तो इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं. लेकिन हम एक आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने आप के बचाव के लिए ऊँचे स्थान पर जाते हैं, अपने खान पान का पहले से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं. लेकिन जो पशु हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो तो पशुपालक भाइयों पे ही डिपेंड रहते हैं. तो ऐसे में पशुपालक भाई

0: बाढ़ की स्थिति में अपने पशुओं के आहार का, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे, इन सारी जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है सबसे पहले।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जैसा कि हमारा विषय है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में पशुओं की रख रखाव, तो ऐसे स्थिति में पशुपालक भाई क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पशुओं के लिए, उनके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।
1: जी, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के में जल जमा के जल नदियों के पानी में जब काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है। तो जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है, वहां के पशुपालक अपने पशुओं पशुपालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अचानक बाढ़ आ जाती है वहाँ पशुओं को के रख रखाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य तो छत पर जाके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा, कई ऐसे स्थान हैं जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में चिन्हित स्थान होते हैं, जहां से पूर्व से ही वो स्थान निर्धारित है जहां आप अपने पशुओं को बाढ़ के अचानक स्थिति में अगर पानी आ गया तो वहाँ से आप अपने पशुओं को निकाल कर ले जा सकते हैं और वहाँ रख सकते हैं। वहाँ वैसे जगहों पर उनके पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, प्रति व्यस्क पशु 3 से 5 किलो सूखा चारा, सूखा भूसा और कुछ दाना की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वैसे जगहों पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो वहां के पशुपालक अपने पशुओं के चारे के लिए ऊंचे स्थान पर चारा पहले से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वैसे स्थानों पर जहां अचानक बाढ़ आती है तो पूरी तरह से चारा भींग जाता है, भूसा भींग जाता है, हरा चारा डूब जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पशुपालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके पशुओं के चारे प्रबंध धन में। तो वैसे जगहों पर आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या जो ऊंची सड़कें हैं वहां अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लेके जाते हैं या ऊंची स्थान पर लेके जाते हैं, लेकिन पशु को ले तो जाते हैं लेकिन उनके सारा जो चारा है वो डूब जाता है। और भींगा हुआ चारा आप अगर अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप पहले से इसका निर्धारण करें, अगर बाढ़ आती है तो सूखे स्थान पर चारा का व्यवस्था करके रखें, अन्यथा ऊंचे स्थान पर जो सरकार के द्वारा चिन्हित है, पशुपालन विभाग के द्वारा, राज्य जिला प्रशासन के द्वारा, वैसे जगहों पर पूर्व से ही बाढ़ के समय जब आने की संभावना हो पूर्व से ही अपने पशुओं को ले जाकर रखें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लें।
0: जी, तो ये बात हो गई कि कैसे रख रखाव करना है। अब देखा जाता है डॉक्टर साहब कि जब बाढ़ आता है तो चारे का काफ़ी अभाव हो जाता है, जो कि मुख्य यूं कहें कि आहार है हमारे पशुओं का। तो ऐसे में पशुपालक भाई कैसे खाने का प्रबंधन करें?
1: जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब चारा एकाएक बाढ़ आने के बाद जब चारा पूरी तरह से घर से नहीं निकाल पाते हैं लोग, भूसा अपना या पुआल, तो वैसी स्थिति में जो वैकल्पिक चारा का स्रोत है, पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, या जो मकई का या सूखा डंठल है, या जो अन्य अवशेष है, फसल अवशेष हैं, अगर उसकी उपलब्धता होती है तो ठीक है, अन्यथा पेड़ की टहनियां, पेड़ के पत्ते को खिलाकर आप अपने पशुओं को वैकल्पिक रूप से खिलाकर जिंदा रख सकते हैं। लेकिन उनकी पोषक तत्वों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हरेक कॉम्फेड के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से या पशु चिकित्सा विद्यालयों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से हरेक जगह पर फीड ब्लॉक के संधारण की व्यवस्था की गई है, और खास करके अभी कंप्लीट फीड ब्लॉक जो एक ईंटे के शक्ल में कंप्रेस करके चारा को बनाकर जिसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, और जब बाढ़ की अवस्था होती है या जब चारे का अभाव होता है तो वैसे जगहों के पशुओं के लिए इस फीड ब्लॉक को आसानी से हम पहुंचा सकते हैं और वहां पर फीड ब्लॉक खिलाकर अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: जी, अब बात करते हैं जब बाढ़ ख़त्म हो जाता है तो कई जगहों पर जो है गंदगी जमा हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य के साथ

0: साथ पशुओं को भी कई बीमारियां होने की जो खतरा है वो बना रहता है, तो ऐसे में इसका जो बचाव है वो कैसे करेंगे पशुपालक भाई?
1: जी, जल जमाव के बाद जब जब पानी जब उतरता है तो उसके बाद एक कई जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़ के बावजूद भी नई घास का बहुत तेजी से वहां पर पनपती है, और खास करके वैसे जगहों पर जहां बाढ़ का पानी जमता है या उन जगहों पर जहां पानी उतरता है, वहां के पशुपालक अगर अपने पशुओं को वो नया चारा जो निकला उसको अगर खिलाते हैं तो पशुओं में छेरा नामक बीमारी जो लीवर फ्लूक के चलते होता है, जिसमें कि काफ़ी पतला दस्त होता है और उसके जबड़ा के नीचे सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हर जगह नमी की अधिकता रहती है, ऐसे समय में कई प्रकार की परजीवी जनित रोग या जो ब्लड प्रोटोजोआ हैं उनके द्वारा होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, जैसे बेबीसिया, थैलेरिया और ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा नामक बीमारी का भी काफ़ी प्रकोप होता है। खास करके जल जमाव अधिक होने के चलते मच्छर, मक्खी और जो चमोकन की भी अधिकता होती है, उसके चलते भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इन जैसे आपने अभी हमने बताया कि वहाँ पर ब्लड पैरासाइट या ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं उससे बचाव के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में अगर आपके पशुओं में रेड वाटर या किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उसके हिसाब से चिकित्सा करवा सकते हैं। लेकिन खास करके छेरा से बचने के लिए आप अपने पशुओं के बाढ़ग्रस्त इलाके में खास करके ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल ग्रुप की दवा का प्रकोप करें, जो कृमिनाशक है और आपके पशुओं में छेरा से बचाव में काम आ सकता है। खास ही जब जल की निकासी हो जाए और नया घास आए तो ऐसे जगहों पर अगर आप देखें घोंघे की अधिकता है तो घोंघा एक प्रकार से वेक्टर का काम करता है, तो उनको जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक का सॉल्यूशन से घोल बनाकर देकर घोंघे को नष्ट करें। अगर घोंघे नष्ट हो जाएंगे तो ये जो छेरा नामक रोग है इसके जो वेक्टर में बीच में ब्रेक होगा और ये जो छेरा बीमारी है इससे आप बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने पशुओं को जो पेरिनियल जो प्रत्येक वर्ष टीका लगाया जाता है पशुपालन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, इसका भी आप ले सकते हैं। HSBQ का टीका पड़ता है, फुट एंड माउथ डिजीज का टीका पड़ता है, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका पड़ता है, बकरियों में PPR का टीका पड़ता है। इन बीमारियों का टीका जो है खास करके मई जून के महीने में HSBQ का टीका, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी में जब FMD का टीका पड़ता है, तो रोग से बचाव के से टीका से बढ़िया कोई उपाय नहीं है, अर्थात रोग होने से अच्छा है कि रोग से बचाव हम कर लें टीका के माध्यम से। तो अपने पशुओं को टीका लगवाएं, समय समय पर कृमिनाशक दवा का प्रयोग करें, और अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में आपके का चारा डूब गया है और उसके बाद जल्द ही पानी निकला है तो अगर आप उस चारे का प्रयोग करें भी तो उसको पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा जो एफ्लाटॉक्सिन या इस प्रकार के कई फंगस लग जाते हैं जिससे भी कि पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही करेंगे।
0: जी जी, तो इस अच्छी सी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से बातें होंगी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजेश कुमार सर से, और बहुत ही उपयोगी वो विषय होगा। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और नमस्कार।
2: उन्नत कृषि कितने दोस्त हैं?
3: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से

0: दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: 90.8 MHz पर FM ग्रीन में हम कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं, और मैं हूं ईश्वर चंद्र। साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री शशिकांत शशि जी, जो कि सहायक निदेशक प्रशासन हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे FM ग्रीन के स्टूडियो में पहली बार आप पधारे हैं। तो किसान भाइयों,

0: और सभी युवा जनों और किसान बहनों, हम काफ़ी लंबे अरसे समय से आप तक हम कृषक मंच कार्यक्रम लेकर आते रहे हैं, जिसमें कि खेती की बातें और जो आपके हर रोज के जो मौसम के हिसाब से खेती और उसके मौसम की जानकारी के साथ हाजिर होते रहे हैं। लेकिन आज का दिन, आज का ये जो विषय है वो बिल्कुल खास है और इसमें कृषि की बात नहीं होगी लेकिन कृषकों की बात होगी, और वो बात है वो जो हमारे मुख्य भूमिका में होंगे वो किसान होंगे, और चर्चा का जो विषय होगा वो है किसान और पुरुषार्थ। तो शशि जी, आज का जो विषय है किसान और पुरुषार्थ, इसमें जो पुरुषार्थ है एक बहुत ही इसकी विहंगम, एक जैसे ही पुरुषार्थ की बात आती है तो इसका अर्थ हम किसान के साथ जोड़ के कर रहे हैं, इसका आप विश्लेषण थोड़ा करेंगे।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल किसान, जो हमारे देश के किसानों के बारे में आप सुनते आए हैं, समझते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान ही देश है, आप जानते हैं। यहाँ के लगभग 64% लोगों की जो रोजी रोटी है वह किसानी या खेती से ही होती है।
0: जी,
1: किसान अपने लिए, उसका एक कर्तव्य है कि वह अन्न उपजाएगा। जी, अन्न उपजाने के बाद वह लोगों के बीच वह कुछ अर्थ के लिए वितरित करेगा या बेचेगा। उस अन्न का जो उपयोग होता है वह इंसानों के बीच होता है। इंसान अगर भूखा है तो वह पशु के समान है।
0: बिल्कुल,
1: आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में अन्न की उपलब्धता हर जगह नहीं है।
0: जी,
1: और कई बार ऐसे भी विषम परिस्थितियां आई हैं जब अन्न की उपलब्धता नहीं होने पे इंसान इंसान नहीं रह गया है। जी, तो उस समय किसानों की जो सार्थकता है वह समझ में आती है। किसान जो अन्न उपजाता है विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, किस प्रकार से वह धरती माँ को आग्रह करके अपना सब कुछ न्योछावर करता है, एक उद्यमी के रूप में अपना सब कुछ दे देता है। तो किसानों की जो बात जब होती है तो किसानों की मेहनत की बात बहुत कम होती है। तकनीक की बात होती है, विज्ञान की बात होती है, मौसम आधारित खेती की कभी बात करते हैं तो कभी इस तकनीक को इस प्रकार से उपयोग करने की बात होती है, खाद आधारित जो है सो कई सारी फसलों की बात होती है, लेकिन उसको करने वाले जो किसान हैं उनकी मेहनत की बात, उनके पुरुषार्थ की बात होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं, ज़्यादातर कृषक समाज के लोग और कृषक समुदाय के लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कृषि से संबंध रखते हैं लेकिन सिर्फ कृषि को उपभोग के तौर पर लेते हैं, आप कभी सोच कर देखिए कि एक किलो चावल आपके घर में एक दिन में खपत होती है, लेकिन उसे उगाने के लिए किसान कितना मेहनत करता है। आप कभी एक किलो धान उगा करके आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसे उगाने में कितना मेहनत लगता है, एक किसान अपना खून पसीना कैसे एक करता है उसे उगाने के लिए। तो हम अब बात कर रहे हैं शशि जी की उसके पुरुषार्थ में, किसानों के मेहनत के बारे में। तो मेहनत जो है वो किसानों का सुबह से लेकर के जब से वो हल कंधे पे रखने की परंपरा थी, आजकल ट्रैक्टर की परंपरा हो गई है, और रात में जब वो थका हुआ घर पे आता है उस समय तक वो राउंड क्लॉक वो अपना काम में संलग्न रहता है और एक बार भी उफ नहीं करता है। तो अब जो उसकी भूमिका है उसकी अगर हम चर्चा करें हमारी जो अर्थव्यवस्था में, उस पर भी एक बार प्रकाश डाल दें।
1: किसान जो है, जैसे भारत में कहते हैं कि किसानी एक प्रकार से आप कहें कि सेवा भी कह सकते हैं, आप उनको व्यवसाय भी कह सकते हैं, परंतु मैं मानता हूँ कि किसान का जो कार्य है वह आध्यात्म से जुड़ा है। वह इंसानों को एक ऐसी व्यवस्था देता है कि इंसान जीवित भी रहे, व्यवस्थित भी रहे। तो किसान का जो कार्य है वह किसी अच्छे उद्यमी से 100 गुना है, एक साधु के जैसा है, एक संत के जैसा है, मैं मानता हूँ। आध्यात्मिक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान को आप देखेंगे तो बेचारे बड़े सीधे तरीके से एक ही काम में अपना तल्लीनता रखेंगे, अपने गायों को, अपने पशुओं को नित्य क्रम नित्य प्रति जो है उसके प्रति वो सेवा भाव रखते हैं, अपने खेत के प्रति, अपने अपने जो आसपास की जो चीज़ें हैं प्रकृति ने जो उनको प्रदत्त की है उसके प्रति वो निष्ठा भाव से लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और अनवरत, ऐसा नहीं कि यह मौसम प्रतिकूल है तो हम आज खेती करने नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि का वर्षा जब किसी
0: वाले,
1: तो उनके लिए ना कोई रेस्ट नहीं है, दे विल डू कंटिन्यूसली देयर हार्ड वर्क। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आज ये खाना नहीं खाना है, आज ये खाना जो है ना बासी, अब थोड़ा सा पेट भर गया, अब छोड़ो इसको फेंको। उस थोड़े से अन्न को उपजाने की जो मेहनत है, कभी अगर हम लोग सोचें और करने की हिम्मत करें तो शायद नहीं हो पाएगी। किसान उद्यमी इसलिए हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमम पार्ट जो है धरती माँ

0: आपको अर्पित कर देता है कि माँ अगर आप लौटाएं तो ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा है। और धरती माँ भी उनको कभी नाराज नहीं करती है, शायद ही वो उनको नाराज करती हों। वो अगर 10 दाना बोता है किसान तो उन्हें वह 100 दाने में परिवर्तित करती है। तो ये किसानों का साधुपन ही है, एक एक उद्यमी के रूप में इतना साधुपन किसी में नहीं आएगा, लेकिन इस व्यवसाय में, किसानी व्यवसाय में ये साधुपन आपको दिखेगा। अब पुरुषार्थ की बात करते हैं। ईश्वर ने पुरुषार्थ करने की ताकत केवल मनुष्य में दी है, सभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, एक इंसान ही है जो पुरुषार्थ कर सकता है। और पुरुषार्थ का जो एक जो भाव है मन में आना, सभी के लिए संभव नहीं है। किसान पुरुषार्थ से क्यों अटैच्ड है, मैं बताऊं, पुरुषार्थ के चार भेद हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये हम सब मानते हैं, पर मेरा मानना है कि अनुशासन और हृदय की पवित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। अनुशासन किस प्रकार से किसानों से अटैच्ड है, वो नित्य प्रति अपना निरंतर भाव से एक समान रूप से ड्यूटी अपना निभाते हैं। खेती करने जरूर जाना है, गाय की सेवा जरूर करनी है, अपने आसपास के जो प्रकृति की चीजें प्रदत्त हैं उनको जरूर सेवा उसकी करनी है, बदले में ईश्वर जो उन्हें दे।
1: बिल्कुल,
0: अन्न उपजाएंगे लोगों की भूख मिटेगी, भूख मिटेगी तो इंसानियत का भाव बढ़ेगा, संतुष्टि आएगी। ये जो पवित्रता है, ये जो अनुशासन है, ये धर्म है, सच्चा धर्म इसे ही कहते हैं। तो किसानों से बढ़िया धर्म कौन निभा रहा है,
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं लगता।
1: अगर आज खाने की जहाँ किल्लत हो जाए,
0: जी जी,
1: वहां पर सभी धर्म अपने घुटने टेक दे,
0: सभी टेक देंगे।
1: तो यानी कि जो धर्म का उद्गम कहें तो ये किसानी से ही,
0: किसानी से
1: ही होती है।
0: भूख जो है ना, भूख कोई मजहब नहीं देखता है, जहाँ रोटी की आवश्यकता होगी वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख नहीं देखते,
1: नहीं।
0: उन्हें भूख में रोटी चाहिए,
1: रोटी,
0: और रोटी कौन उपजा के देगा, तो किसान देगा। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, पर मूलतः हुआ किसान ही रहेगा। अब हम बात करते हैं अर्थ की,
1: तभी वो उत्तम खेती मध्यम,
0: उत्तम खेती मध्यम। और इनका जो ये जो कार्य है, ये एक व्यवसाय नहीं है, ये कृषि जो है ना व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसाय के रूप में नहीं लेते हैं। इनको लगता है ये मेरा कर्तव्य है, अगर हम गाय की सेवा नहीं करेंगे तो माँ भगवती रूठ जाएगी, अगर हम धरती की सेवा नहीं करेंगे तो माँ धरती रूठ जाएगी, भगवान सूर्य की सेवा, सूर्य को प्रणाम करने से भगवान रूठ जाएंगे। तो ये जो परंपरा है, ये जो भक्ति है, आप देखिए कई सारे त्यौहार में भी है। आप छठ माँ की पूजा करते हैं, प्रसाद क्या चढ़ाते हैं, वही गेहूं का बना हुआ, वही गन्ना,
1: बिल्कुल
0: वही हम सूर्य को, भगवान को जो है जल अर्पण करते हैं। तो ये सब किसानों के द्वारा है, ये सब जो है जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं, ये किसान के द्वारा उन्हीं के तौर तरीके से बना है। ये वो सीधे भगवान को वो जो अर्पण करते हैं, वो सीधा लगता है जैसे कि एक मन को एक तरीके से जोड़ा हुआ है उन्होंने, उनके साथ समर्पण है उनका, वो भाव दिखता है। अब आप कहते हैं कि सो जो हमारा जो काम है, देखिए काम को ना हम लोग भौतिक रूप से ले लेते हैं कि भोगने की इच्छा है हमारी काम है, दरअसल किसान जो काम करते हैं, किसान के लिए जो काम है, काम का जो लक्ष्य है उनका है कि यदि हम कुछ भी उपज लाते हैं या दूध ही अपने जो भी गाय माता है उनसे दूध दूह के जब लाते हैं, जब कोई बच्चा पीता है ना, उनकी संतुष्टि ही उनको ना एक आत्मसंतुष्टि ही उनको ना एक एक तरीके का सुख देती है, यही काम है उनके लिए, यही काम है। और मोक्ष, हम तो कहते हैं साहब कि इस देश में अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप अगर कोई रास्ता चुनते हैं तो खेती को चुनिए, प्रकृति से जुड़िए। यदि आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, छोटा सा किचन गार्डन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने बच्चों को दिखाएंगे कि कुछ फसल उगाइए खेती से, खेती के लिए नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने के लिए, तो वह बच्चे संस्कारी बनेंगे। आपके बच्चे यदि संस्कारी बनेंगे तो समाज में एक अच्छा निर्माण होगा, देश में एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होगा। तो ये जुड़ाव कैसे हो रहा है किसानों को देख के, ये भी ये यही एक तरीके से मोक्ष है। हम कह रहे हैं कि संस्कार तो तभी बनेंगे ना जब आप इसकी पहल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बच्चों में यह बात बताएंगे। मैं बार बार यह कहता हूं कि किसान इस देश की रीढ़ है। सेवा क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, निर्माण क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, हम चांद पे पहुंच गए हों, लेकिन साहब चांद पे जाने वाले वैज्ञानिक के बच्चों को भी भूख लगती है,
1: और वो खाना ही से जाएगा,
0: खाना किसान के द्वारा जाएगा। किसान नहीं उगाएगा तो जापान से आपके लिए अन्न आना बहुत मुश्किल काम है। तुरंत कहते हैं ना कि तुरंत एनर्जी के लिए या शरीर को जो है भूख मिटाने के लिए आपको अन्न चाहिए, वहाँ पैसे या सामानों की उपलब्धता या अंतरिक्ष में पहुँचने से नहीं, आपको पेट तो वह रोटी ही,
1: रोटी से ही भरे,
0: ठीक है। तो हम यह मानते हैं कि किसान जो है भगवान के साक्षात बनाए हुए ऐसे रूप हैं जो इंसानों को एक तरीके से वह व्यवस्थित रूप देता है, एक तरीके से वह ऊर्जा का एक कहते हैं कि भंडार देता है कि आप जीवित रह सकते हैं। हम जीवित रहेंगे तब ना इंसानियत,

0: बिल्कुल। तो साथियों, आप में से जो भी लोग अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो अपने डाइनिंग टेबल पर जो रखी हुई रोटियां और जो सब्जियां हैं उसको उगाने वाले के लिए आपने कभी धन्यवाद नहीं कहा होगा, बनाने वाले के लिए आपने ज़रूर उसके शुक्रिया कहा होगा, परोसने वाले के लिए भी कहा होगा, लेकिन जो उगाने में जो मेहनत लगती है, उसके पीछे जो मेन हीरो जो हमारा किसान है, उसके बारे में आपके दिमाग में कभी एक पल ख्याल नहीं आता है। तो ये जो कार्यक्रम है वो हम इसी वजह से एक हमने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया, एक हमने एक कदम उठाया कि किसानों के बारे में आपको अवगत कराया जाए कि आखिर वो किसान कैसे युगों युगों से आपकी सेवा कर रहे हैं और बिना किसी लालच, बिना किसी भय, बिना किसी दुख और इस सभी चीज़ों से परे होकर के एक ऋषि की तरह एक कृषि कार्य किए चले जा रहे हैं। और ऐसा एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में खाएगा वही जो उगाएगा। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए कि आपको जब आने वाले दिनों में इतनी सारी जो तंत्र विकसित हो जाएंगे तो आप थर्मोकोल खा करके जीवित नहीं रहेंगे, आखिरकार आपको रोटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान जो युगों युगों से आपकी सेवा में रत हैं, वो अगर आप उनके बारे में नहीं जाने, उनके बारे में सम्मान और उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे, तो एक दिन आपको भूखे रहने की बारी आएगी और आप खुद उगा पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि हम किसान हैं लेकिन अपने बच्चों को किसान नहीं बनने देंगे?
1: मेरा तो आम लोगों के लिए भी सुझाव है। आजकल देखते हैं कि एक आजकल नया रोग चला है, डिप्रेशन वर्ड कई बच्चों में आजकल सुनने को आया कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बड़े लोग भी आजकल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये डिप्रेशन जो है ना, ये शौकिया रोग है। आप किसानों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, किसानों के बच्चों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, उनके पास तो मुसीबतों का अंबार लगा रहता है। तो अगर अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो डिप्रेस्ड होने लगे तो खेती कौन करे? मैं तो यह कहता हूँ कि जो भी अच्छे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वह अगर अपने बच्चों को हो सके तो साल में दो चार दिन किसानों के समक्ष लेके जाएं, उनकी रोज़मर्रा की रूटीन को दिखाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अवसाद तो उन्हें आएगा ही नहीं। किसानों के जो तौर तरीके जीवन, उनकी जो जीवन शैली है, उनसे अगर यदि उनको रूबरू करा दें, उनके दैनिक जो कार्यक्रम है या उनके जो दैनिक काम करने की जो क्षमता है, जो जिस प्रकार से वो काम निष्पादित करते हैं, उन्हें अगर बच्चे देख लें, समझ लें, तो मुझे लगता है कि उनको अवसाद तो कभी पूरे जीवन में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे रोग भी उनको नजर आएंगे। अब किसान अगर उनको डायबिटीज होने लगे, किसान को अगर मोटापा होने लगे, यह मैंने कभी सुना ही नहीं है। अवसाद तो खैर बहुत दूर की बात है। तो आजकल मैं यही कहूँगा कि बच्चों को जो है कम से कम कृषि से जुड़ाव के लिए उनके समक्ष जरूर कभी कभी ले जाया जाए। और हम लोग किसानों को क्या है कि उनकी वेशभूषा से आंकते हैं, उनके हृदय की गहराइयों को हम नहीं देखते हैं। आप अगर किसान, चाहे वो कितने ही गरीब हों, आप यदि उनके दरवाजे पे चले गए ना, तो आपको वो दो रोटी और एक गिलास दूध जरूर दे देंगे। ये उनकी क्षमता में हो या ना हो, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सेवा भाव कहाँ है? ये सेवा भाव नहीं मिलता है। मैंने देखा है, मैंने गांव में भी देखा है, मैंने आसपास में भी देखा है। और मुझे जब भी कुछ परेशानी होती है ना, तो मैं अपने आप को ना किसानों से थोड़ा सा जुड़ के महसूस करता हूँ कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, इस सिचुएशन में वो कैसे करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में आखिर वो लड़ कैसे लेते हैं, उनको वो क्षमता कहाँ से आ जाती है। तो शायद ईश्वरीय उनको जो है, एक तरीके से कहिए कि उनको प्रसाद मिला हुआ है, ईश्वर ने उनको कुछ ऐसी दी है क्षमता कि वो विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी बैल से उनको जो है दोस्ती है, उसी हल से उनको प्रेम है, उसी क्या कहते हैं पृथ्वी माँ से जो है उनको लगाव है, प्रकृति के समक्ष वो एकदम जुड़े रहते हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बरसात, क्या धूप, हर एक मौसम में उनको जो है सो आप देखेंगे कि लगे हुए हैं। तो यह जो निरंतरता है, यह उनके अंदर की जो क्षमता है, वो पुरुषार्थ का सार्थक, एकदम सार्थक वो है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आम आदमी में आप नहीं देख सकते। और भारतीय किसान के बारे में कह रहा हूँ मैं, भारतीय किसान, चूंकि हम लोग आसपास में जब भी देखते हैं तो यह मानते हैं किसान, बाहर के विदेश में जो है सो हो सकता है कि सेवा भाव जो है जैसा भी रहा, पर किसान किसान है, किसान किसान है। हो सकता है कि उनके पास ट्रैक्टर बहुत अच्छे आ गए हों, साधन बहुत अच्छे आ गए, हाँ, लेकिन फिर भी अंततः हुआ अन्न उपजा के दूसरे का पेट भरते हैं। और पेट अगर किसी ने भर दिया तो या तो वो माँ भरेगी या किसान भरेगा। तो मेरा किसानों को नमन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि वह इसी प्रकार अनवरत मेहनत करें और नई

0: इन तकनीकों का उपयोग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं भी, और किसानी वाला जो गुण है उसको कभी वो
1: बरकरार रखें,
0: वो बरकरार रखें
1: जी। तो किसान भाइयों, आपके अंदर जो हीरे छुपे हुए हैं उसको लेकर आप कई बार कुंठित भी महसूस करते होंगे, लेकिन आज हमने आपका महिमा मंडन नहीं किया है, हमने याद दिलाया है कि आपके भीतर क्या क्या वो हीरे और वो खजाने हैं जिसने इस देश को, एक भारतवर्ष को आज तक अक्षुण रखा है। तो हम इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम कुछ बेहतर कार्यक्रम आपको अगले भाग में फिर से सुनाएंगे शशिकांत जी के साथ, तो आज के लिए हम यहीं पे इजाज़त चाहेंगे, और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
5: टीकू वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो

बस फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है,

0: सब्जी उत्पादन, अब हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी

0: जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CA

0: बच्चों या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए, हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है

तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं, या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे के मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए, और आपकी जो नेचुरल स्किन है जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी ये समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे

होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपके ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं। ये गलत है, आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीजें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए। और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही।

मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। Ladies first.

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और

25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अल्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना,
1: खसरा रुबेला बीमारी है घातक।

0: देर से मिठाई चढ़ता।
1: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
2: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
4: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अनु को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम, जी हाँ, जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो बिल्कुल अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है, सारे फलों से हटकर है। इसे खाने से बहुत सारे पौष्टिक गुण तो हमें मिलते ही हैं, और इसकी खेती के बारे में आप जानेंगे तो और भी ज़्यादा आपको रोचक लगेगा इसे सुनने में, इसकी खेती के बारे में सुनने में। तो आज हमारे बीच इस विषय को लेकर डॉक्टर हेमंत हैं, जो कि उद्यान वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ड्रैगन फ्रूट ये क्या होता है?
11: देखिए, ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्रूट कोई अब नया चीज नहीं रह गया है, फिर भी मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ड्रैगन फ्रूट की अगर बात करें तो ये इसकी जो वैज्ञानिक नाम हम लोग सभी फसलों का जैसे जानते हैं, इसका भी वैज्ञानिक नाम होता है, जिसको हम लोग हिलोसेरस स्पीसीज के नाम से जानते हैं, और ये कैक्टेसी परिवार का होता है। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका के उत्पत्ति

0: हुई है, लेकिन इसकी बहुतायत पैमाने पर अगर खेती की बात की जाए तो सबसे ज्यादा थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, और साथ ही 2005 से हमारे भारतवर्ष में भी हो रहा है। खासकर अगर हम बिहार की बात करते हैं और किशनगंज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिहार में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से इसकी खेती शुरू हुई और कहीं ना कहीं जाके आज जो है ये बिहार के सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ क्षेत्रों में इसकी खेती की जा रही है। तो ड्रैगन फ्रूट की फल की बात करें तो ये 3 फलों के रूप में होता है और इसको आगे मैं बताऊंगा भी। और इसकी जो हम जीवन काल की बात करें तो करीब 25 से 30 सालों तक जो है ये सस्टेन कर सकता है, फलों की तरह जैसे आम करता है उस तरह से इसको उत्पादन की तकनीक से हम इसको ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर बिहार क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ संभावनाएं हैं इसकी यहाँ पर?
0: लेकिन संभावनाओं की बात करें तो संभावनाएं हर फसलों के लिए अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी उत्पादन तकनीक को अपनाकर हम इसको अच्छे तरीके से इसका लाभ हम उठा सकते हैं। साथ ही औषधीय गुण से भी भरपूर है
1: जी।
0: और हमने जैसे बताया कि 2014 में इसको हम लोगों ने प्रयोग के रूप में लिया था और जाके हमारे किशनगंज जिले में करीब 15 से 20 एकड़ में इसकी खेती भी हो रही है। साथ ही जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से निरंतर ये जो है प्रसार की गतियों से इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार ने भी जो है इसको अपने माध्यम से किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, हर तरह के मिट्टी में भी इसको उत्पादन कर सकते हैं, अच्छे प्रबंधन को अपनाया जाए तो।
1: जी अभी आपने मिट्टी की बात की कि हर तरह की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है, तो इसके लिए तो हमारे किसान भाई को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन जलवायु की बात करते हैं तो उपयुक्त जलवायु क्या कुछ होता है इसके लिए, इसके उत्पादन के लिए या फिर इसकी खेती के लिए?
0: देखिए कैक्टेसी परिवार का हमने जैसे बताया कि ये एक तरह से रेगिस्तानी पौधा है तो इसे कम से कम पौधों की पानी की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: तो कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए अब फिर भी देखिए हम किशनगंज में बिहार का ऐसा ये जिला है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश करीब 2000 से लेके 2500 मिलीमीटर तक औसत वर्षा यहाँ होती है, जहाँ पे हम अच्छे तरह से उत्पादन कर सकते हैं। तो जहाँ पे पानी बहुत कम 500 मिलीमीटर तक भी इसकी औसत वर्षा होती है तो हम इसको वहाँ पे भी जो है उत्पादन कर सकते हैं, बशर्ते जो है इसको ध्यान में ये आपको रखना है कि जब इसकी प्रोग्रेस होती है तो करीब उसमें 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर ये 35-40 डिग्री तक भी चली जाती है इसका तापमान तो उस परिस्थिति में भी इसका बढ़वार होता है। और इसमें एक चीज होगी कि अगर हमारे किशनगंज में इसकी फ्लावरिंग अगर मार्च अप्रैल में हो रही तो गर्म जगह पे ये जाके जो है जून जुलाई में होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उत्पादन आपको ये अवश्य रूप से देगी
1: जी।
0: तो जलवायु कोई विशेष इसके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन जलवायु का आप ये नहीं कर सकते कि, लेकिन उत्तम व्यवस्था करने के लिए आपको इसको सेट के रूप में भी आप लगा सकते हैं चारों तरफ अपने खेत के चारों तरफ। अगर आप बड़े पौधों का आप जो है ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, पौधा रोपण कर देते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सकते हैं
1: जी। मतलब इसके लिए कोई उपयुक्त खास जलवायु नहीं है, ना ही कोई उपयुक्त खास मिट्टी में इसे उगाना है, है यही जी।
0: मिट्टी में अगर बेहतर जीवाश्म और जल निकासी जैसे सभी फसलों के लिए हमको आवश्यक होती है।
1: मिट्टी में मतलब पोषक तत्व रहने चाहिए जो कि फसल
0: जी बेहतर जीवाश्म की आवश्यकता हो, जिसमें ऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग कार्बनिक खाद की बात करते हैं
1: जी,
0: प्रचुर मात्रा में हो तो कहीं ना कहीं जो है इससे अच्छा
1: बहुत अच्छा होगा। और अगर किसान भाई खेती करना चाहते हैं डॉक्टर साहब ड्रैगन फ्रूट की, तो कौन से उन्नत प्रभेदों का चयन उन्हें करना चाहिए?
0: देखिए प्रभेदों की बात करें तो बहुत सारे प्रभेद हैं और इसको कैटेगरी वाइज अगर स्पीसीज से हम ज्यादा समझें तो ज्यादा आसानी होगा हमारे किसान भाइयों को
1: जी।
0: ये 3 तरह के स्पीसीज में इनको बांटा गया है, एक रोजा, ब्लंका और अम्ब्रीला।
1: रोजा, ब्लंका और अम्ब्रीला जी
0: जी जी। रोजा को हम लोग हिलोसेरस पोलिराइजस के नाम से जानते हैं और अगर हम इसको देखेंगे तो ये लाल रंग का आवरण के साथ साथ तो लाल रंग का गुदा और इसमें काले महीन बीज होते हैं, इसको हम रोजा के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ब्लंका, इसके आवरण जो होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं और सफेद गुदा में काले बीज महीन हुआ करते हैं इसमें, इसको हम ब्लंका के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है पीले रंग का आवरण होता है और साथ में उसमें जो है सफेद गुदा के साथ साथ काले महीन बीज होते हैं। तो 3 प्रकार के जो है सामान
1: जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि खास तौर पर जिसका उत्पादन किया जाता है वो रोजा और ब्लंका ही आमतौर पर देखने को मिलते हैं
0: जी। जी सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो रोजा जो है ज्यादातर उत्पादित भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, लोगों के प्रति इसका जो है झुकाव भी

0: जी डॉक्टर साहब, ये तो उन्नत प्रभेदों की बात हुई और लगाने के तरीके और समय के बारे में हमारे किसान भाइयों को, श्रोताओं को बताएं।
1: जी देखिए, लगाने का तरीका का अगर बात करें हम तो लगाने के तरीके में इसमें एक तरह से एक देसी पौधा है और इसमें जो है हम जब पौधा का हम कलम लगाते हैं सामान्यतः इसमें बीज के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अच्छे पौधे और क्वालिटी के हिसाब से देखें तो हम इसमें जो है करीब 30 से 40 दिन क्रांतिक जो भी कटिंग होती है उसके जड़ निकल जाते हैं, तो 20 से 25 सेंटीमीटर की कटिंग को हम पहले जड़ के लिए उसको रखेंगे या नर्सरी से आप ले आके आते हैं तो उसको जो है आपको इसमें एक चीज और आवश्यकता होती है कि जब हम पौधा लगाते हैं तो खेत हमारा समतल हो, अच्छी तरह से जल निकासी वाला हो, साथ ही इसे एक पिलर की आवश्यकता होती है, कंक्रीट का पिलर हो या लकड़ी का पिलर हो या आपका ईंट का पिलर हो, सामान्यतः हम लोग कंक्रीट के पिलर को सुझाव देते हैं। तो कंक्रीट का पिलर इस तरह से होना चाहिए, करीब 6 से 7 फीट लंबा होना चाहिए, जिसमें 1.5 फीट उस पिलर को हम जमीन के अंदर घुसाते हैं और एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी जो है आप अपने अनुसार रख सकते हैं, सामान्यतः जो है 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है हाई डेंसिटी के माध्यम से भी उत्पादन करने का तरीका ले आया है हम लोग, तो उसको आप 2.5 मीटर से 1.5 से 2.25 मीटर की दूरी पे पिलर को स्थापित करने के साथ साथ आप प्रत्येक पिलर पे आपको 4 पौधों को स्थापित करना है चारों तरफ से। जब हम स्थापित कर लेंगे उसको, स्थापित करने के बाद जब हमारा 6 फीट का पिलर है या 5.5 फीट का पिलर है तो ऊपर हमारे 3 या 4 दाग हम निकाले रहते हैं बाहर की तरफ लोहे के, जो हम उसको फैला के उसमें टायर के स्ट्रक्चर को पहनाते हैं और उस टायर के माध्यम से ही पौधा बाहर की तरफ करीब 7 से 8 महीने बाद जो है वो निकल के आएगा। तो इस तरह से हम लगाने का तरीका क्या है कि हम इसको पिलर के माध्यम से लगाते हैं और 1 एकड़ में करीब सामान्य दूरी की बात करें तो करीब 1600 से 1700 पौधों की आवश्यकता होती है, वहीं अगर हम हाई डेंसिटी की बात करें तो ये जाके करीब 3200 से लेकर 4000 प्रति एकड़ पौधों की आवश्यकता होती है, इस तरह से इसको
0: लगा सकते हैं। जी और समय की बात डॉक्टर साहब।
1: हाँ, समय की बात करें तो समय देखिए हमने सही सुझाव दिया, समय जैसे हम प्लांटेशन पौधों को लेते हैं जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, लीची है, उसी तरह से इसको भी हम मानसून सत्र में हम जून से लेकर जुलाई अगस्त तक हम इसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और फिर नहीं तो उसके बाद जो है फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक इसको अगर हम लगाते हैं तो अच्छा हम इसको परिणाम देखने को मिलता है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक और खास बात जो कि इसमें होता है, पोषक तत्व प्रबंधन और साथ ही उर्वरक प्रबंधन, इसका भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, तो किस प्रकार हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं तो पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं?
1: जी देखिए, ड्रैगन फ्रूट की जब खेती करते हैं तो हम लोगों के माध्यम से ज्यादातर सुझाव यही रहता है कि आप इसको ऑर्गेनिक माध्यम से करें, जिससे कि इसके फल में फल की क्वालिटी और इसके जो फल का जो टिकाऊपन होता है वो बेहतर होता है, स्वादिष्ट होता है।
0: अच्छा,
1: तो अगर हम ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहे हैं तो उसको हम लगाते समय जो है करीब 5 से 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद अगर हम ले लेते हैं तो बेहतर होता है, तो सड़ी गोबर की खाद की जगह अगर आप और अच्छा लेना चाहते हैं तो करीब 5 से 8 केजी जो है आपको वर्मी कम्पोस्ट लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके पिलर के चारों तरफ से इसको दबा के रख देना, उसके बाद उसमें प्लांटेशन करना है। दूसरा, जब हम फ्लावरिंग के सीजन आते हैं जिसको हम फरवरी और मार्च कहते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने जुलाई और अगस्त में एक बार हमने दे दिया है इसको, तो आपको उसको जनवरी माह में एक बार, जनवरी से फरवरी माह के बीच में एक बार जो है आपको पुनः जो है उतनी क्वांटिटी में जो है आपको जैसा हमने बताया कि 10 से 15 किलो सड़ी गोबर की खाद या 5 से 8 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट को अगर उसमें मिक्स करते हैं तो ये दूसरी बार। तीसरी बार जो है पुनः मानसून आने से पहले, अगर हमारा प्लांटेशन हो चुका है तो मानसून आने से पहले हम यही प्रक्रिया पुनः करते हैं, तो ये हमारी ऑर्गेनिक खाद देने का माध्यम होता है। अगर हम इनऑर्गेनिक में जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को जो है हम केमिकली रूप से देते हैं तो प्रति पिलर में 2 बार करीब करीब जो है आपको 80 से 100 ग्राम जो है यूरिया और जो है 150 से 200 ग्राम के आसपास डीएपी और जो है करीब 200 ग्राम पोटाश के माध्यम जो है हम दो बार और प्लस उसमें 5 केजी सड़ी गोबर की खाद मिलाकर अगर हम देते हैं, एक बार मानसून सत्र में, दूसरी बार जो है फरवरी और मार्च माह में देते हैं, इस प्रकार से हम खाद उर्वरक प्रबंधन करते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, और इसमें एक और खास बात सामने आती है कि क्या इसमें कोई विशेष उद्यानी कृषि

0: कार्य होते हैं, अगर होते हैं तो फिर कैसे होते हैं उसकी जानकारी भी दे दें।
1: ये काफी रोचक सवाल है। और देखिए, उद्यानिक फसलों में सामान्यतः कोई ना कोई एक अच्छी तकनीक होती है। इस प्रकार से ड्रैगन फ्रूट में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी पुरानी शाखाएं हैं तो उनको आपको जो है कटिंग के माध्यम से कटिंग करना है, सिकेटियर के माध्यम से। और हम नीचे से पिलर से सटे हुए केवल एक ही स्टेम को, तना को लेके ऊपर तक जाते हैं, और फिर बाद में आप देखेंगे कि ऊपर से काफी मात्रा में बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं। तो नीचे की तरफ से हम कटिंग करते हैं, ऊपर की तरफ शाखाओं को हम छोड़ देते हैं, और फर्दर 2 से 3 साल के बाद हम उसमें जो है कटिंग बराबर हम करते रहते हैं, मानसून के पहले और फ्लावरिंग से पहले। करीब फ्लावरिंग से 1-1.5 महीना पहले, फ्लावरिंग सामान्यतः हमारे यहाँ अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में आता है, तो हम इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में हम एक बार जो है इसको कटिंग करेंगे, वो भी जितने भी पुरानी शाखाएं हैं, जो पुरानी हो गई, सख्त हो गई, उसको काट देंगे। क्योंकि जो भी नई शाखाएं होती हैं उसी से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। ये एक विशेष ध्यान इसमें देने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग फ्रूनिंग बहुत ही आवश्यक इसमें आवश्यकता होती है करने की।
0: इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जो सबसे अहम सवाल है कि अगर हमारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की, प्रति एकड़ क्या उत्पादन उन्हें मिलेगा, साथ ही क्या लाभ मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल हमारे किसान भाइयों का यही रहता है, तो कृपया आप इसका जवाब जरूर दें।
1: कहीं ना कहीं ये अंतिम सवाल भी हो सकता है, और लगाने के जब भी कोई किसान किसी भी चीज की प्रोफेशनल खेती करता है तो अल्टीमेटली उसको यही जानने की आवश्यकता होती है कि उत्पादन कितना होगा और लाभ होगा।
0: जी जी, क्योंकि तो हर एक जो हमारा खेती है वो लाभ से जरूर जुड़ा होता है।
1: जी जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हमने पहले ही बताया कि सामान्य दूरी और जो है एक सघन बागवानी, दोनों का अलग अलग आकलन है। मैं सामान्य दूरी की आकलन के बारे में, जब 2.5 से 3 मीटर की दूरी पे आप अगर इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पर पिलर, 1600 से 1700 पौधे इसमें लगाए जाते हैं
0: जी।
1: तो 1 एकड़ में जब हम इसका आकलन करते हैं तो करीब अगर अच्छे तरीके से आप करें तो ये आपका जो है जो खर्चा है वो कम ज्यादा हो सकता है। अनुमानन जो है आप 4 लाख से लेके करीब 5.5 लाख तक आप उस खर्चे को कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हम उत्पादन की बात करें तो ये सामान्यतः हमने बार बार बोला कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो ये इसका फ्लावरिंग होगा और मई के फर्स्ट वीक में इसका जो है आपको फल हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फल जो है आपको 5 से 6 बार में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये निरंतर फूल आते रहते हैं और उसमें आप जो 35 दिनों के बाद ये फूल परिपक्व होके फ्रूट बन जाते हैं, आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। ये करीब अक्टूबर नवंबर तक आप ये प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया से आप सामान्य रूप से करीब 3 साल का अगर बगान आपका हो जाता है, तो परिपक्व बगान है, 3 साल पुराना बगान है आपका और आपका आस्तर है, तो आप उससे करीब 5.5 से लेकर 7 टन तक जो है आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी भी मार्केट में इसका प्राइस करीब किसानों के खेत से 250 से लेकर 400 रुपये के जी तक होता है। तो आप अगर टन की बात करें तो 6000-7000 के जी अगर आपको होता है तो आप इसे अनुमानतः आप 300 रुपये के जी से भी अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं 12 लाख से लेकर आपको जो है 7 टन है तो 7 से 31 लाख तक आप इसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपके उत्पादन तकनीक और विशेषता इसमें कितना ध्यान देते हैं उस पर निर्भर करते हैं। अगर शुद्ध लाभ की करें, लाभ की बात करें तो 3 साल पुराने बगान से आप जो कहीं ना कहीं आपको 8 से लेकर 12 लाख रुपए तक का आमदनी हो सकता है। और साथ ही जो है आपके पौधे जो इससे कटिंग करते हैं, ट्रेनिंग फ्रूनिंग से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनको भी आप सेल करके जो है आप इससे इनकम कमा सकते हैं। निरंतर हमारे संपर्क में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं माध्यम से जो जुड़ के बिहार कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से जो है अपने आप को इसमें स्वावलंबी बना रहे हैं।
0: तो यहाँ पर पूरी जानकारी किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में जाना, इसके उत्पादन तकनीक के बारे में जाना और बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं आपको, क्या कुछ संभावनाएं हैं इसे लेकर और उन्नत प्रभेद क्या है, आप कैसे पोषक तत्व और उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं, लगाने का तरीका क्या है, तो ये सारी बातें जानकर ज़रूर आप एक सफल किसान बन सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर कुछ परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, हमारा जो ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com पर, उस पर अगर आप सवाल भेजते हैं तो हम अपने विशेषज्ञ से ज़रूर जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।

0: साहब आपका, डॉक्टर हेमंत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे इस विषय को लेकर। आगे और भी मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। आप सभी से दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं RJ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज की तरह आपके लिए बातें होती हैं खास खेती बाड़ी से जुड़ी। तो आज भी हम लेकर आए हैं, आज हम बात कर रहे हैं फलों की। और फलों की जहां तक बात होती है तो पपीते की बात करते हैं आज हम। जी हाँ, पपीते का बीज उत्पादन के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रणव पांडे। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: थैंक यू मैम।
6: डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें पपीते की और इसके बीज उत्पादन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पपीते का उपयोग क्या क्या है।
7: बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम आपने किया कि पपीते का सबसे पहले हम उपयोग जाने तब उसके विषय में उसका बीज कैसे उत्पादन किया जाए।
6: जी,
7: पपीते को सभी लोग सामान्यतया से ये जानते हैं कि हम फल के रूप में जो उपयोग करते हैं तो करते ही हैं, इसको सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं।
6: हाँ।
7: ये जो है फल के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में राइबोफ्लेविन और विटामिन ए, विटामिन सी और इसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक तत्व तो इसमें भरे हुए हैं।
6: जी,
7: और दूसरा, इससे अन्य प्रोडक्ट जैसे जैम वगैरह भी बनाया जाता है। इससे एक और बहुत काम का प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पपेन, वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है।
6: अच्छा।
7: स्पेशली इसी से वो एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। कच्चे पपीते भी लगभग जो 3 महीना पुराना हो जाता है पपीता फल, उसका जो है चिया लगा करके उसमें लेटेक्स बोलते हैं, वो जो निकलता है दूध बोलते हैं गांव वाले उसको, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको ड्राई

सुखा करके फिर ये पपेन बनाया जाता है और इस पपेन का सब उपयोग सबसे बड़े पैमाने पर मांस को जो है मुलायम बनाने के लिए जो मीट इंडस्ट्री है उसमें उपयोग किया जाता है कि कैसे हम उसको टेंडर बनाए रखें। च्युइंगम बनाने में इसका उपयोग करते हैं पपेन का, कॉस्मेटिक्स में उपयोग है, नेचुरल सिल्क को जो है डीगमिंग करने के लिए इसका उपयोग है।

0: खाने से लेकर टेक्सटाइल और गारमेंट्स जो सर्विसेज है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये कुछ नया जानने को मिला हमें। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा विषय है कि पपीते के बीज उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़े एक सवाल हमारे पास आते हैं कि पपीते में जो प्रवर्धन होता है तो उसमें वो प्रवर्धन बीज से ही क्यों किया जाता है?
1: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम। पपीता में अन्य प्रवर्धन जो है आसानी से संभव नहीं है। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो सोफिस्टिकेटेड लैब के लिए, जिसके लिए अच्छी लैब की जरूरत होती है, लेबोरेटरी की जरूरत होती है, वहाँ टिश्यू कल्चर प्लांट हम इसका उत्पादित कर सकते हैं। नहीं तो अन्य कोई और उपयोग और अन्य कोई और तरीका नहीं है जिससे हम उसका प्रवर्धन कर सके। इसीलिए पपीते के बीज का उत्पादन किया जाता है और सबसे आसानी से बीज उत्पादन करते हैं इसमें, और बीज से पपीते का हम लगभग 80% एज सच पपीता जैसे पिछली पीढ़ी का है दूसरी पीढ़ी में हम उसको पैदा कर लेते हैं। इसीलिए हम बीज का उपयोग इसमें करते हैं और बीज उत्पादन इसमें सस्ता है।
0: अच्छा जी सर, और कुछ बातें जो पपीते से जुड़ी हो जो हमारे किसान भाइयों को जानना हो उसके बारे में भी बताएं।
1: सबसे पहली बात तो पपीते का जो है, जब हम कुछ भी करने जाएंगे पपीते के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं लगना चाहिए जमीन पे जहाँ पपीता उगाया जाए। और हमारे खास तौर से बिहार में ये समस्या है, बिहार का जितने भी तराई रीजन है इसके सभी जगह पर पपीते के उत्पादन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पानी लगता है। पपीते की जड़ में अगर पानी लगा तो पपीता श्योर मर जाएगा। यह पानी के लिए बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, तो सबसे पहला जरूरत होती है जहाँ भी पपीता हम लगाएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो वहाँ पानी ना जमे किसी भी समय पूरे सीजन में जहाँ पपीता है। या तो उसको ऊंचा करके लगाएं, मेर से लगाएं। सभी श्रोतागण किसान भाई जो लोग भी हैं इस बात का जरूर ध्यान दें कि पानी ना लगने पाए
0: जी।
1: और दूसरी एक समस्या आती है कि थोड़ा सा बड़ा होने क्योंकि इसकी जड़ होती है कमजोर फाइबरस होती है, तो क्या होता है कि ये जो है तेज हवा चलने पर गिर जाता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि हवाओं से बचाने के लिए या वायुरोधक का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी हो कि हम कभी पता चला हल्का सा तूफान आया और हमारा खेत का पपीता कहीं गिर गया, तो गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो हमें इन दो बातों को, वायु और रोधक का भी किनारे किनारे उपयोग करना चाहिए और ऊंची जमीन पर इसको लगाना चाहिए। ये मूल बिंदु है जो ध्यान देने की जरूरत है पपीता के लिए
0: जी। तो कुछ बातें थी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया किसान भाइयों की, उनके जड़ में पानी जमा नहीं रहना चाहिए और ऊंचे जगह पर मेड़ बनाकर आप उसके पौधे लगा सकते हैं। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर साहब इसके रोपाई की, बात करें पौधों की, तो क्या हम हर मौसम में इसे रोप सकते हैं या फिर कोई स्पेशल कोई मौसम?
1: हाँ, ये क्या है, पपीता हम लगा सकते हैं लेकिन हमको ध्यान देना होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है। मुख्य मौसम इसको पपीता लगाने का जो है बरसात का समय माना जाता है, क्योंकि जहाँ पानी समस्या होती है तो नहीं है, तराई रीजन नहीं है, वहाँ बरसात में लगाने, बरसात में लगाने से पौधे सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। या फिर जो हम मार्च फरवरी मार्च में इसको लगा सकते हैं, जो और फिर एक समय है सितंबर अक्टूबर भी लगा सकते हैं, लेकिन सालों भर भी हम लगा सकते हैं सिर्फ हम पौधे को बचा पाए। तो इसके हिसाब से पॉजिटिव चीज है कि हम किसी भी समय इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी में
0: जी। और अगर बात करते हैं मिट्टी की, तो किस प्रकार की मिट्टी में हम इसकी रोपाई कर सकते हैं?
1: मिट्टी तो पपीते के लिए जो है हमें जैसे अन्य फसलों के लिए जरूरत पड़ती है उसी तरीके से सैंडलोम सॉइल तो अच्छी मानी जाती है इसके लिए
0: जी।
1: जो मिट्टी हमारे यहाँ है इन सब मिट्टियों में हम पपीता को उगा सकते हैं। पपीते को उगाने के लिए जो है ये है ध्यान देने की जरूरत कि वह उर्वर युक्त हो, जिसमें अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कार्बनिक खादे हैं वो ज्यादा मात्रा में हो, वहाँ ये अच्छे से जो है फल देता है और उसमें अच्छी इसकी बढ़वार होती है। और सैंडलोम सॉइल जो बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें हम सभी फसलों की खेती करते हैं, उसी वो सॉइल उसके लिए अच्छी मानी है। अगर यूज है तब भी हमको इसको उगा सकते हैं
0: जी। जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि, और अगर हम बिहार क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या कुछ संभावनाएं हैं पपीते को लेकर उसके बारे में?
1: जहाँ बिहार में है संभावनाएं, ऐसा नहीं है कि सब तराई रीजन ही है, बिहार में भी कुछ ऊंचे रीजन भी है जहां

0: हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। ऐसा में बिहार में उत्पादन कम होने का कारण यही था कि मेनली बाढ़ग्रस्त एरिया था। धीरे धीरे बाढ़ वाला स्थिति कम होती जा रही है, वो सीमित एरिया में है। लेकिन जिन एरिया में बाढ़ आता उधर हम पपीता ना उगाएं, उगाएं भी तो ऐसी जगह उगाएं जहां बाढ़ ना आ पाए, तो लेकिन हम उस एरिया में कोशिश करें ना उगाएं। बाढ़ग्रस्त एरिया जो नहीं है वहां हम पपीता उगा सकते हैं ऊंची जमीन पर और बहुत आसानी से उगा। किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो ऊंची जमीन पर उगाएं इसको।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है कि अगर हमारे किसान भाई जो है वो व्यापार के तौर पर इसकी खेती कर रहे हैं, तो क्या सही समय होता है जब इसकी वो तुड़ाई करें बाजार तक ले जाने के लिए?
0: अच्छा, सही समय, जी जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही, वो तो सीड उत्पादन का भी एक विषय होता है। इसमें क्या है कि हम यह देखें, जब पपीता का फल अपने साइज का तो जब पता नहीं चलता, कम मेच्योर हुआ तो पता कैसे चलेगा, क्या होता है बिल्कुल ग्रीन कलर में, हरे कलर का होता है
1: जी,
0: जब वह ग्रीन का रंग हल्का सा फीका होने लगे, अपना कलर जैसे ही वो बदलना शुरू करता है, यह समझ जाना चाहिए कि वो मेच्योर हो गया है।
1: अच्छा,
0: उसको कलर ब्रेक स्टेज बोलते हैं। उस समय ही हम हार्वेस्ट करके दूर तक ले जा सकते हैं पपीता, तब वो मेच्योर हो जाता है।
1: मतलब व्यापारिक तौर पर अगर हम तोड़ना चाह रहे हैं उसे, तो हल्के हरे रंग का वो जब हो जाए,
0: हाँ, जब हर रंग उसका जैसे ही बदलना शुरू होता है, तुरंत हम उसको तोड़ लें, हम उसको दूर तक फिर ले जा सकते हैं
1: जी। तो ये कुछ बातें थी पपीते से जुड़ी और इसके बीज उत्पादन से जुड़ी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, और आशा करते हैं किसान भाइयों के इससे बहुत कुछ आपकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम और FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों

और बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथीन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी

0: ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई

0: ऐसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों

को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गाँव में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है, तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है, तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियाँ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा, वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा। आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा। तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा, वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती, है तो काल्पनिक लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में

0: बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: মহামানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी।

प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुरबाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया।

0: माँ, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र।

0: शिशु हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ के कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा।

0: वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि
2: हेलो नमस्कार, हाजिर है आरजे अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और ये हैं पशुपालन विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
3: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के, और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर्य डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती है।
2: अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है, और अब ज़रूरी होता है कि हम जानें कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
3: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले के जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी, NGO के द्वारा भी, और कॉम्फेड के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें उनके श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इससे फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का, जिस नस्ल का, जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसिमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AMPM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है

0: तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि गर्भ जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40 से 50 प्रतिशत ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24 से 26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहाँ कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनेको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीका से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का कुछ कुछ गाय छोटी होती हैं और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है, ये पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावा भी कुछ सावधानियाँ हैं जो जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
0: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
0: और दूसरी चीज़ है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे ज़रूरी है समय, और तीसरी चीज़ है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो कैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर होस्टिन फ्रीजियन का

0: पेमेंट डालेंगे तो कभी कभी डिस्टोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है, और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं।
0: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी, ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है, दूसरी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जो जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहाँ हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहाँ भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है, और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर इसे एक रोज़गार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटा।

0: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं, और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है, और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं, और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें, और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और

आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखे। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखे। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई

0: ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी, जहां हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में। कई बार हमारे किसान भाई बहन उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, और अब बहुत जरूरी है कि हमारे किसान भाई बहनों तक ये बात पहुंचे कि उर्वरकों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि अब हमें नैनो उर्वरक की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम

0: देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फॉस्फरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है, तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी जो भी हमारे खाद होते हैं तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी। जी
1: तो मैम अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
0: जी अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
1: जी तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफ्को का नैनो यूरिया या इफ्को का नैनो डीएपी वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या ICRO वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसकी फ्यूचर की जो परिदृश्य है जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि है, जलवायु अनुकूल कृषि है या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके के पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1 से 5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नैनो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक

0: तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर उन अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था। तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीक है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है। नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे, लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा। जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करें तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद हूँ आपको।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि।

0: विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबूसा, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
0: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
1: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूँकि वर्षा भी होती रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
0: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
1: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखे तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं, जिस खेत में मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र देते हैं, उर्वरक जो देते हैं उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है। और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब

वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा फिर बढ़ेगा अपना जीवन चक्र पूरा करेगा तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजीम है, कार्बेंडाजीम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेजिटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में तो खर पतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है, वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पे कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप

0: उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है। तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और इसमें जो है और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है बैगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जो हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं। तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक वो सुगंध निकालता है। तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड सूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड सूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तो तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैंगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़

के फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते दूसरी जो भिंडी के

ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलबुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है, घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुंसकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे, कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं ये येलो वेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सिजाम 25WG इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सिजाम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सिजाम 25WG एक टारा के नाम से भी आता है, एक टारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी 0.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो येलो वेन मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं जिसको आप लोग लोकल भाषा में किकूड़ना कहते हैं, तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है। और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्सिजाम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इसे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई को जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से

0: उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो जो शिशु है, कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है ये तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए। नीम बेच से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को, खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना?
4: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, हाय कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया हो।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान

27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षति ग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से
संपर्क करें और

0: पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखे। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखे और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: and self. Teacher's observations to be mentioned in the lines given. Other comments are also to be mentioned in the lines given. Chapter 2 ends here.
1: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Muhammad Faizan Khan. Production assistant, Mukul Singh. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT. New
2: नाटक देखो नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो नाटक देखो नाटक देखो आओ
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं हाँ या ना
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे हाँ या ना
3: हाँ हाँ इसे ही कहते हैं खसरा जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई
6: समस्या तो गंभीर है चाचा पर इसका सरल है उपाय
7: क्या क्या क्या
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है
7: अच्छा
6: तो सबकी समझ में आ गया ना खसरा रुबेला बीमारी है घातक आइए इसे मिटाए जड़ तक
4: टीकू तेरे कितने दोस्त है
6: टीनू मीनू राजू पिन्नी और
4: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ
6: 11 दोस्त
4: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं
6: अच्छा इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी
4: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं
6: लेकिन ऐसा क्यों
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं
6: टीकी तो इसका हल क्या है
4: चलो बताती हूँ बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी UN पर रजिस्टर कराओ कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ
6: याद रखो आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही
9: अब किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर तो उसके लिए होता है जैव
8: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं जैसे कि मालदा हुआ बम्बई हुआ उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहें उन्नत कृषि
13: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है
14: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आजकल आपने बहुत सुना होगा कि मखाना की खेती करनी चाहिए और मखाना की खेती से बहुत लाभ मिलता है। तो वो लाभ कैसे मिलता है? तो उसमें एक सबसे अच्छा पहलू ये भी होता है कि मखाना के प्रसंस्करण से भी आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं, कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रसंस्करण क्या है, इसके कितने चरण होते हैं, आइए सभी के बारे में विस्तार से समझते हैं डॉक्टर पंकज कुमार से। सर, आप हैं आणविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट बीएयू सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: तो सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मखाना का प्रसंस्करण क्यों जरूरी है?
1: मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मखाना का प्रसंस्करण जो है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही कठिन कार्य है। अब ये कठिन कार्य क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम लोग ने पिछले बार भी बातचीत किया था कि हार्वेस्टिंग करके लाना और उसके बाद प्रसंस्करण के लिए आगे की विधि व्यवस्था को करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मखाना का बीज इतना हार्ड होता है, उनका बीज इतना कड़ा होता है जिसको मतलब जिससे लावा निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए इसके कई चरण होते हैं, तो इनका प्रसंस्करण जो है बहुत कठिन होता है। वर्तमान समय में आज भी जो है कि आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की बहुत भारी कमी देखी गई है। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ जो है यंत्र बनाए गए हैं, लेकिन वह भी जो है 100% जो है अभी तक फार्मर्स किसान तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें कि हमारे विश्वविद्यालय बहुत इसके लिए तत्पर हैं और किसानों को मदद की तौर पे इसकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मशीन के द्वारा भी अगर देखा जाए तो मशीन की दक्षता, उसमें करने की कैपेबिलिटी जो है वो कितनी है, कितने समय में कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज है कि कई तरह के इसमें बीज होते हैं, तो उनके प्रसंस्करण में बीजों का आकार को लेके जो है काफ़ी समस्याएं होती है। तो मखाना प्रसंस्करण में आप देखेंगे मैम कि कई बिंदु हैं और उनसे मशीनों के से पहले जो है इसको बीज को सुखाया जाता है और सुखाने में भी आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सूखने से भी हमें लावा की मात्रा घट जाती है, कम सूखने से लावा अच्छा नहीं बन पाता है। तो ये सब सारी समस्याएं प्रसंस्करण में होती हैं।
0: सर, अभी आप बीजों के बारे में, विभिन्न बीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो बीजों का क्या श्रेणीकरण करना ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है मैम ये, क्योंकि देखिए अब मखाना में कहा जाता है कि बीज का जो आकार है वो 4 mm से लेके 14 mm तक वेरी करता है, मतलब अंतर होता है। तो देखा जाए तो 6 से 8 प्रकार का जो है इसमें आकार होते हैं और हर आकार के लिए अगर आप जहाँ पे प्रसंस्करण होता है वहाँ पे देखेंगे जो हमारे किसान भाई हैं या जो इनको लावा निकालने की प्रक्रिया वो चलनी हमारे भाई बंधु समझते होंगे, तो कई आकार के चलनी होते हैं। तो वो प्रसंस्करण से पहले बीजों का चलनी के थ्रू से एक जैसे आकार को अलग अलग करना आवश्यक है। अब सोचा जाए तो इसमें भी वैज्ञानिक सोच है, क्यों अलग अलग किया जाए, क्यों नहीं सबको, जब हमको सबसे लावा ही निकालना है तो क्यों नहीं सबको एक साथ ही भूंज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो जो बड़े आकार का बीज है वो ज़्यादा सरफेस एरिया जो है अपने जो कढ़ाई में हो लेगा और छोटे आकार को नहीं मिल पाएगा, तो कुछ लावा जो है बनेंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए बीजों का श्रेणीकरण करना बहुत आवश्यक है ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में अपने बीज से लावा को निकाल पाए। तो जैसा कि हमने बताया कि बीजों में जो आकार है वो 6 से 8 ग्रेड तक विभक्त किया जाता, मतलब बायफर्केट किया जाता है, ताकि उसमें यूनिफॉर्म जो सामान्यतः हीट जो है

0: ताप जो है उस तक पहुंच पाए, क्योंकि बीजों को जो भूनने के लिए पहले उसमें थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप किसान भाई अगर देखेंगे जहां बीज से लावा बनाया जाता है वहां 6 कढ़ाई रखा जाता है, 6 कढ़ाई में भी मतलब आप देखेंगे एक आकार के बीज के लगभग 10-15 दाना ही वो लोग रखते हैं, और हर 1 से 2 मिनट के अंतराल में कढ़ाई से इस कढ़ाई से उस कढ़ाई में, उस कढ़ाई से इस कढ़ाई में करते करते लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि ज़्यादा हीट भी ना हो और कम हीट भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो उसका मॉइस्चर जो है वो जो नमी कहते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा हीट करने से क्या होगा, सॉरी कम हीट करने से क्या होगा कि उसमें नमी रह जाएगी तो लावा नहीं बन पाएगा। तो जो ये तापमान का जो है, मैं बताना चाहूँगा कि हर कढ़ाई में जो है कि लगभग 1 से 1 मिनट से 2 मिनट रखते हैं, और ये तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस से लेके 335 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं जो अभी थोड़ा देर पहले ये बताने का कोशिश कर रहा था कि मशीन यही टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मशीन अपना काम सही से नहीं करके और लावा का जो निकलता है वो थोड़ा सा कम निकल पाता है मशीन से। लेकिन जो हमारे किसान भाई जो खुद से प्रोसेसिंग करते हैं वो इस तापमान को कढ़ाई टू कढ़ाई करने के कारण जो है वो कर पाते हैं, और उसमें जो लास्ट वाला कढ़ाई से निकाल करके उसको एक थापा बोलता है, थापी बोलते हैं, जो कि लकड़ी का बना होता है, उस पर रखते हैं और उससे मारते हैं और अचानक से जो है वो थापी से लावा बन के निकलता है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि बीजों का श्रेणीबद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। आपको अगर अच्छे लावा निकालने हैं बीजों से तो आपको श्रेणीबद्ध करना ही होगा।
1: जी सर। सर टेम्परिंग क्या होता है?
0: बिल्कुल सही सवाल है मैम। टेम्परिंग जो है ये प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, कमरे में सामान्यतः जो है 48 से 72 घंटे तक बीजों को रखते हैं, जैसे कि प्री हीट करके, क्या थोड़ा सा तापमान देके बीजों को सुखाने का काम करते हैं, और या भंडारण किया जाता है। यह सर्वाधिक जो है कि कहा जाए तो ये जो लावा निकालने से पहले का काम होता है। और ये टेम्परिंग क्यों किया जाता है, बिल्कुल सही है कि ये तो मतलब बीजों से लावा निकालने के, इनके पीछे वैज्ञानिक कारण, आप देखेंगे मखाना का जो सीड होता है, जो बीज होता है बहुत ही हार्ड होता है, तो अंदर का जो पेरिस्पर्म होता है वो क्या करता है कि उससे अलग हो जाता है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे कि जैसे कि आम की गुठली को देखे होंगे कि थोड़ा सा वो जब सूख जाता है तो हिलाएंगे तो एक ढबढब का आवाज़ आएगा, तो इससे क्या होता है वो वाल को छोड़ दिया है लेकिन उसमें नमी का मात्रा बना हुआ, तो उस नमी के मात्रा को बनाए रखना तथा उसके जो सीड का जो बाहरी कवच है उससे थोड़ा अलग हो जाए ताकि जब उस पर थापी पड़े तो वो सही से जो है हीट के कारण जो है बड़ा लावा बन के आए। और देखा जाए तो जितना भी मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, बड़े लावा का जो दाम होता है वो जो दर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, छोटे लावा का जो है दर कम होता है, तो इसी चीज़ को टेम्परिंग कहा जाता है।
1: सर मखाना की रोस्टिंग भी की जाती है, तो इस प्रोसेस को आप हमें विस्तार से समझाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, रोस्टिंग जो है टेम्परिंग के बाद का प्रोसेस कहा जाता है। इसमें भुने हुए बीजों को लगभग 200 से 300 ग्राम तक के लॉट को लगभग 230 डिग्री से 335 डिग्री सेल्सियस पर खुले कढ़ाई में आग पर भून लिया जाता है। जब बीज से कोई कर्कश का ध्वनि सुनाई देती है तब इसको 5 से 7 बीजों को निकाल करके जो है लकड़ी के जो वही थापी जिसको बोलते हैं कठोर सतह पे रखा जाता है और उससे बने हथौड़े से उस पे मारा जाता है। जोर जोर से मारने के कारण बीज का आवरण जो है वो टूट जाता है और अचानक दबाव पड़ने के कारण लावा बाहर निकल के आता है, जो कि मखाना का कर्नल भी कहा जाता है। बीज का जो खाने का हिस्सा होता है उसको, जो ऐसा मैंने अभी बताया पेरिस्पर्म जो है वो लावा बन के निकल के आता है, तो यही है रोस्टिंग का प्रोसेस मैम।
1: जी सर। सर पॉलिशिंग क्या होता है और क्यों करते हैं पॉलिशिंग?
0: बिल्कुल मैम, देखिए पॉलिशिंग तो ऐसे ही शब्द से ही लगता है कि पॉलिश करने की प्रक्रिया है।

पॉलिशिंग का मतलब है कि जब एक्चुअली आप देखे होंगे कि मखाना का, या हमारे किसान भाई देखे होंगे, मखाना का बीज जो देखने में लगता है वो काला लगता है, इसलिए इसको कोई ब्लैक डायमंड भी कहता है। और जब उस बीज से मखाना निकलता है तो वो पूरी तरह से वाइट होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ब्रांड जो है उस पर चिपका हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा उजलापन में थोड़ा सा

0: रहता जो सीट से निकलता है वो हट जाता है, और दूसरी तरह से क्या है, नमी भी उसका चला जाता है, और नमी के जाने से जो है मखाना चमकने में बहुत ज़्यादा अधिक सफ़ेदी के कारण चमकने लगता है। तो इससे जो है पॉलिशिंग करने से क्या है, आपके मखाना का रेट जो है वो बाज़ार में उच्च दाम में मिलता है, यही कारण है कि लोग पॉलिशिंग करते हैं इसका।
1: जी सर। सर अब आप हमें ये बताइए कि मखाना लावा कितने प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग दामों में क्यों मिलते हैं?
0: जी जी, देखा जाए मैम तो मखाना लावा का प्रकार ही मखाना का सही मूल्य का जो है निर्धारण करता है। जैसे कि मखाना के लावा मुख्यतः बाज़ार में जाएंगे तो तीन तरह के आपको मिलेंगे, और उसको जनरली जो हमारे किसान भाई हैं सूता कहते हैं, जिसको MMB लोग साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं। तो 6 सूता वाला मतलब जो बड़े आकार का मखाना है, ठीक है, जिसको लावा भी बोलते हैं, वो आपको मार्केट में अभी के समय में, हालांकि इसका दाम आगे बढ़ते घटते रहता है, तो सबसे उच्च दाम में लावा मिलता है। उससे जो छोटा होता है, जो 4 mm से कम के होते हैं, 2 से 3 mm या 4 mm तक के जो होते हैं, उसको मुर्रा बोला जाता है। मतलब उसमें थोड़ा सा आपको बड़े बड़े लावा भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे। उसके बाद सबसे छोटा वाला जो होता है, जो मार्केट में नहीं के बराबर ही मिलते हैं, लेकिन वो लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं उनके यहाँ बच जाते हैं, उसको थुर्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि अगर आप सबको मिला दें तो एक चौथा प्रकार बोल सकते हैं, जिसको मिक्स बोलते हैं। इस मिक्स में आपको सब तरह के लावा मिल जाएंगे, जिसके हिसाब से उनका रेट निर्धारण होता है।
1: जी सर। तो सर अगर हम संक्षिप्त में समझना चाहें मखाना प्रसंस्करण को, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैम इसमें देखा जाए तो सबसे पहले मखाना का जो बीज है उसको लाते हैं लोग, उसके बाद उनको गुनी गुनी धूप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप में, तो इसलिए मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे तक आप सुखाते हैं उसको, उसका साफ सफाई करने के बाद सुखा के। और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम इसमें 30-35% नमी बनी रहे, और धूप में सूखने के बाद जो है इसको प्री हीटिंग के लिए, जिसको हम लोग टेम्परिंग के भी कहते हैं, प्री हीटिंग के लिए इसको लेके जाते हैं, और प्री हीटिंग के बाद इसमें 48 से 72 घंटे तक रखते हैं। फिर इसको जो है आप मखाना के बीज को श्रेणीबद्ध कर लीजिए, श्रेणीबद्ध करने के बाद इनका जो है आप जो है क्या रोस्टिंग के लिए आप लेके जाइए। रोस्टिंग में आप विभिन्न तरह के ग्रेडिंग का जो है लगभग 300 ग्राम के मखाना का लॉट बनाइए, और उस तरह से उसमें 10 पीस बीजों को लेके आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर जब आपका लावा बन जाता है तो आप उसका पॉलिशिंग करिए, पॉलिशिंग करने के बाद भी आप उसको ग्रेडिंग करिए, लावा का भी ग्रेडिंग करिए। ऐसा नहीं है कि जो बड़े आकार का सारे मखाना का जो लावा होगा वो बड़ा ही होगा, तो इसलिए आप उसके मखाना के लावा का भी ग्रेडिंग करिए। 6 mm वाले को अलग रखिए, या जो 6 सूता वाले को अलग रखिए, 5 सूता वाला, 4 सूता वाला को अलग रखिए, और इस तरह से पैकेजिंग करिए, उसमें ब्रांड लगाइए, और आप उसको सेल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर। तो इस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। अगर आप मखाना की खेती करते हैं तो प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दें, आपका मुनाफा कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें दीजिए अभी के लिए इजाजत, उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
5: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
7: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम

0: ना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, अब हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं, वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत कर

0: जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। मैम है BAC सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।

0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
1: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुंचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का, इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85 से 90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और बाजार भेजते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं। इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
0: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
1: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं, जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए इस पर बैन लगाया गया है, कैल्शियम कार्बाइड पे।
0: लेकिन मैम, अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना खतरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
1: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है, जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 PPM को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है, क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
0: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
1: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन रैपेनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है। वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 PPM की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90 से 95% रखी जाती है, जिससे फल 24 से 48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है।

0: नमी मिलने पर इनमें इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं, तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें। इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है। तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है, जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
1: तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से, कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम, आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?

0: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से

2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? बहुत मुद्दत हो गई आपसे बात किए हुए। ना तो हमने कोई कहानी कही और ना ही कोई कविता कही। अब आपके बिना मन नहीं लगता। मन करता है कि आपके साथ बहुत देर तक बस बातें करते रहें, गपियाते रहें, बतियाते रहें। तो आज आपके साथ बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि वे कौन हैं। वे हैं आस्तिक सिन्हा। तो क्यों ना बच्चों, मैं आपकी तरफ से उनका स्वागत कर दूं। आस्तिक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं की तरफ से।
2: धन्यवाद।
1: अच्छा आस्तिक, ये बताइए, कभी आपने आम का बगीचा देखा है?
2: बिल्कुल।
1: आम के बगीचे में किसके पेड़ होते हैं?
2: आम के।
1: मैं टेस्ट कर रही थी आस्तिक को कि आस्तिक क्या जवाब देते हैं। भाई, आम के बगीचे में तो आम के पेड़ ही होंगे। तो आस्तिक हैं चतुर समझदार आपकी तरह। बच्चे चतुर और समझदार होते हैं और उनकी चतुराई और समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। किसे? बड़ों को। तो आस्तिक आम के बगीचे में होते हैं, आम के पेड़। ठीक है, तो कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े हैं?
2: नहीं।
1: नहीं। और अगर कभी कभी ऐसा लगे आपको कि पेड़ बहुत नीचा है और आप आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो क्या कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश की है?
2: हाँ।
1: ऐसी ही एक कहानी है हमारे पास आज सभी बच्चों के लिए। तो बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो लीजिए, हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है आम की कहानी। आस्तिक तैयार है आम की कहानी सुनने के लिए?
2: बिल्कुल।
1: तो हुआ यूं कि झुमकी नाम की एक बच्ची थी। झुमकी आम के बगीचे में थी, सैर कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पता है आस्तिक उस पेड़ पर क्या था?
2: नहीं।
1: उस पेड़ पर लटका हुआ था एक पका हुआ आम। जब झुमकी ने आम देखा तो उसने सोचा अपने मन में कि ये आम तो मुझे ले लेना चाहिए। तभी वहां कौन आया? तभी वहां झुमकी का भाई आया, मिदना। मिदना के हाथ में थी गुलेल। झुमकी ने मिदना से कहा, भैया वो देखो आम, मुझे वो आम चाहिए, मुझे आम ला दो ना। तो मिदना ने कहा, ठीक है झुमकी, मैं ला देता हूँ। लेकिन कैसे लाएंगे? झुमकी ने पूछा। तो मिदना ने कहा कि मेरे पास गुलेल है, मैं गुलेल से निशाना लगाऊंगा आम पर और आम खट से टूट जाएगा, और जब आम टूट जाएगा तो तुम ले लेना। मिदना की ये बात सुनकर झुमकी बहुत खुश हो गई और ताली बजाकर हंसने लगी। उसके बाद आस्तिक पता है क्या हुआ?
2: नहीं।
1: उसके बाद हुआ कि मिदना ने गुलेल पर लगाया एक पत्थर, अपनी एक आंख बंद की, गुलेल का धागा खींचा और आम की दिशा में छोड़ दिया। खटा की आवाज हुई और निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। बताओ आस्तिक, निशाना कहाँ लगा था?
2: आम की डंडी पे।
1: जिस डाल पर आम लटका हुआ था, निशाना वहीं लगा और खट की आवाज से आम टूट गया। लेकिन वहां पर एक

0: काला कौवा भी था जो ठीक उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ था और देख रहा था कि कब ये आम टूटे और कब वह आम को ले जाए। तो अच्छा आस्तिक ये बताओ कि क्या आम झुमकी को मिलेगा या फिर आम कौवा ले जाएगा?
1: कौवा ले जाएगा।
0: बिल्कुल सही। जैसे ही आम टूटा वैसे ही कौवा आम की तरफ लपका और उसने अपनी चोंच में आम की जो ऊपर छोटी सी डंडी होती है उसे पकड़ लिया और वह उड़ चला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। अब बताओ ये मुसीबत क्या हो सकती है?
1: आगे कोई शिकारी है।
0: हाँ ये भी हो सकता है। और क्या मुसीबत हो सकती है?
1: और आगे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो।
0: पेड़ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं और कौवे ने मधुमक्खी का वह छत्ता नहीं देखा और वह टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो सारी मधुमक्खियां भिन भिन भिन भिन करती करती कौवे से चिपट गई और उसे काटने लगी क्योंकि कौवे ने उनका घर तोड़ दिया था। अब बताइए आस्तिक, जब मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया तो क्या ये सही किया या गलत किया?
1: सही किया।
0: क्यों सही किया?
1: क्योंकि कौवे ने उसका घर तोड़ दिया।
0: मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत से अपना मधुमक्खी का छत्ता बनाया, अपना घर बनाया और कौवे ने देखा ही नहीं और सीधा भिड़ गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो मधुमक्खियों का छत्ता यानी उनका घर टूट गया। इस वजह से मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया। जब मधुमक्खी ने कौवे को काटा तो उसे बहुत जोर का दर्द हुआ और वह क्वां क्वां करके उसने मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला तो आज तक क्या हुआ होगा?
1: आम गिर गया होगा।
0: बिल्कुल सही। आम उसकी चोंच से गिर गया और सोचो कहां पहुंचा होगा?
1: जमीन पे।
0: आम जमीन पर नहीं पहुंचा। आम दरअसल गिर गया एक घोंसले में जो उसी पेड़ पर था और जैसे ही आम उस घोंसले में गिरा, पता है आस्तिक उस पेड़ पर कौन थी?
1: नहीं।
0: चिड़िया तो नहीं थी, उस पेड़ पर बैठी हुई थी गिलहरियां। एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन की तीन गिलहरियां वहां थी और आम को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। तो वो ऐसे क्यों देख रही थी आस्तिक?
1: क्योंकि उन्हें भूख लगाई होगी।
0: हाँ आस्तिक, ये तो हो सकता है कि गिलहरियों को भूख लगी हो और वे आम को ललचाई नजरों से देख रही हो। लेकिन तभी एक और गिलहरी थी, खूब चतुर सयानी। उसने झट से घोंसले में से वह आम ले लिया और जैसे ही उसने वह आम लिया और जैसे ही उसने उसे खाना शुरू किया, इससे पहले कि वह उसे खा पाती, घोंसले में जो अंडे थे उसमें से काऊ काऊ काऊ करते करते बहुत सारे बच्चे चीखे। पता है आस्तिक, ये तो कौवे का घोंसला था और अंडे भी उसी के थे। अंडे में से उसके बच्चे निकले और वे काऊ काऊ करने लगे। अचानक से ये काऊ काऊ की आवाज सुनकर गिलहरी डर गई और जब गिलहरी डरी तो उसका मुंह खुला और जब उसका मुंह खुला तो आस्तिक आगे क्या हुआ होगा?
1: आम नीचे गिर गया होगा।
0: आम नीचे गिरा और ये जा पहुंचा एक आदमी की पगड़ी में। अच्छा ये बताओ आस्तिक, ये आदमी कौन होगा?
1: कोई किसान
0: या फिर आम के बगीचे का मालिक। इसका नाम है सोहनलाल। सोहनलाल खूब मेहनत करते हैं, आम के बगीचों की देखभाल करते हैं, एक एक पत्ते को सहलाते हैं बहुत प्यार से। तो इसलिए खूब मेहनत करके वे थक गए थे और उसी आम के पेड़ के नीचे वे सुस्ताने लगे। अब सुस्ताना क्या था, ये तो उन्हें नींद ही आ गई। इतनी गहरी नींद आई आस्तिक उन्हें कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आम उनकी पगड़ी में गिर गया। और पता है आस्तिक, यहाँ पर दो प्राणी और थे। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन हो सकता है?
1: खरगोश।
0: दो खरगोश बहुत गौर से सोहनलाल को देख रहे

0: थे। सोहनलाल को नहीं, उसकी पगड़ी में रखे हुए आम को देख रहे थे ललचाई नजरों से। तब तक कौआ भी आ गया था और पेड़ के ऊपर से गिलहरियां भी सोहनलाल की पगड़ी में झांक रही थी। अब इतने सारे लोग, इतने सारे प्राणी, सबकी नजर किस पर थी?
1: आम पर।
0: सबने सोचा कि आम तो हम ले ही लेंगे। तब तक झुमकी भी सोहनलाल के पास आ गई थी। उन्होंने झट से सोहनलाल की पगड़ी में से आम उठाया और खुशी के मारे वे चिल्लाने लगी, मिल गया आम, मिल गया आम। झुमकी की यह खुशी देखकर मिदना को भी बहुत खुशी हुई और उसने अपने गुलेल की तरफ देखा और कहा, शाबाश गुलेल, तुमने खूब निशाना लगाया और झुमकी को मिल गया उसका प्यारा रसीला मीठा सा आम। झुमकी के हाथ में था आम और पेड़ पर सारे जो प्राणी बैठे हुए थे उसमें कौन कौन है? कौवा है, गिलहरी है, कौवे के बच्चे हैं और नीचे जमीन पर जो बैठे हुए हैं खरगोश, सब के सब झुमकी की तरफ देख रहे थे क्योंकि झुमकी के हाथ में था मीठा रसीला प्यारा सा आम। झुमकी ने आम धोया और उसे अपने भाई मिदना के साथ बांटकर खाया। लेकिन पता है आसिक, झुमकी ने बाकी सब प्राणियों को भी आम के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए। तो झुमकी ने खरगोश के साथ, गिलहरियों के साथ, कौवे के साथ और कौवे के बच्चों के साथ मिलकर आम खाया। तो बच्चों बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी?
1: बहुत मजेदार थी।
0: मजा आया?
1: हाँ।
0: अच्छा आस्तिक, ये बताओ कहानी में ऐसे कौन से मोड़ थे जहाँ से कहानी बदल गई? हमें जैसा लगा कि कहानी तो ऐसे घटी होगी, लेकिन पता चलता है कहानी में तो ये हुआ ही नहीं। तो आस्तिक बता सकते हैं कि कहानी ने कहाँ से मोड़ लेना शुरू किया?
1: हाँ, कहानी ने वहाँ से मोड़ लेना शुरू करा जब कौवा छत्ते से टकरा जाता है।
0: शाबाश। और उसके बाद जब गिलहरी आम को पकड़ लेती है, उसके बाद कौन सा मोड़ आता है?
1: उसके बाद अंडे में से चूजे बाहर आके चिल्लाने लगते हैं और गिलहरी डर जाती है।
0: और जिसे आप चूजे कह रहे हैं, ये बच्चे किसके हैं?
1: कौवे के।
0: कौवे के बच्चे। और कौवे के बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? कुहू कुहू कहेंगे या फिर काव काव कहेंगे?
1: काव काव कहेंगे।
0: अगर अचानक आपके कान के पास यही आवाज आए, काव काव काव, तो आप भी डर जाएंगे ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: ऐसे ही गिलहरी भी डर गई थी। अब जब गिलहरी डर गई तो कहानी में आया तीसरा मोड़ और गिलहरी के मुंह से छूट गया आम और जा गिरा सोहनलाल की पगड़ी में, जहां से झुमकी ने वह आम उठा लिया। तो ये थी हमारी आम की कहानी। अच्छा आस्तिक, ये बता सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक या इस कहानी का नाम आम की कहानी क्यों रखा गया होगा?
1: आम इतनी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार झुमकी के हाथ में आ ही गया।
0: हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आम के आसपास ही तो घूम रही है। झुमकी ने आम को देखा और मिदना ने आम पर निशाना लगाया, कौवे ने आम पकड़ा, कौवे के मुंह से आम छूट गया तो गिलहरी ने पकड़ा, गिलहरी के मुंह से आम छूट गया तो गिरा सोहनलाल की पगड़ी में और फिर झुमकी ने वह आम उठा लिया। क्या आस्तिक, इस कहानी का कोई और नाम भी हो सकता है?
1: हाँ,
0: बताओ तो जरा।
1: आम की मुसीबतें।
0: आम की मुसीबतें, झुमकी का आम, कौवे की चतुराई, गिलहरी का रोना और मिदना का निशाना, इस कहानी का कोई भी नाम हो सकता है। जब हम किसी कहानी का कोई नाम रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। या तो कहानी का नाम किसी एक खास व्यक्ति पर हो सकता है, किसी खास चीज पर हो सकता है या फिर किसी घटना पर हो सकता है। इस कहानी में हमने कहानी का नाम किस पर रखा है? क्या किसी व्यक्ति के नाम पर रखा है या फिर किसी चीज के नाम पर रखा है?
1: हमने कहानी का शीर्षक किसी चीज के नाम पर रखा है।
0: और वह चीज क्या है?
1: आम।
0: क्योंकि आम के इर्द गिर्द ही कहानी की पूरी घटनाएं घूमती हैं, इसलिए हमारे केंद्र में है आम। इसलिए हमने कहानी का शीर्षक रख दिया आम की कहानी।

0: बच्चों ये कहानी आप पढ़ सकते हैं रिमझिम में, और ये कहानी आप पढ़ सकते हैं एनबीटी द्वारा प्रकाशित आम की कहानी में भी। चित्र कथा है, यानी इसमें चित्रों के सहारे ही कहानी आगे बढ़ती है। मैंने तो अपने एक अलग अंदाज से कहानी सुनाई, लेकिन बच्चों आप इसी चित्र कथा के आधार पर अपनी कहानी बना सकते हैं, अपनी नई कहानी बना सकते हैं, और अपनी कहानी का कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। आप चाहें तो लड़की को कोई अपना नाम दे सकते हैं, जैसे बबीता, जैसे मुनिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। और आप लड़के को भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दिया मिदना। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मनोज रख सकते हैं, असलम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। और तो और आप कौवे का, गिलहरी का भी नाम रख सकते हैं, चाहें तो खरगोश के नाम भी रख दीजिएगा। तो नाम रखने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप नाम के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहानी का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, आज तक आपने और सभी बच्चों ने ये कहानी सुनी, ध्यान से सुनी होगी मुझे उम्मीद है। तो आज तक ये बताइए कि कहानी में सबसे पहले क्या आया?
1: कहानी में सबसे पहले लड़की आई।
0: और लड़की ने क्या देखा था?
1: लड़की ने आम देखा।
0: उसके बाद क्या आया?
1: उसके बाद कौवा आया।
0: ठीक है, और कौवा तो उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था, लेकिन कौवे ने आम को पकड़ा, उससे पहले क्या आया?
1: उससे पहले मिदना आया।
0: और मिदना के हाथ में क्या था?
1: गुलेल।
0: तो लड़की के बाद आई गुलेल, और गुलेल से टूटा आम। उसके बाद कौन आया?
1: गुलेल के बाद कौवा आया।
0: और कौवे के बाद कौन आया?
1: कौवे के बाद छत्ता आया।
0: छत्ते के बाद कौन आया?
1: छत्ते के बाद घोंसला आया।
0: और घोंसले के बाद कौन आया?
1: गिलहरी।
0: और गिलहरी के बाद कौन आया?
1: सोहनलाल।
0: सोहनलाल या सोहनलाल की पगड़ी?
1: सोहनलाल की पगड़ी।
0: पगड़ी सोहनलाल ने पहनी हुई थी, तो सबसे आखिर में आए सोहनलाल। और उसके बाद कहानी समाप्त होती है आम के ऊपर। तो कहानी शुरू हुई थी आम पर और खत्म हुई आम पर। लड़की ने, यानी कि झुमकी ने, एक आम देखा, उसने सोचा कि मुझे ये आम चाहिए ही चाहिए, और अंत में उसे आम मिल गया। अच्छा, आज तक ये बताइए कि कहानी में इतने सारे पात्र हैं, कहानी में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, तो क्या चीज किसके हाथ में थी, कौन सी चीज कहाँ ऊपर थी, और कौन सी चीज किसके अंदर थी? तो आप बता पाएंगे कहानी को याद करते हुए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए कि गुलेल कहाँ थी?
1: गुलेल मिदना के हाथ में।
0: शाबाश। और घोंसला कहाँ था?
1: पेड़ के ऊपर।
0: वेरी गुड। और कौवे के बच्चे कहाँ थे?
1: घोंसले में।
0: शाबाश। और पेड़ के ऊपर कौन था?
1: गिलहरी।
0: और सोहनलाल के सिर पर क्या था?
1: पगड़ी।
0: तो हमने ये देखा कि कहानी में बहुत सारी चीजें आई हैं। गुलेल आई है, घोंसला आया है, घोंसले में बैठे हुए बच्चे आए हैं, और गिलहरी आई है, और सोहनलाल अपनी पगड़ी के साथ आए हैं। तो कोई चीज कहीं पर है तो और कोई चीज कहीं पर है। आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा, अब आपको करना क्या है? आपको अपनी कहानी बनानी है, और आप चाहें तो अपनी कहानी के चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाना, उनमें रंग भरना बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कहानी बनाइए और हमारे पास लिखकर भेज दीजिए। और जब आप कहानी बनाएंगे तो तस्वीर बनाना मत भूलिएगा, और जब तस्वीर आपने बना ली है तो उसमें रंग भरना मत भूलिएगा। हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है आपका और आपकी बनाई हुई कहानियों का और तस्वीरों का। तो बच्चों, हमने इस कहानी में ये देखा था कि एक आम को कोई ना कोई ले जा रहा था, कभी कौवा ले गया तो कभी गिलहरी ले गई, है ना आस्तिक? ऐसा ही कुछ नानी के साथ हुआ, नानी की भी कोई चीज कोई चुरा कर ले गया था। आपको कोई गीत याद आ रहा है आस्तिक?
1: हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है।
0: तो क्यों ना आप वह गीत सुना ही दीजिए।
1: ठीक है।

0: क्यों कहा गया है? क्या उनके मुंह पर कुछ काला काला लगा था? सोचो आस्तिक और सोच कर बताना कि आखिर चोरों को काला क्यों कहा गया है? काले चोर ले गए?
1: उन्हें काला इसलिए कहा होगा कि वो दिखने में थोड़े काले हों?
0: हाँ, हो सकता है कि वे सांवले रंग के हों, इसलिए उन्हें काले चोर कह दिया हो, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि आप इस कहानी में जो अलग अलग पात्र आए हैं, आप उन्हें क्या नाम देना पसंद करेंगे? देखिए, शुरू में जब हमने कहानी कही थी तो हमने अलग अलग पात्रों को अपने हिसाब से नाम दिया था। लड़की का नाम रखा था हमने झुमकी और लड़के का नाम रखा था मिडना। लेकिन आस्तिक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये कहानी को लिखते हैं तो आप इन पात्रों को क्या नाम देना पसंद करेंगे? तो हम शुरू करते हैं लड़की से।
1: मैं लड़की को नाम देना चाहूँगा गौरी।
0: और कौवे का नाम?
1: कौवे का नाम गर्व।
0: क्या नाम रखेंगे?
1: गर्व।
0: गर्व। और लड़के का नाम?
1: लड़के का नाम दर्श।
0: दर्श। और पगड़ी वाले आदमी का नाम?
1: मोहनलाल।
0: मोहनलाल। और आप खरगोश को क्या नाम देना पसंद करेंगे?
1: पहले खरगोश को हम कह सकते हैं हनी, दूसरे को कह सकते हैं बनी।
0: शाबाश। और आप गिलहरी को क्या नाम देना चाहेंगे?
1: मैं गिलहरी को नाम देना चाहूँगा जारुल।
0: तो ये था आस्तिक का कहना कि उन्होंने अलग अलग पात्रों को अलग अलग नाम दिए हैं। बच्चों, आप भी ऐसे नाम रख सकते हैं अपने अपने पात्रों के हिसाब से। किसी का नाम कुछ हो सकता है तो किसी का नाम कभी कभी हम अपने नाम पर ही रख लेते हैं, हमें सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और हम विदा लेते हैं आपसे। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आस्तिक का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे। तो हम आपकी तरफ से आस्तिक का धन्यवाद करते हैं इस स्टूडियो में आने के लिए। आस्तिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और हमारे साथ कहानी कहने में मदद करने के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इतना मधुर सुरीला गीत सुनाने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो हमने धन्यवाद दिया आस्तिक का, और एक बार हम फिर दोहरा देते हैं कि आपको अपनी कहानी तस्वीरें कहाँ भेजनी है। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंडो। तकनीकी सहयोग विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
3: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर SN रे। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
12: थैंक यू मैडम।
3: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
12: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है, यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट।

0: गंधी कीट, राइस हिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट धान की बफनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशियों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, तना भेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
0: तना कीट भेदक, तना भेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे की बढ़ती कोमल में भेदक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
1: जी।
0: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें व्हाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती, तना बेधा का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम जानना चाहते बताना चाहते हैं, इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना बेधक का बचाया जा सकता है। तना बेधक व्यस्त को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना बेधक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना बेधक की आर्थिक क्षति होने पर कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
1: जी तो ये बात हो गई तना भेदक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए?
0: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प

0: अंगूठ निकलने के बाद होता है तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10-70% तक क्षति हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5-10 मधुआ कीट दिखाई दे तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 मिलीलीटर या थायोमिथोएक्जेम दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुँचे।
1: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुंचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
0: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुंचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है जिसकी इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20 से 30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6-7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या 1 से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनो डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
1: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें?
0: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है जिससे केवल 1 प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है तथा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों की सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3-4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ देती हैं और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं।

0: फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं फसल ज़्यादा पहुंचाता ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेंढ को उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में एक और कीट सैनिक कीट, ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियाँ होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या एक वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।

0: राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर,
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान

अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कर
लेकर आए उन्हें साफ और

सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आरजे अनु। आप सभी का स्वागत है हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आज एक खास विषय आप सभी के सामने फिर से पेश है। और दोस्तों, अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हमारे किसान भाइयों को इसे उगाने में। जितना पौष्टिक ये होता है उतनी ही मेहनत से इसे उगाया भी जाता है, लेकिन अब कुछ रोग और कुछ व्याधि इसमें लग जाएँ तो सारे के सारे मेहनत वहीं के वहीं धरे पड़ जाते हैं। तो आज हम कुछ रोग के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई पहले से सतर्क रहें, रोग को पहचान सकें और अगर वो रोग लग जाते हैं तो उन्हें उनकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं। तो आज अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के जो सब्जी हैं हमारे, जैसे कि मिर्च की बात करें हम, कद्दू की बात कर लें, भिंडी की बात करें, लोबिया या बोरा, साथ ही परवल की बात करें, तो ये जो सब्जी हैं वो प्रमुख तौर पर गर्मी में और साथ ही वर्षा ऋतु में आपको मिल जाएंगे खाने को और बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इसी के कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है गर्मी और वर्षा ऋतु में सब्जियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां और साथ ही उनका हम प्रबंधन कैसे करें। ये

0: तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अंसार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। मिर्च से स्टार्ट करते हैं। मिर्च जो है हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में हम इसे खाते हैं। मिर्च में लगने वाले जो रोग हैं, आप उनके नाम बताएं और साथ ही हम उनसे अपने मिर्च के इस पौधों को कैसे बचा सकते हैं उसकी जानकारी बताएं।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिर्च जो है एक बहुत प्रमुख फसल जो है, सब्जी मानी जाती है, जिसका हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इसको यूज़ करते हैं, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मुख्यतः गर्मी में और वर्षा ऋतु में सब्जी मुख्य तरीके से उगाई जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, खास करके जो ये हमारी गर्मी में है और जो बारिश जो शुरू हो जाती है इसमें बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब पौधा छोटे अवस्था में ही होता है, जुवेनाइल स्टेज में ही होता है, तो उसी में ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई जब इसका मिर्च का बीज डालते हैं खेतों में या नर्सरी तैयार करते हैं, उस टाइम इसमें पौधों में गलन लगता है, जिससे शुरू में ही पौधे गल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमको उसमें पौधे मिल नहीं पाते, जिससे हम लोग उसको मुख्य खेत में रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को ये बात देखने की ज़रूरत है कि जब हम लोग बीज डालें तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर जल जमाव ना हो, चूँकि नमी की मात्रा ज़्यादा होता है खेत में जब, तो उसी वक्त में इसमें जड़ों में गलन इसका शुरू हो जाता है, जिससे ये पौधे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग इसको इसका जो नर्सरी तैयार करें, जब बीज डालें, तो ऐसे जगह पे हम लोग नर्सरी का की जगह का चुनाव करें जहाँ पे पानी ना भरता हो, जल जमाव की समस्या ना हो, और जो भी हम लोग बेड तैयार करेंगे जिसमें हम लोग बीज डालते हैं, उसको मिट्टी से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के हम लोग बेड बनाएं, उसके अंदर बीज इसमें डालें, तो हम लोगों का काफ़ी हद तक इसमें रोग से हम लोग इसको बचा लेते हैं। दूसरी एक जो बड़ी समस्या मिर्च में आती है, जो अभी हम लोग देखने को मिल रहा है, जो बारिश भी शुरू हो गई है, इसमें फलों का सड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। फल सड़ता है और दूसरा इसकी जो टहनियाँ होती हैं, तने होती हैं, उसमें उसका सूखना शुरू हो जाता है, उस जिसको हम लोग डैम्पिंग, ये इसको हम लोग इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज़ बोलते हैं, हम लोग एंथ्रेक्नोज, इसको श्यामरण भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके के लक्षण दिखते हैं, एक तो ये फलों का सड़ना और दूसरा तनों का सूखना का। तो हम लोग पहले जब फलों की बात करते हैं, तो फल क्या होता है, फल वो सड़ना शुरू होते हैं जो थोड़ा सा मेच्योर, जो पक्के मेच्योर हो जाते हैं, जिनका पकने की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फलों में ये सड़न होती है और फल काले होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। दूसरी समस्या जो इसमें दिखती है, दूसरा जो हम लोग देखते हैं खेत के अंदर, उसमें टहनियाँ इसमें काली होने लगती हैं, ऊपर से सूख करके नीचे की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पूरा पौधा सूख के ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर एक प्रमुख बात यह है कि जो ये बीमारी जो लगी हुई है मिर्च के पौधे पर, ये जो मिट्टी में चले जाते हैं, फल टूट के मिट्टी में गिर जाते हैं, तो ये जो फफूंद है ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जब हम दूसरी बार इसमें मिर्च की फसल दूसरे सीज़न में उगाते हैं, तो उसमें वो फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो मृदा जनित हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें फफूंदनाशी का हम लोग स्प्रे करेंगे। तो पहला हम लोग जो छिड़काव करेंगे, मैंकोजेब दवा मार्केट में आती है, हम लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो हम लोग दवा का छिड़काव करेंगे, एक डाइफेनोकोनाजोल करके एक दवा मार्केट में आती है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, डाइफेनाकोनाजोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम लोग ले करके उसका 1 ml 2 लीटर पानी में उसका हम लोग घोल बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव हम लोग करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पे हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो समस्या लगती है वो धीरे धीरे कम होगी। और हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई पौधा पूरी तरीके से सूख गया है तो उसको हम लोगों को खेत से फौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा तो उससे फिर वो आने वाले जब समय में जब हम दोबारा मिर्च लगाएंगे तो उसमें बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी एक समस्या जो हम लोग देखते हैं मिर्च के अंदर, वो पौधों का अचानक सूख जाना, पौधों में फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फल अच्छी तरीके से तुड़ाई हो रही है, अचानक हम लोग देखते हैं कि पौधा ही सूख गया। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है कि इसमें लक्षण जो दिखते हैं हरे भरे पौधों में, कि जो पत्तियां होती हैं वो लटक जाती हैं, जो दिन में जब गर्मी होती है तो उसमें पत्तियां नीचे लटकी हुई होती हैं, और जब रात का समय होता है, शाम होती है, फिर पत्ती वो फिर से वो स्वस्थ दिखने लगती हैं, फिर जब दिन आता है दूसरे दिन तो फिर वो पत्ती सूख जाती है। तो ये 2-3 दिन इस तरीके से चलता है, 4 दिन चलता है, फिर वो फाइनली पौधा वो जो है सूख ही जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, उसके जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरी तरीके से,

जिससे जो पानी जो पौधा लेता है जमीन के अंदर से वो पानी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल विल्ट जो हम लोग जीवाणु की वजह से जो सूखना पौधों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ी मिर्च की समस्या है। तो इसको किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि अगर जिस खेत में ये बीमारी अगर लगातार आ रही है, आप लोग मिर्च की फसल लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्षों तक हम लोगों को इसके अंदर फसल चक्र का अपनाएं। कोई भी जो मिर्च वर्ग के जो फसल है उसको हम लोग नहीं लें उस खेत के अंदर, अगर लेते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई इसमें मिर्च लगा रहा है खेत में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग मिर्च लगाएंगे तो हम लोग इसको दवा में इसको ट्रीटमेंट इसका देंगे, इसके जड़ों को हम लोग दवा में इसको डुबाएंगे फिर खेत में लगाएंगे। तो एक दवा मार्केट में के साइक्लिन करके आती है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसको हम लोग 1 ग्राम दवा जो है 20 लीटर पानी के करीब से घोल उसको हम लोग बना लेंगे और उसमें जड़ों को थोड़ी देर के लिए डुबा करके फिर हम लोग मुख्य खेत में उसको लगाएंगे। तो इससे जो है हमारी बीमारी की जो लगने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर खेत में पौधा लगा हुआ है, फलन हो रही है और अब पौधा सूख गया, तब तो हमको फौरन इसमें ऐसी दवा डालना होगा जो खेत में खड़े हुए फसल में उसमें दवा डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे जो दवा का छिड़काव करेंगे इसके जड़ों में देंगे, ताकि उसके वेस्कुलर सिस्टम में दवा जाए और जहां वो जीवाणु को मारे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवा आती है मार्केट में मुख्य तरीके से मिलती है, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके पौधों की जो जड़ों हैं जड़ों में उसको दवा डालना है, ताकि वो जड़ से वो दवा अंदर जाए पौधों के अंदर और फिर वहाँ अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम लोग इस जो कोई पौधा सूख रहा है और अगर हम लोग दवा पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो हो सकता है कि वो दवा प्रभावी ना हो, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। और जो एक मिर्च में हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जिसके अंदर पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में कुकड़ी भी बोलते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में हम लोग उसको कर्लिंग बोलते हैं। तो पत्ती उसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो वो एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको हम लोग लीफ कल वायरस की वजह से बोलते हैं, वो बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी होती है ये मुख्य तरीके से जो है एक कीट होता है जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से वो बीमारी एक पौधों से दूसरे पौधों में फैलती है। तो वो बीमारी ग्रसित पौधे से रस चूस करके वो स्वस्थ में जब भी जाएगी रस वहाँ से अपना खाना लेने के लिए, तो वो विषाणु वहाँ पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे खेत में वो कर्लिंग की समस्या आ जाती है, जो पत्ती ऊपर की तरफ ऐंठ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसमें पत्ती का ऐंठना ही नहीं होता है, पत्ती भी ऐंठती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, पौधा झाड़ी नुमा भी हो जाता है, और इसके अंदर अगर फल फूल लगते भी हैं तो वो छोटे और गठीले तरीके से हो जाते हैं, जिनका कोई मार्केट में उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो इसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कोई बीमारी दिखती है, तो अगर पौधे अगर खेत में अगर इस तरीके से अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है, तो फौरन उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देना है और इसको हम लोगों को फौरन खेत में इसको दवा का छिड़काव करना है, जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए दवा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का मार्केट में खूब अवेलेबल है, इसको हम लोग 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से, या दूसरी दवा थायामिथक्साम करके आती है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, इसका हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सफ़ेद मक्खी है उनका खेतों में जो लगे हुए हैं उनको हम लोग नियंत्रित करेंगे, जिससे बीमारी जिससे फैलती है उसको हम लोग कम कर देंगे। इसको रोकने का और भी अच्छा तरीका है कि हम लोग नर्सरी अवस्था में ही इसको रोकना शुरू करें, क्योंकि नर्सरी में जब हम लोग बीज डालते हैं तो किसान भाई खुले में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी लगनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो बीमारी वायरस जो है फैलना शुरू हो जाता है नर्सरी की अवस्था से ही। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी नर्सरी लगाएं तो उसको हम लोग बारीक एक जाली आती है उस जाली से हम लोगों को नर्सरी को ढकना है। तो उससे 2 चीज़ें होंगी कि एक तो बीमारी जो वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं वो नहीं उसके अंदर जाएंगे नर्सरी के अंदर, और दूसरा और भी जो पत्ती को चबाने वाले कीट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो नर्सरी आपने तैयार करी है उसके पौधे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, और जब वो मुख्य खेत में जाएंगे रुपाई के लिए तो उसमें भी बीमारी कम आएगी। यदि आती है तो हम लोग इसका जो दवा अभी हमने बताया कि सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए उसका छिड़काव करेंगे। दूसरी बात, किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग मिर्च की फसल लगाते हैं तो हम लोग ध्यान दें कि अपने खेत के चारों तरफ कम से कम 2 लाइन बॉर्डर के तौर पे उसमें हम लोग मक्का या ज्वार उगाएं। तो उससे क्या होगा, जो बॉर्डर वाली जो फसल हम लोग लगाते हैं उससे क्या होता है कि सफेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुसती है, वो उनका एक प्रोटेक्शन हो जाता है।

0: है किनारे किनारे मेड़ों पर, तो दो लाइन हम लोग मक्के की अवश्य लगाएं उसके किनारे किनारे खेत के मेड़ों पे, जिससे उसमें मधुमक्खी ये वही सफ़ेद मक्खी का उसके अंदर प्रवेश उसके अंदर हम लोग उसको बाधित कर सकें। दूसरा एक इसमें जो कर्लिंग की समस्या आती है, किसान भाई देखते हैं कि कर्लिंग दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो जो कुकड़ी होती है ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं, जिसको अभी हमने बताया जो विषाणु की वजह से होती है। एक दूसरी समस्या होती है पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो विषाणु नहीं है वो, एक माइट होता है, छोटा कीड़ा होता है, आँख से नहीं दिखता है, वो पत्ती की निचली सतह पर लग करके उसका रस चूसता है, जिससे पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरह की से मुड़ती है और थोड़ी लंबी हो जाती है। तो माइट है, उसके उस माइट को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन करके दवा आती है। स्पायरोमेसिफेन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका घोल करके छिड़काव करें कम से कम 2 बार 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो हम लोग इसको माइट को भी रोक देंगे, तो वो जो इस तरह से अगर पत्ती है तो वो ठीक हो जाएंगी वो।
1: तो ये तो बात हो गई है मिर्च की, मिर्च में लगने वाले रोगों के नाम बताएं डॉक्टर साहब ने आपको, और साथ ही इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो कद्दू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं सर, तो कद्दू में कौन कौन से रोग हैं कद्दू के पौधे में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम?
0: जी, कद्दू एक मुख्य फसल है जो गर्मी में और वर्षा ऋतु में दोनों में होती हैं। तो इसको इसमें मुख्यतः तीन बीमारियां आती हैं जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसान भाई इसमें इसको आप खेत में देखते भी होंगे। एक तो होता है कि पौधा पूरी तरीके से ही सूख जाता है अचानक, तो हम लोगों को देखना है कि उनके जड़ के पास में कोई कीट लगा, कीट तो नहीं लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी इसको जड़ को, हम लोग उसको देखना है उसको जा करके। तो अगर हम लोगों को जड़ों में अगर देखता है कि अगर कोई काले रंग का कोई घेर लेके घेरा हुआ या कवर कर रखा है तने को, तो हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई फफूंद लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो अभी हमने बताया है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बनडाजिम दवा आती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसको हम लोगों को जड़ों में उसका डालना है उस दवा को, वहाँ ड्रेंचिंग करना है उस दवा को। और अगर हम लोगों को मैं उस टाइम अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो हो सकता है ये बहुत प्रभावी ना हो, क्योंकि जड़ों से सूखना शुरू होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये है समझना है कि जो जड़ में फफूंद लगा है उसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो हम ये 2 दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो इससे पौधों का सूखना रुकेगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं कद्दू का, तो सबसे पहले हम लोगों को वही देखने की ज़रूरत होती है, हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा हम लोगों को जो है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोगों के पास में ये जो मिलता है, हम लोग 100 किलो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1 किलो के करीब हम लोग जो मार्केट का जो मिलता है फॉर्मुलेशन, उसको हम लोग मिला करके 14 से 15 दिन के लिए उसके छावदार स्थान पर रखते हैं, ताकि उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरीके से फैल जाए। जब हम लोग गड्ढा बनाते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने के लिए, उसमें लौकी हो सकती है, परवल है, या आपका ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तो इन सब में जो हम लोग लगाते हैं बीज लगाते हैं, तो हम लोग पहले गड्ढा बनाते हैं। उन गड्ढे में पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट, वो भी ट्राइकोडर्मा मिला हुआ, उसको हम लोग पहले गड्ढे के अंदर भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से फफूंद होगा तो ट्राइकोडर्मा उनको रोकेगा, और जिससे हमारे जो पौधे निकलेंगे उसके अंदर उनमें जड़ों में इस तरह से कोई विकार या कोई बीमारी इस तरह से नहीं दिखेगी। तो अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में मिले हुए वर्मी कंपोस्ट को अगर हम लोग डालते हैं गड्ढों में, तो उससे हम लोग बीमारी काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। दूसरा, पत्तियों पर जो एक बीमारी लगती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर की परत सी जम जाती है, दो पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इस तरह से परत जमती है, तो देखते हैं कि पूरा पौधा ही सफ़ेद हो जाता है। जब हम लोगों की नमी बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है खेतों के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह से हम लोग बीमारी आने की संभावना जो बनी रहती है, तो हम लोग बीमारी आने से पहले ही मैंकोजेब जो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम जो दवा है उसको प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ही छिड़काव करके रखेंगे खेत में, जिससे उसके अंदर इस तरह से कोई बीमारी ना आए, पहले से ही हमने छिड़काव करके उसमें रखना है। दूसरी बात है जो हम लोग देखते हैं कि और भी फफूंदनाशी अगर मान लो बीमारी आ भी गई है खेत में, लग रही है बीमारी की बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग उसके अंदर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो है वो उसको हम लोगों को डालना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, क्योंकि उसमें फिर हम लोग कोई दवा डालेंगे तो काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो हम लोग हेक्साकोनाजोल आता है, टेब्यूकोनाजोल आता है, तो या हेक्साकोनाजोल या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है, मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से जो दवा आती है इनका दवा हम लोग ले करके वो 1 ग्राम के हिसाब से इसको हम लोग लेके पत्तियों पर छिड़काव करना शुरू करेंगे, ताकि जो उस तरह से जो फफूंद ऊपर लगी है वो उसको हम लोग साथ समय ठीक कर सकें। अभी जो मिर्च ये कद्दू वर्गीय फसलों में जो हम लोगों को एक उभरती हुई समस्या जो दिख रही है वो विषाणु जनित बीमारियों की है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो

0: जो जो लक्षण हम लोगों को मिर्च में टमाटर में जो दिखते थे, पत्तियों के अंदर पीला हो जाना या पत्तियों के ऊपर कुकड़ी हो जाना, पत्तियां ऐड जाती हैं, उस तरीके की समस्याएं अब हम लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिल रही है। उसमें आपका खीरा, तरबूज, करेला, खीरा, इस सारे में जो है इस तरह की बीमारी दिखती है, जिसमें पत्तियां पीली हो जाती हैं, मोज़ेक तरीके का दिखने लगता है, उजला हो जाता है और पत्तियां ऐड जाती हैं। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी चीज़ करना यह है कि जो ये बीमारी वही मक्खी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है जो मिर्च के अंदर जो इस तरह से कुकड़ी या कर्लिंग उसके अंदर बीमारी को फैलाता है। तो हम लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत यह है कि अगर वो हम लोग ये बीमारी अक्सर लगनी कब शुरू होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो मिर्च उगाते हैं या टमाटर उगाते हैं, टमाटर मुख्यतः रबी की फसल है, जब टमाटर की फसल ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बीच में कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कद्दू लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जब जो विषाणु इसमें लगता था टमाटर के अंदर, वो विषाणु वो कद्दू वर्गीय फसलों में चला जाता है, तो टमाटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कद्दू वहाँ पे जो पौधा तैयार होता है उनमें मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको देखना है कि जब भी हम लोग इस तरीके से कोई बीज लगाएं किसी टमाटर के में या मिर्च में किसी फसल में, तो उसमें हम लोगों को टाइम से उसके अंदर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है, ताकि जो सफ़ेद मक्खी टमाटर या मिर्च में लगती हो वो इसके अंदर कद्दू वर्गीय फसलों में ना आने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पत्ती, दो तीन पत्तियाँ निकल आएँ, तब हम लोगों के अंदर इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्साम जो भी हमने दवा बताया है, इसका हम लोगों को छिड़काव करना शुरू कर देना है। 7 से 8 दिन के अंतर पर इस दवा को हमको छिड़कते रहना है। दूसरी चीज़ है, जैसे अभी हम लोग बताएं कि जो बॉर्डर वाली हैं, जो किसान जो मुख्य खेत है उसके किनारे किनारे पे हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन मक्के की या ज्वार की हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो उससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत के अंदर जो प्रवेश होता है उसको हम लोग रोकते हैं। तो इससे हम लोग देखते हैं कि बीमारी को हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं।
1: अगर गर्मियों की बात करें, हमारे साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें, तो भिंडी अभी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, भिंडी उत्पादन के समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई रोगों के बारे में जानें और उनका बचाव कैसे करें, भिंडी के पौधे में जो रोग लगते हैं उनको पहचानें, तो कौन कौन से रोग इस पौधे में लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: जी जी बिल्कुल, जो भिंडी की फसल है हम लोग देखते हैं कि मार्च से ही आनी शुरू हो जाती है और अभी बरसात में भी खूब भिंडी मिलती है हम लोगों को। भिंडी हम लोग 2 सीज़न में लगाते हैं, एक तो हम लोग गर्मी वाला लगाते हैं, एक वर्षा ऋतु वाला लगाते हैं, दोनों अलग अलग में लगाते हैं। तो जो गर्मी में हम लोग लगाते हैं, जो मार्च के करीब लगाते हैं है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जो भिंडी में है जो मुख्यतः जो बीमारी आती है वो मोज़ेक की समस्या है, जिसमें पत्ती एकदम गोल्डन की तरह मोज़ेक चमकती हुई दिखती है खेतों में, अगर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग येलो वेन मोज़ेक बोलते हैं। तो उस तरह से खेत में एक चमकदार पत्ती जो पीली उजली सी दिखनी शुरू हो जाती है। तो भिंडी में एक सबसे बड़ी बीमारी यही हम लोगों को दिखती है खेतों के अंदर। अब आते हैं हम लोग भिंडी के सीज़न के ऊपर। जो भिंडी 2 सीज़न में जो हम लोग लगाते हैं, एक तो हम लोगों का लगाने का समय है जब हम लोग ये मार्च में लगाते हैं, दूसरा एक वर्षा ऋतु में जब हम लोग जुलाई वगैरह में लगाते हैं, जो अभी आ रहा समय। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो गर्मी में लगाते हैं मार्च के समय में, उसमें कम जो बीमारी होती है उसमें थोड़ा कम आती है, और जब हम लोग इधर देखते हैं जो बरसात में लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या आती है जिसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब भी किसान भाई लगाएं तो इसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी हम लोग भिंडी लगाते हैं, जो चूँकि बीज जो मार्केट में मिलते हैं वो ऑलरेडी उनमें ट्रीटमेंट किया होता है, तो उस टाइम हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पत्ती में जब पौधे बीज डालने के बाद में जब 2-3 पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसी टाइम से हमको छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जब पौधों में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाए, पौधा बड़ा हो गया, भिंडी निकलने फूल निकल रहे हैं, फल भी निकल ले रहे हैं, उस टाइम बीमारी आती है, तभी हम लोग दवा छिड़काव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी भिंडी में दवा का छिड़काव हमको करना है तो जब पत्तियां 2-3 पत्ती निकल के आ जाए पौधे के बीज लगाने के बाद में या सोइंग करने के बाद में, तभी हमको उसी टाइम दवा डालना है, क्योंकि बहुत छोटे पौधे छोटे अवस्था में ही बीमारी आ जाती है और वो पौधा बड़ा बड़ा बड़ा होते होते उसके अंदर वो लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि शुरुआती अवस्था में ही उसमें दवा डालना ज़रूरी होता है, तब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ध्यान

कि सफ़ेद मक्खी जो गोल्डन मोज़ेक जो बीमारी आती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलता है, ये भी उसी ग्रुप का ही वायरस है। तो हम लोगों को जो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवा बताई इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्साम, इन दवाओं को हम लोगों को 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 8 से 12 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करना है, जब 3-4 पत्तियाँ निकल आए इसके अंदर, उस चाहे बीमारी हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को दवा डालना ज़रूरी होता है।

0: तब हम लोगों को उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर उसमें फिर हम लोगों के पास में एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना। तो अगर हमारे पास अगर किसान भाई भिंडी लगाए हुए हैं, अगर एक दो पौधे में अगर कहीं पर भी अगर इस तरह से लक्षण दिख रहा है तो हमको सबसे पहले उस पौधे को हटा देना है। हो सकता है कि उसी एक दो पौधे की वजह से पूरे खेत में वो बीमारी फैल जाए और देखते देखते पूरे पौधे पीले हो जाएं। तो अगर एक दो पौधे में अगर इस तरह से कोई लक्षण दिख रहा है तो बगैर कोई लालच किए बगैर कुछ उसमें दिमाग लगाए उसको हम लोग को हटा देना है ताकि उससे बीमारी दूसरे पौधों में ना फैलने पाए। तो सफ़ेद मक्खी को जो मारने के लिए दवा है उसी को हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरा जो बॉर्डर के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, बॉर्डर पर मक्का या ज्वार की दो लाइन हम लोग जरूर लगाएं इसमें।
1: तो ये बातें हो गई हैं भिंडी की, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम लोबिया यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में बोरा भी कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, साथ ही उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसे भी बताएं।
0: जी, बोरा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लोबिया या काउपी हम लोग बोलते हैं उसको, बोरा में हम लोग देखते हैं दो बीमारी बहुत आम है यहाँ पे आती है। एक तो आती है कि जो पत्ते होते हैं उनमें काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, इसके हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। वो पुरानी पत्तियों जो पत्तियां होती हैं जो नई पत्तियां होती हैं उनमें कम होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं उनमें इस तरह से काले धब्बे बनने शुरू होते हैं। तो कभी कभी वो काले धब्बे क्या होते हैं पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और वो देखते ही देखते पूरे पौधे को गला देते हैं। जब इसमें फलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब फलियां आती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि काले काले से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये जो बीमारी आती है इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। देने वाली जो बात है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैंकोजेब, बीमारी हो या ना हो हम लोग एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर कर दें। जब पौधा हमारा थोड़ा सा चार पांच पत्ती जब उसके अंदर आ जाए उसके अंदर छिड़काव हमको कर देना है। मैंकोजेब 2 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को उसके अंदर छिड़काव कर देना है। यदि उसके बाद अगर उसके अंदर बीमारी आ रही है उसमें इस तरह से कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो पत्ती काली पूरी हो जा रही है या तने में कालापन आ जा रहा है या फलियों में कालापन लगने शुरू हो जा रहे हैं तो डाइफेनोकोनाजोल जो दवा है वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से हम लोगों को दवा का छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा वो काले धब्बे जो हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक जो इसमें जो पत्ती में एक समस्या आती है वो गोल्डन मोज़ेक की है। गोल्डन मोज़ेक एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोग देखते हैं कि पत्तियां उजली सी हो जाती हैं उसमें। वही बीमारी हमारे मूंग में भी आती है, वही बीमारी हमारी फ्रेंच बीन में भी आती है, वही बीमारी हमारी इसमें आती है अरहर में भी आती है। तो उसी वही ग्रुप का एक वायरस है जो लोबिया की फसल में लगता है और हम लोग देखते हैं कि पत्तियां देखते ही उजली हो जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाओं का छिड़काव, वही दवा का छिड़काव हमको इसके अंदर करना है 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 10 से 12 दिन के अंतराल पर। तो उससे क्या होगा वो सफ़ेद मक्खी को हम लोग कम कर देंगे खेत के अंदर और जो पौधे होंगे जो निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे उसके अंदर।
1: अगर गर्मी की बात करें साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो जो परवल जो है वो खास सब्जी है इस ऋतु की, तो डॉक्टर साहब इसमें जो लगने वाले रोग होते हैं परवल के पौधों में वो कौन कौन से होंगे और साथ ही इसका रोकथाम हम कैसे करें?
0: जी, परवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे गंगा के किनारे या और भी आसपास के किसान जो है काफ़ी परवल उगाते हैं और उनका अच्छा रेट भी मिलता है हम लोग किसान भाइयों को। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें देखते हैं कि बहुत सारी इसके अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को दो चीज़ इसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं देखने आए खेत के अंदर। एक तो इसके अंदर जो इनकी लत है जो वाइंस है उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं पैदा हो रही जो पूरी लत सूख जाती है। उसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह पे हमको दिखता है कि काला घेरा या काला धब्बा दिखता है वो तने को पूरा कवर कर लेता है। तो देखते देखते वो पूरे तने को पूरा काला कर देता है जिससे वो पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। पहले एक पार्ट उसका सूखेगा, एक तना सूखेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा तो और तनों पर फैल जाएगा लतों में और देखते देखते वो पूरा सूख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी इस तरह का कोई लक्षण दिखे, अगर कहीं थोड़ा सा दिख रहा है या किसी एक लत में दिख रहा है तो उसको हमको काट के हटा देना है। अगर इस तरह से लक्षण अगर किसान भाई खेत में देखते हैं तो फौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा हम लोग बोले 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका हम लोग खेत में फौरन छिड़काव कर देना है, इससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग पत्तियों में देखते हैं बीमारी आती है वो एक धब्बा सा बनता है, काला धब्बा जो ब्लाइट अपीयरेंस एक देता है वहाँ पे, हम लोग देखते हैं पत्तियाँ वहाँ काली होकर गलनी शुरू हो जाती हैं और इस तरीके का लक्षण हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पे फैलने के बाद जो फल निकलते हैं उन फलों में वो उस तरीके का लक्षण शुरू हो जाता है। वो काले पहले छोटे से दाग धब्बे बनते हैं, वो देखते देखते फिर

0: पौधे पूरे फल को गला देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर अगर किसी एरिया में अगर किसान भाई इस परवर लगाते हैं और इस तरह की समस्या दिखती है तो बीमारी हो या ना हो हम लोग मैंकोजेब का एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर करेंगे। उसको छिड़काव करने के बाद में भी अगर हमको कहीं पे दिख रहा है इस तरीके से कोई लक्षण तो हम लोग को मैंकोजेब और मेटल एक्सिल का कॉम्बिनेशन वाला दवा आता है जो मिक्स्ड होता है उसको हम लोग 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके उसको प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग छिड़काव करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वो जो समस्या होती है उसको हम लोग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे खेत के अंदर से। लेकिन इसका साथ समय छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि फल फूल आने लगे या हम लोग भिंडी में इंतज़ार करें कि अब फल के तुड़ाई का वक्त आ गया या मिर्च में हम लोग सोचें कि मिर्च में अब फल आ रहा है या है अब बीमारी आ गई तो कोई छिड़काव करें तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोगों को समय से डरना है, बीमारी आने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत रहेंगे और उस टाइम बताए गए दवाओं का अगर हम लोग सही समय पर छिड़काव करते रहेंगे तो हम लोग बीमारियों को निश्चित तौर पर रोक देंगे और हम लोगों को अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: जी तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का पूरा मुनाफा मिले तो ज़रूरी है कि आपके जो सब्जियों के पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें। और डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं आपके सब्जियों के पौधे में और आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस वार्ता को सुनेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, रोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी आप में विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें।

0: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz पर। मैं हूं अनु और हर रोज की तरह आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जहां हम बातें करते हैं खेती की और खेती में जो नई नई तकनीकें आती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक के बारे में हम आपको बताते रहते हैं और आज हाइड्रोपोनिक से जो जुड़ी नई चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। और विषय है हमारा हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लेट्यूस की खेती। तो आज इस विशेष जानकारी के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर अमृता और मैडम वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: हाइड्रोपोनिक क्या है एक बार फिर हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं।
2: देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्व से भरपूर पानी में उगाते हैं। इसमें पौधे की जड़ें पोषक तत्व से भरी पानी में डूबी रहती है, जहाँ से वो आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों आवश्यक होती हैं। साथ ही पौधों को उपयुक्त रोशनी, तापमान और वातावरण की जरूरत होती है।
1: जी, अब लेट्यूस क्या है इसकी भी जानकारी दे दें।
2: लेट्यूस एक पत्तेदार सब्जी है जिसे हम सलाद में, बर्गर में और हेल्दी डाइट में इसे खूब इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि यह फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। ये एक ऐसी फसल है जो कि विदेशों में खूब खाई जाती है और अब धीरे धीरे यह भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: जी, तो हाइड्रोपोनिक तरीके से अगर हम लेट्यूस की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
2: हाइड्रोपोनिक्स के में लेट्यूस की खेती करने के लिए सबसे पहले तो आपको बीज का चुनाव करना पड़ेगा। इसमें हम बता दें कि इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि बटर हेड, रोमेन और क्रिस्प हेड। भारत में रोमेन की किस्म काफ़ी लोकप्रिय है। और दूसरी बात है कि नर्सरी में अंकुरण की बात होती है, तो नर्सरी में हम लोग लेट्यूस के बीज को एक ग्रोइंग मीडिया में उगाते हैं, जैसे कि कोकोपीट, रॉक वूल, परलाइट, वर्मिकुलाइट, बायोचार इत्यादि माध्यम में अंकुरित किया जाता है। इसे अंकुरण निकलने में कम से कम 4 से 7 दिन लग जाते हैं, फिर हम इसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग में एक खास बात ध्यान रखने की होती है कि जब पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए, 15 से 20 दिन में लगभग ये 3 से 4 इंच का पौधा हो जाता है और उसकी जड़ें पूरी तरीके से विकसित हो जाए, तब हम उसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, जैसे कि न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक या डीप वाटर कल्चर में, उसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद पोषक घोल की बात करें तो लेट्यूस के लिए विशेष न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का तैयार किया जाता है, जिसमें कि मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। मुख्य में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम आदि तत्व होते हैं और सूक्ष्म में क्लोरीन, बोरोन, जिंक इत्यादि होते हैं। तापमान और प्रकाश की बात करें तो लेट्यूस को ठंडी जलवायु पसंद है, आदर्श तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही रोजाना इसको 10 से 14 घंटे की रोशनी चाहिए, लेकिन सर्दियों की फसल को 8 से 10 घंटे की रोशनी पर्याप्त होती है सर्दियों की फसल में। और ये 45 से 60 दिन में लगभग पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही खास बात ध्यान रखने की जरूरत है, इसके पीएच और ईसी जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता बोलते हैं, पीएच को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है 5.8 से 6.2। नहीं तो फिर क्या होता है कि सुबह सुबह जब हम पीएच मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे दिन जैसे ढलता जाता है वो अल्कलाइन की तरफ, क्षारीय की तरफ वो शिफ्ट करता जाता है। जब ये क्षारीय की तरफ शिफ्ट करता है तो हम इसमें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल डालते हैं। और कभी कभी जब ये बेसिक की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो फिर हम लोग बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। कभी कभी पानी से भी इसे मेंटेन किया जाता है। दूसरी बात मैंने की थी विद्युत चालकता की, तो लेट्यूस के लिए 0.5 से 0.6 डेसीसेमन पर सेंटीमीटर विद्युत चालकता की जरूरत होती है। धनिया के लिए 0.8, पालक के लिए 1.2 से 1.4 में हम लोगों को इसका रखरखाव करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात होती है इसके चिलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर चिलिंग वाटर आप देंगे, ठंडा पानी, तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और सूर्य की रोशनी पड़ने से एक इसमें एक

0: प्रॉब्लम आती है कि शैवाल की उपस्थिति हो जाती है, जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। पानी पर सूर्य की रोशनी पड़ने पे ये होती है। तो इसलिए हम लोग सिल्वर नैनो पार्टिकल, जिसको कि सिल्वर नैनो कण हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं, उसको डालने से पानी पूरा साफ हो जाता है।
1: तो ये तो बात हो गई किस प्रकार खेती करेंगे हाइड्रोपोनिक तरीके से। कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस तरीके से हम लेट्यूस की खेती कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा मिल सकता है?
0: फ़ायदे की बात करें तो लेट्यूस कम दिन की फसल है, जैसे 30 से 40 दिन में ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप प्रॉपर पीएच, ईसी और तापमान, पोषक घोल अगर आप देते रहेंगे तो 30 से 40 दिन में ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरे फायदे हैं कि मिट्टी अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो रोग और कीट की संभावना भी कम हो जाती है। और क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में तापमान का और बाहरी वातावरण का नहीं प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम पूरे साल उगा सकते हैं, ताज़ा और साफ फसल ले सकते हैं, जिससे कि बाज़ार में हमें अच्छे भाव मिल जाते हैं। सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसकी मांग बहुत है। हाइड्रोपोनिक लेट्यूस की कीमत सामान्य से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यह केमिकल फ्री और हाई क्वालिटी की होती है।
1: अब थोड़ा सा हम स्टार्टअप की बात करते हैं, क्यों हाइड्रोपोनिक खेती को स्टार्टअप बनाए हम?
0: सबसे पहले युवाओं के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स खेती को स्टार्टअप बनाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज़मीन की कमी है। लोग अब हेल्दी और ऑर्गेनिक खाने की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि रेस्तरां और कैफ़े और सुपरमार्केट में लेट्यूस की भारी डिमांड है। कम जगह में, कम पानी में उच्च गुणवत्ता वाली खेती संभव है, तो इसलिए आप इसको एक बिजनेस अवसर में बदल सकते हैं। ये आपको प्रॉफिट देने वाली फसल है, क्योंकि ये 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। इसे 150 या 300 रुपये प्रति किलो का आपको रेट मिल जाता है। और लेट्यूस को एक टैग भी आप दे सकते हैं, पेस्टिसाइड फ्री है ये और फ्रेश है ये। और बात है कि 1000 वर्ग फुट में आप हर महीने 100+ किलो का उत्पादन इससे संभव है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें, मैं युवाओं को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोकेशन का ध्यान रखें कि आप घर की छत, बालकनी या शेड में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और सिस्टम सेटअप में शुरुआती निवेश 40,000 से 1.5 लाख तक की आती है। और बीज और नर्सरी की बात करें तो जैसे अच्छी किस्म के आप रोमेन या बटर हेड लेट्यूस के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अंकुरण के लिए आप रॉकूल, कोकोपीट, परलाइट, बर्मिकुलाइट इत्यादि आपको ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और फिर पोषक तत्व की बात करें तो आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि हो। और ग्रीन हाउस या नेट हाउस का ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि तापमान, नमी और रोशनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आप चाहे तो इसे ऑटोमेशन से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहले इसे सीधे होटल में ले जा सकते हैं आप, कैफे, रेस्तरां से टाई अप कर सकते हैं आप इसमें। फिर या तो आप ब्रांड बना सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि फ्रेश हाइड्रोपोनिक लेट्यूस का ब्रांड बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं आप, जैसे कि बिग बास्केट, जोमेटो, हाइपर प्योर से आप लोग इसे संपर्क कर सकते हैं। फिर या तो फिर स्थानीय सब्जी मंडी या सुपरमार्केट में आप इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टअप टिप्स की बात करें तो कम से कम आपको 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या इसकी ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर सरकार की कृषि स्टार्टअप की स्कीम है, एफपीओ योजना की भी मदद आप ले सकते हैं। आपको छोटे से शुरू करने की ज़रूरत है, अनुभव लीजिए, फिर उसको स्केल कीजिए, बिजनेस प्लान बनाइए। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी
1: जी। तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लेट्यूस की खेती, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को दी गई। क्या कुछ फ़ायदे हैं, साथ ही अब स्टार्टअप के तौर पर इसके द्वारा जो खेती करते हैं तो क्या आपको क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी जानकारी आज आपको दी गई है। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है।

0: जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
2: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
2: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जान

है मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य
मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बावस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की

अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अल्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और हर रोज हम बहुत सारी बातें लेकर आते हैं आपके लिए उपयोगी और बताते हैं कुछ अच्छी बातें. और किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही लाभान्वित हो रहे होंगे हमारे सुझावों से. हमारे जो यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आते हैं आप सभी को सुझाव देने के लिए, तो आशा करते हैं आज भी आप हमारे इस विषय से काफ़ी लाभान्वित होंगे. और आज का जो विषय है, यानी कि चर्चा का विषय है, वो है जीवन यापन के लिए मशरूम का उत्पादन. तो किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि अगर आपके पास भूमि नहीं है, आप भूमिहीन हैं, तो आप मशरूम का उत्पादन करके एक अच्छे तरीके से बाजार में आप मूल्य पा सकते हैं. यानी कि इसका उत्पादन करके आप अपनी जीवन यापिका बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं. और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरी.

0: चंद्र जो बड़े वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग से और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार।
0: और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये देखा भी जा रहा है कि बहुत ही लोग मशरूम की खेती कर करके और राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सस्ता माध्यम है मशरूम उत्पादन।
1: हाँ,
0: जो
1: हाँ।
0: लोग जीवन यापिका करते हैं इसे उपजाकर, और कहीं ना कहीं इसका जो एक ये फायदा है कि ये एक कमरे में ही इसका उत्पादन किया जा सकता है और अच्छी मात्रा में पैसे कमाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जीवन यापन के लिए इसे क्यों चुने, यही बातें हम कर रहे थे अभी भी, लेकिन अगर आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ होगा।
1: पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि मशरूम एक ऐसा फसल है और इसका जो खेती किया जाता है बगैर खेत की खेती किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मशरूम की खेती करने के लिए किसी खेत की ज़रूरत नहीं होता है, बल्कि इसे हम कमरे में, जिसे हम मशरूम कच्छ कहते हैं, तो उसमें हम घर में भी मशरूम की खेती अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। मशरूम की खेती करने के लिए यदि हमारे पास एक कमरा खाली है और तो उसमें हम कर सकते हैं, यदि हमारे पास पक्के कमरे नहीं हैं तो झोपड़ी बनाकर भी इसका खेती आराम से किया जा सकता है।
0: जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को किसान भाइयों कि आप आराम से एक कमरे में, अगर आपके पास ज़्यादा भूमि नहीं है तो आप आराम से मशरूम की खेती कर सकते हैं बहुत ही कम जगह में। तो ये बात हो गई, यानी कि ये फ़ायदा है मशरूम उत्पादन का। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद जब मशरूम उत्पादन की बात आती है तो दिमाग में आता है कि किस किस तरह के मशरूम का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद जानना चाहेंगे हम कि कितने प्रकार के मशरूम का उत्पादन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और अगर क्रिया के बारे में बताएं, यानी कि प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कैसे इसका उत्पादन किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए।
1: किसान भाइयों, मशरूम की खेती करने के लिए पहले तो ये ध्यान देना होगा कि आप किस समय इसका खेती करना शुरुआत कर रहे हैं। यदि हमारा शुरुआत करने वाला है, इस व्यवसाय में आना चाहता है हमारा किसान और इसको अपना जीवन का एक जीव साधन बनाना चाहता है, तो निश्चित है कि इसके सभी बिंदुओं को जानकारी हासिल करना होगा, तब जाकर मशरूम की खेती शुरू करेगा तो निश्चित है कि हम अच्छा से अच्छा अपना लाभ कमा सकते हैं, व्यवसाय को चला सकते हैं। जहाँ तक बात है कि मशरूम की कौन कौन से प्रभेद हैं, कौन कौन से प्रजातियां हैं और ये कहाँ कहाँ मिलेगा और किस समय इसका चयन किया जाए कि अच्छा से अच्छा उसका उत्पादन किया जाए या खेती किया जाए, तो ऐसे यदि देखा जाए तो हमारे पूरे देश में लगभग 200 प्रभेद हैं जो पहचान किए गए हैं कि मशरूम के रूप में इसे उगाया जा सकता है और इसे धन कमाया जा सकता है। लेकिन अपने यदि बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में लगभग 10 से 12 प्रभेद हैं मशरूम के जो पहचान किए गए हैं और उसे हमारे किसान भाई उसे उगाते भी हैं। लेकिन यदि हम बड़े स्तर की बात करते हैं और व्यवसाय की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे जो 4 प्रभेद हैं मशरूम के अपने बिहार राज्य के लिए, वो जलवायु को देखते हुए, जगह को देखते हुए, मौसम को देखते हुए और व्यवस्था को देखते हुए, ये 4 प्रभेद भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आराम से पूरे वर्ष भर खेती कर सकते हैं। मशरूम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि उसके लिए जो मशरूम का कच्छ होता है या मशरूम का झोपड़ी होता है, इसके लिए कम तापमान का आवश्यकता होता है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ठंड के समय में इसको आराम से खेती कर लेते हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों पर, यदि जहाँ पर हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर कुछ मौसम देख लीजिए, जो मौसम में तापमान और जगहों के जगह पे यहाँ कम रहता है, यानी मशरूम को खेती करने के लिए कम तापमान का आवश्यकता होता है। तो कम तापमान यदि अपने इस बिहार राज्य में देखा जाए तो ज़्यादातर लगभग 5 महीने यहाँ दिखाई देता है, जो अक्टूबर मध्य से शुरू होता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 15 मार्च के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है और जब ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो मशरूम का खेती नहीं कर पाएंगे। अब रह गई बात कि यदि हम ठंड के मौसम में मशरूम खेती करते हैं, बाकी समय में हमारा किसान क्या करेगा, तो इस तरह से और भी प्रभेद उपलब्ध

0: जो गर्मी के समय में कर सकते हैं, बारिश के समय में कर सकते हैं, इस तरह से पूरा इसका एक चार्ट बना हुआ है, एक कैलेंडर बना हुआ है, एक सारणी बना हुआ है, इसको देखते हुए पूरे वर्ष भर प्रभेद का चुनाव करके खेती कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा माना जाता है वो बटन मशरूम माना जाता है। बटन मशरूम की खेती करने के लिए जो तापमान होता है उसे दो चरणों में हम बांट लेते हैं। पहला तो एक जो बुआई का चरण होता है जिसे हम बिजाई कहते हैं, वो यदि तापमान 18 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस है तो उपयुक्त पाया जाता है। और फिर जब उसमें फलन काय निकलता है यानी जब उसमें फल बैठता है तो उसके लिए और कम तापमान का आवश्यकता होता है, यानी लगभग 8 से लेकर 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए तब जाकर उसमें फल बैठेगा। यदि इससे 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है तापमान तो इसमें फल नहीं बैठेगा, केवल सफ़ेद सफ़ेद रंग का बीज उगकर रह जाएगा। तो ये बटन मशरूम के लिए है। तो बटन मशरूम के लिए 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ही आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, दूसरा जो एक महत्वपूर्ण आपका मशरूम का प्रभेद है वह है ओस्टर मशरूम। और ओस्टर मशरूम की खेती करने के लिए यानी ढेंगरी मशरूम का खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा कम या अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। जो कमरे का तापमान होता है यानी 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस यदि हमारा 5 डिग्री सेल्सियस कम है और 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा भी है तब भी सफलतापूर्वक इसको हम आराम से खेती ढेंगरी मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये हमारे बिहार राज्य में जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगता है अप्रैल मई जून में, लगभग कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है मई जून के महीने में, तो ऐसे में जो हमारे अन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं या आदमी को कह लीजिए, आदमी का भी मतलब गर्मी की वजह से जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यदि हम मशरूम की खेती करें तो यह संभव होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने असंभव को भी संभव करके दिखाया है और धीरे धीरे इस प्रभेद का यानी जो मिल्की मशरूम है, मिल्की मशरूम का धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये मिल्की मशरूम हम दूधिया मशरूम के नाम से जानते हैं, पूरा दूध की तरह सफ़ेद सफ़ेद होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पे भी पूरे अच्छी तरह से इसकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन तापमान इसके लिए ज़्यादा आवश्यकता होता है, यदि 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो आप दूधिया मशरूम खेती नहीं कर सकते। तो दुधिया मशरूम की खेती करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान का आवश्यकता होता है। यदि 45-46 तक भी पहुंच जाता है तब भी हम आराम से सफलतापूर्वक इसका मशरूम का यानी दुधिया मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो ये हमारे तीन मशरूम आपको बताया। और जब बारिश का समय शुरू हो जाता है इधर जून के आखिरी सप्ताह में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, यहाँ तक कि अक्टूबर तक कभी कभी बारिश हो जाता है, तो ऐसे में बारिश के समय में भी आप मशरूम का चुनाव करके इस तरह से ढेंगरी मशरूम का चुनाव कर सकते हैं। और हमारा एक पुआल मशरूम होता है जिसे हम गर्मा मशरूम के भी नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर अधिक क्षेत्र में और अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर जहाँ पर धान का खेती होता है तो धान के पुआल का कुट्टी भी बनाकर और धान का पुआल के बगैर कुट्टी बनाए हुए सीधे आप उसका छोटा छोटा बंडल बनाकर या उसका आटिया बनाकर, गट्ठर बनाकर उसके ऊपर भी बुआई करके आप गर्मी के समय में, इवें यहाँ तक कि बरसात के समय में भी आप एक गर्म मशरूम होता है या कह सकते हैं जो धान का पुआल मशरूम होता है उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, चार प्रकार के मशरूम हैं जो हम पूरे साल भर चार चार महीने के अंतराल पर यदि हम इसका चुनाव करें, गर्मी के समय में करें और बरसात के समय में करें, फिर ठंड का समय आता है उस समय करें, तो ये चारों प्रभेद को हम पूरे साल भर उसको उगा सकते हैं और आराम से व्यवसाय के तौर पे इसे हम देख सकते हैं या हम इसको अपना सकते हैं। और यदि आप इस चारों प्रभेद को अच्छी तरह जान लेते हैं और तो इसमें बात आती है कि बीज की मुहैया कहाँ से होगा, बीज का प्रबंधन के बारे में आपको जानना होगा, तब आप अच्छी तरह से इसका खेती कर सकते हैं और जीवन के रूप में इसका एक साधन बना सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की चार प्रकार के मशरूम हमारे बिहार क्षेत्र में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि तापमान आधारित होते हैं मशरूम उत्पादन, तो तापमान का आप खास ख्याल

0: रखें और उस आधार पर जितने भी प्रकार के मशरूम इन्होंने बताया जो सारे तापमान किस किस मौसम में लगाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने चार प्रकार के मशरूम बताए, तो इन चारों प्रकार के मशरूम में सबसे ज्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि सस्ता और फायदा हमारे किसान भाइयों को किस मशरूम के प्रकार को अपना कर हो सकता है?
1: सबसे शुरुआत में यदि हमारा किसान कम जानकारी मशरूम के बारे में है तो उसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिगनर, यानी शुरुआत करना चाहता हमारा किसान, या हमारा किसान के अलावा भी हमारे जो युवा बेरोजगार है उसको भी अपना सकते हैं खेती के रूप में। तो जो ढेंगरी मशरूम होता है उसे शुरुआत के तौर पे देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम समय में, लगभग एक महीने में ये बुआई से लेकर कटाई तक का कार्य इसमें हो जाता है, और बुआई का जो इसमें विधि है बहुत सरल है, और इसमें ज़्यादा साधन या संसाधन की जरूरत नहीं होता है। इसमें गेहूं का भूसा मिल जाए या इस तरह से जो हमारे फसल अवशेष होते हैं उसका मिल जाता है फसल अवशेष, तो उसका छोटा छोटा हम टुकड़ा बना लेते हैं या कुट्टी बना लेते हैं, फिर उसको हम उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के लिए कई तरीके हैं, गर्म पानी भी उपचारित किया जा सकता है या रसायन से भी उपचारित किया जा सकता है। रात भर के लिए इसको पानी में भिगो देते हैं, फिर सुबह निकाल कर उसके ढालू जगह पर रख देते हैं ताकि पानी पूरा भीगे हुए भूसे का निथर जाए, निकल जाए। जैसे भूसे का पानी निकल जाता है, निथर जाता है, फिर उसको सुखा कर छाए में फिर उसमें हम बीज मिलाते हैं, और बीज जो मशरूम का होता है उसे स्पान कहते हैं, यानी मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। तो जब हम बीज का उसमें मिश्रण बनाते हैं या लगाना शुरू करते हैं तो उसे बिजाई कहते हैं या स्पानिंग कहते हैं या बैगिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बुआई कर देंगे तो 10-15 दिन के लिए पीपी बैग को इसे बुआई किया हुआ छोड़ देते हैं, तो देखते हैं पूरा भूसा जो उपचारित करके हम बीज लगाए थे मशरूम का, पूरा चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद रंग का दही की तरह से एक परत जम जाता है। तो ये समझ जाते हैं कि मशरूम का जो माइसीलियम है यानी उसका जो शारीरिक काय है वो पूरा फैल चुका है। अब इसमें ज़रूरत है कि पीपी बैग को खोल दीजिए और थोड़ा हवा पानी दे दीजिए, फिर इसमें से छोटे छोटे कलिकाएँ निकलना शुरू होती हैं, और फिर एक हफ्ते बाद पूरा 21वें-22वें दिन पूरा इसमें मशरूम बैठ जाता है। तो 3-4 दिन के अंदर पे आप तोड़कर 1 महीने के अंदर पूरा इसको अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो 1 महीना इसमें समय लगा और संसाधन भी इसमें कम लगे, और इसमें और भी सामग्री जो लगते हैं कम लगे, और आसान तरीका है ये बुवाई का और कटाई का। तो इसलिए ढेंगरी मशरूम को बताया जाता है किसान भाइयों को कि आप यदि शुरुआत खेती करना चाहते हैं मशरूम का तो ढेंगरी मशरूम से करें। और इसका जो कीमत है बाजार में 100 रुपये प्रति किलो की दर से जाता है जो ताज़ा फल इसका होता है। और दूसरा एक मशरूम है वह है वाइट बटन मशरूम कहते हैं हम, तो जो हमारा वाइट बटन मशरूम होता है इसे हम बटन मशरूम भी कह सकते हैं। तो बटन मशरूम जो होता है वह ठंड के ही समय में हम कर सकते हैं, या हमारे पास व्यवस्था है तो तापमान को हम कम करके यानी डाउन करके भी बटन मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो इसमें पावर का ज़रूरत होता है यानी बिजली की ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम पावर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो हम एसी यानी एयर कंडीशनर नहीं चला सकते हैं। तापमान को हम 10 डिग्री सेल्सियस या 15-16 डिग्री सेल्सियस पर लाना है मशरूम का फलन काय लाने के लिए, तो इसके लिए अच्छे रूम का जरूरत पड़ता है। यदि हम आप सीजन में करते हैं बेमौसमी यदि हम बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो ऐसे में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पावर खर्च होता है और महंगा पड़ता है। यदि समय की बात देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी होली तक यानी मार्च तक हम आराम से बटन मशरूम का खेती कर सकते हैं, और इसके बाद का जब गर्मी बढ़ जाता है खेती करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मुश्किल तो होता जरूर है लेकिन फायदा इसमें सबसे ज़्यादा है। इसका जो कीमत है बाजार में 200 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक जाता है। तो ये बाजार के ऊपर निर्भर करता है कि यदि मार्केट में इसका जो डिमांड ज़्यादा आता है, मांग ज़्यादा होती है, तो इसका जो दाम होता है बढ़ता है, 300 रुपये किलो जाता है। यदि उत्पादन हमारा ज़्यादा हो जाता है ठंड के समय में, खासतौर से दिसंबर जनवरी के महीने में।
0: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको 2 प्रमुख प्रकार के मशरूम बताए जो आप आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं इसका, और जीवन यापिका करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है ये, और कहीं ना कहीं बाज़ार में भी आपको अच्छे मूल्य मिल सकते हैं।

0: और वो दो प्रकार के मशरूम थे, ढिंगरी मशरूम और बटन मशरूम। और अगर आप शुरुआती तौर पर आप उत्पादन करना चाहते हैं, आप को ज़्यादा जानकारी नहीं है मशरूम के बारे में, तो आप ढिंगरी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीज, यानी कि जो मशरूम के बीज होते हैं उन्हें स्पॉन कहा जाता है, तो इसे खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
1: मशरूम का बीज यानी जो स्पान है, उसे खरीदते समय जरूर ध्यान में रखें हमारे जो किसान भाई हैं या मशरूम उत्पादक हैं। हमारे जो मशरूम उत्पादक हैं या किसान भाई हैं, मशरूम का बीज खरीदते समय जरूर ध्यान दें कि जो आप मशरूम का पैकेट खरीदते हैं तो देखते हैं कि एक पॉलीथीन या पीपी बैग होता है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग का इस तरह से दही की तरह से जो दिखाई देता है, तो वही बीज शुद्ध होता है। ख़ास तौर से ये जो बीज तैयार किया जाता है मशरूम का, उसे हम स्पान कहते हैं। तो स्पान तैयार करने के लिए जो हम पोषा धार की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे दाने वाली फसलें होती हैं, जैसे धान है या गेहूं है, तो इसका चुनाव करते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरह से, कभी कभी मकई का भी चुनाव कर लेते हैं बीज बनाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा जो बीज बनता है वो गेहूं के दाने के ऊपर हम इसको उगाकर बनाते हैं। तो गेहूं का जो दाना होता है पूरा सफ़ेद सफ़ेद रंग का, उस पर आवरण चढ़ जाता है और गेहूं के दाने को ढक लेता है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। तो ये समझ जाइए कि ये हमारा शुद्ध मशरूम का स्पान है। और ऐसा यदि नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि काले काले रंग के धब्बे उसके ऊपर दिखाई देने लगते हैं जो मशरूम का स्पान का बैग है, तो ये समझ जाइए कि शुद्ध बीज नहीं है। उसमें काले काले रंग का धब्बा बनेगा और तो इसमें एस्परजिलस नामक फफूद, दूसरा फफूद आ जाएगा और बीज की गुणवत्ता को ख़राब कर देता है। इसी तरह से ग्रीन मोल्ड है, जिसे हम ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ये ट्राइकोडर्मा जो है ये मशरूम के बीज का दुश्मन होता है। तो ख़ास तौर से ये जो दो चीज़ें मैंने बताया, यदि भूरे भूरे रंग का या काले काले रंग का, तीसरा जो हल्का या गहरे हरे रंग का फफूद मशरूम के बीज के ऊपर दिखाई देता है, तो आप ऐसे बीज का चुनाव कतई ना करें। और यदि आप बीज चुनाव करके ले आते हैं, शुद्ध बीज चुनाव करके ले आते हैं और उसे रखने के लिए, मतलब यदि आप पास व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रिज वगैरह में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। यदि आज बीज खरीद कर ला रहे हैं, तैयार बीज है, तो उसे आप दो दिन तीन दिन रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। इससे ज़्यादा रखते हैं तो उसमें कंटामिनेशन हो जाता है और धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा हो जाता है और बीज की गुणवत्ता खराब हो जाता है।
0: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश चंद, जो बड़े वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आपसे यूं ही चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि, उन्नत कृषि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर गिरीश चंद्र हमारे साथ हैं और इनसे हम बातें कर रहे हैं आज के हमारे विषय जो है जीवन यापन के लिए मशरूम की खेती कैसे करें। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताया, और अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आपने बताया कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बीज खरीदते समय, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मात्रा में भी कुछ ख्याल रखना चाहिए जब हम बीज खरीदते हैं तो।
1: हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, यदि हम शुद्ध बीज का चुनाव करते हैं तो निश्चित है कि जो हमारा उत्पादन है वो शुद्ध होगा और अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ बीज और शुद्ध बीज का चुनाव करें, और बीज के चुनाव के साथ साथ मात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि यदि आप मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसका जो, ऐसा मैंने शुरुआत में बताया था कि बीज इसका 100 रुपया किलो आता है, और यदि आप ओइस्टर मशरूम का खेती यानी ढिंगरी मशरूम खेती करना चाहते हैं या दुधिया मशरूम खेती करना चाहते हैं या गर्मा के समय में आप पुआल मशरूम का खेती करना चाहते हैं जिसे हम पैडिस्टर मशरूम कहते हैं, तो इन तीनों मशरूम की खेती करने के लिए आप यदि 1 कुंतल गेहूं का भूसा है या इस तरह से पुआल कुट्टी है, तो उसके लिए आप 8 से लेकर

0: 10 किलोग्राम प्रति कुंतल की दर से आप इस पान का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप बटन मशरूम का खेती कर रहे हैं तो इसमें बहुत कम बीज लगता है, यानी एक कुंतल यदि आप बटन मशरूम का कंपोस्ट लेते हैं तो उसके लिए लगभग 800 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम, यानी 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक बीज आप ये चुनाव करते हैं तो बटन मशरूम के लिए इतना मात्रा पर्याप्त होता है।
1: तो डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को इसकी मात्रा का ख्याल रखने के लिए भी कहा है, और बातें बहुत सारी हो गई हैं आप सभी के साथ किसान भाइयों और बहनों, और आपको बताना चाहूँगी कि आज बाज़ार में मशरूम का बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अधिक मांग है, और इसलिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे स्थिति में अगर आप मशरूम उत्पादन करते हैं तो आप अच्छी तरीके से अपनी जीवन यापिका कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और अच्छे तरीके से मशरूम का उत्पादन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।

0: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाई, आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन आरजे अनु के साथ। साथ ही आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं मैं खास कार्यक्रम आपका उन्नत कृषि। जी हां, हम बात करते हैं इसमें खेती से जुड़ी बहुत सारी

0: चुका है और जलवायु को देखते हुए खेती करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सबोर्णा रे चौधरी मैम और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रोनॉमी। साथ ही आप सभी को बता दूँ ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ ही मैम यहाँ पर जैसा कि हमारा विषय है आज, तो जलवायु के अनुरूप क्या क्या सामान्य तकनीकी हो सकती हैं वो भी खेती करने के लिए, उसके बारे में बताएं सबसे पहले।
1: जी बहुत ही अच्छा विषय है आज के बात करने के लिए। तो इस बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी तो एक कॉपी और एक पेन आपके साथ में रखिए, क्योंकि आज के जो विषय है इसमें बहुत सारे ऐसे बात होंगे जो आपको नोट करने की बहुत ज़रूरत होंगे। तो जो भी हो आज के जो विषय है इस पर हम पहले बात करेंगे सामान्य क्या क्या तकनीकी है। अगर सामान्य तकनीकी की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए जो हमारे पास बीज की प्रभेद है वो तीन तरह के होते हैं, जल्दी प्रभेद, मध्यम प्रभेद और देरी का प्रभेद। सबसे पहले हमें निर्धारित करना है हमें किस तरह के प्रभेद चाहिए, हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, किस क्षेत्र में हमें फसल लगानी है, किस फसल की लगानी है और कितना एरिया हमारे पास है फसल को लगाने के लिए। तो जो बीज हम खरीद रहे हैं उस बीज जिस दुकान से भी ले रहे उस बीज का वैधता खत्म नहीं हो गया है, वैधता समाप्त नहीं हो गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बीज मिश्रित तो नहीं है, किसी और अन्य बीजों से मिश्रित तो नहीं है, या फिर कोई खरपतवार के बीज उसके साथ, या फिर कोई कूड़े का धूला का दाना तो उसके साथ मिश्रित नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बीज ले रहे वो उपचारित है कि नहीं ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बीज लेते वक्त आप बीज का जो पैकेट ले रहे वो खुला हुआ या फटा हुआ है कि नहीं, बीज में टैग है कि नहीं, ये सब चीज़ें देख के ही हम लोग कोई अच्छे जगह से, जैसे कोई ऑथोराइज्ड दुकान से, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से हम लोग बीज खरीदे। और जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे आधार बीज के लिए सफ़ेद टैग दिया जाता है, प्रमाणित बीज के लिए नीला रंग के टैग दिया जाता है, प्रजनक बीज के लिए पीला और सुनहरा रंग का टैग दिया जाता है। तो जनरली हम लोग जब बुआई करते हैं तो हम लोग प्रमाणित बीज को ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बीज ठीक है कि नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास बीज सही आ गया, अगर आपके पास पता है आप कौन सा फसल को उगाने जा रहे तो उसी सटीक मात्रा पे बीज लेने की बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात बीज को जहाँ पे लगाएंगे, मतलब आपकी मिट्टी कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जैसे मिट्टी में वायु संचरण अच्छा है कि नहीं, मिट्टी में जीवाश्म अच्छे से परिमाण में है कि नहीं, पानी निकासी की व्यवस्था है कि नहीं, मतलब जल जमाव कहाँ पर ना हो, क्योंकि जल जमाव ज़्यादा हो जाएंगे तो पौधे में पीलापन आ जाते हैं तो ये पौधे अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो पानी निकासी व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं गोबर खाद, जैसे कोई ज़मीन अच्छा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से 150 क्विंटल तक गोबर खाद वो अंतिम जुताई के साथ मिला के रख देते हैं, 15 से 20 दिन के बाद ही हम लोग बुआई के तरफ बांटते हैं। तो क्या हुआ इसमें ज़मीन के जीवाश्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे 2-3 फैक्टर है जिसको हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है। और भी एक जैसे जलवायु परिवर्तन की बात आता है तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, मिट्टी को कम से कम उसकी डिस्टर्ब करें, मतलब मिट्टी को बोलते हैं शून्य जुताई, आप लोग सब जानते हैं मिट्टी को कम डिस्टर्ब करके अगर जो जुताई, मतलब बिना जुताई के हम लोग अगर शोइंग करें बुआई कर पाएंगे वो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा है। और भी है जैसे मालचिंग बोलते हैं, मिट्टी का कहीं कोई भी जगह जो दो पौधे के लाइन के बीच में, दूरी के बीच में जो जगह छूट रहा है उसको जैसे पुआल से कोई भी ऐसे चीज़ों से ढक के रखना ताकि आपकी जो मिट्टी का जो पानी है वो बाहर उड़ के ना जा सके, तो ऐसे कोई भी चीज़ों से ढक के रखना। क्रॉप रेसिड्यू जो है उसको जैसे खरपतवार पुआल जो हमारे पास ढेर लगा हुआ था उसको ना जलाना, ये सब सामान्य तौर पर कुछ विधियाँ हैं जो हमें खेती करने के सबसे पहले ये जानना चाहिए।
0: तो यहाँ पर आपने जाना किसान भाइयों की कौन कौन सी विधियाँ हैं, साथ ही मैम मुख्य रबी फसलों के बारे में भी जाना चाहेंगे हम।
1: जी अभी देखिए जैसे रबी का मौसम चल रहा है जो ये ठंडी मौसम में मुख्य रूप से क्या क्या फसल होती है आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आप लोग गेहूं के फसल करते हैं, मक्का के फसल करते हैं, सरसों के फसल करते हैं, फिर कोई कोई जगह पे आलू भी ले लेते हैं। तो जो हम पहले गेहूं के बात करते हैं, अगर हम गेहूं के बात करें तो जैसे हम पहले बोले थे एक कॉपी और एक पेन रख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा ऐसे हम लोग पॉइंट पे आएंगे, ऐसे बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे जो आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम अगर गेहूं के बात करते हैं तो गेहूं के लिए जो सीड रेट की जरूरत है, जो मात्रा की सीड की जरूरत है वो है 100 केजी, और जितनी दूरी रखना है वो है 20 से

22 सेंटीमीटर, एक लाइन से दूसरी लाइन के गेहूं के जो दूरी रखना है वो 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। गेहूं में जो फर्टिलाइजर देते हैं उसकी मात्रा है 120, 60, 40। 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटेशियम। 120 केजी जो नाइट्रोजन होता है उसकी आधी मात्रा अंतिम बुआई के समय में और पूरी पूरी मात्रा फास्फोरस और पूरी की पूरी मात्रा पोटेशियम अंतिम बुआई के समय में हमें दे देना चाहिए। और आधी मात्रा जो नाइट्रोजन हमारे पास बच रहा है, मतलब 60 केजी जो नाइट्रोजन बच रहा है, उसको उसके बाद आफ्टर कोई भी पानी देने के बाद, सिंचाई के बाद, उसको लगातार 40-42 दिनों के बाद, फिर 20-22 दिनों के बाद दे देना चाहिए। एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, गेहूं के लिए पानी देना बहुत जरूरी है, तो पानी का प्रबंधन होना बहुत, मतलब जैसे सिंचाई बोलते हैं उसको ध्यान में रखने के लिए 21 से 25 दिनों के बाद पहला सिंचाई, बुआई के 21 से 25 दिन के बाद पहला सिंचाई, फिर 35 से 40 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई, फिर 55 से 60 दिनों के बाद तीसरी सिंचाई करनी है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर गर्मी के मौसम है तो सिंचाई के अंतराल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या आपकी मिट्टी अगर बालू के परिमाण ज़्यादा है, बालू के भाग ज़्यादा है, तो आपको सिंचाई के अंतराल कम कर देनी है, बोलते जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा। अगर बालू उतना नहीं है तो आपकी इसी अंतराल में पानी देने से ही सही रहेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट इशू आ जाता है, जैसे खरपतवार बहुत हम लोग जानते हैं गेहूं को बहुत परेशान करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं किशनोनील, बथुआ, गुली डंडा, गेहूं का मामा तो ऐसा एक खरपतवार है जो बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल गेहूं जैसा दिखने में होता है। बहुत मुश्किल होता है उनको पहचानना और उनको अलग करना कि वो गेहूं ही है कि वो एक वीड है, एक खरपतवार है। तो इसी तौर पे हम कहना चाहते हैं, जैसे पेंडीमिथालिन 30 EC, ये 1 kg, जैसे 1 kg AI पर हेक्टर के दौर से अगर 2 से 3 दिन के बुआई के 2 से 3 दिन के बाद हम लोग दे सकते हैं तो ये खरपतवार नियंत्रण हो सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा खरपतवार है तो हम लोग पेंडीमिथालिन के साथ साथ 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पेंडीमिथालिन 1 kg AI पर हेक्टर 2 से 3 दिन के बाद देने के बाद 2,4-D 38 EC 0.75, मतलब 75 ग्राम के हिसाब से हम लोग 35 दिनों के बाद, बुआई के 35 दिनों के बाद दे सकते हैं। जैसे एक चीज़ लेकिन ध्यान में रखना है, अगर गेहूं फसल के बाद हम लोग को कोई चारा फसल लेनी है उसके बाद लेना है तो सल्फोसल्फ्यूरॉन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो सल्फोसल्फ्यूरॉन आपके आने वाला जो चारा फसल है उनको नुकसान पहुंचा देंगे। और एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसे जिंक सल्फेट के इस्तेमाल करना, ये क्या किस लिए होता है, जैसे लगातार कोई भी एक ज़मीन पे अब धान की पौधे उसके बाद लगातार गेहूं के ऐसे कोई साइकिल ले रहा है, धान गेहूं, तो इसमें आपके जिंक की मात्रा कम हो जाती है मिट्टी में। इसको ठीक करने के लिए 25 केजी के दर से जिंक सल्फेट पर हेक्टर में देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जिंक सल्फेट 25 केजी, उसके साथ 20 केजी यूरिया 1,000 लीटर पानी में, मतलब 1,000 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्प्रेइंग करेंगे उसमें धूप खिली हुई रहनी चाहिए, मतलब खिली हुई धूप में करना चाहिए। तो मोटा मोटी हम, लगता है हम गेहूं के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। अब हम मक्का के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मक्का भी यहाँ पे हमारे इस प्रदेश में बहुत मान्यता प्राप्त एक क्रॉप है। तो मक्का के बारे में जो बात करेंगे, इसमें बहुत 2-3 वैरायटी होता है, जैसे शक्तिमान का कुछ वैरायटी है, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, 3, 4, ये सब वैरायटी है। मोटा मोटी 150 से 155 दिन के वैरायटी होते हैं। इनके मोटा मोटी जो उपज क्षमता है वो 85 से 90 क्विंटल तक जाते हैं। इसके अलावा भी राजेंद्र शंकर मक्का 1, ऐसा भी एक वैरायटी होता है जो थोड़ा सा लंबे अवधि है, 195 से 160 दिन का वैरायटी है। इनका यील्ड के पोटेंशियलिटी, मतलब उपज क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, 65 से 70 क्विंटल तक ले लेता है। DHM 117 भी एक वैरायटी है जो 155 से 160 दिन का वैरायटी है, जिसका उपज क्षमता है 90 से 95 क्विंटल पर हेक्टर तक। लेकिन ये सारे रबी फसलों के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है, ये जितने भी सारे फसल है इसके शुरू के दिन में ठंडे मौसम इनको अच्छा लगता है, और जब बाली निकल जाते हैं तो थोड़ा सा गर्मी लेकिन शुष्क वातावरण, मतलब
आपकी पानी नहीं होनी चाहिए, मतलब वर्षा नहीं होनी चाहिए। तो ठंडी के मतलब परिपक्व का टाइम है, यहाँ मोटा मोटी बोल सकते हैं बुआई के टाइम में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और परिपक्व का टाइम है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन शुष्क वातावरण बहुत ज़रूरी है, ये जितने भी रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए। तो

मक्का का हम बात करते हैं, मक्का के बहुत अच्छा जो शोइंग टाइम है, जो लगाने के समय है, वो है 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। ये जो है जनरली बोला जाता है हाथिया नक्षत्र जो है वो समाप्त होने के बाद ही मक्का का समय आ जाते हैं बुआई के। तो मक्का के लिए हम लोग जो सीड रेट अपनाएंगे वो 20 केजी प्रति हेक्टर के दर से अपनाएंगे। जो दूरी होगा वो लाइन के बीच जो लाइन के दूरी होता है वो 60 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एक मक्का का पौधे से दूसरी मक्का का पौधे का जो दूरी होगा वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो मक्का का पौधे लगाएंगे, मक्का के लिए भी सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंचाई करते हैं उसे 5 से 6 सिंचाई की मिनिमम ज़रूरत है एक मक्का का पौधे के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉन मंजूरी निकलने के बाद से बाली में दाना भरने के टाइम तक पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ये करते हैं ताकि बाली में जब दूध भरने लगते हैं उस टाइम में अगर आपके पौधे को पानी की कमी हो जाएंगे तो आपके दाना भरने में दिक्कत हो जाएंगे एवं दाना नहीं भी भर सकता है। तो इसलिए पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। मक्का के लिए जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वो मक्का के लिए 150 केजी नाइट्रोजन, 75 केजी फॉस्फोरस, 50 केजी पोटाशियम देते हैं। लगभग गेहूं के जैसा ही इसके सेम रूल है, गेहूं के जैसा ही इस पर पूरी की पूरी मात्रा फास्फोरस, पूरी की पूरी मात्रा पोटाशियम अंतिम जुताई के साथ ही दे देते हैं, और आधी मात्रा नाइट्रोजन ये सारा हम अंतिम जुताई के साथ दे देते हैं, और जो बची आधी मात्रा है वो हम लोग आगे के तौर पर देते हैं। किस कहाँ पे देना चाहिए, जहाँ पे गेहूं इसकी जो प्लांट की हाइट जब 40 से 75 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट हो जाएंगे तो उसकी आधी मात्रा नाइट्रोजन छिड़काव कर सकते हैं, और उसके बाद में भी और आधी मात्रा नॉर्मंजूरी जब निकलने लगते हैं उसके ठीक पहले हम लोग आधी मात्रा नाइट्रोजन दे सकते हैं। जो जैसे हम लोग खरपतवार की भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, तो खरपतवार के लिए एक बोला जाता है जैसे एट्राजिन, एक मक्का के लिए एकमात्र जरूरी खरपतवार नाशी है एट्राजिन। एट्राजिन 50% ये 1 kg AI पर हेक्टर के दौर से दो दिन बुआई के दो दिन के बाद ही हम छिड़क सकते हैं। अगर उससे भी खरपतवार आपके नियंत्रण उतनी अच्छे से नहीं हो रहा है तो 25 से 30 दिन के बाद दोबारा उसी एट्राजिन का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये तो गया हमारी मक्का के बाद, आप थोड़ा आते हैं सरसों। सरसों भी आजकल के ज़माने में बहुत, क्योंकि हम लोग साग के तौर पे भी सरसों को अपनाते हैं, सरसों के बाद आते हैं। सरसों जो जनरली लगाते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक से नवंबर के सेकेंड सप्ताह तक, नवंबर के फर्स्ट सप्ताह से नवंबर के सेकेंड सप्ताह से। लेकिन अगर 15 अक्टूबर तक हम लोग अगर सरसों का बुआई कर देंगे तो कीड़ा लगने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सरसों के लिए जो सीड रेट अपनाते हैं वो जनरली 4 से 5 kg होना चाहिए, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। सरसों के लिए, सरसों क्या सभी तेलहनी फसलों के लिए सल्फर एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। सल्फर की प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सल्फर आपकी तेल की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। तो ये सल्फर की प्रबंधन के लिए 20 से 25 केजी सल्फर की बुआई के समय देना बहुत ज़रूरी है, जितने भी तेल की फसलें हैं, तेलहनी फसलें हैं। अच्छा, और अगर हम लोग देखेंगे सरसों में जो पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, दो इरिगेशन की ज़रूरत है, 28 से 30 दिनों के बाद एक इरिगेशन की ज़रूरत है सरसों में, और दूसरा इरिगेशन जब फली बनना लगते हैं, फली बनने के समय में दूसरा इरिगेशन देते हैं। सरसों में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है माहू के निशान दिखाई देता है। वो माहू के निशान दो चीज़ों से जाएगा, एक क्या है खेत में नमी है कि नहीं, खेत में नमी बराबर मेंटेन रखना चाहिए तो माहू के निशान से आप बच सकते हैं। और कभी कभी क्या है मेड़ जो होता है ना फसल के बीच में जो मेड़ है उसमें धुआं करना चाहिए, ये धुआं करने से भी माहू के निशान से आप जुड़ सकते हैं। जैसे एक चौड़ा पत्ती के खरपतवार नाशी की हम बात करें तो सरसों के लिए चौड़ा पत्ती खरपतवार नाशी है मेट सल्फ्यूरन मिथाइल। ये जनरली 8 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करते हैं। क्लोरिडिनोफॉप भी 50% क्लोरिडिनोफॉप सुकड़ी पत्ती के लिए इस्तेमाल करते, इसके डोज है 160 ग्राम
200 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे साग निकलने लगते हैं, जैसे साग हम लोग सरसों का साग खाते हैं, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, जैसे प्लांट के बीच में जो दूरी है, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको मेंटेन रखिए, उसके बीज वाले जो पौधा है उसी से साग निकाल के ले लीजिए, ताकि आपकी दूरी मेंटेन रहे। और जब साग निकालने वाले हो तो नीचे का भारी पत्ता पहले उठाए, तो उसमें दो फायदा होगा, एक तो आपको साग मिल जाएंगे।

0: पीछे के बूढ़ा पत्ता जो बूढ़ा हो गया है उस पर भारी पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपकी जो कीड़े का आक्रमण, फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट एक बीमारी आता है उसके से भी बच सकते हैं। तो साग निकलते वक्त पहले आपकी जो थोड़ा सा पुराने पत्ते हैं नीचे से उसी को पहले उठाएं। तो हम लोग सरसों के बारे में भी थोड़ा बात करें, और सबशेष जो हम बात करते हैं उस बात रबी फसल में तो बहुत सारे फसल है, अब बात करते करते बहुत समय भी हो जाएंगे, तो हम सबशेष एक और फसल की बात कर देते हैं, वो आलू। आलू के बारे में हम जब बात करेंगे, वो आलू के बारे में ये बोला जाता है आलू सबसे संवेदनशील फसल है, क्योंकि आलू को ना बादल पसंद है, ना आलू को धूप ना निकलना आलू के लिए बहुत क्षतिदायक है, मतलब इनका अच्छा नहीं लगता है, उनको खिली हुई धूप अच्छा लगता है आलू को। तो आलू के बारे में सबसे ज़्यादा जो हमारे कृषि बंधु प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो है पाछेती झुलसा। पाछेती झुलसा ऐसा एक है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेट ब्लाइट। इस लेट ब्लाइट के साथ जैसे होता है ना पत्ते के नीचे काले या भूए रंग का एक गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं, इसके साथ जुड़ने के लिए आपको मैनकोजेब या फिर जीनेब या फिर डाइएथेन M45 या फिर Z78, ये सारा आप कोई भी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम कोई भी एक को लेके मिला के स्प्रेइंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी फेरोमोन ट्रैप, जैसे आप लोग देखते हो जलवायु परिवर्तन में आजकल बोलते हैं कि केमिकल के इस्तेमाल नहीं करके हम लोग फेरोमोन ट्रैप, मतलब वो जो ट्रैप बनाते हैं कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए, तो वो 1 एकड़ के लिए 5-6 फेरोमोन ट्रैप अगर 1 एकड़ जमीन में लगा दे तो तना छेदक जितने भी कीट है उनको हम मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल के अगर 1 ग्राम हर 1 लीटर पानी में मिला के अगर 12 से 15 दिन के बाद अगर हम आलू के खेती में छिड़काव करते हैं तो सीड ब्लाइट, मतलब सीड ब्लाइट से भी एक बीमारी है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो सीड ब्लाइट हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे जो स्टेम्स है जो उनके जो शरीर है तन में बड़े बड़े गोल धब्बे मिलेंगे, उसमें बैगनी रंग का गोला घेरा हुआ गोल मिलेंगे, उसी से पता चलेगा स्टेम ब्लाइट है, उसको मुकाबला करने के लिए हेक्साकोनाजोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे थे पाले की मार, आलू के लिए ये भी बहुत दिखने के लिए मिलता है, ये पहले ही हम बता चुके हैं, खेत में हल्की सिंचाई हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा, मेड़ में धुआं करने की ज़रूरत है तो हम इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी इमिडा क्लोरोपीड हम दे सकते हैं जो 125 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बाली में धूल जैसे गूड़ा जैसा दिखने लगता है उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। अब आलू के बाद थोड़ा फल के पेड़ में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं तना छेदक कीड़ा हो जाते हैं, तो एक सहज सिंपल सा हम तरीका बता सकते हैं, अगर तन में फल के पेड़ के तन में कोई छेद हो जाए, कीड़ा कोई छेद बना ले, तो हम लोग क्या करते हैं उस छेद में वो रुई में मिट्टी का तेल लेके उस छेद में डाल देते हैं और डाल के उसको गीला मिट्टी से ढक देते हैं, उस छेद को बंद कर देते हैं, तो इसी से हम लोग फल के जो तन में जो छेद होता है उसमें से भी मुकाबला कर सकते हैं। ये थोड़ा मोटा मोटी जो भी रबी फसल है हम कोशिश किए हैं उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देने के लिए।
1: हाँ किसान भाइयों, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी, लेकिन जाते जाते मैम आपसे इस विषय से जुड़ी कुछ संदेश जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें।
0: अगर कुछ संदेश के बाद बोले तो जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है और होने वाला है, इसके साथ जुड़ने के लिए हम बस आपसे अपेक्षा करेंगे आप लोग जुताई जो करेंगे उसमें गहरी जुताई पर मत जाइए, मिनिमम जो जुताई जो हल्की जुताई में हो सकता है, जैसे आपकी गेहूँ की फसल मक्का की फसल हल्की जुताई में आराम से हो सकता है उस जुताई को अपनाइए, शून्य जुताई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और जो फसल के बीच में दो फसल की लाइन के बीच में जो दूरी है उसको ऐसे खुला मत छोड़िए, उसको पुआल से खरपतवार से किसी भी पुरानी चीजों से ढक के रखिए ताकि मिट्टी की जो अंदर की जो पानी रखने की क्षमता हो वो खत्म ना हो जाए। मिट्टी में ज्यादा से ज्यादातर ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों के यूज कीजिए, रासायनिक पदार्थों को छोड़ के रासायनिक खादों को छोड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, और सबसे अहम जो बात है जो जो जो समर के मौसम होता है गर्मियों के मौसम होता है उसमें कभी कभी हम लोग फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं है, खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें ऐसे कोशिश कीजिए उसको कहीं ढक के रखिए या फिर कोई भी सामान्य क्रॉप को लेके भी उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम लोग चारे के रूप में या फिर कोई भी एक फसल से हम लोग उस फील्ड को खेत को कवर करके रखें ताकि हम लोग जलवायु परिवर्तन को और बढ़ावा ना देने से रोक सके।
1: तो किसान भाइयों आपने बहुत अच्छी जानकारी ली हमसे, यानी कि 90.8 FM ग्रीन पर आज हमारे साथ थी डॉक्टर सबुर्णा रे चौधरी मैम, और बहुत ही अच्छी विषय के साथ ही आई थी और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ ही आई थी।

0: आप सभी ने इनसे बहुत ही अच्छी जानकारी ली, तो आशा करती हूँ कि आप इन जानकारियों को अपनाएंगे, सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि अपनाएंगे और खेती जलवायु के अनुरूप आप खेती कर पाएंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?

0: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर।
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर,
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका इस धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति

0: हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैंक चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा कि क्योंकि मत्स्य

0: पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 60-70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से

15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करे। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करे। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें।
पशुपालक भाई बहन

पी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का. और फिलहाल आज जो विषय लेकर आए हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ये बाढ़ की स्थिति की बात करें तो इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं. लेकिन हम एक आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने आप के बचाव के लिए ऊँचे स्थान पर जाते हैं, अपने खान पान का पहले से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं. लेकिन जो पशु हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो तो पशुपालक भाइयों पे ही डिपेंड रहते हैं. तो ऐसे में पशुपालक भाई बाढ़ की स्थिति में अपने पशुओं के आहार का, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे, इन सारी जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. डॉक्टर साहब आपका स्वागत है सबसे पहले.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो जैसा कि हमारा विषय है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में पशुओं की रख रखाव, तो ऐसे स्थिति में पशुपालक भाई क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पशुओं के लिए, उनके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं.
1: जी, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के में जल जमा के जल नदियों के पानी में जब काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है. तो जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है वहां के पशुपालक अपने पशुओं पशुपालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते हैं. लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अचानक बाढ़ आ जाती है वहाँ पशुओं को के रख रखाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. जो मनुष्य तो छत पर जाके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है. तो इसके लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा कई

0: ऐसे स्थान हैं जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में चिन्हित स्थान होते हैं, जहां से पूर्व से ही वो स्थान निर्धारित है जहां आप अपने पशुओं को बाढ़ के अचानक स्थिति में अगर पानी आ गया तो वहां से आप अपने पशुओं को निकाल कर ले जा सकते हैं और वहां रख सकते हैं। वहां वैसे जगहों पर उनके पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रति वयस्क पशु 3 से 5 किलो सूखा चारा और सूखा भूसा और कुछ दाना की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वैसे जगहों पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो वहां के पशुपालक अपने पशुओं के चारे के लिए ऊंचे स्थान पर चारा पहले से सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वैसे स्थानों पर जहां अचानक बाढ़ आती है तो पूरी तरह से चारा भींग जाता है, भूसा भींग जाता है, हरा चारा डूब जाता है। तो उस स्थिति में हमारे पशुपालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके पशुओं के चारे धन में। तो वैसे जगहों पर आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या जो ऊंची सड़कें हैं वहां अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लेकर जाते हैं या ऊंची स्थान पर लेकर जाते हैं, लेकिन पशु को ले तो जाते हैं लेकिन उनके सारा जो चारा है वो डूब जाता है। और भींगा हुआ चारा आप अगर अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप पहले से इसका निर्धारण करें, अगर बाढ़ आती है तो सूखे स्थान पर चारा का व्यवस्था करके रखें, अन्यथा ऊंचे स्थान पर जो सरकार के द्वारा चिन्हित है, पशुपालन विभाग के द्वारा, राज्य जिला प्रशासन के द्वारा, वैसे जगहों पर पूर्व से ही बाढ़ के समय जब आने की संभावना हो पूर्व से ही अपने पशुओं को ले जाकर रखें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लें।
1: जी, तो ये बात हो गई कि कैसे रख रखाव करना है। अब देखा जाता है डॉक्टर साहब की जब बाढ़ आता है तो चारे का काफ़ी अभाव हो जाता है जो कि मुख्य यूँ कहें कि आहार है हमारे पशुओं का, तो ऐसे में पशुपालक भाई कैसे खाने का प्रबंधन करें?
0: जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब चारा एकाएक बाढ़ आने के बाद जब चारा पूरी तरह से घर से नहीं निकाल पाते हैं लोग भूसा अपना या पुआल, तो वैसी स्थिति में जो वैकल्पिक चारा का स्रोत है, पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, या जो मकई का या सूखा डंठल है, या जो अन्य अवशेष है, फसल अवशेष हैं, अगर उसकी उपलब्धता होती है तो ठीक है, अन्यथा पेड़ की टहनियां, पेड़ के पत्ते को खिलाकर आप अपने पशुओं को वैकल्पिक रूप से खिलाकर जिंदा रख सकते हैं। लेकिन उनकी पोषक तत्वों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हरेक कॉम्फेड के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से या पशु चिकित्सा विद्यालयों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के माध्यम से हरेक जगह पर फीड ब्लॉक के संधारण की व्यवस्था की गई है, और खास करके अभी कंप्लीट फीड ब्लॉक जो एक ईंटे के शक्ल में कंप्रेस करके चारा को बनाकर जिसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, और जब बाढ़ की अवस्था होती है या जब चारे का अभाव होता है तो वैसे जगहों के पशुओं के लिए इस फीड ब्लॉक को आसानी से हम पहुंचा सकते हैं और वहां पर फीड ब्लॉक खिलाकर अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: जी, अब बात करते हैं जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो कई जगहों पर जो है गंदगी जमा हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी कई बीमारियां होने की जो खतरा है वो बना रहता है, तो ऐसे में इसका जो बचाव है वो कैसे करेंगे पशुपालक भाई?
0: जी, जल जमाव के बाद जब पानी जब उतरता है तो उसके बाद एक कई जगह तो कीचड़ होता है, कीचड़ के बावजूद भी नई घास का बहुत तेज़ी से वहाँ पर पनपती है, और खास करके वैसे जगहों पर जहाँ बाढ़ का पानी जमता है या उन जगहों पर जहाँ पानी उतरता है वहाँ के पशुपालक अगर अपने पशुओं को नया चारा जो निकला उसको अगर खिलाते हैं तो पशुओं में छेरा नामक बीमारी जो लीवर फ्लूक के चलते होता है, जिसमें कि काफ़ी पतला दस्त होता है और उसके जबड़ा के नीचे सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हर जगह नमी की अधिकता रहती है, ऐसे समय में कई प्रकार की परजीवी जनित रोग या जो ब्लड पर प्रोटोजोआ है उनके द्वारा होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, जैसे बेबीसिया, थैलेरिया और ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा नामक बीमारी का भी काफ़ी प्रकोप होता है। खास करके जल जमाव अधिक होने के चलते मच्छर, मक्खी और जो चमोकन की भी अधिकता होती है उसके चलते भी कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इन जैसे आपने अभी हमने बताया कि वहाँ पर ब्लड पैरासाइट या ब्लड प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं उससे बचाव के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में अगर आपके पशुओं में रेड

0: मटर या किसी अन्य प्रकार की बीमारी है तो उसके हिसाब से चिकित्सा करवा सकते हैं, लेकिन खास करके छेरा से बचने के लिए आप अपने पशुओं के बाढ़ग्रस्त इलाके में खास करके ऑक्सीक्लोजानाइड और लिवामिसोल ग्रुप की दवा का प्रकोप करें जो कृमिनाशक है और आपके पशुओं में छेरा से बचाव में काम आ सकता है। खास ही जब जल की निकासी हो जाए और नया घास आए तो वैसे जगहों पर अगर आप देखें घोंघे की अधिकता है तो घोंघा एक प्रकार से का काम करता है, तो उनको जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक का सॉल्यूशन से घोल बनाकर देकर घोंघे को नष्ट करें। अगर घोंघे नष्ट हो जाएंगे तो ये जो छेरा नामक रोग है इसके जो वेक्टर में बीच में ब्रेक होगा और ये जो छेरा बीमारी है इससे आप बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ अपने पशुओं को जो पेरिनियल जो प्रत्येक वर्ष टीका लगाया जाता है पशुपालन विभाग के द्वारा सरकार के द्वारा, इसका भी आप ले सकते हैं। HSBQ का टीका पड़ता है, फुट एंड माउथ डिजीज का टीका पड़ता है, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का टीका पड़ता है, बकरियों में PPR का टीका पड़ता है। इन बीमारियों का टीका जो है खास करके मई जून के महीने में HSBQ का टीका, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी में जब FMD का टीका पड़ता है, तो रोग से बचाव के से टीका से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अर्थात रोग होने से अच्छा है कि रोग से बचाव हम कर लें टीका के माध्यम से। तो अपने पशुओं को टीका लगवाएं, समय समय पर कृमिनाशक दवा का प्रयोग करें, और अगर बाढ़ ग्रस्त इलाके में आपके का चारा डूब गया है और उसके बाद जल्द ही पानी निकला है तो अगर आप उस चारे का प्रयोग करें भी तो उसको पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा जो एफ्लाटॉक्सिन या इस प्रकार के कई फंगस लग जाते हैं जिससे भी कि पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उनका अगर प्रयोग आप करते हैं तो पूरी तरह से सुखाने के पश्चात ही करेंगे।
1: जी जी, तो इस अच्छी सी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से बातें होंगी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर राजेश कुमार सर से, और बहुत ही उपयोगी वो विषय होगा। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और नमस्कार।
2: उन्नत कृषि। टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्यघर।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुंदर बोले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: 90.8 MHz पर FM ग्रीन में हम कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं, और मैं हूं ईश्वर चंद्रा। साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री शशिकांत शशि जी, जो कि सहायक निदेशक प्रशासन हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे एफएम ग्रीन के स्टूडियो में पहली बार आप पधारे हैं। तो किसान भाइयों और सभी युवा जनों और किसान बहनों, हम काफ़ी लंबे अरसे समय से आप तक हम कृषक मंच कार्यक्रम लेकर आते रहे हैं, जिसमें कि खेती की बातें और जो आपके हर रोज के जो मौसम के हिसाब से खेती और उसके मौसम की जानकारी के साथ हाजिर होते रहे हैं। लेकिन आज का दिन, आज का ये जो विषय है वो बिल्कुल खास है, और इसमें कृषि की बात नहीं होगी लेकिन कृषकों की बात होगी, और वो बात है, वो जो हमारे मुख्य भूमिका में होंगे वो किसान होंगे, और चर्चा का जो विषय होगा वो है किसान और पुरुषार्थ। तो शशि जी, आज का जो विषय है किसान और पुरुषार्थ, इसमें जो पुरुषार्थ है एक बहुत ही इसकी विहंगम, एक जैसे ही पुरुषार्थ की बात आती है तो इसका अर्थ हम किसान के साथ जोड़ के कर रहे हैं, इसका आप विश्लेषण थोड़ा करेंगे।
9: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल किसान, जो हमारे देश के किसानों के बारे में आप सुनते आए हैं, समझते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान ही देश है, आप जानते हैं। यहाँ के लगभग 64% लोगों की जो रोजी रोटी है वह किसानी या खेती से ही होती है।
8: जी,
9: किसान अपने लिए, उसका एक कर्तव्य है कि वह अन्न उपजाएगा। जी, अन्न उपजाने के बाद वह लोगों के बीच वह कुछ अर्थ के लिए वितरित करेगा या बेचेगा। उस अन्न का जो उपयोग होता है वह इंसानों के बीच होता है। इंसान अगर भूखा है तो वह पशु के समान है।
8: बिल्कुल,
9: आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में अन्न की उपलब्धता हर जगह नहीं है।
8: जी,
9: और कई बार ऐसे भी विषम परिस्थितियां आई हैं जब अन्न की उपलब्धता नहीं होने पे इंसान इंसान नहीं रह गया है। जी, तो उस समय किसानों की जो सार्थकता है वह समझ में आती है। किसान जो अन्न उपजाता है विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, किस प्रकार से वह धरती माँ को आग्रह करके अपना सब कुछ न्योछावर करता है, एक उद्यमी के रूप में अपना सब कुछ दे देता है। तो किसानों की जो बात जब होती है तो किसानों की मेहनत की बात बहुत कम होती है। तकनीक की बात होती है, विज्ञान की बात होती है, मौसम आधारित खेती की कभी

0: करते हैं तो कभी इस तकनीक को इस प्रकार से उपयोग करने की बात होती है, खाद आधारित जो है सो कई सारी फसलों की बात होती है, लेकिन उसको करने वाले जो किसान हैं उनकी मेहनत की बात, उनके पुरुषार्थ की बात होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं ज़्यादातर कृषक समाज के लोग और कृषक समुदाय के लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कृषि से संबंध रखते हैं लेकिन सिर्फ कृषि को उपभोग के तौर पर लेते हैं, आप कभी सोच कर देखिए कि एक किलो चावल आपके घर में एक दिन में खपत होती है, लेकिन उसे उगाने के लिए किसान कितना मेहनत करता है। आप कभी एक किलो धान उगा करके आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसे उगाने में कितना मेहनत लगता है, एक किसान अपना खून पसीना कैसे एक करता है उसे उगाने के लिए। तो हम अब बात कर रहे हैं शशि जी की उसके पुरुषार्थ में किसानों की मेहनत के बारे में। तो मेहनत जो है वो किसानों का सुबह से लेकर के जब से वो हल कंधे पे रखने की परंपरा थी, आजकल ट्रैक्टर की परंपरा हो गई है, और रात में जब वो थका हुआ घर पे आता है उस समय तक वो राउंड क्लॉक वो अपना काम में संलग्न रहता है और एक बार भी उफ नहीं करता है। तो अब जो उसकी भूमिका है उसकी अगर हम चर्चा करें हमारी जो अर्थव्यवस्था में, उस पर भी एक बार प्रकाश डाल दें।
0: किसान जो है, जैसे भारत में कहते हैं कि किसानी एक प्रकार से आप कहें कि सेवा भी कह सकते हैं, आप उनको व्यवसाय भी कह सकते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि किसान का जो कार्य है वह आध्यात्म से जुड़ा है। वह इंसानों को एक ऐसी व्यवस्था देता है कि इंसान जीवित भी रहे व्यवस्थित भी रहे। तो किसान का जो कार्य है वह किसी अच्छे उद्यमी से 100 गुना है, एक साधु के जैसा है, एक संत के जैसा है। मैं मानता हूँ आध्यात्मिक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान को आप देखेंगे तो बेचारे बड़े सीधे तरीके से एक ही काम में अपना तल्लीनता रखेंगे, अपने गायों को, अपने पशुओं को नित्य क्रम नित्य प्रति जो है उसके प्रति वो सेवा भाव रखते हैं, अपने खेत के प्रति, अपने अपने जो आसपास की जो चीज़ें हैं प्रकृति ने जो उनको प्रदत्त की है उसके प्रति वो निष्ठा भाव से लगे रहते हैं और अनवरत। ऐसा नहीं कि यह मौसम प्रतिकूल है तो हम आज खेती करने नहीं जाएंगे, कहते हैं ना कि का वर्षा जब किसी हुआ तो उनके लिए ना कोई रेस्ट नहीं है, दे विल डू कंटिन्यूसली देयर हार्ड वर्क। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आज ये खाना नहीं खाना है, आज ये खाना जो है ना बासी, अब थोड़ा सा पेट भर गया, अब छोड़ो इसको फेंको। उस थोड़े से अन्न को उपजाने की जो मेहनत है, कभी अगर हम लोग सोचें और करने की हिम्मत करें तो शायद नहीं हो पाएगी। किसान उद्यमी इसलिए हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमम पार्ट जो है धरती माँ को अर्पित कर देता है कि माँ अगर आप लौटाएं तो ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा है। और धरती माँ भी उनको कभी नाराज नहीं करती है, शायद ही वो उनको नाराज करती हूँ। वो अगर 10 दाना बोता है किसान तो उन्हें वह 100 दाने में परिवर्तित करती है। तो ये किसानों का साधुपन ही है, एक एक उद्यमी के रूप में इतना साधुपन किसी में नहीं आएगा, लेकिन इस व्यवसाय में, किसानी व्यवसाय में यह साधुपन आपको दिखेगा। अब पुरुषार्थ की बात करते हैं। ईश्वर ने पुरुषार्थ करने की ताकत केवल मनुष्य में दी है, सभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, एक इंसान ही है जो पुरुषार्थ कर सकता है। और पुरुषार्थ का जो एक जो भाव है मन में आना सभी के लिए संभव नहीं है। किसान पुरुषार्थ से क्यों अटैच्ड है, मैं बताऊं, पुरुषार्थ के 4 भेद धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये हम सब मानते हैं, पर मेरा मानना है कि अनुशासन और हृदय की पवित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। अनुशासन किस प्रकार से किसानों से अटैच्ड है, वो नित्य प्रति अपना निरंतर भाव से एक समान रूप से ड्यूटी अपना निभाते हैं, खेती करने जरूर जाना है, गाय की सेवा जरूर करनी है, अपने आसपास के जो प्रकृति की चीजें प्रदत्त हैं उनको जरूर सेवा उसकी करनी है, बदले में ईश्वर जो उन्हें दे।
1: बिल्कुल।
0: अन्न उपजाएंगे लोगों की भूख मिटेगी, भूख मिटेगी तो इंसानियत का भाव बढ़ेगा, संतुष्टि आएगी। ये जो पवित्रता है, ये जो अनुशासन है, ये धर्म है, सच्चा धर्म इसे ही कहते हैं। तो किसानों से बढ़िया धर्म कौन निभा रहा है,
1: बिल्कुल मुझे नहीं लगता। अगर आज खाने की जहाँ किल्लत हो जाए
0: जी,
1: वहां पर सभी धर्म अपने घुटने टेक दे,
0: सभी टेक देंगे।
1: तो यानी कि जो धर्म का उद्गम कहें तो ये किसानी से ही, किसानी से होती है।
0: भूख जो है ना, भूख कोई मजहब नहीं देखता है, जहाँ रोटी की आवश्यकता होगी वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख नहीं देखते,
1: नहीं।
0: उन्हें भूख में रोटी चाहिए,
1: रोटी
0: और रोटी कौन उपजा के देगा, तो किसान देगा। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, पर मूलतः वह किसान ही रहेगा। अब हम बात करते हैं अर्थ की,
1: तभी उत्तम खेती मध्यम,
0: उत्तम खेती मध्यम का। और इनका जो ये जो कार्य है ये एक व्यवसाय नहीं है, ये कृषि जो है ना व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसाय के रूप में नहीं लेते हैं।

0: लगता है ये मेरा कर्तव्य है। अगर हम गाय की सेवा नहीं करेंगे तो माँ भगवती रूठ जाएगी, अगर हम धरती की सेवा नहीं करेंगे तो माँ धरती रूठ जाएगी, भगवान सूर्य की सेवा, सूर्य को प्रणाम से भगवान रूठ जाएंगे। तो ये जो परंपरा है, जो भक्ति है, आप देखिए कई सारे त्यौहार में भी है। आप छठ माँ की पूजा करते हैं, प्रसाद क्या चढ़ाते हैं, वही गेहूं का बना हुआ, वही गन्ना,
1: बिल्कुल
0: वही हम सूर्य को, भगवान को जो है जल अर्पण करते हैं। तो ये सब किसानों के द्वारा है, ये सब जो है जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं ये किसान के द्वारा उन्हीं के तौर तरीके से बना है। ये वो सीधे भगवान को वो जो अर्पण करते हैं वो सीधा लगता है जैसे कि एक मन को एक तरीके से जोड़ा हुआ है उन्होंने, उनके साथ समर्पण है उनका, वो भाव दिखता है। अब आप कहते हैं कि जो हमारा जो काम है, देखिए काम को ना हम लोग भौतिक रूप से ले लेते हैं कि भोगने की इच्छा है हमारी काम है, दरअसल किसान जो काम करते हैं, किसान के लिए जो काम है, काम का जो लक्ष्य है उनका है कि यदि हम कुछ भी उपज लाते हैं या दूध ही अपने जो भी गाय माता है उनसे दूध दुह के जब लाते हैं, जब कोई बच्चा पीता है ना उनकी संतुष्टि ही उनको ना एक आत्मसंतुष्टि ही उनको ना एक एक तरीके का सुख देती है, यही काम है उनके लिए, यही काम है। और मोक्ष, हम तो कहते हैं साहब कि इस देश में अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप अगर कोई रास्ता चुनते हैं तो खेती को चुनिए, प्रकृति से जुड़िए। यदि आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, छोटा सा किचन गार्डन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने बच्चों को दिखाएंगे कि कुछ फसल उगाइए खेती से, खेती के लिए नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने के लिए, तो वह बच्चे संस्कारी बनेंगे। आपके बच्चे यदि संस्कारी बनेंगे तो समाज में एक अच्छा निर्माण होगा, देश में एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होगा। तो ये जुड़ाव कैसे हो रहा है किसानों को देख के, ये भी ये यही एक तरीके से मोक्ष है। हम कह रहे हैं कि संस्कार तो तभी बनेंगे ना जब आप इसकी पहल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बच्चों में यह बात बताएंगे। मैं बार बार यह कहता हूं कि किसान इस देश की रीढ़ है। सेवा क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, निर्माण क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, हम चांद पे पहुंच गए हों, लेकिन साहब चांद पे जाने वाले वैज्ञानिक के बच्चों को भी भूख लगती है
1: और वो खाना ही से जाएगा,
0: खाना किसान के द्वारा जाएगा। किसान नहीं उगाएगा तो जापान से आपके लिए अन्न आना बहुत मुश्किल काम है। तुरंत कहते हैं ना कि तुरंत एनर्जी के लिए या शरीर को जो है भूख मिटाने के लिए आपको अन्न चाहिए, वहाँ पैसे या सामानों की उपलब्धता या अंतरिक्ष में पहुँचने से नहीं, आपको पेट तो वह रोटी ही,
1: रोटी से ही भरे,
0: ठीक है। तो हम यह मानते हैं कि किसान जो है भगवान के साक्षात बनाए हुए ऐसे रूप हैं जो इंसानों को एक तरीके से वह व्यवस्थित रूप देता है, एक तरीके से वह ऊर्जा का एक कहते हैं कि भंडार देता है कि आप जीवित रह सकते हैं। हम जीवित रहेंगे तब ना इंसानियत,
1: बिल्कुल। तो साथियों, आप में से जो भी लोग अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने डाइनिंग टेबल पर जो रखी हुई रोटियां और जो सब्जियां हैं उसको उगाने वाले के लिए आपने कभी धन्यवाद नहीं कहा होगा, बनाने वाले के लिए आपने ज़रूर उसके शुक्रिया कहा होगा, परोसने वाले के लिए कहा होगा, लेकिन जो उगाने में जो मेहनत लगती है उसके पीछे जो मेन हीरो जो हमारा किसान है उसके बारे में आपके दिमाग में कभी एक पल ख्याल नहीं आता है। तो ये जो कार्यक्रम है वो हम इसी वजह से, एक हमने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया, एक हमने एक कदम उठाया कि किसानों के बारे में आपको अवगत कराया जाए कि आखिर वो किसान कैसे युगों युगों से आपकी सेवा कर रहे हैं और बिना किसी लालच, बिना किसी भय, बिना किसी दुख और इस सभी चीज़ों से परे होकर के एक ऋषि की तरह एक कृषि कार्य किए चले जा रहे हैं। और ऐसा एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में खाएगा वही जो उगाएगा। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए कि आपको जब आने वाले दिनों में इतनी सारी जो तंत्र विकसित हो जाएंगे तो आप थर्मोकोल खा करके जीवित नहीं रहेंगे, आखिरकार आपको रोटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान जो युगों युगों से आपकी सेवा में रत हैं वो अगर आप उनके बारे में नहीं जाने, उनके बारे में सम्मान और उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो एक दिन आपको भूखे रहने की बारी आएगी और आप खुद उगा पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनको ऐसा लगता है कि हम किसान हैं लेकिन अपने बच्चों को किसान नहीं बनने देंगे?
0: मेरा तो आम लोगों के लिए भी सुझाव है। आजकल देखते हैं कि एक आजकल नया रोग चला है, डिप्रेशन वर्ड कई बच्चों में आजकल सुनने को आया कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बड़े लोग भी आजकल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये डिप्रेशन जो है ना ये शौकिया रोग है। आप किसानों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, किसानों के बच्चों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, उनके पास तो मुसीबतों का अंबार लगा रहता है, तो अगर अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों में अगर वो

0: डिप्रेस्ड होने लगे तो खेती कौन करे। मैं तो यह कहता हूँ कि जो भी अच्छे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वह अगर अपने बच्चों को हो सके तो साल में 2-4 दिन किसानों के समक्ष लेके जाएं, उनकी रोजमर्रा की रूटीन को दिखाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अवसाद तो उन्हें आएगा ही नहीं। किसानों के जो तौर तरीके जीवन, उनकी जो जीवन शैली है, उनसे अगर यदि उनको रूबरू करा दें, उनके दैनिक जो कार्यक्रम है या उनके जो दैनिक काम करने की जो क्षमता है, जो जिस प्रकार से वो काम निष्पादित करते हैं, उन्हें अगर बच्चे देख लें, समझ लें, तो मुझे लगता है कि उनको अवसाद तो कभी पूरे जीवन में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे रोग भी उनको नजर आएंगे। अब किसान अगर उनको डायबिटीज होने लगे, किसान को अगर मोटापा होने लगे, यह मैंने कभी सुना ही नहीं है। अवसाद तो खैर बहुत दूर की बात है। तो आजकल मैं यही कहूँगा कि बच्चों को जो है कम से कम कृषि से जुड़ाव के लिए उनके समक्ष जरूर कभी कभी ले जाया जाए। और हम लोग किसानों को क्या है कि उनकी वेशभूषा से आंकते हैं, उनके हृदय की गहराइयों को हम नहीं देखते हैं। आप अगर किसान, चाहे वो कितने ही गरीब हों, आप यदि उनके दरवाजे पे चले गए ना, तो आपको वो 2 रोटी और 1 गिलास दूध जरूर दे देंगे। ये उनकी क्षमता में हो या ना हो, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सेवा भाव कहाँ है? ये सेवा भाव नहीं मिलता है। मैंने देखा है, मैंने गाँव में भी देखा है, मैंने आसपास में भी देखा है। और मुझे जब भी कुछ परेशानी होती है ना, तो मैं अपने आप को ना किसानों से थोड़ा सा जुड़ के महसूस करता हूँ कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, इस सिचुएशन में वो कैसे करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में आखिर वो लड़ कैसे लेते हैं, उनको वो क्षमता कहाँ से आ जाती है। तो शायद ईश्वरीय उनको जो है, एक तरीके से कहिए कि उनको प्रसाद मिला हुआ है, ईश्वर ने उनको कुछ ऐसी दी है क्षमता कि वो विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी बैल से उनको जो है दोस्ती है, उसी हल से उनको प्रेम है, उसी क्या कहते हैं पृथ्वी माँ से जो है उनको लगाव है, प्रकृति के समक्ष वो एकदम जुड़े रहते हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बरसात, क्या धूप, हर एक मौसम में उनको जो है सो आप देखेंगे कि लगे हुए हैं। तो यह जो निरंतरता है, यह उनके अंदर की जो क्षमता है, वो पुरुषार्थ का सार्थक, एकदम सार्थक वो है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आम आदमी में आप नहीं देख सकते। और भारतीय किसान के बारे में कह रहा हूँ मैं, भारतीय किसान, चूंकि हम लोग आसपास में जब भी देखते हैं तो यह मानते हैं किसान, बाहर के विदेश में जो है सो हो सकता है कि सेवा भाव जो है जैसा भी रहा, पर किसान किसान है, किसान किसान है। हो सकता है कि उनके पास ट्रैक्टर बहुत अच्छे आ गए हों, साधन बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन फिर भी अंततः वह अन्न उपजा के दूसरे का पेट भरते हैं। और पेट अगर किसी ने भर दिया तो या तो वो माँ भरेगी या किसान भरेगा। तो मेरा किसानों को नमन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि वह इसी प्रकार अनवरत मेहनत करें और नई नई तकनीकों का उपयोग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं भी, और किसानी वाला जो गुण है उसको कभी वो
1: बरकरार रखें,
0: वो बरकरार रखें
1: जी। तो किसान भाइयों, आपके अंदर जो हीरे छुपे हुए हैं उसको लेकर आप कई बार कुंठित भी महसूस करते होंगे, लेकिन आज हमने आपका महिमा मंडन नहीं किया है, हमने याद दिलाया है कि आपके भीतर क्या क्या वो हीरे और वो खजाने हैं जिसने इस देश को, एक भारतवर्ष को आज तक अक्षुण रखा है। तो हम इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम कुछ बेहतर कार्यक्रम आपको अगले भाग में फिर से सुनाएंगे शशिकांत जी के साथ, तो आज के लिए हम यहीं पे इजाजत चाहेंगे और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?

0: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने

0: की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है।

0: है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने

0: किसान भाइयों, आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें, इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल है। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक

0: एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थे या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद

अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा। मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हो, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा। नहीं, ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी। और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है। आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी यह समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी। फिर आप गोरे हो, काले हो, मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नज़रिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफ़ी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपकी ओर आकर्षित होंगे।
और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर

आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीज़ें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा

की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण

कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुवाई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं।

कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?

0: पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अनु को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम, जी हाँ, जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो बिल्कुल अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है, सारे फलों से हटकर है। इसे खाने से बहुत सारे पौष्टिक गुण तो हमें मिलते ही हैं और इसकी खेती के बारे में आप जानेंगे तो और भी ज़्यादा आपको रोचक लगेगा इसे सुनने में, इसकी खेती के बारे में सुनने में। तो आज हमारे बीच इस विषय को लेकर डॉक्टर हेमंत हैं, जो कि उद्यान वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ड्रैगन फ्रूट ये क्या होता है?
5: देखिए, ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्रूट कोई अब नया चीज नहीं रह गया है, फिर भी मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ड्रैगन फ्रूट की अगर बात करें तो ये इसकी जो वैज्ञानिक नाम हम लोग सभी फसलों का जैसे जानते हैं, इसका भी वैज्ञानिक नाम होता है जिसको हम लोग हिलोसेरस स्पीसीज के नाम से जानते हैं, और ये कैक्टेसी परिवार का होता है। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका के इसमें उत्पत्ति इसकी हुई है, लेकिन इसकी बहुतायत पैमाने पर अगर खेती की बात की जाए तो सबसे ज्यादा थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, और साथ ही 2005 से हमारे भारतवर्ष में भी हो रहा है। खासकर अगर हम बिहार की बात करते हैं और किशनगंज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बिहार में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से इसकी खेती शुरू हुई और कहीं ना कहीं जाके आज जो है ये बिहार के सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ क्षेत्रों में इसकी खेती की जा रही है। तो ड्रैगन फ्रूट की फल की बात करें तो ये 3 फलों के रूप में होता है और इसको आगे मैं बताऊंगा भी। और इसकी जो हम जीवन काल की बात करें तो करीब 25 से 30 सालों तक जो है ये सस्टेन कर सकता है, फलों की तरह जैसे आम करता है उस तरह से इसको उत्पादन की तकनीक से हम इसको ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर बिहार क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ संभावनाएं हैं इसकी यहाँ पर?
5: देखिए, संभावनाओं की बात करें तो संभावनाएं हर फसलों के लिए अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी उत्पादन तकनीक को अपनाकर हम इसको अच्छे तरीके से इसका लाभ हम उठा सकते हैं। साथ ही औषधीय गुण से भी भरपूर है
1: जी।
5: और हमने जैसे बताया कि 2014 में इसको हम लोगों ने प्रयोग के रूप में लिया था और जाके हमारे किशनगंज जिले में करीब 15 से 20 एकड़ में इसकी खेती भी हो रही है। साथ ही जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से निरंतर ये जो है प्रसार की गतियों से इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार ने भी जो है इसको अपने माध्यम से किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, हर तरह के मिट्टी में भी इसको उत्पादन कर सकते हैं, अच्छे प्रबंधन को अपनाया जाए तो।
1: जी, अभी आपने मिट्टी की बात की कि हर तरह के मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है, तो इसके लिए तो हमारे किसान भाई को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन जलवायु की बात करते हैं तो उपयुक्त जलवायु क्या कुछ होता है इसके लिए, इसके उत्पादन के लिए या फिर इसकी खेती के लिए?
5: देखिए, ये कैक्टेसी परिवार का हमने जैसे बताया कि ये

0: जैसे रेगिस्तानी पौधा है तो इससे कम से कम पौधों की पानी की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: तो कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए अब फिर भी देखिए हम किशनगंज में बिहार का ऐसा ये जिला है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश करीब 2000 से लेके 2500 मिलीमीटर तक औसत वर्षा यहाँ होती है। यहाँ पे हम अच्छे तरह से उत्पादन कर सकते हैं। तो जहाँ पे पानी बहुत कम 500 मिलीमीटर तक भी इसकी औसत वर्षा होती है तो हम इसको वहाँ पे भी जो है उत्पादन कर सकते हैं। बशर्ते जो है इसको ध्यान में ये आपको रखना है कि जब इसकी प्रोग्रेस होती है तो करीब उसमें 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर ये 35-40 डिग्री तक भी चली जाती है इसका तापमान तो उस परिस्थिति में भी इसका बढ़वार होता है। और इसमें एक चीज होगी कि अगर हमारे किशनगंज में इसकी फ्लावरिंग अगर मार्च अप्रैल में हो रही तो गर्म जगह पे ये जाके जो है जून जुलाई में होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उत्पादन आपको ये अवश्य रूप से देगी
1: जी।
0: तो जलवायु कोई विशेष इसके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन जलवायु का आप ये नहीं कर सकते कि, लेकिन उत्तम व्यवस्था करने के लिए आपको इसको शेड के रूप में भी आप लगा सकते हैं चारों तरफ अपने खेत के चारों तरफ। अगर आप बड़े पौधों का आप जो है ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, पौधारोपण कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सकते हैं
1: जी। मतलब इसके लिए कोई उपयुक्त खास जलवायु नहीं है, ना ही कोई उपयुक्त खास मिट्टी में इसे उगाना है यही जी।
0: मिट्टी में अगर बेहतर जीवाश्म और जल निकासी जैसे सभी फसलों के लिए हमको आवश्यक
1: मिट्टी में मतलब पोषक तत्व रहने चाहिए जो कि फसल
0: जी, बेहतर जीवाश्म की आवश्यकता हो जिसमें ऑर्गेनिक जिसमें हम लोग कार्बनिक खाद की बात करते हैं
1: जी,
0: वो प्रचुर मात्रा में हो तो कहीं ना कहीं जो है इससे अच्छा
1: बहुत अच्छा होगा। और अगर किसान भाई खेती करना चाहते हैं डॉक्टर साहब ड्रैगन फ्रूट की, तो कौन से उन्नत प्रभेदों का चयन उन्हें करना चाहिए?
0: देखिए प्रभेदों की बात करें तो बहुत सारे प्रभेद हैं और इसको कैटेगरी वाइज अगर स्पीसीज से हम ज्यादा समझें तो ज्यादा आसानी होगा हमारे किसान भाइयों को
1: जी।
0: ये तीन तरह के स्पीसीज में इनको बांटा गया है, एक रोजा, ब्लंका और अम्ब्रीला।
1: रोजा, ब्लंका और अम्ब्रीला जी
0: जी जी। रोजा को हम लोग हिलोसेरस पोलिराइजस के नाम से जानते हैं और अगर हम इसको देखेंगे तो ये लाल रंग का आवरण के साथ साथ तो लाल रंग का गुदा और इसमें काले महीन बीज होते हैं, इसको हम रोजा के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ब्लंका, इसके आवरण जो होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं और सफेद गुदा में काले बीज महीन हुआ करते हैं इसमें, इसको हम ब्लंका के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है पीले रंग का आवरण होता है और साथ में उसमें जो है सफेद गुदा के साथ साथ काले महीन बीज होते हैं। तो तीन प्रकार के जो है सामान्य
1: जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि खास तौर पर जिसका उत्पादन किया जाता है वो रोजा और ब्लंका ही आमतौर पर देखने को मिलते हैं
0: जी। जी सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो रोजा जो है ज्यादातर उत्पादित भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, लोगों के प्रति इसका जो है झुकाव भी ज्यादा रहता है
1: जी। डॉक्टर साहब ये तो उन्नत प्रभेदों की बात हुई और लगाने के तरीके और समय के बारे में हमारे किसान भाइयों को श्रोताओं को बताएं
0: जी। जी देखिए लगाने का तरीका का अगर बात करें हम तो लगाने के तरीके में इसमें एक तरह से कैक्टसी पौधा है और इसमें जो है हम जब पौधा का हम कलम लगाते हैं सामान्यतः इसमें बीज के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अच्छे पौधे और क्वालिटी के हिसाब से देखें तो हम इसमें जो है करीब 30 से 40 दिन क्रांतिक जो भी कटिंग होती है उसके जड़ निकल जाते हैं तो 20 से 25 सेंटीमीटर की कटिंग को हम पहले जड़ के लिए उसको रखेंगे या नर्सरी से आप ले आके आते हैं तो उसको जो है आपको इसमें एक चीज और आवश्यकता होती है कि जब हम पौधा लगाते हैं तो खेत हमारा समतल हो, अच्छी तरह से जल निकासी वाला हो, साथ ही इसे एक पिलर की आवश्यकता होती है, कंक्रीट का पिलर हो या लकड़ी का पिलर हो या आपका ईंट का पिलर हो, सामान्यतः हम लोग कंक्रीट के पिलर को सुझाव देते हैं। तो कंक्रीट का पिलर इस तरह से होना चाहिए करीब 6 से 7 फीट लंबा होना चाहिए जिसमें 1.5 फीट उस पिलर को हम जमीन के अंदर घुसाते हैं और एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी जो है आप अपने अनुसार रख सकते हैं, सामान्यतः जो है 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है हाई डेंसिटी के माध्यम से भी उत्पादन करने का तरीका ले आया है हम लोग। तो उसको आप 2.5 मीटर से 1.5 से 2.25 मीटर की दूरी पे पिलर को स्थापित करने के साथ साथ आप प्रत्येक पिलर पे आपको 4 पौधों को स्थापित करना है चारों तरफ से। जब हम स्थापित कर लेंगे उसको, स्थापित करने के बाद जब हमारा 6 फीट का पिलर है या 5.5 फीट का पिलर है तो ऊपर हमारे 4 ऐसे 3 या 4 दाग हम निकाले रहते हैं बाहर की तरफ लोहे के, जो हम उसको फैला के उसमें टायर के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उस टायर के माध्यम से ही पौधा बाहर की तरफ करीब 7 से 8 महीने बाद जो है वो निकल के आएगा। तो इस तरह से हम लगाने का तरीका क्या है कि हम इसको पीलर के माध्यम से लगाते

0: हैं और एक एकड़ में करीब सामान्य दूरी की बात करें तो करीब 1600 से 1700 पौधों की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम हाई डेंसिटी की बात करें तो ये जाके करीब 2500 से लेकर 4000 प्रति एकड़ पौधों की आवश्यकता होती है। इस तरह से
1: लगा सकते हैं जी। और समय की बात है डॉक्टर साहब।
0: हाँ, समय की बात करें तो समय देखिए हमने सही सुझाव दिया। समय जैसे हम प्लांटेशन पौधों को लेते हैं जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, लीची है, उसी तरह से इसको भी हम मानसून सत्र में हम जून से लेकर जुलाई अगस्त तक हम इसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और फिर नहीं तो उसके बाद जो है फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक इसको अगर हम लगाते हैं तो अच्छा हम इसको परिणाम देखने को मिलता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और खास बात जो कि इसमें होता है पोषक तत्व प्रबंधन और साथ ही उर्वरक प्रबंधन, इसका भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, तो किस प्रकार हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं तो पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं?
0: जी जी, देखिए ड्रैगन फ्रूट की जब खेती करते हैं तो हम लोगों के माध्यम से ज्यादातर सुझाव यही रहता है कि आप इसको ऑर्गेनिक माध्यम से करें, जिससे कि इसके फल में फल की क्वालिटी और इसके जो फल का जो टिकाऊपन होता है वो बेहतर होता है, स्वादिष्ट होता है।
1: अच्छा,
0: तो अगर हम ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहे हैं तो उसको हम लगाते के समय जो है करीब 5 से 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद अगर हम ले लेते हैं तो बेहतर होता है। तो सड़ी गोबर की खाद की जगह अगर आप और अच्छा लेना चाहते हैं तो करीब 5 से 8 kg जो है आपको वर्मी कम्पोस्ट लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके पीलर के चारों तरफ से इसको दबा के रख देना, उसके बाद उसमें प्लांटेशन करना है। दूसरा, जब हम फ्लावरिंग के सीजन आते हैं जिसको हम फरवरी और मार्च कहते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने जुलाई और अगस्त में एक बार हमने दे दिया है इसको, तो आपको उसको जनवरी माह में एक बार, जनवरी से फरवरी माह के बीच में एक बार जो है आपको पुनः जो है उतनी क्वांटिटी में जो है आपको जैसा हमने बताया कि 10 से 15 किलो सड़ी गोबर की खाद या 5 से 8 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट को अगर उसमें मिक्स करते हैं तो ये दूसरी बार। तीसरी बार जो है पुनः मानसून आने से पहले, अगर हमारा प्लांटेशन हो चुका है तो मानसून आने से पहले हम यही प्रक्रिया पुनः करते हैं तो ये हमारी ऑर्गेनिक खाद देने का माध्यम होता है। अगर हम इनऑर्गेनिक में जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को जो है हम केमिकली रूप से देते हैं तो प्रति पिलर में 2 बार करीब करीब जो है आपको 80 से 100 ग्राम जो है यूरिया और जो है 150 से 125 ग्राम के आसपास डीएपी और जो है करीब 200 ग्राम पोटाश के माध्यम जो है हम दो बार 100+ उसमें 5 kg सड़ी गोबर की खाद मिलाकर अगर हम देते हैं, एक बार मानसून सत्र में, दूसरी बार जो है फरवरी और मार्च माह में देते हैं। इस प्रकार से हम खाद उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, और इसमें एक और खास बात सामने आती है कि क्या इसमें कोई विशेष उद्यानी कृषि कार्य होते हैं? अगर होते हैं तो फिर कैसे होते हैं, उसकी जानकारी भी दे दें।
0: ये काफी रोचक सवाल है। और देखिए, उद्यानिक फसलों में सामान्यतः कोई ना कोई एक अच्छी तकनीक होती है। इस प्रकार से ड्रैगन फ्रूट में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी पुरानी शाखाएं हैं तो उनको आपको जो है कटिंग के माध्यम से कटिंग करना है, सिकेटियर के माध्यम से, और हम नीचे से पीलर से सटे हुए केवल एक ही स्टेम को, तना को लेके ऊपर तक जाते हैं और फिर बाद में आप देखेंगे कि ऊपर से काफी मात्रा में बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं। तो नीचे की तरफ से हम कटिंग करते हैं, ऊपर की तरफ शाखाओं को हम छोड़ देते हैं और फर्दर 2 से 3 साल के बाद हम उसमें जो है कटिंग बराबर हम करते रहते हैं, मानसून के पहले और फ्लावरिंग से पहले। करीब फ्लावरिंग से 1-1.5 महीना पहले, फ्लावरिंग सामान्यतः हमारे यहाँ अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में आता है, तो हम इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में हम एक बार जो है इसको कटिंग करेंगे, वो भी जितने भी पुरानी शाखाएं हैं, जो पुरानी हो गई, सख्त हो गई, उसको काट देंगे, क्योंकि जो भी नई शाखाएं होती हैं उसी से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। ये एक विशेष ध्यान इसमें देने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग फ्रूनिंग बहुत ही आवश्यक इसमें आवश्यकता होती है करने की।
1: इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जो सबसे अहम सवाल है कि अगर हमारे किसान इसकी खेती कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की, प्रति एकड़ क्या उत्पादन उन्हें मिलेगा, साथ ही क्या लाभ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल हमारे किसान भाइयों का यही रहता है, तो कृपया आप इसका जवाब जरूर दें।
0: कहीं ना कहीं ये अंतिम सवाल भी हो सकता है और लगाने के सभी, कोई किसान किसी भी चीज की प्रोफेशनल खेती करता है तो अल्टीमेटली उसको यही जानने की आवश्यकता होती है कि उत्पादन कितना होगा और लाभ होगा।
1: जी जी, क्योंकि तो हर एक जो हमारा खेती है वो लाभ से जरूर जुड़ा होता है।
0: जी जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हमने पहले ही बताया कि सामान्य दूरी और जो है एक सघन बागवानी, दोनों का अलग अलग आकलन है। मैं सामान्य दूरी की आकलन के बारे में जब 2.5 से

0: 3 मीटर की दूरी पे आप अगर इसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पर पिलर, 1600 से 1700 पौधे इसमें लगाए जाते हैं
1: जी।
0: तो 1 एकड़ में जब हम इसका आकलन करते हैं तो करीब अगर अच्छे तरीके से आप करें तो ये आपका जो है जो खर्चा है वो कम ज्यादा हो सकता है। अनुमानन जो है आप 4 लाख से लेके करीब 5.5 लाख तक आप उस खर्चे को कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हम उत्पादन की बात करें तो ये सामान्यतः हमने बार बार बोला कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो ये इसका फ्लावरिंग होगा और मई के फर्स्ट वीक में इसका जो है आपको फल हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फल जो है आपको 5 से 6 बार में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये निरंतर फूल आते रहते हैं और उसमें आप जो 35 दिनों के बाद ये फूल परिपक्व होके फ्रूट बन जाते हैं, आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। ये करीब अक्टूबर नवंबर तक आप ये प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया से आप सामान्य रूप से करीब 3 साल का अगर बगान आपका हो जाता है, तो परिपक्व बगान है, 3 साल पुराना बगान है आपका और आपका आस्पर्ड है, तो आप उसके करीब से करीब 5.5 से लेकर 7 टन तक जो है आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी भी मार्केट में इसका प्राइस करीब किसानों के खेत से 250 से लेकर 400 रुपये के जी तक होता है। तो आप अगर टन की बात करें तो 6000-7000 के जी अगर आपको होता है तो आप इसे अनुमानतः आप 300 रुपये के जी से भी अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं 12 लाख से लेके आपको जो है 7 टन है तो 7 से 31 लाख तक आप इसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी उत्पादन तकनीक और विशेषता इसमें कितना ध्यान देते हैं उस पर निर्भर करते हैं। अगर शुद्ध लाभ की करें तो लाभ की बात करें तो 3 साल पुराने बगान से आप जो कहीं ना कहीं आपको 8 से लेकर 12 लाख रुपए तक का आमदनी हो सकता है। और साथ ही जो है आपके पौधे जो इससे कटिंग करते हैं, ट्रेनिंग प्रोनिंग से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनको भी आप सेल करके जो है आप इससे इनकम कमा सकते हैं। निरंतर हमारे संपर्क में भी रहते हैं और कहीं ना कहीं माध्यम से जो जुड़ के बिहार कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से जो है अपने आप को इसमें स्वावलंबी बना रहे हैं
1: जी। तो यहाँ पर पूरी जानकारी किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में जाना, इसके उत्पादन तकनीक के बारे में जाना और बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं आपको, क्या कुछ संभावनाएं हैं इसे लेकर और उन्नत प्रभेद क्या है, आप कैसे पोषक तत्व और उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं, लगाने का तरीका क्या है। तो ये सारी बातें जानकर ज़रूर आप एक सफल किसान बन सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर कुछ परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है 90.8fmgreen@gmail.com पर, उस पर अगर आप सवाल भेजते हैं तो हम अपने विशेषज्ञ से ज़रूर जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर हेमंत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे इस विषय को लेकर। आगे और भी मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। आप सभी से दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सुरक्षित है। टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
6: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं RJ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज की तरह आपके लिए बातें होती हैं खास खेती बाड़ी से जुड़ी। तो आज भी हम लेकर आए हैं, आज हम बात कर रहे हैं फलों की। और फलों की जहां तक बात होती है तो पपीते की बात करते हैं आज हम। जी हाँ, पपीते का बीज उत्पादन के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रणव पांडे। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: थैंक यू मैम।
6: डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें पपीते की और इसके बीज उत्पादन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पपीते का उपयोग क्या क्या है।
7: बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम आपने किया कि पपीते का सबसे पहले हम उपयोग जाने तब उसके विषय में उसका बीज कैसे उत्पादन किया जाए।
6: जी,
7: पपीते को सभी लोग सामान्यतया से ये जानते हैं कि हम फल के रूप में जो उपयोग करते हैं तो करते ही हैं, इसको सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं।
6: हाँ।
7: यह जो है फल के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में राइबोफ्लेविन और विटामिन ए, विटामिन सी और इसकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक तत्व इसमें भरे हुए हैं।
6: जी,
7: और दूसरा इससे अन्य प्रोडक्ट जैसे जैम वगैरह भी बनाया जाता है। इससे एक और बहुत काम का प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पपेन। वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है।
6: अच्छा।
7: स्पेशली इसी से वो एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। कच्चे पपीते भी लगभग जो 3 महीना पुराना हो जाता है पपीता फल, उसका जो है चीरा लगा करके उसमें लेटेक्स बोलते हैं, वो जो निकलता है दूध बोलते हैं गांव वाले उसको, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको ड्राई करके सुखा करके फिर ये पपेन बनाया जाता है। और इस पपेन का सब उपयोग सबसे बड़े पैमाने पर मांस को जो है मुलायम बनाने के लिए जो मीट इंडस्ट्री है उसमें उपयोग किया जाता है कि कैसे हम उसको टेंडर बनाए रखें। च्युइंगम बनाने में इसका उपयोग करते हैं पपेन का। कॉस्मेटिक्स में उपयोग है। नेचुरल सिल्क को जो है डीगमिंग करने के लिए इसका उपयोग है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाओं के उपयोग में है और इसी तरीके से टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग है।
6: अच्छा, तो ये
7: मेन उपयोग है।
6: तो यहाँ तक खाने से लेकर टेक्सटाइल और गारमेंट्स जो सर्विसेज है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये कुछ नया जानने को मिला हमें। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा विषय है कि पपीते के बीज उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़े एक सवाल हमारे पास आते हैं कि पपीते में जो प्रवर्धन होता है तो उसमें वो प्रवर्धन बीज से ही क्यों किया जाता है?
7: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम। पपीता में अन्य प्रवर्धन जो है आसानी से संभव नहीं है। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो सोफिस्टिकेटेड लैब के लिए, जिसके लिए अच्छी लैब की जरूरत होती है, लेबोरेटरी की जरूरत होती है, वहाँ टिश्यू कल्चर प्लांट हम इसका उत्पादित कर सकते हैं। नहीं तो अन्य कोई और उपयोग और अन्य कोई और तरीका नहीं है जिससे हम उसका प्रवर्धन कर सके। इसीलिए पपीते के बीज का उत्पादन किया जाता है और सबसे आसानी से बीज उत्पादन करते हैं इसमें। और बीज से पपीते का हम लगभग 80% एज सच पपीता, जैसे पिछली पीढ़ी का है दूसरी पीढ़ी में हम उसको पैदा कर लेते हैं। इसीलिए हम बीज का उपयोग इसमें करते हैं और बीज उत्पादन इसमें सस्ता।
6: अच्छा
7: मेन
6: जी सर, और कुछ बातें जो पपीते से जुड़ी हो जो हमारे किसान भाइयों को जानना हो उसके बारे में भी बताएं।
7: सबसे पहली बात तो पपीते का जो है, जब हम कुछ भी करने जाएंगे पपीते के लिए सबसे बड़ी

0: समस्या है कि पानी नहीं लगना चाहिए जमीन पे जहाँ पपीता उगाया जाए, और हमारे खासतौर से बिहार में ये समस्या है। बिहार का जितने भी तराई रीजन है इसके सभी जगह पर पपीते के उत्पादन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पानी लगता है। पपीते की जड़ में अगर पानी लगा तो पपीता श्योर मर जाएगा। यह पानी के लिए बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, तो सबसे पहला जरूरत होती है जहाँ भी पपीता हम लगाएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो वहाँ पानी ना जमे किसी भी समय पूरे सीजन में। जहाँ पपीता है या तो उसको ऊंचा करके लगाएं, मेड़ से लगाएं। सभी श्रोतागण किसान भाई जो लोग भी हैं इस बात का जरूर ध्यान दें कि पानी ना लगने पाए
1: जी।
0: और दूसरी एक समस्या आती है कि थोड़ा सा बड़ा होने क्योंकि इसकी जड़ होती है कमजोर फाइबरस होती है, तो क्या होता है कि ये जो है तेज हवा चलने पर गिर जाता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि हवाओं से बचाने के लिए या वायुरोधक का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे भी हो कि हम कभी पता चला हल्का सा तूफान आया और हमारा खेत का पपीता कहीं गिर गया, तो गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो हमें इन दो बातों को वायुरोधक का भी किनारे किनारे उपयोग करना चाहिए और ऊंची जमीन पर इसको लगाना चाहिए। ये मूल बिंदु है जो ध्यान देने की जरूरत है पपीता के लिए
1: जी। तो कुछ बातें थी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया किसान भाइयों की, उनके जड़ में पानी जमा नहीं रहना चाहिए और ऊंचे जगह पर मेड़ बनाकर आप उसके पौधे लगा सकते हैं। तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर साहब इसके रोपाई की, बात करें पौधों की, तो क्या हम हर मौसम में इसे रोप सकते हैं या फिर कोई स्पेशल
0: हाँ,
1: कोई मौसम?
0: हाँ, हाँ, ये क्या है, पपीता हम लगा सकते हैं लेकिन हमको ध्यान देना होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है। मुख्य मौसम इसको पपीता लगाने का जो है बरसात का समय माना जाता है, क्योंकि जहाँ पानी समस्या होती है वो नहीं है, तराई रीजन नहीं है, वहाँ बरसात में लगाने, बरसात में लगाने से पौधे सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। या फिर जो हम मार्च फरवरी मार्च में इसको लगा सकते हैं, जो और फिर एक समय है सितंबर अक्टूबर भी लगा सकते हैं, लेकिन सालों भर भी हम लगा सकते हैं सिर्फ हम पौधे को बचा पाए। तो इसी के साथ ये पॉजिटिव चीज है कि हम किसी भी समय इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी में
1: जी। और अगर बात करते हैं मिट्टी की, तो किस प्रकार की मिट्टी में हम इसकी रोपाई कर सकते हैं?
0: मिट्टी तो पपीते के लिए जो है हमें जैसे अन्य फसलों के लिए जरूरत पड़ती है उसी तरीके से सैंडलोम सॉइल तो अच्छी मानी जाती है इसके लिए
1: जी।
0: जो मिट्टी हमारे यहाँ है इन सब मिट्टियों में हम पपीता को उगा सकते हैं। पपीता को उगाने के लिए जो है ये है ध्यान देने की जरूरत कि वह उर्वर युक्त हो, जिसमें अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कार्बनिक खादे हैं वो ज्यादा मात्रा में हो, वहाँ ये अच्छे से जो है फल देता है और उसमें अच्छी उसकी बढ़वार होती है। और सैंडलोम सॉइल जो बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें हम सभी फसलों की खेती करते हैं, उसी वो सॉइल उसके लिए अच्छी मानी है। अगर यूज कर तब भी हमको इसको उगा सकते हैं
1: जी। जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि, और अगर हम बिहार क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या कुछ संभावनाएं हैं पपीते को लेकर उसके बारे में?
0: जहाँ बिहार में है संभावनाएं, ऐसा नहीं है कि सब तराई रीजन ही है। बिहार में भी कुछ ऊंचे रीजन भी है जहाँ हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। ऐसा में बिहार में उत्पादन कम होने का कारण यही था कि मेनली बाढ़ग्रस्त एरिया था। धीरे धीरे बाढ़ वाला स्थिति कम होती जा रही है, वो सीमित एरिया में है। लेकिन जिन एरिया में बाढ़ आता उधर हम पपीता ना उगाएं, उगाएं भी तो ऐसी जगह उगाएं जहां बाढ़ ना आ पाए, तो लेकिन हम उस एरिया में कोशिश करें ना उगाएं। बाढ़ग्रस्त एरिया जो नहीं है वहां हम पपीता उगा सकते हैं ऊंची जमीन पर और बहुत आसानी से उगा सकते हैं। किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि वो ऊंची जमीन पर उगाएं इसको।
1: डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है कि अगर हमारे किसान भाई जो है वो व्यापार के तौर पर इसकी खेती कर रहे हैं, तो क्या सही समय होता है जब इसकी वो तुड़ाई करें बाजार तक ले जाने के लिए?
0: अच्छा, सही समय, जी जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही, वो तो सीड उत्पादन का भी एक विषय होता है। इसमें क्या है कि हम यह देखें जब पपीता का फल अपने साइज का, तो जब पता नहीं चलता कब मेच्योर हुआ तो पता कैसे चलेगा, क्या होता है बिल्कुल ग्रीन कलर में, हरे कलर का होता है
1: जी।
0: जब वो ग्रीन का रंग हल्का सा फीका होने लगे, अपना कलर जैसे ही वो बदलना शुरू करता है, ये समझ जाना चाहिए वो मेच्योर हो गया है। उसको कलर ब्रेक स्टेज बोलते हैं, उस समय ही हम हार्वेस्ट करके दूर तक ले जा सकते हैं पपीता, तब वो मेच्योर हो जाता है।
1: मतलब व्यापारिक तौर पर अगर हम तोड़ना चाह रहे हैं उसे, तो हल्के हरे रंग का वो जब हो

0: हाँ, हर जब हर रंग उसका जैसे ही बदलना शुरू होता है तुरंत हम उसको तोड़ लें, हम उसको दूर तक फिर ले जा सकते हैं
1: जी। तो ये कुछ बातें थी पपीते से जुड़ी और इसके बीज उत्पादन से जुड़ी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, और आशा करते हैं किसान भाइयों के से बहुत कुछ आपकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम और FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि

19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या।

और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे

0: राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे, मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगें तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध

आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न

0: स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गाँव में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियाँ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे

ये पेड़ हों। तो श्रोताओं एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओ कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: মহামানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन

0: निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
1: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार? कृषक जहां खेती करते हैं, ईश वहां है।
0: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, काहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
0: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते,

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में

0: तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हाए भालोबाशी, चिरदिन तुमार आकाश तुमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में

0: बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: एक जरूरी काम करो, कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, हाजिर है आरजी अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये हैं पशुपालन विभाग से

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
1: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है, ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है, या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है, जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के, और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर्य डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है, और अब ज़रूरी होता है कि हम जानें कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
1: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले के जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी, NGO के द्वारा भी, और कॉम्फेड के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें उनके श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इससे फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसिमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे AMPM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है, एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24 से 26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहाँ कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह

0: गायनको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मन पसंद, आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से, या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें, तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीक़े से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का, कुछ कुछ गाय छोटी होती हैं, और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है, ये पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावा भी कुछ सावधानियाँ हैं जो जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
0: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है, उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
0: और दूसरी चीज है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे जरूरी है, समय। और तीसरी चीज है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायोकैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर, हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें, ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी, जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा, उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर होस्टिन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्टोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको, अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है, और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा, तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
1: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है, और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं?
0: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत

0: है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, एनजीओ के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी, ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है। तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है, दूसरी चीज़ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है। दूसरी चीज़ है कि जो इस जो भी व्यक्ति जो थोड़ा जिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है। क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जो जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहाँ हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहाँ भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो इस ओर से, इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है। और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
1: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान। और साथ ही अगर आप अगर इसे एक रोज़गार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनाना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम।

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब

0: 베스트 맛집은 소메라 바베큐.
1: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं, और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है, और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं, और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें, और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं, और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम

साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत सी एक और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त

बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20 गुना 15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: 93.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी, जहां हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में। कई बार हमारे किसान भाई बहन उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मिट्टी प्रदूषित हो रही है, और अब बहुत जरूरी है कि हमारे किसान भाई बहनों तक ये बात पहुंचे कि उर्वरकों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि अब हमें नैनो उर्वरक की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है। तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी तो मैम अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर

0: हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ेगी, एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की वो दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
1: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
0: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि हैं या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे
1: जी।
0: तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं, तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
1: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
0: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है, तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है

0: में आगे काम करने की जरूरत है।
1: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद हूँ आपको।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके।
5: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
6: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में, तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि चूंकि वर्षा भी होती रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है, तो

0: भी तेजी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
1: यस सर। सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
0: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है, या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र का है तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं, जिस खेत में मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं, तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके, उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं और आपके की मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश का देना चाहिए, ठीक है, और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा, फिर बढ़ेगा, अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः 2 चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर 2 बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से 1 महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है, और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से

0: कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है। ये वेजिटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके, और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज। और इसको कोई, अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है, तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके, और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है, तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया, तो पौधा चूंकि बहुत कमज़ोर रहता है, तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है, और उसके बाद जो है कि हमारा जो जो जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो उसके बाद जो है कि हम लोग जो जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बंटवार अगर अच्छा होगा तो इस पर कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो, चूँकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खरपतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खरपतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है। वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पे कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं, जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है। तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है, तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और इसमें जो है, और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है, बैंगन की जो फसल है, उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं, तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें

मतलब मादा का सेंट निकलता है और जिसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं, तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गूंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है, और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड शूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है, भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है, और जब फल निकलने लगता है भिंडी का तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है, और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है, और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मल मूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड शूट बॉर्डर है, तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है तो उसको तोड़ लेना चाहिए, या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैगन के केस में भी करना चाहिए, फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है, जो नीम का जो तेल है उसका, जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलबुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है, घुलाना है, और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुंसकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है, और रस चूसने के बाद क्या होता है धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपके जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है, और हमारी जो भिंडी है वो
कीटनाशी

0: रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है, खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है, जो पत्तियाँ होती है, वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे, कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे, तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, ये येल्लो वेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों, इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है। और उसके बाद जो कीटनाशी है, जैसे थायोमेथोक्सिजाम 25WG, इसकी आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सिजाम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमेथोक्सिजाम 25WG एक टारा के नाम से भी आता है, एक टारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी आधा ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो येलो वेन मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है, तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में किकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है। और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमेथोक्सिजाम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इसे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों को बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई को जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है, लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है, कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेच से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को, खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस

दौरान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 cm की दूरी पर 10 से 15 cm ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 cm ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 cm लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं।
ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की

दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटा रीजियम स्पी

0: एक मिलीलीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल लें, या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% इसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर, या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: Choose one season and one time of the day for each part. For example, part or square one can be a summer afternoon, part or square two can be a winter evening, and so on. Fill in the colors of the chosen season and time for each part. It is important to add shadows to give clues about the time. Mix colors to get more variety. For example, in the four columns on the right side, the second column shows the autumn season and evening time. The leaves of the trees have fallen on the ground and the background is somewhat dark in color, showing evening. The third square has daytime and spring season. The same tree now has a swing on its branches and children are swinging and playing around it. The fourth square is empty. Draw here one season of your choice. Page number 21. This page is once again divided into four parts. Draw your picture here and share it with others after completion. Page number 22. Assessment. Chapter 2. Peeping out of the window. The table is once again divided into five columns. The first column mentions the curricular goals. The second column mentions the competencies. The third column explains the learning outcomes aligned with the competencies. The fourth column is for teacher's assessment and the fifth column is for self-assessment. CG1 C1.1 LO portrays scenes from nature as observed in different times and seasons. CG2 C2.1 imaginatively uses visual elements to create patterns seen in nature. CG2 C2.2 LO identifies the foreground, middle ground, and background in any given picture and uses these spatial divisions in their artwork. CG3 C3.2 LO creates a basic color wheel by mixing primary colors to obtain secondary colors. CG3 C3.2 LO follows the steps of creating low relief artwork using a suitable medium. Overall participation in class. All these LOs to be assessed by the teacher and self. Teacher's observations to be mentioned in the lines given. Other comments are also to be mentioned in the lines given. Chapter 2 ends here.
1: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Muhammad Faizan Khan. Production assistant, Mukul Singh. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT. New
2: नाटक देखो नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो खसरा और बेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो नाटक देखो नाटक देखो आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं हाँ या ना
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे हाँ या ना
3: हाँ इसे ही कहते हैं खसरा जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई
6: समस्या तो गंभीर है चाचा पर इसका सरल है उपाय
7: क्या क्या क्या
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है
7: अच्छा
8: तो सबकी समझ में आ गया ना खसरा रुबेला बीमारी है घातक आइए इसे मिटाए जड़ तक
4: टीकू तेरे कितने दोस्त है
9: टीनू मीनू राजू पिन्नी और
4: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ
9: 11 दोस्त
4: टीकू वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं
9: अच्छा

0: टीकों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
9: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आजकल आपने बहुत सुना होगा कि मखाना की खेती करनी चाहिए और मखाना की खेती से बहुत लाभ मिलता है। तो वो लाभ कैसे मिलता है? तो उसमें एक सबसे अच्छा पहलू ये भी होता है कि मखाना के प्रसंस्करण से भी आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं, कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रसंस्करण क्या है, इसके कितने चरण होते हैं, आइए सभी के बारे में विस्तार से समझते हैं डॉक्टर पंकज कुमार से। सर, आप हैं आणविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग से। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
11: तो सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मखाना का प्रसंस्करण क्यों जरूरी है?
12: मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मखाना का प्रसंस्करण जो है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही कठिन कार्य है। अब ये कठिन कार्य क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम लोग ने पिछले बार भी बातचीत किया था कि हार्वेस्टिंग करके लाना और उसके बाद प्रसंस्करण के लिए आगे की विधि व्यवस्था को करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मखाना का बीज इतना हार्ड होता है, उनका बीज इतना कड़ा होता है, जिसको मतलब जिससे लावा निकालना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसके कई चरण होते हैं। तो इनका प्रसंस्करण जो है बहुत कठिन होता है। वर्तमान समय में आज भी जो है कि आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की बहुत भारी कमी देखी गई है। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ जो है यंत्र बनाए गए हैं, लेकिन वह भी जो है

0: 100% जो है अभी तक फार्मर्स किसान तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें कि हमारे विश्वविद्यालय बहुत इसके लिए तत्पर हैं और किसानों को मदद के तौर पे इसकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मशीन के द्वारा भी अगर देखा जाए तो मशीन की दक्षता, उसमें करने की कैपेबिलिटी जो है वो कितनी है, कितने समय में कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि कई तरह के इसमें बीज होते हैं, तो उनके प्रसंस्करण में बीजों का आकार को लेके जो है काफ़ी समस्याएं होती है। तो मखाना प्रसंस्करण में आप देखेंगे मैम कि कई बिंदु हैं और उनसे मशीनों के से पहले जो है इसको बीज को सुखाया जाता है, और सुखाने में भी आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सूखने से भी हमें लावा की मात्रा घट जाती है, कम सूखने से लावा अच्छा नहीं बन पाता है, तो ये सब सारी समस्याएं प्रसंस्करण में होती हैं।
1: सर अभी आप बीजों के बारे में, विभिन्न बीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो बीजों का क्या श्रेणीकरण करना ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है मैम ये, क्योंकि देखिए अब मखाना में कहा जाता है कि बीज का जो आकार है वो 4 mm से लेके 14 mm तक वेरी करता है, मतलब अंतर होता है। तो देखा जाए तो 6 से 8 प्रकार का जो है इसमें आकार होते हैं, और हर आकार के लिए अगर आप जहाँ पे प्रसंस्करण होता है वहाँ पे देखेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं या जो इनको लावा निकालने की प्रक्रिया वो चलनी हमारे भाई बंधु समझते होंगे, तो कई आकार के चलनी होते हैं। तो वो प्रसंस्करण से पहले बीजों का चलनी के थ्रू से एक जैसे आकार को अलग अलग करना आवश्यक है। अब सोचा जाए तो इसमें भी वैज्ञानिक सोच है, क्यों अलग अलग किया जाए, क्यों नहीं सबको, जब हमको सबसे लावा ही निकालना है तो क्यों नहीं सबको एक साथ ही भूंज दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? अगर ऐसा हुआ तो जो बड़े आकार का बीज है वो ज़्यादा सरफेस एरिया जो है अपने जो कढ़ाई में हो लेगा और छोटे आकार को नहीं मिल पाएगा, तो कुछ लावा जो है बनेंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए बीजों का श्रेणीकरण करना बहुत आवश्यक है ताकि हम अधिक से अधिक मात्रा में अपने बीज से लावा को निकाल पाए। तो जैसा कि हमने बताया कि बीजों में जो आकार है वो 6 से 8 ग्रेड तक विभक्त किया जाता, मतलब बायफर्केट किया जाता है, ताकि उसमें यूनिफॉर्म जो सामान्यतः हीट जो है, ताप जो है, उस तक पहुंच पाए। क्योंकि बीजों को जो भूंजने के लिए पहले उसमें थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप किसान भाई अगर देखेंगे जहां बीज से लावा बनाया जाता है वहां 6 कढ़ाई रखा जाता है, 6 कढ़ाई में भी मतलब आप देखेंगे एक आकार के बीज के लगभग 10-15 दाना ही वो लोग रखते हैं, और हर 1 से 2 मिनट के अंतराल में कढ़ाई से इस कढ़ाई से उस कढ़ाई में, उस कढ़ाई से इस कढ़ाई में करते करते लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि ज़्यादा हीट भी ना हो और कम हीट भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो उसका मॉइस्चर जो है वो, जो नमी कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, और ज़्यादा हीट करने से क्या होगा, सॉरी कम हीट करने से क्या होगा कि उसमें नमी रह जाएगी तो लावा नहीं बन पाएगा। तो जो ये तापमान का जो है, मैं बताना चाहूँगा कि हर कढ़ाई में जो है कि लगभग 1 से 1 मिनट से 2 मिनट रखते हैं, और ये तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस से लेके 335 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं जो अभी थोड़ा देर पहले ये बताने का कोशिश कर रहा था कि मशीन यही टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मशीन अपना काम सही से नहीं करके और लावा का जो निकलता है वो थोड़ा सा कम निकल पाता है मशीन से। लेकिन जो हमारे किसान भाई जो खुद से प्रोसेसिंग करते हैं वो इस तापमान को कढ़ाई टू कढ़ाई करने के कारण जो है वो कर पाते हैं, और उसमें जो लास्ट वाला कढ़ाई से निकाल करके उसको एक थापी बोलते हैं जो कि लकड़ी का बना होता है, उस पर रखते हैं और उससे मारते हैं, और अचानक से जो है वो थापी से लावा बन के निकलता है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि बीजों का श्रेणीबद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। आपको अगर अच्छे लावा निकालने हैं बीजों से तो आपको श्रेणीबद्ध करना ही होगा।
1: जी सर, टेम्परिंग क्या

0: आ जाता है, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको बड़े बड़े लावा भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे। उसके बाद सबसे छोटा वाला जो होता है, जो मार्केट में नहीं के बराबर ही मिलते हैं, लेकिन वो लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं उनके यहाँ बच जाते हैं, उसको थुर्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि अगर आप सबको मिला दें तो एक चौथा प्रकार बोल सकते हैं जिसको मिक्स बोलते हैं। इस मिक्स में आपको सब तरह के लावा मिल जाएंगे जिसके हिसाब से उनका रेट निर्धारण होता है।
1: जी सर, तो सर अगर हम संक्षिप्त में समझना चाहें मखाना प्रसंस्करण को, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैम, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले मखाना का जो बीज है उसको लाते हैं लोग, उसके बाद उनको गुनी गुनी धूप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप में, तो इसलिए मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे तक आप सुखाते हैं उसको। उसका साफ सफाई करने के बाद सुखा के, और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम इसमें 30-35% नमी बनी रहे, और धूप में सूखने के बाद जो है इसको प्री हीटिंग के लिए, जिसको हम लोग टेम्परिंग के भी कहते हैं, प्री हीटिंग के लिए इसको लेके जाते हैं, और प्री हीटिंग के बाद इसमें 48 से 72 घंटे तक रखते हैं। फिर इसको जो है आप मखाना के बीज को श्रेणीबद्ध कर लीजिए। श्रेणीबद्ध करने के बाद इनका जो है आप जो है क्या रोस्टिंग के लिए आप लेके जाइए। रोस्टिंग में आप विभिन्न तरह के ग्रेडिंग का जो है लगभग 300 ग्राम के मखाना का लॉट बनाइए, और उस तरह से उसमें 10 पीस बीजों को लेके आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर जब आपका लावा बन जाता है तो आप उसका पॉलिशिंग करिए। पॉलिशिंग करने के बाद भी आप उसको ग्रेडिंग करिए, लावा का भी ग्रेडिंग करिए। ऐसा नहीं है कि जो बड़े आकार का सारे मखाना का जो लावा होगा वो बड़ा ही होगा, तो इसलिए आप उसके मखाना के लावा का भी ग्रेडिंग करिए। 6 mm वाले को अलग रखिए, या जो 6 सूता वाले को अलग रखिए, 5 सूता वाला, 4 सूता वाला को अलग रखिए, और इस तरह से पैकेजिंग करिए, उसमें ब्रांड लगाइए, और आप उसको सेल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर, तो इस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मखाना की खेती करते हैं तो प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दें, आपका मुनाफा कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें दीजिए अभी के लिए इजाजत। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: चलो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर,
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
3: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना है कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे

0: जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें

0: अभी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जब बाजार हम जाते हैं तो वहां पर हर तरह के फल मौजूद होते हैं और वो ज्यादातर फल ऐसे मौजूद होते हैं जो कृत्रिम रूप से पकाए गए होते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि जो कृत्रिम रूप से पकाए गए फल होते हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? और इसके पीछे क्या वजह है? और अगर हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसे कृत्रिम रूप से पकाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से डॉक्टर कुमारी करुणा से। मैम है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से। मैम है BSc सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेड़ पे फल पक रहे हैं तो फिर उसे कृत्रिम रूप से पकाने की क्या जरूरत है?
2: फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का मुख्य उद्देश्य परिवहन के दौरान उन्हें खराब होने से बचाना और बाजार की मांग को समय पर पूरा करना होता है। यदि फलों को पेड़ पर ही पूरी तरह पकने दिया जाए तो वे बहुत मुलायम हो जाते हैं और दूर दराज के बाजारों तक पहुँचाने से पहले ही सड़ जाते हैं। इसलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के और भी कई कारण हैं। सर्वप्रथम सुरक्षित परिवहन एवं कम नुकसान का होना। पके फलों की तुलना में कच्चे फलों को तोड़कर आसानी से पैक और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फलों को देश या विदेश के दूरस्थ बाजारों का तक पहुंचाने के लिए कच्चा फल ही तोड़ा जाता है और बाजार पहुँचने के बाद उसे पकाया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है कच्चे फलों का, इसलिए कच्चे फलों को यदि तोड़कर कोल्ड स्टोर में जिसका तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और सापेक्षित आर्द्रता 85-90% पर लंबे समय तक बिना सड़े रखा जा सकता है। व्यापारी स्टोर किया हुआ फल को आवश्यकता अनुसार गोदामों से निकाल कर पकाते हैं और

0: बाजार भेजते हैं। एक कृत्रिम रूप से पकाने पर फल एक समान रंग और रूप का होता है, इसलिए इससे उनका रंग एक समान और चमकदार हो जाता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। बाजार की मांग, जैसे कि शादी के समय में बाजार में अधिक फलों की आवश्यकता होती है, त्योहारों और शादियों के सीजन में अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए फलों को तेजी से पकाया जाता है। फसल के शुरुआती सीजन में भी फलों को बाजार में पहले लाकर व्यापार अधिक मुनाफा कमाते हैं, इससे किसान भाई को भी फायदा होता है। पहले अगर बाजार में कोई फल आ जाता है तो उसका जो मूल्य है अधिक मिलता है।
1: जी मैम, लेकिन जो बाजार में किसान भाई बहन फलों को पका रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पकाया जा रहा है, तो गलत तरीके से अगर हम पकाते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे फलों को खाने पर मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: जैसे कि असुरक्षित तरीका, जैसे भारत में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बना है 2008 में, द्वारा कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है और आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी होते हैं, जो कि कैंसर, चक्कर आना और पेट की अन्य बीमारियां पैदा कर सकता है, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है, कैल्शियम कार्बाइड पे।
1: लेकिन मैम, अभी भी किसान भाई बहन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना इतना ख़तरनाक है तो फिर वो क्या तरीका अपना सकते हैं जो सुरक्षित तरीका हो?
0: सुरक्षित तरीका में वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित इथिलीन गैस है, जिससे फल को पकाने पर किसी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आता है। इथिलीन गैस 100 PPM को ही सुरक्षित एवं वैध माना गया है, क्योंकि यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन भी है।
1: और अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाएंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा?
0: फलों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित तरीके से पकाने के लिए भारत सरकार की संस्था जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केवल इथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति देती है। यह फलों का एक प्राकृतिक हार्मोन है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है। व्यापारिक और घरेलू स्तर पर सुरक्षित रूप से फल पकाने का तरीका है, पहला इथिलीन रैपनिंग चैम्बर होता है। इसमें फलों को एक एयर टाइट हवा बंद कमरे में रखा जाता है, वहाँ इथिलीन गैस जनरेटर या सिलेंडर की मदद से 100 PPM की नियंत्रित मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। इसके साथ ही कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और नमी 90-95% रखी जाती है, जिससे फल 24-48 घंटे में प्राकृतिक रूप से पक जाता है। दूसरा है इथिलीन पाउच भी इसका आता है। जिन व्यापारियों के पास बड़े चैम्बर नहीं होते हैं वे इथिलीन बनाने वाले छोटे पाउच का उपयोग करते हैं। इस पाउच को फलों की क्रेट या बक्से के बीच में रखा जाता है, नमी मिलने पर इनमें से धीरे धीरे इथिलीन गैस निकलती है जो फलों को पकाती है।
1: मैम, अगर बड़े पैमाने पर फलों को ना पकाना हो या फिर हम चाहें कि हम घरेलू स्तर पर फल को पकाएं, तो इसकी विधि क्या है?
0: यदि आप घर पर कच्चे फल को सुरक्षित पकाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके को अपनाकर आप पका सकते हैं। पहला है कागज के लिफाफे या अखबार में लपेटना। कच्चे फलों को लिफाफे या अखबार में लपेट कर रख दें, इससे फल जो प्राकृतिक रूप से इथिलीन गैस निकालेगा, फल जब पकने लगता है तो उससे इथिलीन गैस अधिक मात्रा में निकलता है, तो जब हम पेपर में लपेटेंगे या लिफाफा में रखेंगे तो वो जमा होते रहेगा इथिलीन गैस, जिससे कि फल पकने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, तो इस तरह से हम पका सकते हैं। दूसरा है केले या सेब के साथ रखना। कच्चे फलों को पके हुए केले या सेब के साथ एक डिब्बे में बंद करके रख देने से भी कच्चा फल तेजी से पकने लगता है, क्योंकि पका केला या सेब अधिक मात्रा में इथिलीन गैस छोड़ता है। इसको बंद इसलिए रखते हैं क्योंकि इथिलीन गैस बाहर निकले नहीं, वो गैस है, उसको अंदर में ही रखना है जिससे कि पकने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम फलों को सुरक्षित रूप से, कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग केमिकल का या फिर अलग अलग तरीकों से भी पका सकते हैं, घर साथ ही घर पर भी घरेलू स्तर पर हम फलों को पका सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो मैम आपने जो बातें बताई वो बहुत ही उपयोगी साबित होगी हमारे किसान भाई बहनों के लिए, और साथ ही जो उन फलों को खाते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मैम आप

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवाकर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा

टीसीएस सीओ 7 अलका सूर्या और रेड लेडी जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे पशुओं में पीपीआर एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप? बहुत मुद्दत हो गई आपसे बात किए हुए। ना तो हमने कोई कहानी कही और ना ही कोई कविता कही। अब आपके बिना मन नहीं लगता। मन करता है कि आपके साथ बहुत देर तक बस बातें करते रहें, गपियाते रहें, बतियाते रहें। तो आज आपके साथ बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? तो ठीक है, मैं बता देती हूँ कि वे कौन हैं। वे हैं आस्तिक सिन्हा। तो क्यों ना बच्चों, मैं आपकी तरफ से उनका स्वागत कर दूं। आस्तिक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं की तरफ से।
2: धन्यवाद।
1: अच्छा आस्तिक, ये बताइए, कभी आपने आम का बगीचा देखा है?
2: बिल्कुल।
1: आम के बगीचे में किसके पेड़ होते हैं?
2: आम के।
1: मैं टेस्ट कर रही थी आस्तिक को कि आस्तिक क्या जवाब देते हैं। भाई

0: आम के बगीचे में तो आम के पेड़ ही होंगे। तो आस्तिक हैं चतुर समझदार आपकी तरह। बच्चे चतुर और समझदार होते हैं और उनकी चतुराई और समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। किसे? बड़ों को। तो आस्तिक आम के बगीचे में होते हैं आम के पेड़, ठीक है। तो कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े हैं?
1: नहीं।
0: नहीं। और अगर कभी कभी ऐसा लगे आपको कि पेड़ बहुत नीचा है और आप आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो क्या कभी आपने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश की है?
1: हाँ।
0: ऐसी ही एक कहानी है हमारे पास आज सभी बच्चों के लिए। तो बच्चे तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है आम की कहानी। आस्तिक तैयार है आम की कहानी सुनने के लिए?
1: बिल्कुल।
0: तो हुआ यूं कि झुमकी नाम की एक बच्ची थी। झुमकी आम के बगीचे में थी, सैर कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पता है आस्तिक उस पेड़ पर क्या था?
1: नहीं।
0: उस पेड़ पर लटका हुआ था एक पका हुआ आम। जब झुमकी ने आम देखा तो उसने सोचा अपने मन में कि ये आम तो मुझे ले लेना चाहिए। तभी वहां कौन आया? तभी वहां झुमकी का भाई आया, मिदना। मिदना के हाथ में थी गुलेल। झुमकी ने मिदना से कहा, भैया वो देखो आम, मुझे वो आम चाहिए, मुझे आम ला दो ना। तो मिदना ने कहा, ठीक है झुमकी, मैं ला देता हूँ। लेकिन कैसे लाएंगे? झुमकी ने पूछा। तो मिदना ने कहा कि मेरे पास गुलेल है, मैं गुलेल से निशाना लगाऊंगा आम पर और आम खट से टूट जाएगा, और जब आम टूट जाएगा तो तुम ले लेना। मिदना की ये बात सुनकर झुमकी बहुत खुश हो गई और ताली बजाकर हंसने लगी। उसके बाद आस्तिक पता है क्या हुआ?
1: नहीं।
0: उसके बाद हुआ कि मिदना ने गुलेल पर लगाया एक पत्थर, अपनी एक आंख बंद की, गुलेल का धागा खींचा और आम की दिशा में छोड़ दिया। खटा की आवाज हुई और निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। बताओ आस्तिक निशाना कहाँ लगा था?
1: आम की डंडी पे।
0: जिस डाल पर आम लटका हुआ था निशाना वहीं लगा और खट की आवाज से आम टूट गया। लेकिन वहां पर एक काला कौवा भी था जो ठीक उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ था और देख रहा था कि कब ये आम टूटे और कब वह आम को ले जाए। तो अच्छा आस्तिक ये बताओ कि क्या आम झुमकी को मिलेगा या फिर आम कौवा ले जाएगा?
1: कौवा ले जाएगा।
0: बिल्कुल सही। जैसे ही आम टूटा वैसे ही कौवा आम की तरफ लपका और उसने अपनी चोंच में आम की जो ऊपर छोटी सी डंडी होती है उसे पकड़ लिया और वह उड़ चला। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। अब बताओ ये मुसीबत क्या हो सकती है?
1: आगे कोई शिकारी है।
0: हाँ ये भी हो सकता है। और क्या मुसीबत हो सकती है?
1: और आगे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो।
0: पेड़ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं और कौवे ने मधुमक्खी का वह छत्ता नहीं देखा और वह टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो सारी मधुमक्खियां भिन भिन भिन भिन करती करती कौवे से चिपट गई और उसे काटने लगी क्योंकि कौवे ने उनका घर तोड़ दिया था। अब बताइए आस्तिक, जब मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया तो क्या ये सही किया या गलत किया?
1: सही किया।
0: क्यों सही किया?
1: क्योंकि कौवे ने उसका घर तोड़ दिया।
0: मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत से अपना मधुमक्खी का छत्ता बनाया, अपना घर बनाया और कौवे ने देखा ही नहीं और सीधा भिड़ गया मधुमक्खी के छत्ते से, तो मधुमक्खियों का छत्ता यानी उनका घर टूट गया। इस वजह से मधुमक्खियों ने कौवे को काट लिया। जब मधुमक्खी ने कौवे को काटा तो उसे बहुत जोर का दर्द हुआ और वो

0: करके उसने मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला तो आज तक क्या हुआ होगा?
1: आम गिर गया होगा।
0: बिल्कुल सही, आम उसकी चोंच से गिर गया और सोचो कहाँ पहुँचा होगा?
1: जमीन पे।
0: आम जमीन पर नहीं पहुँचा। आम दरअसल गिर गया एक घोंसले में जो उसी पेड़ पर था, और जैसे ही आम उस घोंसले में गिरा, पता है आस्तिक उस पेड़ पर कौन थी?
1: नहीं।
0: चिड़िया तो नहीं थी, उस पेड़ पर बैठी हुई थी गिलहरियाँ। एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन की तीन गिलहरियाँ वहाँ थी और आम को ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। तो वो ऐसे क्यों देख रही थी आस्तिक?
1: क्योंकि उन्हें भूख लगाई होगी।
0: हाँ आस्तिक, ये तो हो सकता है कि गिलहरियों को भूख लगी हो और वे आम को ललचाई नजरों से देख रही हो। लेकिन तभी एक और गिलहरी थी, खूब चतुर सयानी। उसने झट से घोंसले में से वह आम ले लिया, और जैसे ही उसने वह आम लिया और जैसे ही उसने उसे खाना शुरू किया, इससे पहले कि वह उसे खा पाती, घोंसले में जो अंडे थे उसमें से काऊ काऊ काऊ करते करते बहुत सारे बच्चे चीखे। पता है आस्तिक, ये तो कौवे का घोंसला था और अंडे भी उसी के थे। अंडे में से उसके बच्चे निकले और वे काऊ काऊ करने लगे। अचानक से ये काऊ काऊ की आवाज सुनकर गिलहरी डर गई, और जब गिलहरी डरी तो उसका मुंह खुला, और जब उसका मुंह खुला तो आस्तिक आगे क्या हुआ होगा?
1: आम नीचे गिर गया होगा।
0: आम नीचे गिरा और ये जा पहुंचा एक आदमी की पगड़ी में। अच्छा ये बताओ आस्तिक, ये आदमी कौन होगा?
1: कोई किसान
0: या फिर आम के बगीचे का मालिक। इसका नाम है सोहनलाल। सोहनलाल खूब मेहनत करते हैं, आम के बगीचों की देखभाल करते हैं, एक एक पत्ते को सहलाते हैं बहुत प्यार से। तो इसलिए खूब मेहनत करके वे थक गए थे और उसी आम के पेड़ के नीचे वे सुस्ताने लगे। अब सुस्ताना क्या था, ये तो उन्हें नींद ही आ गई। इतनी गहरी नींद आई आस्तिक उन्हें कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आम उनकी पगड़ी में गिर गया। और पता है आस्तिक, यहाँ पर दो प्राणी और थे। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन हो सकता है?
1: खरगोश।
0: दो खरगोश बहुत गौर से सोहनलाल को देख रहे थे। सोहनलाल को नहीं, उसकी पगड़ी में रखे हुए आम को देख रहे थे ललचाई नजरों से। तब तक कौवा भी आ गया था और पेड़ के ऊपर से गिलहरियां भी सोहनलाल की पगड़ी में झांक रही थीं। अब इतने सारे लोग, इतने सारे प्राणी, सबकी नजर किस पर थी?
1: आम पर।
0: सबने सोचा कि आम तो हम ले ही लेंगे। तब तक झुमकी भी सोहनलाल के पास आ गई थी। उन्होंने झट से सोहनलाल की पगड़ी में से आम उठाया और खुशी के मारे वे चिल्लाने लगी, मिल गया आम, मिल गया आम। झुमकी की यह खुशी देखकर मिदना को भी बहुत खुशी हुई, और उसने अपने गुलेल की तरफ देखा और कहा, शाबाश गुलेल, तुमने खूब निशाना लगाया। और झुमकी को मिल गया उसका प्यारा रसीला मीठा सा आम। झुमकी के हाथ में था आम, और पेड़ पर सारे जो प्राणी बैठे हुए थे उसमें कौन कौन है? कौवा है, गिलहरी है, कौवे के बच्चे हैं, और नीचे जमीन पर जो बैठे हुए हैं खरगोश, सब के सब झुमकी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि झुमकी के हाथ में था मीठा रसीला प्यारा सा आम। झुमकी ने आम धोया और उसे अपने भाई मिदना के साथ बांटकर खाया। लेकिन पता है आसिक, झुमकी ने बाकी सब प्राणियों को भी आम के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए। तो झुमकी ने खरगोश के साथ, गिलहरियों के साथ, कौवे के साथ और कौवे के बच्चों के साथ मिलकर आम खाया। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आपको ये कहानी?
1: बहुत मजेदार थी।
0: मजा आया?
1: हाँ।
0: अच्छा आस्तिक ये बताओ, कहानी में ऐसे कौन से मोड़ थे जहाँ से कहानी बदल गई? हमें जैसा लगा कि कहानी तो ऐसे घटी होगी।

0: लेकिन पता चलता है कहानी में तो ये हुआ ही नहीं। तो आसिक बता सकते हैं कि कहानी ने कहां से मोड़ लेना शुरू किया?
1: हाँ, कहानी ने वहां से मोड़ लेना शुरू करा जब कौवा छत्ते से टकरा जाता है।
0: शाबाश। और उसके बाद जब गिलहरी आम को पकड़ लेती है, उसके बाद कौन सा मोड़ आता है?
1: उसके बाद अंडे में से चूजे बाहर आके चिल्लाने लगते हैं और गिलहरी डर जाती है।
0: और जिसे आप चूजे कह रहे हैं, ये बच्चे किसके हैं?
1: कौवे के।
0: कौवे के बच्चे। और कौवे के बच्चे हैं तो क्या कहेंगे? कुहू कुहू कहेंगे या फिर काव काव कहेंगे?
1: काव काव कहेंगे।
0: अगर अचानक आपके कान के पास यही आवाज आए काव काव काव, तो आप भी डर जाएंगे नास्तिक।
1: हाँ,
0: ऐसे ही गिलहरी भी डर गई थी। अब जब गिलहरी डर गई तो कहानी में आया तीसरा मोड़ और गिलहरी के मुंह से छूट गया आम और जा गिरा सोहन लाल की पगड़ी में, जहां से झुमकी ने वह आम उठा लिया। तो ये थी हमारी आम की कहानी। अच्छा, आज तक ये बता सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक या इस कहानी का नाम आम की कहानी क्यों रखा गया होगा?
1: आम इतनी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार झुमकी के हाथ में आ ही गया।
0: हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी आम के आसपास ही तो घूम रही है। झुमकी ने आम को देखा और मिदना ने आम पर निशाना लगाया, कौवे ने आम पकड़ा, कौवे के मुंह से आम छूट गया तो गिलहरी ने पकड़ा, गिलहरी के मुंह से आम छूट गया तो गिरा सोहन लाल की पगड़ी में और फिर झुमकी ने वह आम उठा लिया। क्या आस्तिक इस कहानी का कोई और नाम भी हो सकता है?
1: हाँ,
0: बताओ तो जरा।
1: आम की मुसीबतें।
0: आम की मुसीबतें, झुमकी का आम, कौवे की चतुराई, गिलहरी का रोना और मिदना का निशाना। इस कहानी का कोई भी नाम हो सकता है। जब हम किसी कहानी का कोई नाम रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। या तो कहानी का नाम किसी एक खास व्यक्ति पर हो सकता है, किसी खास चीज पर हो सकता है या फिर किसी घटना पर हो सकता है। इस कहानी में हमने कहानी का नाम किस पर रखा है? क्या किसी व्यक्ति के नाम पर रखा है या फिर किसी चीज के नाम पर रखा है?
1: हमने कहानी का शीर्षक किसी चीज के नाम पर रखा है।
0: और वह चीज क्या है?
1: आम।
0: क्योंकि आम के इर्द गिर्द ही कहानी की पूरी घटनाएं घूमती हैं, इसलिए हमारे केंद्र में है आम। इसलिए हमने कहानी का शीर्षक रख दिया आम की कहानी। बच्चों, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं रिमझिम में और ये कहानी आप पढ़ सकते हैं NBT द्वारा प्रकाशित आम की कहानी में भी। चित्र कथा है, यानी इसमें चित्रों के सहारे ही कहानी आगे बढ़ती है। मैंने तो अपने एक अलग अंदाज से कहानी सुनाई, लेकिन बच्चों आप इसी चित्र कथा के आधार पर अपनी कहानी बना सकते हैं, अपनी नई कहानी बना सकते हैं और अपनी कहानी का कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। आप चाहें तो लड़की को कोई अपना नाम दे सकते हैं, जैसे बबीता, जैसे मुनिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। और आप लड़के को भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दिया मिदना। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मनोज रख सकते हैं, असलम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। और तो और आप कौवे का, गिलहरी का भी नाम रख सकते हैं, चाहे तो खरगोश के नाम भी रख दीजिएगा। तो नाम रखने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप नाम के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहानी का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा आस्तिक, आपने और सभी बच्चों ने ये कहानी सुनी, ध्यान से सुनी होगी मुझे उम्मीद है। तो आस्तिक ये बताइए कि कहानी में सबसे पहले क्या आया?
1: कहानी में सबसे पहले लड़की आई।
0: और लड़की ने क्या देखा था?
1: लड़की ने आम देखा।
0: उसके बाद क्या आया?
1: उसके बाद कौवा आया।
0: ठीक है, और कौवा तो उस आम के पेड़ के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था, लेकिन कौवे ने आम को पकड़ा, उससे पहले क्या आया?
1: उससे पहले मिदना आया।
0: और मिदना के हाथ में क्या था?
1: गुलेल।
0: तो लड़की के बाद आई गुलेल और गुलेल से टूटा आम। उसके बाद कौन आया?
1: गुलेल के बाद कौवा आया।
0: और कौवे के बाद

0: कौन आया?
1: कौवे के बाद छत्ता आया।
0: छत्ते के बाद कौन आया?
1: छत्ते के बाद घोंसला आया।
0: और घोंसले के बाद कौन आया?
1: गिलहरी।
0: और गिलहरी के बाद कौन आया?
1: सोहनलाल।
0: सोहनलाल या सोहनलाल की पगड़ी?
1: सोहनलाल की पगड़ी।
0: पगड़ी सोहनलाल ने पहनी हुई थी, तो सबसे आखिर में आए सोहनलाल। और उसके बाद कहानी समाप्त होती है आम के ऊपर। तो कहानी शुरू हुई थी आम पर और खत्म हुई आम पर। लड़की ने यानी कि झुमकी ने एक आम देखा, उसने सोचा कि मुझे ये आम चाहिए ही चाहिए, और अंत में उसे आम मिल गया। अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि कहानी में इतने सारे पात्र हैं, कहानी में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, तो क्या चीज किसके हाथ में थी, कौन सी चीज कहाँ ऊपर थी और कौन सी चीज किसके अंदर थी? तो आप बता पाएंगे कहानी को याद करते हुए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए कि गुलेल कहाँ थी?
1: गुलेल मिदना के हाथ में।
0: शाबाश। और घोंसला कहाँ था?
1: पेड़ के ऊपर।
0: वेरी गुड। और कौवे के बच्चे कहाँ थे?
1: घोंसले में।
0: शाबाश। और पेड़ के ऊपर कौन था?
1: गिलहरी।
0: और सोहनलाल के सिर पर क्या था?
1: पगड़ी।
0: तो हमने ये देखा कि कहानी में बहुत सारी चीजें आई हैं। गुलेल आई है, घोंसला आया है, घोंसले में बैठे हुए बच्चे आए हैं, और गिलहरी आई है, और सोहनलाल अपनी पगड़ी के साथ आए हैं। तो कोई चीज कहीं पर है तो और कोई चीज कहीं पर है। आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी कहानी बनानी है, और आप चाहें तो अपनी कहानी के चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाना, उनमें रंग भरना बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे मालूम है। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी कहानी बनाइए और हमारे पास लिखकर भेज दीजिए। और जब आप कहानी बनाएंगे तो तस्वीर बनाना मत भूलिएगा, और जब तस्वीर आपने बना ली है तो उसमें रंग भरना मत भूलिएगा। हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है आपका और आपकी बनाई हुई कहानियों का और तस्वीरों का। तो बच्चों, हमने इस कहानी में ये देखा था कि एक आम को कोई ना कोई ले जा रहा था, कभी कौवा ले गया तो कभी गिलहरी ले गई, है ना आस्तिक? ऐसा ही कुछ नानी के साथ हुआ। नानी की भी कोई चीज कोई चुरा कर ले गया था। आपको कोई गीत याद आ रहा है आस्तिक?
1: हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है।
0: तो क्यों ना आप वह गीत सुना ही दीजिए।
1: ठीक है,
0: तो लीजिए हम सुनते हैं आस्तिक से वह गीत, नानी वाला गीत।

0: बहुत मजेदार गीत सुनाया आपने कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छा, यहाँ पे चोरों को काला क्यों कहा गया है? क्या उनके मुंह पर कुछ काला काला लगा था? सोचो आस्तिक, और सोच कर बताना कि आखिर चोरों को काला क्यों कहा गया है, काले चोर ले गए?
1: उन्हें काला इसलिए कहा होगा कि वो दिखने में थोड़े काले हों।
0: हाँ, हो सकता है कि वे सांवले रंग के हों, इसलिए उन्हें काले चोर कह दिया हो, है ना आस्तिक?
1: हाँ।
0: अच्छा आस्तिक, ये बताइए कि आप इस कहानी में जो अलग अलग पात्राएं हैं, आप उन्हें क्या नाम देना पसंद करेंगे? देखिए, शुरू में जब हमने कहानी कही थी तो हमने अलग अलग पात्रों को अपने हिसाब से नाम दिया था। लड़की का नाम रखा था हमने झुमकी, और लड़के का नाम रखा था मिदना। लेकिन आस्तिक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये कहानी को लिखते हैं तो आप इन पात्रों को क्या नाम देना पसंद करेंगे? तो हम शुरू करते हैं लड़की से।
1: मैं लड़की को नाम देना चाहूंगा गौरी।
0: और कौवे का नाम?
1: कौवे का नाम गर्व।
0: क्या नाम रखेंगे?
1: गर्व।
0: गर्व। और लड़के का नाम?
1: लड़के का नाम

0: दर्श
1: दर्श और पगड़ी वाले आदमी का नाम
0: मोहनलाल
1: मोहनलाल और आप खरगोश को क्या नाम देना पसंद करेंगे?
0: पहले खरगोश को हम कह सकते हैं हनी, दूसरे को कह सकते हैं बनी।
1: शाबाश। और आप गिलहरी को क्या नाम देना चाहेंगे?
0: मैं गिलहरी को नाम देना चाहूंगा जारुल।
1: तो ये था आस्तिक का कहना कि उन्होंने अलग अलग पात्रों को अलग अलग नाम दिए हैं। बच्चों आप भी ऐसे नाम रख सकते हैं अपने अपने पात्रों के हिसाब से। किसी का नाम कुछ हो सकता है तो किसी का नाम कभी कभी हम अपने नाम पर ही रख लेते हैं, हमें सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और हम विदा लेते हैं आपसे। लेकिन बच्चों जाने से पहले आस्तिक का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे, तो हम आपकी तरफ से आस्तिक का धन्यवाद करते हैं इस स्टूडियो में आने के लिए। आस्तिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने के लिए और हमारे साथ कहानी कहने में मदद करने के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इतना मधुर सुरीला गीत सुनाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो हमने धन्यवाद दिया आस्तिक का, और एक बार हम फिर दोहरा देते हैं कि आपको अपनी कहानी तस्वीरें कहाँ भेजनी है। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, विषय विशेषज्ञ उषा शर्मा और आस्तिक, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, तकनीकी सहयोग विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
3: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन।

0: आपके हर सवाल का जवाब, कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे धान में कीट व्याधियों का नियंत्रण कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर SN Ray। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
7: थैंक यू मैडम।
0: डॉक्टर साहब, धान में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं उनके नाम सबसे पहले बता दीजिए।
7: बिहार भारत की सर्वाधिक धान उगाने वाला राज्य है। बिहार राज्य में धान की खेती एक प्रमुख फसल के रूप में की जाती है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होती है, लेकिन उपज क्षमता सबसे कम होती है। कम उपज क्षमता के बहुत से कारण हैं, परंतु कीट समस्या सबसे प्रमुख है। धान की अच्छी पैदावार कीट समस्या का एक मुख्य बाधक रही है। खरीफ मौसम में तो कीट समस्याएं बढ़ाने में और भी उपयुक्त है। इस मौसम में आबोहवा आर्द्रता के साथ साथ गर्म रहती है, यह कीटों के प्रबंधन एवं गुणन के लिए बहुत ही सहायक है। अतः इस मौसम में उचित वातावरण मिलने पर फलस्वरूप इसकी संतति तीव्र गति से बढ़ती है। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उचित वातावरण मिलने पर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे धान का तनाबेधक कीट, धान का मधुआ कीट, गंधी कीट, राइस हिस्पा, सैनिक कीट आदि। इस कीटों के अलावे धान में लगने वाले प्रमुख कीट धान की बभनी, धान का केसवर, धान का पत्र बेलक, धान का पतंगा आदि हैं। धान की फसल की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों एवं कीटनाशियों के प्रबंधन में जानकारी आवश्यक है, जिससे कि उचित समय पर कीटों को रोकथाम कर सकें।
0: जी डॉक्टर साहब, तनाभेदक कीट की बात करते हैं, ये तो धान को फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं, तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, साथ ही प्रबंधन कैसे करेंगे?
7: तनाभेदक मादा पतंग हल्के पीले रंग उजली कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल पर बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों के गुच्छे से रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। यह मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं, जिसको हम लोग शिशु कहते हैं। यह लार्वा पत्तियों से चलकर पौधे

0: बढ़ती कोमल में बिधक तने में घुस जाती है और अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप तना सूख जाता है
1: जी।
0: इसे डेड हार्ट का या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें वाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्म जहां साल में धान की फसल दो या अधिक बार ली जाती, तना बेधा का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करें। प्रबंधन में हम बताना चाहते हैं, इस कीट के बचाव हेतु रुपाई के समय पौधों की पत्तियों को ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रुपाई करें, ताकि इस कीट के अंडे गुच्छे में खेत में न जा सके। पौधों को रोपने से पहले जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस एवं साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर आता है, उसका 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना बेधक का बचाया जा सकता है। तना बेधक व्यस्त को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना बेधक कीट के अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें तो इस कीट से निजात पा सकते हैं। तना बेधक की आर्थिक क्षति होने पर कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम, फिप्रोनिल 0.3 g 15 किलोग्राम, कार्बोफ्यूरॉन 3 g 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें
1: जी। तो ये बात हो गई तना बेधक कीट की, उसका नियंत्रण से कैसे पहचानते हैं और ये कैसे हानि पहुंचाता है फसलों को। अब मधुआ कीट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसका पहचान कैसे किया जाए।
0: धान का मधुआ कीट भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर लंबी होती है। इस कीट के निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। यह कीट धान के पौधे के तनों से रस को चूसते हैं, जिसे पत्तियां सूख एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था में हॉपर बर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान की ऊपरी भूमि में अपेक्षा निम्न भूमि की धान पर इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के तनों को रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के प्रकोप होने पर वृद्धि की अवस्था में पुष्प एवं गुच्छ निकलने के बाद होता है, तो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10 से 70% तक क्षति हो जाती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। हरा मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। इसका प्रबंधन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में धान की रुपाई 20 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपनी करने से इसका प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप अधिक होता है, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। ज़्यादा नेत्रजन का प्रयोग इस कीट के बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों की क्षति प्रति हिल 5 से 10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। तरल दवा में बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 250 ml या थायोमिथोएक्जेम दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में

0: घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस कीट का ध्यान रखें कि कीटनाशी का घोल पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था गंधी कीट जो एक प्रमुख कीटों में से एक है जो धान में लगते हैं और इन्हें हानि पहुंचाते हैं, तो इसका प्रबंधन और इसकी पहचान कैसे की जाए?
0: गंधी कीट भी एक बहुत ही हानि पहुंचाता है। यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसके पीठ पर काले बादामी रंग का धब्बा पाया जाता है। इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, जिसके इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। इस कीट की प्रकोप आघात वाले किस्म में ज़्यादा होता है। वयस्क मादा पीले रंग का 20 से 30 अंडे पत्तियों के एक कतार में देती है। इस अंडों से 6 से 7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था में फसल को दुग्धावस्था के दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों पर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण अगाध प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट का आक्रमण हो जाता है, उस खेत के धान को चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत के मीणों को खरपतवार न उगने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। खेत में प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर 20 लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से, ताकि वयस्क कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत को चारों ओर धान की फसल को साफ कर देना चाहिए, घास के साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हील दिखाई पड़े तो इकालक्स डस्ट या मलाथियन डस्ट या प्रोफेनोल डस्ट का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में इसका भुरकाव करें, जिससे कि इसे निदान मिल सकता है।
1: जी, और अब बात करते हैं पत्र लपेटक कीट की, इसकी पहचान और नियंत्रण कैसे करें?
0: पत्र लपेटक कीट भी कभी कभी बहुत ही हानि पहुंचाता है। इस कीट की भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिससे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षति पाई गई है। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का वयस्क हल्का बादामी रंग का होता है, ऐसा इसको पंखों पर काली धारियां पाई जाती हैं। वयस्क मादा पत्तियों की सिराओं को या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इस अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपनी लार द्वारा रेशमी धागों बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ देती हैं और अंदर ही अंदर हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां की सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु लार्वा, जिसको लार्वा का अवस्था कहते हैं, फसल ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इस प्रबंधन के लिए खेत के मेंढ को उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इस कीट की संख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें, ताकि इस कीट के वयस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने हेतु ट्राइकोग्रामा क्लोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। अंतराल पर 6 बार करें। 10% पत्तियों की क्षति होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण हेतु कोई रासायनिक दवा करते हैं तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 800 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइयोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1,000 लीटर में पानी का छिड़काव के साथ कर सकें।
1: जी। जी डॉक्टर साहब, अंत में

0: एक और कीट सैनिक कीट, ये भी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों में से एक है जो कि फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
1: सैनिक कीट ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। जब धान पकने की स्थिति में होता है उस समय यह कीट बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसके शिशु हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यह कीट धुंधली के बाद रात में पौधों को पर चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं और इस कीट का के द्वारा अधिक आक्रमण होने पर पकने के पूर्व ही फसल की बालियां कटी हुई दिखाई पड़ती हैं। अधिक आक्रमण होने पर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस कीट के प्रबंधन के लिए धान की कटाई के बाद पुआल एवं खर पतवार एवं को नष्ट कर देना चाहिए। धान के कटते ही हल चलाकर खेत को जुताई कर देना चाहिए जिससे कि शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु या एक वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो खेत के मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या कोशिश करें कि जो भी किसान करें लार्ज स्केल पर करें जिससे कि इसका निदान मिल सके। नहीं तो एक जगह आक्रमण करने पर या दवा देने पर दूसरी जगह भी ये चले जाते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव होगा कि समूह में इसका उपचार करें।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, उनका पहचान कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें, सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल गई होंगी और आशा करते हैं कि आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन।

0: सुनहरा भविष्य।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
2: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
3: रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर...

0: पौधों को लगाने की,
1: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन, और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर,
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में

करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, डी 96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ

1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आरजे अनु. आप सभी का स्वागत है हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आज एक खास विषय आप सभी के सामने फिर से पेश है. और दोस्तों, अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हमारे किसान भाइयों को इसे उगाने में. जितना पौष्टिक होता है उतने ही मेहनत से इसे उगाया भी जाता है. लेकिन अब कुछ रोग और कुछ व्याधि इसमें लग जाए तो सारे के सारे मेहनत वहीं के वहीं धरे पड़ जाते हैं. तो आज हम कुछ रोग के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई पहले से सतर्क रहें, रोग को पहचान सकें, और अगर वो रोग लग जाते हैं तो उन्हें उनकी रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं. तो आज अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की जो सब्जी हैं हमारे, जैसे कि मिर्च की बात करें हम, कद्दू की बात कर लें, भिंडी की बात करें, लोबिया या बोरा, साथ ही परवल की बात करें, तो ये जो सब्जी हैं वो प्रमुख तौर पर गर्मी में और साथ ही वर्षा ऋतु में आपको मिल जाएंगे खाने को और बाज़ार में आपको मिल जाएंगे. तो आज हम इसी के कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे. तो आज का हमारा विषय है गर्मी और वर्षा ऋतु में सब्जियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां और साथ ही उनका हम प्रबंधन कैसे करें. ये तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अंसार. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में. मिर्च से स्टार्ट करते हैं. मिर्च जो है हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में हम इसे खाते हैं. मिर्च में लगने वाले जो रोग हैं आप उनके नाम बताएं और साथ ही हम उनसे अपने मिर्च के इस पौधों को कैसे बचा सकते हैं उसकी जानकारी बताएं.
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मिर्च जो है एक बहुत प्रमुख फसल जो है, सब्जी मानी जाती है, जिसका हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इसको यूज़ करते हैं, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे मुख्यतः गर्मी में और वर्षा ऋतु में सब्जी मुख्य तरीके से उगाई जाती है. इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, खास करके जो ये हमारी गर्मी में है और जो बारिश जो शुरू हो जाती है इसमें बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं. तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब पौधा छोटे अवस्था में ही होता है, जुवेनाइल स्टेज में ही होता है, तो उसी में ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है. तो किसान भाई जब इसका मिर्च का बीज डालते हैं खेतों में या नर्सरी तैयार करते हैं, उस टाइम इसमें पौधों में गलन शुरू लगता है, जिससे शुरू में ही पौधे गल जाते हैं. तो वो क्या होता है कि हमको उसमें पौधे मिल नहीं पाते, जिससे हम लोग उसको मुख्य खेत में रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाते हैं. तो हम लोगों को ये बात देखने की ज़रूरत है कि जब हम लोग बीज डालें तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पर जल जमाव ना हो, चूँकि नमी की मात्रा ज़्यादा होता है खेत में जब, तो उसी वक्त में इसमें जड़ों में गलन इसका शुरू हो जाता है, जिससे ये पौधे धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं. तो जब भी हम लोग इसको इसका जो नर्सरी तैयार करें, जब बीज डालें, तो ऐसे जगह पे हम लोग नर्सरी का की जगह का चुनाव करें जहाँ पे पानी ना भरता हो, जल जमाव की समस्या ना हो. और जो भी हम लोग बेड तैयार करेंगे जिसमें हम लोग बीज डालते हैं, उसको मिट्टी से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के हम लोग बेड बनाएं, उसके अंदर बीज इसमें डालें, तो हम लोगों का काफ़ी हद तक इसमें रोग से हम लोग इसको बचा लेते हैं. दूसरी एक जो बड़ी समस्या मिर्च में आती है, जो अभी हम लोग देखने को मिल रहा है, जो बारिश भी शुरू हो गई है, इसमें फलों का सड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है.

फल सड़ता है और दूसरा इसकी जो टहनियाँ होती हैं, तने होती हैं, उनमें उसमें उसका सूखना शुरू हो जाता है, उस जिसको हम लोग डैम्पिंग, ये इसको हम लोग इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज बोलते हैं, हम लोग एंथ्रेक्नोज, इसको श्यामरण भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें फलों, इसमें दो तरीके के लक्षण दिखते हैं, एक तो ये फलों का सड़ना और दूसरा तनों का सूखना का। तो हम लोग पहले जब फलों की बात करते हैं तो फल क्या होता है, फल वो सड़ना शुरू होते हैं जो थोड़ा सा मेच्योर, जो पक्के मेच्योर हो जाते हैं, जिनका पकने की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फलों में ये सड़न होती है और फल काले होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। दूसरी समस्या जो इसमें दिखती है, जो एक जो लक्षण दूसरा जो हम लोग देखते हैं खेत के अंदर, उसमें टहनियाँ इसमें काली होने लगती हैं, ऊपर से सूख करके नीचे की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पूरा पौधा सूख के ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर एक प्रमुख बात यह है कि जो ये बीमारी जो लगी हुई है मिर्च के पौधे पर, ये जो मिट्टी में चले जाते हैं, फल टूट के मिट्टी में गिर जाते हैं, तो ये जो फफूंद है ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जब हम दूसरी बार इसमें मिर्च की फसल दूसरे सीज़न में उगाते हैं तो उसमें वो फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो मृदा जनित हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें फफूंदनाशी का हम लोग स्प्रे करेंगे। तो पहला हम लोग जो छिड़काव करेंगे, मैंकोजेब दवा मार्केट में आती है, हम लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो हम लोग दवा का छिड़काव करेंगे, एक डाइफेनोकोनाजोल करके एक दवा मार्केट में आती है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, डाइफेनाकोनाजोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम लोग ले करके उसका 1 ml 2 लीटर पानी में उसका हम लोग घोल बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव हम लोग करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पे हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो समस्या लगती है वो धीरे धीरे कम होगी। और हम लोग एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई पौधा पूरी तरीके से सूख गया है तो उसको हम लोगों को खेत से फौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा तो उसे फिर वो आने वाले जब समय में जब हम दोबारा मिर्च लगाएंगे तो उसमें बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी एक समस्या जो हम लोग देखते हैं मिर्च के अंदर, वो पौधों का अचानक सूख जाना, पौधों में फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फल अच्छी तरीके से तुड़ाई हो रही है, अचानक हम लोग देखते हैं कि पौधा ही सूख गया। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है कि इसमें लक्षण जो दिखते हैं हरे भरे पौधों में कि जो पत्तियां होती हैं वो लटक जाती हैं, जो दिन में जब गर्मी होती है तो उसमें पत्तियां नीचे लटकी हुई होती हैं और जब रात का समय होता है, शाम होती है, फिर पत्ती वो फिर से वो स्वस्थ दिखने लगती हैं। फिर जब दिन आता है दूसरे दिन तो फिर वो पत्ती सूख जाती है। तो ये 2-3 दिन इस तरीके से चलता है, 4 दिन चलता है, फिर वो फाइनली पौधा वो जो है सूख ही जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, उसके जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरी तरीके से, जिससे जो पानी जो पौधा लेता है ज़मीन के अंदर से वो पानी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल विल्ट जो हम लोग जीवाणु की वजह से जो सूखना पौधों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ी मिर्च की समस्या है। तो इसको किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि अगर जिस खेत में ये बीमारी अगर लगातार आ रही है, आप लोग मिर्च की फसल लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्षों तक हम लोगों को इसके अंदर फसल चक्र का अपनाएं। कोई भी जो मिर्च वर्ग के जो फसल है उसको हम लोग नहीं लें उस खेत के अंदर, अगर लेते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई इसमें मिर्च लगा रहा है खेत में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग मिर्च लगाएंगे तो हम लोग इसको दवा में, इसको ट्रीटमेंट इसका देंगे, इसके जड़ों को हम लोग दवा में इसको डुबाएंगे फिर खेत में लगाएंगे। तो एक दवा मार्केट में के साइक्लिन करके आती है, जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसको हम लोग 1 ग्राम दवा जो है 20 लीटर पानी के करीब से घोल उसको हम लोग बना लेंगे और उसमें जड़ों को थोड़ी देर के लिए डुबा करके फिर हम लोग मुख्य खेत में उसको लगाएंगे। तो इससे जो है हमारी बीमारी की जो लगने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर खेत में पौधा लगा हुआ है, फलन हो रही है और अब पौधा सूख गया, तब तो हमको फौरन इसमें ऐसी दवा डालना होगा जो खेत में खड़े हुए फसल में उसमें दवा डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहली ध्यान देंगे जो दवा का छिड़काव करेंगे इसके जड़ों में देंगे, ताकि उसके वैस्कुलर सिस्टम में दवा जाए और जहां वो जीवाणु को मारे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवा आती है मार्केट में मुख्य तरीके से मिलती है, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना करके पौधों की जो जड़ों हैं जड़ों में उसको दवा डालना है, ताकि वो जड़ से वो दवा अंदर जाए पौधों के अंदर और फिर वहाँ अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम लोग इस जो कोई पौधा सूख रहा है और अगर हम लोग दवा पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो हो सकता है कि वो दवा प्रभावी ना हो, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। और जो एक मिर्च में हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जिसके अंदर पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में कुकड़ी भी बोलते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश हम लोग उसको कर्लिंग बोलते हैं। तो पत्ती उसमें क्या होती है,

0: मुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो वो एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको हम लोग लीफ कर्ल वायरस की वजह से बोलते हैं, वो बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी होती है ये मुख्य तरीके से जो है एक कीट होता है जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से वो बीमारी एक पौधों से दूसरे पौधों में फैलती है। तो वो बीमारी ग्रसित पौधे से रस चूस करके वो स्वस्थ में जब भी जाएगी रस वहाँ से अपना खाना लेने के लिए, तो वो विषाणु वहाँ पर भी चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे खेत में वो कर्लिंग की समस्या आ जाती है जो पत्ती ऊपर की तरफ ऐंठ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसमें पत्ती का ऐंठना ही नहीं होता है, पत्ती भी ऐंठती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, पौधा झाड़ी नुमा भी हो जाता है, और इसके अंदर अगर फल फूल लगते भी हैं तो वो छोटे और गठीले तरीके से हो जाते हैं जिनका कोई मार्केट में उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो इसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कोई बीमारी दिखती है तो अगर पौधे अगर खेत में अगर इस तरीके से अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है तो फौरन उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देना है, और इसको हम लोगों को फौरन खेत में इसको दवा का छिड़काव करना है जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए दवा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का मार्केट में खूब अवेलेबल है। इसको हम लोग 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से, या दूसरी दवा थायामिथक्साम करके आती है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, इसका हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सफ़ेद मक्खी है उनका खेतों में जो लगे हुए हैं उनको हम लोग नियंत्रित करेंगे, जिससे बीमारी जिससे फैलती है उसको हम लोग कम कर देंगे। इसको रोकने का और भी अच्छा तरीका है कि हम लोग नर्सरी अवस्था में ही इसको रोकना शुरू करें, क्योंकि नर्सरी में जब हम लोग बीज डालते हैं तो किसान भाई खुले में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी लगनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो बीमारी वायरस जो है फैलना शुरू हो जाता है नर्सरी की अवस्था से ही। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी नर्सरी लगाएं तो उसको हम लोग बारीक एक जाली आती है उस जाली से हम लोगों को नर्सरी को ढकना है। तो उससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो बीमारी जो वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं वो नहीं उसके अंदर जाएंगे नर्सरी के अंदर, और दूसरा और भी जो पत्ती को चबाने वाले कीट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो नर्सरी आपने तैयार करी है उसके पौधे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, और जब वो मुख्य खेत में जाएंगे रुपाई के लिए तो उसमें भी बीमारी कम आएगी। यदि आती है तो हम लोग इसका जो दवा अभी हमने बताया कि सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए उसका छिड़काव करेंगे। दूसरी बात, किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग मिर्च की फसल लगाते हैं तो हम लोग ध्यान दें कि अपने खेत के चारों तरफ कम से कम 2 लाइन बॉर्डर के तौर पे उसमें हम लोग मक्का या ज्वार उगाएं। तो उससे क्या होगा, जो बॉर्डर वाली जो फसल हम लोग लगाते हैं उससे क्या होता है कि सफेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुसनी है, वो उनका एक प्रोटेक्शन हो जाता है किनारे किनारे मेड़ों पर। तो 2 लाइन हम लोग मक्के की अवश्य लगाएं उसके किनारे किनारे खेत के मेड़ों पर, जिससे उसमें मधुमक्खी ये वही सफेद मक्खी का उसके अंदर प्रवेश उसके अंदर हम लोग उसको बाधित कर सकें। दूसरा, एक इसमें जो कर्लिंग की समस्या आती है, किसान भाई देखते हैं कि कर्लिंग 2 तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो जो कुकड़ी होती है ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं जिसको अभी हमने बताया जो विषाणु की वजह से होती है, एक दूसरी समस्या होती है पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो विषाणु नहीं है वो एक माइट होता है, छोटा कीड़ा होता है, आँख से नहीं दिखता है, वो पत्ती के निचली सतह पर लग करके उसका रस चूसता है जिससे पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरह की से मुड़ती है और थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो माइट है, उसके उस माइट को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन करके दवा आती है, स्पायरोमेसिफेन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका घोल करके छिड़काव करें कम से कम 2 बार 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो हम लोग इसको माइट को भी रोक देंगे, तो वो जो इस तरह से अगर पत्ती है तो वो ठीक हो जाएंगी वो।
1: तो ये तो बात हो गई है मिर्च की, मिर्च में लगने वाले रोगों के नाम बताए डॉक्टर साहब ने आपको, और साथ ही इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो कद्दू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं सर, तो कद्दू में कौन कौन से रोग हैं कद्दू के पौधे में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम?
0: जी, कद्दू एक मुख्य फसल है जो गर्मी में और वर्षा ऋतु में दोनों में होती है। तो इसको इसमें मुख्यतः 3 बीमारियां आती हैं जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसान भाई इसको आप खेत में देखते भी होंगे, एक तो होता है कि पौधा पूरी तरीके से ही सूख जाता है अचानक, तो हम लोगों को देखना है कि उनके जड़ के पास में कोई कीट तो नहीं लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी इसको जड़ को, हम लोग उसको देखना है उसको जा करके। तो अगर हम लोगों को जड़ों में अगर देखता है कि अगर कोई काले रंग का कोई घेर लेके घेरा हुआ या कवर कर रखा है तने को, तो हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई फफूंद लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो अभी हमने बताया है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बनडाजिम दवा आती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसको हम लोगों को जड़ों में उसका डालना है उस दवा को, वहाँ ड्रेंचिंग करना है उस दवा को। और अगर हम लोगों को मैं उस टाइम अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो हो सकता है ये बहुत प्रभावी ना हो, क्योंकि जड़ों से सूखना शुरू होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये है समझना।

0: है कि जो जड़ में फफूंद लगा है उसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो हम ये दो दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो इससे पौधों का सूखना रुकेगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं कद्दू का, तो सबसे पहले हम लोगों को वही देखने की ज़रूरत होती है, हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा हम लोगों को जो है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोगों के पास में जो मिलता है, हम लोग 100 किलो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1 किलो के करीब हम लोग जो मार्केट का जो मिलता है फॉर्मुलेशन, उसको हम लोग मिला करके 14 से 15 दिन के लिए उसके छावदार स्थान पर रखते हैं ताकि उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरीके से फैल जाए। जब हम लोग गड्ढा बनाते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने के लिए, उसमें लौकी हो सकती है, परवल है, या आपका ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तो इन सब में जो हम लोग लगाते हैं बीज लगाते हैं, तो हम लोग पहले गड्ढा बनाते हैं। उन गड्ढे में पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट, वो भी ट्राइकोडर्मा मिला हुआ, उसको हम लोग पहले गड्ढे के अंदर भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से फफूंद होगा तो ट्राइकोडर्मा उनको रोकेगा, और जिससे हमारे जो पौधे निकलेंगे उसके अंदर उनमें जड़ों में इस तरह से कोई विकार या कोई बीमारी इस तरह से नहीं दिखेगी। तो अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में मिले हुए वर्मी कंपोस्ट को अगर हम लोग डालते हैं गड्ढों में, तो उससे हम लोग बीमारी काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। दूसरा, पत्तियों पर जो एक बीमारी लगती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर की परत सी जम जाती है, दो पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इस तरह से परत जमती है, तो देखते हैं कि पूरा पौधा ही सफ़ेद हो जाता है। जब हम लोगों की नमी बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है खेतों के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह से हम लोग बीमारी आने की संभावना जो बनी रहती है, तो हम लोग बीमारी आने से पहले ही मैंकोजेब जो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम जो दवा है उसको प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ही छिड़काव करके रखेंगे खेत में, जिससे उसके अंदर इस तरह से कोई बीमारी ना आए, पहले से ही हमने छिड़काव करके उसमें रखना है। दूसरी बात है जो हम लोग देखते हैं कि और भी फफूंदनाशी अगर मान लो बीमारी आ भी गई है खेत में, लग रही है बीमारी की बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग उसके अंदर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो है वो उसको हम लोगों को डालना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, क्योंकि उसमें फिर हम लोग कोई दवा डालेंगे तो काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो हम लोग हेक्साकोनाजोल आता है, टेब्यूकोनाजोल आता है, तो या हेक्साकोनाजोल या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है, मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से जो दवा आती है इनका दवा हम लोग ले करके वो 1 ग्राम के हिसाब से इसको हम लोग लेके पत्तियों पर छिड़काव करना शुरू करेंगे, ताकि जो उस तरह से जो फफूंद ऊपर लगी है वो उसको हम लोग साथ समय ठीक कर सकें। अभी जो मिर्च ये कद्दू वर्गीय फसलों में जो हम लोगों को एक उभरती हुई समस्या जो दिख रही है वो विषाणु जनित बीमारियों की है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो लक्षण हम लोगों को मिर्च में टमाटर में जो दिखते थे, पत्तियों के अंदर पीला हो जाना या पत्तियों के ऊपर कुकड़ी हो जाना, पत्तियां ऐड जाती हैं, उस तरीके की समस्याएं अब हम लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिल रही है। उसमें आपका खीरा, तरबूज, करेला, खीरा, इस सारे में जो है इस तरह की बीमारी दिखती है, जिसमें पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, मोज़ेक तरीके का दिखने लगता है, उजला हो जाता है और पत्तियाँ ऐड जाती हैं। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी चीज़ करना यह है कि जो ये बीमारी वही मक्खी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है जो मिर्च के अंदर जो इस तरह से कुकड़ी या कर्लिंग उसके अंदर बीमारी को फैलाता है। तो हम लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत यह है कि अगर वो हम लोग ये बीमारी अक्सर लगनी कब शुरू होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो मिर्च उगाते हैं या टमाटर उगाते हैं, टमाटर मुख्यतः रबी की फसल है, जब टमाटर की फसल ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बीच में कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कद्दू लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जब जो विषाणु इसमें लगता था टमाटर के अंदर, वो विषाणु कद्दू वर्गीय फसलों में चला जाता है, तो टमाटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कद्दू वहाँ पे जो पौधा तैयार होता है उनमें मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको देखना है कि जब भी हम लोग इस तरीके से कोई बीज लगाएं किसी टमाटर के में या मिर्च में किसी फसल में, तो उसमें हम लोगों को टाइम से उसके अंदर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है, ताकि जो सफ़ेद मक्खी टमाटर या मिर्च में लगती हो वो इसके अंदर कद्दू वर्गीय फसलों में ना आने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आएँ, तब हम लोगों के अंदर इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्साम जो अभी हमने दवा बताया है इसका हम लोगों को छिड़काव करना शुरू कर देना है। 7 से 8 दिन के अंतर पर इस दवा को हमको छिड़कते रहना है। दूसरी चीज़ है जैसे अभी हम लोग बताएं कि जो बॉर्डर वाली हैं, जो किसान जो मुख्य खेत है उसके किनारे किनारे पे हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन मक्के की या ज्वार की हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो उससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत के अंदर जो प्रवेश होता है उसको हम लोग रोकते हैं। तो इससे हम लोग देखते हैं कि बीमारी को हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं।
1: अगर

0: गर्मियों की बात करें, हमारे साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें, तो भिंडी अभी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, भिंडी उत्पादन के समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई रोगों के बारे में जानें और उनका बचाव कैसे करें, भिंडी के पौधे में जो रोग लगते हैं उनको पहचानें, तो कौन कौन से रोग इस पौधे में लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
1: जी जी बिल्कुल, जो भिंडी की फसल है, हम लोग देखते हैं कि मार्च से ही आनी शुरू हो जाती है और अभी बरसात में भी खूब भिंडी मिलती है हम लोगों को। भिंडी हम लोग दो सीज़न में लगाते हैं, एक तो हम लोग गर्मी वाला लगाते हैं, एक वर्षा ऋतु वाला लगाते हैं, दोनों अलग अलग में लगाते हैं। तो जो गर्मी में हम लोग लगाते हैं, जो मार्च के करीब लगाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जो भिंडी में है, जो मुख्यतः जो बीमारी आती है वो मोज़ेक की समस्या है, जिसमें पत्ती एकदम गोल्डन की तरह मोज़ेक चमकती हुई दिखती है खेतों में, अगर हम लोग देखते हैं उसको, हम लोग येलो वेन मोज़ेक बोलते हैं। तो उस तरह से खेत में एक चमकदार पत्ती जो पीली उजली सी दिखनी शुरू हो जाती है। तो भिंडी में एक सबसे बड़ी बीमारी यही हम लोगों को दिखती है खेतों के अंदर। अब आते हैं हम लोग भिंडी के सीज़न के ऊपर। जो भिंडी दो सीज़न में जो हम लोग लगाते हैं, एक तो हम लोगों का लगाने का समय है जब हम लोग ये मार्च में लगाते हैं, दूसरा एक वर्षा ऋतु में जब हम लोग जुलाई वगैरह में लगाते हैं, जो अभी आ रहा समय। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो गर्मी में लगाते हैं मार्च के समय में, उसमें कम जो बीमारी होती है उसमें थोड़ा कम आती है, और जब हम लोग इधर देखते हैं जो बरसात में लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या आती है जिसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब भी किसान भाई लगाएं तो इसमें दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी हम लोग भिंडी लगाते हैं, जो चूँकि बीज जो मार्केट में मिलते हैं वो ऑलरेडी उनमें ट्रीटमेंट किया होता है, तो उस टाइम हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब पत्ती में, जब पौधे बीज डालने के बाद में जब दो तीन पत्तियाँ निकल आती हैं, तो उसी टाइम से हमको छिड़काव करना ज़रूरी होता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जब पौधों में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाए, पौधा बड़ा हो गया, भिंडी निकलने फूल निकल रहे हैं, फल भी निकल ले रहे हैं, उस टाइम बीमारी आती है, तभी हम लोग दवा छिड़काव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी भिंडी में दवा का छिड़काव हमको करना है, तो जब पत्तियां दो तीन पत्ती निकल के आ जाए पौधे के बीज लगाने के बाद में या सोइंग करने के बाद में, तभी हमको उसी टाइम दवा डालना है। क्योंकि बहुत छोटे पौधे, छोटे अवस्था में ही बीमारी आ जाती है और वो पौधा बड़ा बड़ा बड़ा होते होते उसके अंदर वो लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि शुरुआती अवस्था में ही उसमें दवा डालना ज़रूरी होता है। तब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ध्यान देंगे कि सफ़ेद मक्खी, जो गोल्डन मोज़ेक जो बीमारी आती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलता है, ये भी उसी ग्रुप का ही वायरस है। तो हम लोगों को जो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवा बताई, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोक्साम, इन दवाओं को हम लोगों को 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 8 से 12 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करना है, जब 3-4 पत्तियां निकल आए इसके अंदर, उसी चाहे बीमारी हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को दवा डालना ज़रूरी होता है। अगर हम उस टाइम दवा डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें ट्रांसमिशन या जो सफ़ेद मक्खी से जो वायरस फैलता है, हम उसी अवस्था में सफ़ेद मक्खी को मार देंगे, तो पौधा बड़ा होते होते होते अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो बीमारी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तब हमारा फल फूल आता है उसमें हमको उपज भी मिलती है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में अगर विषाणुओं के लक्षण दिखने शुरू हो गए, तब हम लोगों को उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर हम लोगों के पास में एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना। तो अगर हमारे पास, अगर किसान भाई भिंडी लगाए हुए हैं, अगर एक दो पौधे में अगर कहीं पर भी अगर इस तरह से लक्षण दिख रहा है, तो हमको सबसे पहले उस पौधे को हटा देना है। हो सकता है कि उसी एक दो पौधे की वजह से पूरे खेत में वो बीमारी फैल जाए और देखते देखते पूरे पौधे पीले हो जाएं। तो अगर एक दो पौधे में अगर इस तरह से कोई लक्षण दिख रहा है, तो बगैर कोई लालच किए, बगैर कुछ उसमें दिमाग लगाए, उसको हम लोग को हटा देना है, ताकि उससे बीमारी दूसरे पौधों में ना फैलने पाए। तो सफ़ेद मक्खी को जो मारने के लिए दवा है, उसी को हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरा, जो बॉर्डर के लिए भी हम लोग बात कर रहे थे, बॉर्डर पर मक्का या ज्वार की 2 लाइन हम लोग जरूर लगाएं इसमें।
0: तो ये बातें हो गई हैं भिंडी की, और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब, हम लोबिया यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में बोरा भी कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, साथ ही उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उसे भी बताएं।
1: जी, बोरा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लोबिया या काउपी हम लोग बोलते हैं उसको, बोरा में हम लोग देखते हैं दो बीमारी बहुत आम है यहाँ पे आती है। एक तो आती है कि जो पत्ते होते हैं उनमें काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, इसके हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। वो पुरानी पत्तियों, जो पत्तियां होती हैं, जो नई पत्तियां होती हैं उनमें कम होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं।

0: में इस तरह से काले धब्बे बनने शुरू होते हैं, तो कभी कभी वो काले धब्बे क्या होते हैं, पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और वो देखते ही देखते पूरे पौधे को गला देते हैं। जब इसमें फलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब फलियां आती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि काले काले से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये जो बीमारी आती है इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है, देने वाली जो बात है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैंकोजेब बीमारी हो या ना हो हम लोग एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर कर दें। जब पौधा हमारा थोड़ा सा 4-5 पत्ती जब उसके अंदर आ जाए उसके अंदर छिड़काव हमको कर देना है, मैंकोजेब 2 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को उसके अंदर छिड़काव कर देना है। यदि उसके बाद अगर उसके अंदर बीमारी आ रही है, उसमें इस तरह से कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो पत्ती काली पूरी हो जा रही है या तने में कालापन आ जा रहा है या फलियों में कालापन लगने शुरू हो जा रहे हैं, तो डाइफेनोकोनाजोल जो दवा है वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से हम लोगों को दवा का छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा, वो काले धब्बे जो हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक जो इसमें जो पत्ती में एक समस्या आती है वो गोल्डन मोज़ेक की है। गोल्डन मोज़ेक एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हम लोग देखते हैं कि पत्तियां उजली सी हो जाती हैं उसमें, वही बीमारी हमारे मूंग में भी आती है, वही बीमारी हमारी फ्रेंच बीन में भी आती है, वही बीमारी हमारी इसमें आती है अरहर में भी आती है। तो उसी वही ग्रुप का एक वायरस है जो लोबिया की फसल में लगता है और हम लोग देखते हैं कि पत्तियां देखते ही उजली हो जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाओं का छिड़काव, वही दवा का छिड़काव हमको इसके अंदर करना है 7-8 दिन के अंतराल पर या 10-12 दिन के अंतराल पर। तो उससे क्या होगा, वो सफ़ेद मक्खी को हम लोग कम कर देंगे खेत के अंदर और जो पौधे होंगे जो निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे उसके अंदर।
1: अगर गर्मी की बात करें साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो जो परवल जो है वो खास सब्जी है इस ऋतु की, तो डॉक्टर साहब इसमें जो लगने वाले रोग होते हैं परवल के पौधों में वो कौन कौन से होंगे और साथ ही इसका रोकथाम हम कैसे करें?
0: जी, परवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे गंगा के किनारे या और भी आसपास के किसान जो है काफ़ी परवल उगाते हैं और उनका अच्छा रेट भी मिलता है हम लोग किसान भाइयों को। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें देखते हैं कि बहुत सारी इसके अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को 2 चीज़ इसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं देखने आए खेत के अंदर। एक तो इसके अंदर जो इनकी लत है, जो वाइंस है, उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं पैदा हो रही जो पूरी लत सूख जाती है। उसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह पे हमको दिखता है कि काला घेरा या काला धब्बा दिखता है, वो तने को पूरा कवर कर लेता है। तो देखते देखते वो पूरे तने को पूरा काला कर देता है जिससे वो पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। पहले एक पार्ट उसका सूखेगा, एक तना सूखेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा और तनों पर फैल जाएगा लतों में और देखते देखते वो पूरा सूख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी इस तरह का कोई लक्षण दिखे, अगर कहीं थोड़ा सा दिख रहा है या किसी एक लत में दिख रहा है तो उसको हमको काट के हटा देना है। अगर इस तरह से लक्षण अगर किसान भाई खेत में देखते हैं तो फौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा हम लोग बोले 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका हम लोग खेत में फौरन छिड़काव कर देना है, इससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग पत्तियों में देखते हैं बीमारी आती है वो एक धब्बा सा बनता है, काला धब्बा जो ब्लाइट अपीयरेंस एक देता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं पत्तियाँ वहाँ काली होकर गलनी शुरू हो जाती हैं और इस तरीके का लक्षण हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पे फैलने के बाद जो फल निकलते हैं उन फलों में वो उस तरीके का लक्षण शुरू हो जाता है। वो काले पहले छोटे से दाग धब्बे बनते हैं, वो देखते देखते फिर पूरे पौधे पूरे फल को गला देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर किसी एरिया में अगर किसान भाई इस परवल लगाते हैं और इस तरह की समस्या दिखती है तो बीमारी हो या ना हो हम लोग मैंकोजेब का एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर करेंगे। उसको छिड़काव करने के बाद में भी अगर हमको कहीं पे दिख रहा है इस तरह से कोई लक्षण तो हम लोग को मैंकोजेब और मेटल एक्सिल का कॉम्बिनेशन वाला दवा आता है जो मिक्स होता है, उसको हम लोग 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके उसको प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग छिड़काव करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वो जो समस्या होती है उसको हम लोग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे खेत के अंदर से। लेकिन इसका साथ समय छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि फल फूल आने लगे या हम लोग भिंडी में इंतज़ार करें कि अब फल के तुड़ाई का वक्त आ गया या मिर्च में हम लोग सोचें कि मिर्च में अब फल आ रहा है अब बीमारी आ गई तो कोई छिड़काव करें, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोगों को समय से डरना है, बीमारी आने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत रहेंगे और उस टाइम बताए गए दवाओं का अगर हम लोग सही समय पर छिड़काव करते रहेंगे तो हम लोग बीमारियों को निश्चित तौर पर रोक देंगे और हम लोगों को अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: जी, तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का पूरा मुनाफा मिले, तो ज़रूरी है कि आपके जो सब्जियों के पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें। और डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर

0: जानकारी दी है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं आपके सब्जियों के पौधे में और आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस वार्ता को सुनेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, रोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी आप में विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
1: उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अनु, और हर रोज की तरह आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जहां हम बातें करते हैं खेती की, और खेती में जो नई नई तकनीकें आती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोपोनिक के बारे में हम आपको बताते रहते हैं, और आज हाइड्रोपोनिक से जो जुड़ी नई चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, और विषय है हमारा हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लेट्यूस की खेती। तो आज इस विशेष जानकारी के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर अमृता, और मैडम वैज्ञानिक है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
6: हाइड्रोपोनिक क्या है, एक बार फिर हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं।
8: देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्व से भरपूर पानी में उगाते हैं। इसमें

0: पौधे की जड़ें पोषक तत्व से भरी पानी में डूबी रहती है, जहां से वो आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों आवश्यक होती है। साथ ही पौधों को उपयुक्त रोशनी, तापमान और वातावरण की जरूरत होती है।
1: जी, अब लेट्यूस क्या है इसकी भी जानकारी दे दें।
0: लेट्यूस एक पत्तेदार सब्जी है जिसे हम सलाद में, बर्गर में और हेल्दी डाइट में इसे खूब इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि यह फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। ये एक ऐसी फसल है जो कि विदेशों में खूब खाई जाती है और अब धीरे धीरे यह भारत में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: जी, तो हाइड्रोपोनिक तरीके से अगर हम लेट्यूस की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे?
0: हाइड्रोपोनिक्स के में लेट्यूस की खेती करने के लिए सबसे पहले तो आपको बीज का चुनाव करना पड़ेगा। इसमें हम बता दें कि इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि बटर हेड, रोमेन और क्रिस्प हेड। भारत में रोमेन की किस्म काफ़ी लोकप्रिय है। और दूसरी बात है कि नर्सरी में अंकुरण की बात होती है, तो नर्सरी में हम लोग लेट्यूस के बीज को एक ग्रोइंग मीडिया में उगाते हैं, जैसे कि कोकोपीट, रॉक वूल, परलाइट, वर्मिकुलाइट, बायोचार इत्यादि माध्यम में अंकुरित किया जाता है। इसे अंकुरण निकलने में कम से कम 4 से 7 दिन लग जाते हैं, फिर हम इसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग में एक खास बात ध्यान रखने की होती है कि जब पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए, 15 से 20 दिन में लगभग ये 3 से 4 इंच का पौधा हो जाता है और उसकी जड़ें पूरी तरीके से विकसित हो जाए, तब हम उसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, जैसे कि न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक या डीप वाटर कल्चर में, उसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद पोषक घोल की बात करें तो लेट्यूस के लिए विशेष न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का तैयार किया जाता है, जिसमें कि मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। मुख्य में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि तत्व होते हैं और सूक्ष्म में क्लोरीन, बोरोन, जिंक इत्यादि होते हैं। तापमान और प्रकाश की बात करें तो लेट्यूस को ठंडी जलवायु पसंद है, आदर्श तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही रोजाना इसको 10 से 14 घंटे की रोशनी चाहिए, लेकिन सर्दियों की फसल को 8 से 10 घंटे की रोशनी पर्याप्त होती है सर्दियों की फसल में, और ये 45 से 60 दिन में लगभग पौधे तैयार हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही खास बात ध्यान रखने की जरूरत है, इसके पीएच और ईसी जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता बोलते हैं, पीएच को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है 5.8 से 6.2। नहीं तो फिर क्या होता है कि सुबह सुबह जब हम पीएच मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे दिन जैसे ढलता जाता है वो अल्कलाइन की तरफ, क्षारीय की तरफ वो शिफ्ट करता जाता है। जब ये क्षारीय की तरफ शिफ्ट करता है तो हम इसमें फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल डालते हैं, और कभी कभी जब ये बेसिक की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो फिर हम लोग बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। कभी कभी पानी से भी इसे मेंटेन किया जाता है। दूसरी बात मैंने की थी विद्युत चालकता की, तो लेट्यूस के लिए 0.5 से 0.6 डेसीसाइमन पर सेंटीमीटर विद्युत चालकता की जरूरत होती है। धनिया के लिए 0.8, पालक के लिए 1.2 से 1.4 में हम लोगों को इसका रखरखाव करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात होती है इसके चिलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर चिलिंग वाटर आप देंगे, ठंडा पानी, तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और सूर्य की रोशनी पड़ने से एक इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि शैवाल की उपस्थिति हो जाती है, जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। पानी पर सूर्य की रोशनी पड़ने पे ये होती है, तो इसलिए हम लोग सिल्वर नैनो पार्टिकल, जिसको कि सिल्वर नैनो कण, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं, उसको डालने से पानी पूरा साफ हो जाता है।
1: तो ये तो बात हो गई किस प्रकार खेती करेंगे हाइड्रोपोनिक तरीके से। कुछ फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं, अगर इस तरीके से हम लेट्यूस की खेती कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा मिल सकता है?
0: फ़ायदे की बात करें तो लेट्यूस कम दिन की फसल है, जैसे 30 से 40 दिन में यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप प्रॉपर पीएच, ईसी और तापमान, पोषक घोल अगर आप देते रहेंगे तो 30 से 40 दिन में यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरे फायदे हैं कि मिट्टी अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो रोग और कीट की संभावना भी कम हो जाती है। और क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में तापमान का और बाहरी वातावरण का नहीं प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम पूरे साल उगा सकते हैं, ताज़ा और साफ फसल ले सकते हैं, जिससे कि बाज़ार में हमें अच्छे भाव मिल जाते हैं। सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसकी मांग बहुत है। हाइड्रोपोनिक लेट्यूस की कीमत सामान्य से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यह केमिकल फ्री और हाई क्वालिटी की होती है।
1: अब थोड़ा सा हम स्टार्टअप की बात करते हैं, क्यों हाइड्रोपोनिक खेती को स्टार्टअप बनाए हम?
0: सबसे पहले युवाओं के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स खेती को स्टार्टअप बनाने की सोच रहे हैं तो ये

0: बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज़मीन की कमी है, लोग अब हेल्दी और ऑर्गेनिक खाने की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि रेस्तरां और कैफ़े और सुपरमार्केट में लेट्यूस की भारी डिमांड है। कम जगह में, कम पानी में उच्च गुणवत्ता वाली खेती संभव है, तो इसलिए आप इसको एक बिजनेस अवसर में बदल सकते हैं। ये आपको प्रॉफिट देने वाली फसल है, क्योंकि ये 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। इसे 150 या 300 रुपये प्रति किलो का आपको रेट मिल जाता है, और लेट्यूस को एक टैग भी आप दे सकते हैं, पेस्टिसाइड फ्री है ये और फ्रेश है ये। और बात है कि 1000 वर्ग फुट में अब हर महीने 100+ किलो का उत्पादन इससे संभव है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें, मैं युवाओं को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोकेशन का ध्यान रखें कि आप घर की छत, बालकनी या शेड में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और सिस्टम सेटअप में शुरुआती निवेश 40,000 से 1.5 लाख तक की आती है। और बीज और नर्सरी की बात करें तो जैसे अच्छी किस्म के आप रोमेन या बटर हेड लेट्यूस के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अंकुरण के लिए आप रॉकूल, कोकोपीट, परलाइट, बर्मिकुलाइट इत्यादि आपको ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और फिर पोषक तत्व की बात करें तो आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि हो। और ग्रीन हाउस या नेट हाउस का जरूरत होती है इसमें, क्योंकि तापमान, नमी और रोशनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। आप चाहे तो इसे ऑटोमेशन से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहले इसे सीधे होटल में ले जा सकते हैं आप, कैफे, रेस्तरां से टाई अप कर सकते हैं आप इसमें। फिर या तो आप ब्रांड बना सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि फ्रेश हाइड्रोपोनिक लेट्यूस का ब्रांड बना सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं आप, जैसे कि बिग बास्केट, जोमेटो, हाइपर प्योर से आप लोग इसे संपर्क कर सकते हैं। फिर या तो फिर स्थानीय सब्जी मंडी या सुपरमार्केट में आप इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टअप टिप्स की बात करें तो कम से कम आपको 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या इसकी ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर सरकार की कृषि स्टार्टअप की स्कीम है, FPO योजना की भी मदद आप ले सकते हैं। आपको छोटे से शुरू करने की ज़रूरत है, अनुभव लीजिए, फिर उसको स्केल कीजिए, बिजनेस प्लान बनाइए। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी
1: जी। तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लेट्यूस की खेती, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को दी गई। क्या कुछ फ़ायदे हैं, साथ ही अब स्टार्टअप के तौर पर इसके द्वारा जो खेती करते हैं तो क्या आपको क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी जानकारी आज आपको दी गई है। आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक

0: कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां

फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेग सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरे

पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और हर रोज हम बहुत सारी बातें लेकर आते हैं आपके लिए उपयोगी और बताते हैं कुछ अच्छी बातें। और किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही लाभान्वित हो रहे होंगे हमारे सुझावों से, हमारे जो यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आते हैं आप सभी को सुझाव देने के लिए। तो आशा करते हैं आज भी आप हमारे इस विषय से काफ़ी लाभान्वित होंगे। और आज का जो विषय है, यानी कि चर्चा का विषय है, वो है जीवन यापन के लिए मशरूम का उत्पादन। तो किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि अगर आपके पास भूमि नहीं है, आप भूमिहीन हैं, तो आप मशरूम का उत्पादन करके एक अच्छे तरीके से बाजार में आप मूल्य पा सकते हैं, यानी कि इसका उत्पादन करके आप अपनी जीवन यापिका बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र, जो बड़े वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
1: नमस्कार।
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये देखा भी जा रहा है कि बहुत ही लोग मशरूम की खेती कर करके और राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सस्ता माध्यम है मशरूम उत्पादन।
1: हाँ,
0: जो
1: हाँ।
0: लोग जीवन यापिका करते हैं इसे उपजाकर, और कहीं ना कहीं इसका जो एक ये फायदा है कि ये एक कमरे में ही इसका उत्पादन किया जा सकता है और अच्छी मात्रा में पैसे कमाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जीवन यापन के लिए इसे क्यों चुने। यही बातें हम कर रहे थे अभी भी, लेकिन अगर आप विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ होगा।
1: पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि मशरूम एक ऐसा फसल है और इसका जो खेती किया जाता है, बगैर खेत की खेती किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मशरूम की खेती करने के लिए किसी खेत की ज़रूरत नहीं होता है, बल्कि इसे हम कमरे में, जिसे हम मशरूम कच्छ कहते हैं, तो उसमें हम घर में भी मशरूम की खेती अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। मशरूम की खेती करने के लिए यदि हमारे पास एक कमरा खाली है तो उसमें हम कर सकते हैं, यदि हमारे पास पक्के कमरे नहीं हैं तो झोपड़ी बनाकर भी इसका खेती आराम से किया जा सकता है।
0: जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को किसान भाइयों, कि आप आराम से एक कमरे में, अगर आपके पास ज़्यादा भूमि नहीं है, तो आप आराम से मशरूम की खेती कर सकते हैं बहुत ही कम जगह में। तो ये बात हो गई, यानी कि ये फ़ायदा है मशरूम उत्पादन का। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद जब मशरूम उत्पादन की बात आती है तो दिमाग में आता है कि किस किस तरह के मशरूम का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद जानना चाहेंगे हम कि कितने प्रकार के मशरूम का

0: उत्पादन हमारे किसान भाई कर सकते हैं, और अगर क्रिया के बारे में भी बताएं, यानी कि प्रक्रिया के बारे में बताएं कि कैसे इसका उत्पादन किया जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए।
1: किसान भाइयों, मशरूम की खेती करने के लिए पहले तो ये ध्यान देना होगा कि आप किस समय इसका खेती करना शुरुआत कर रहे हैं। यदि हमारा शुरुआत करने वाला है, इस व्यवसाय में आना चाहता है हमारा किसान और इसको अपना जीवन का एक जीव साधन बनाना चाहता है, तो निश्चित है कि इसके सभी बिंदुओं को जानकारी हासिल करना होगा, तब जाकर मशरूम की खेती शुरू करेगा तो निश्चित है कि हम अच्छा से अच्छा अपना लाभ कमा सकते हैं, व्यवसाय को चला सकते हैं। जहाँ तक बात है कि मशरूम की कौन कौन से प्रभेद हैं, कौन कौन से प्रजातियां हैं और ये कहाँ कहाँ मिलेगा और किस समय इसका चयन किया जाए कि अच्छा से अच्छा उसका उत्पादन किया जाए या खेती किया जाए, तो ऐसे यदि देखा जाए तो हमारे पूरे देश में लगभग 200 प्रभेद हैं जो पहचान किए गए हैं कि मशरूम के रूप में इसे उगाया जा सकता है और इसे धन कमाया जा सकता है। लेकिन अपने यदि बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में लगभग 10 से 12 प्रभेद हैं मशरूम के जो पहचान किए गए हैं और उसे हमारे किसान भाई उसे उगाते भी हैं। लेकिन यदि हम बड़े स्तर की बात करते हैं और व्यवसाय की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे जो 4 प्रभेद हैं मशरूम के अपने बिहार राज्य के लिए, वो जलवायु को देखते हुए, जगह को देखते हुए, मौसम को देखते हुए और व्यवस्था को देखते हुए, ये 4 प्रभेद भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आराम से पूरे वर्ष भर खेती कर सकते हैं। मशरूम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि उसके लिए जो मशरूम का कच्छ होता है या मशरूम का झोपड़ी होता है, इसके लिए कम तापमान का आवश्यकता होता है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ठंड के समय में इसको आराम से खेती कर लेते हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों पर, यदि जहाँ पर हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर कुछ मौसम देख लीजिए, जो मौसम में तापमान और जगहों के जगह पे यहाँ कम रहता है, यानी मशरूम को खेती करने के लिए कम तापमान का आवश्यकता होता है। तो कम तापमान यदि अपने इस बिहार राज्य में देखा जाए तो ज़्यादातर लगभग 5 महीने यहाँ दिखाई देता है, जो अक्टूबर मध्य से शुरू होता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 15 मार्च के बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है और जब ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो मशरूम का खेती नहीं कर पाएंगे। अब रह गई बात कि यदि हम ठंड के मौसम में मशरूम खेती करते हैं, बाकी समय में हमारा किसान क्या करेगा, तो इस तरह से और भी प्रभेद उपलब्ध हैं जो गर्मी के समय में कर सकते हैं, बारिश के समय में कर सकते हैं। इस तरह से पूरा इसका एक चार्ट बना हुआ है, एक कैलेंडर बना हुआ है, एक सारणी बना हुआ है, इसको देखते हुए पूरे वर्ष भर प्रभेद का चुनाव करके खेती कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा माना जाता है वो बटन मशरूम माना जाता है। बटन मशरूम की खेती करने के लिए जो तापमान होता है उसे 2 चरणों में हम बांट लेते हैं। पहला तो एक जो बुआई का चरण होता है जिसे हम बिजाई कहते हैं, वो यदि तापमान 18 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस है तो उपयुक्त पाया जाता है, और फिर जब उसमें फलन काय निकलता है यानी जब उसमें फल बैठता है तो उसके लिए और कम तापमान का आवश्यकता होता है, यानी लगभग 8 से लेकर 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तब जाकर उसमें फल बैठेगा। यदि इससे 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है तापमान तो इसमें फल नहीं बैठेगा, केवल सफ़ेद सफ़ेद रंग का बीज उगकर रह जाएगा। तो ये बटन मशरूम के लिए है। तो बटन मशरूम के लिए 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ही आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, दूसरा जो एक महत्वपूर्ण आपका मशरूम का प्रभेद है वह है ओस्टर मशरूम, और ओस्टर मशरूम की खेती करने के लिए यानी ढेंगरी मशरूम का खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा कम या अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। जो कमरे का तापमान होता है यानी 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस यदि हमारा 5 डिग्री सेल्सियस कम है और 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा भी है तब भी सफलतापूर्वक इसको हम आराम से खेती ढींगरी मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये हमारे बिहार राज्य में जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगता है अप्रैल मई जून में, लगभग कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है मई जून के महीने में, तो ऐसे में जो हमारे अन्य जीव जंतु

0: हैं, पशु पक्षी हैं, या आदमी को कह लीजिए, आदमी का भी मतलब गर्मी की वजह से जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यदि हम मशरूम की खेती करें तो यह संभव होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने असंभव को भी संभव करके दिखाया है और धीरे धीरे इस प्रभेद का, यानी जो मिल्की मशरूम है, मिल्की मशरूम का धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये मिल्की मशरूम हम दूधिया मशरूम के नाम से जानते हैं, पूरा दूध की तरह सफ़ेद सफ़ेद होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान पे भी पूरे अच्छी तरह से इसकी हम खेती कर सकते हैं। लेकिन तापमान इसके लिए ज़्यादा आवश्यकता होता है, यदि 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो आप दूधिया मशरूम खेती नहीं कर सकते। तो दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान का आवश्यकता होता है। यदि 45-46 तक भी पहुंच जाता है तब भी हम आराम से सफलतापूर्वक इसका मशरूम का यानी दूधिया मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मशरूम आपको बताया। और जब बारिश का समय शुरू हो जाता है इधर जून के आखिरी सप्ताह में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, यहाँ तक कि अक्टूबर तक कभी कभी बारिश हो जाता है, तो ऐसे में बारिश के समय में भी आप मशरूम का चुनाव करके इस तरह से ढेंगरी मशरूम का चुनाव कर सकते हैं। और हमारा एक पुगाल मशरूम होता है जिसे हम गर्मा मशरूम के भी नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर अधिक क्षेत्र में और अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर जहाँ पर धान का खेती होता है, तो धान के पुआल का कुट्टी भी बनाकर और धान का पुआल के बगैर कुट्टी बनाए हुए सीधे आप उसका छोटा छोटा बंडल बनाकर या उसका आटिया बनाकर, गट्ठर बनाकर उसके ऊपर भी बुआई करके आप गर्मी के समय में, इवें यहाँ तक कि बरसात के समय में भी आप एक गर्म मशरूम होता है या कह सकते हैं जो धान का पुआल मशरूम होता है उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों 4 प्रकार के मशरूम हैं जो हम पूरे साल भर 4-4 महीने के अंतराल पर यदि हम इसका चुनाव करें, गर्मी के समय में करें और बरसात के समय में करें, फिर ठंड का समय आता है उस समय करें, तो ये चारों प्रभेद को हम पूरे साल भर उसको उगा सकते हैं और आराम से व्यवसायिक तौर पे इसे हम देख सकते हैं या हम इसको अपना सकते हैं। और यदि आप इस चारों प्रभेद को अच्छी तरह जान लेते हैं और तो इसमें बात आती है कि बीज की मुहैया कहाँ से होगा, बीज का प्रबंधन के बारे में आपको जानना होगा, तब आप अच्छी तरह से इसका खेती कर सकते हैं और जीवन के रूप में इसका एक साधन बना सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की 4 प्रकार के मशरूम हमारे बिहार क्षेत्र में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो बताया कि तापमान आधारित होते हैं मशरूम उत्पादन, तो तापमान का आप खास ख्याल रखें और उस आधार पर जितने भी प्रकार के मशरूम इन्होंने बताया जो सारे तापमान किस किस मौसम में लगाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने 4 प्रकार के मशरूम बताए, तो इन 4 प्रकार के मशरूम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि सस्ता और फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को किस मशरूम के प्रकार को अपनाकर हो सकता है?
0: सबसे शुरुआत में यदि हमारा किसान कम जानकारी मशरूम के बारे में है तो उसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिगनर, यानी शुरुआत करना चाहता हमारा किसान, या हमारा किसान के अलावा भी हमारे जो युवा बेरोजगार है उसको भी अपना सकते हैं खेती के रूप में। तो जो ढेंगरी मशरूम होता है उसे शुरुआत के तौर पे देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम समय में, लगभग 1 महीने में ये बुआई से लेकर कटाई तक का कार्य इसमें हो जाता है और बुआई का जो इसमें विधि है बहुत सरल है और इसमें ज़्यादा साधन या संसाधन की ज़रूरत नहीं होता है। इसमें गेहूं का भूसा मिल जाए या इस तरह से जो हमारे फसल अवशेष होते हैं उसका मिल जाता है फसल अवशेष, तो उसका छोटा छोटा हम टुकड़ा बना लेते हैं या कुट्टी बना लेते हैं, फिर उसको हम उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के लिए कई तरीके हैं, गर्म पानी भी उपचारित किया जा सकता है या रसायन से भी उपचारित किया जा सकता है। रात भर के लिए इसको पानी में भिगो देते हैं, फिर सुबह निकाल कर उसके ढालू जगह रख देते हैं ताकि पानी पूरा भीगे हुए भूसे का निथर जाए, निकल जाए। जैसे भूसे का पानी निकल जाता है, निथर जाता है, फिर उसको सुखा कर छाए में फिर उसमें हम बीज मिलाते हैं और बीज जो मशरूम का होता है उसे स्पान कहते हैं, यानी मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। तो जब हम बीज का उसमें मिश्रण बनाते हैं या लगाना शुरू करते हैं तो उसे बिजाई कहते हैं या स्पानिंग कहते हैं या बैगिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से बुआई कर देंगे तो 10-15 दिन के लिए

0: पीपी बैग को इसे बुआई किया हुआ छोड़ देते हैं तो देखते हैं पूरा भूसा जो उपचारित करके हम बीज लगाए थे मशरूम का पूरा चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद रंग का दही की तरह से एक परत जम जाता है, तो ये समझ जाते हैं कि मशरूम का जो माइसीलियम है यानी उसका जो शारीरिक का है वो पूरा फैल चुका है। अब इसमें ज़रूरत है कि पीपी बैग को खोल दीजिए और थोड़ा हवा पानी दे दीजिए, फिर इसमें से छोटे छोटे कलिकाएँ निकलना शुरू होती हैं और फिर एक हफ्ते बाद पूरा 21वें-22वें दिन पूरा इसमें मशरूम बैठ जाता है। तो 3-4 दिन के अंदर पे आप तोड़कर 1 महीने के अंदर पूरा इसको अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो 1 महीना इसमें समय लगा और संसाधन भी इसमें कम लगे और इसमें और भी सामग्री जो लगते हैं कम लगे और आसान तरीका है ये बुवाई का और कटाई का। तो इसलिए ढिंगरी मशरूम को बताया जाता है किसान भाइयों को कि आप यदि शुरुआत खेती करना चाहते हैं मशरूम का तो ढिंगरी मशरूम से करें। और इसका जो कीमत है बाज़ार में 100 रुपये प्रति किलो की दर से जाता है जो ताज़ा फल इसका होता है। और दूसरा एक मशरूम है वह है वाइट बटन मशरूम कहते हैं हम, तो जो हमारा वाइट बटन मशरूम होता है इसे हम बटन मशरूम भी कह सकते हैं। तो बटन मशरूम जो होता है वह ठंड के ही समय में हम कर सकते हैं या हमारे पास व्यवस्था है तो तापमान को हम कम करके यानी डाउन करके भी बटन मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो इसमें पावर का ज़रूरत होता है यानी बिजली की ज़रूरत होता है, क्यों? क्योंकि यदि हम पावर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो हम एसी यानी एयर कंडीशनर नहीं चला सकते हैं। तापमान को हम 10 डिग्री सेल्सियस या 15-16 डिग्री सेल्सियस पर लाना है मशरूम का फलन का लाने के लिए, तो इसके लिए अच्छे रूम का जरूरत पड़ता है। यदि हम आप सीजन में करते हैं बेमौसमी यदि हम बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो ऐसे में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पावर खर्च होता है और महंगा पड़ता है। यदि समय की बात देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी होली तक यानी मार्च तक हम आराम से बटन मशरूम का खेती कर सकते हैं और इसके बाद का जब गर्मी बढ़ जाता है खेती करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मुश्किल तो होता जरूर है लेकिन फायदा इसमें सबसे ज़्यादा है। इसका जो कीमत है बाज़ार में 200 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक जाता है, तो ये बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है कि यदि मार्केट में इसका जो डिमांड ज़्यादा आता है मांग ज़्यादा होती है तो इसका जो दाम होता है बढ़ता है 300 रुपये किलो जाता है। यदि उत्पादन हमारा ज़्यादा हो जाता है ठंड के समय में ख़ास तौर से दिसंबर जनवरी के महीने में।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको 2 प्रमुख प्रकार के मशरूम बताए जो आप आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं इसका और जीवन यापिका करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है ये और कहीं ना कहीं बाज़ार में भी आपको अच्छे मूल्य मिल सकते हैं। और वो 2 प्रकार के मशरूम थे ढिंगरी मशरूम और बटन मशरूम। और अगर आप शुरुआती तौर पर आप उत्पादन करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है मशरूम के बारे में, तो आप ढिंगरी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीज यानी कि जो मशरूम के बीज होते हैं उन्हें स्पॉन कहा जाता है, तो इसे खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
0: मशरूम का बीज यानी जो स्पॉन है उसे खरीदते समय जरूर ध्यान में रखें हमारे जो किसान भाई हैं या मशरूम उत्पादक हैं। हमारे जो मशरूम उत्पादक हैं या किसान भाई हैं मशरूम का बीज खरीदते समय ज़रूर ध्यान दें कि जो आप मशरूम का पैकेट खरीदते हैं तो देखते हैं कि एक पॉलीथीन या पीपी बैग होता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग का इस तरह से दही की तरह से जो दिखाई देता है तो वही बीज शुद्ध होता है। ख़ास तौर से ये जो बीज तैयार किया जाता है मशरूम का उसे हम स्पॉन कहते हैं। तो स्पॉन तैयार करने के लिए जो हम पोषा धार की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे दाने वाली फसलें होती हैं जैसे धान है या गेहूं है तो इसका चुनाव करते हैं, तो इसे बहुत अच्छी तरह से कभी कभी मकई का भी चुनाव कर लेते हैं बीज बनाने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा जो बीज बनता है वो गेहूं के दाने के ऊपर हम इसको उगाकर बनाते हैं। तो गेहूं का जो दाना होता है पूरा सफ़ेद सफ़ेद रंग का उस पर आवरण चढ़ जाता है और गेहूं के दाने को ढक लेता है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। तो ये समझ जाइए कि ये हमारा शुद्ध मशरूम का स्पॉन है। और ऐसा यदि नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि काले काले रंग के धब्बे उसके ऊपर दिखाई देने लगते हैं जो मशरूम का स्पॉन का बैग है, तो ये समझ जाइए कि शुद्ध बीज नहीं है। उसमें काले काले रंग का धब्बा बनेगा और तो इसमें एस्परजिलस नामक फफूद दूसरा फफूद आ जाएगा और

0: बीज की गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसी तरह से ग्रीन मोल्ड है, जिसे हम ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ये ट्राइकोडर्मा जो है ये मशरूम के बीज का दुश्मन होता है। तो ख़ास तौर से ये जो दो चीज़ें मैंने बताया, यदि भूरे भूरे रंग का या काले काले रंग का, तीसरा जो हल्का या गहरे हरे रंग का फफूद मशरूम के बीज के ऊपर दिखाई देता है, तो आप ऐसे बीज का चुनाव कतई ना करें। और यदि आप बीज चुनाव करके ले आते हैं, शुद्ध बीज चुनाव करके ले आते हैं और उसे रखने के लिए, मतलब यदि आप पास व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रिज वगैरह में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। यदि आज बीज खरीद कर ला रहे हैं, तैयार बीज है, तो उसे आप 2-3 दिन रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। इससे ज़्यादा रखते हैं तो उसमें कंटामिनेशन हो जाता है और धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा हो जाता है और बीज की गुणवत्ता खराब हो जाता है।
1: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश चंद, जो बड़े वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग से, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आपसे यूं ही चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि, उन्नत कृषि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर गिरीश चंद्र हमारे साथ हैं और इनसे हम बातें कर रहे हैं आज के हमारे विषय जो है, जीवन यापन के लिए मशरूम की खेती कैसे करें। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताया, और अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आपने बताया कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बीज खरीदते समय, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मात्रा में भी कुछ ख्याल रखना चाहिए जब हम बीज खरीदते हैं तो।
0: हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, यदि हम शुद्ध बीज का चुनाव करते हैं तो निश्चित है कि जो हमारा उत्पादन है वो शुद्ध होगा और अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ बीज और शुद्ध बीज का चुनाव करें, और बीज के चुनाव के साथ साथ मात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि यदि आप मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसका जो ऐसा मैंने शुरुआत में बताया था कि बीज इसका 100 रुपया किलो आता है, और यदि आप ओइस्टर मशरूम का खेती यानी ढिंगरी मशरूम खेती करना चाहते हैं या दुधिया मशरूम खेती करना चाहते हैं या गर्मा के समय में आप पुआल मशरूम का खेती करना चाहते हैं जिसे हम पैडिस्टर मशरूम कहते हैं, तो इन तीनों मशरूम की खेती करने के लिए आप यदि 1 कुंतल गेहूं का भूसा है या इस तरह से पुआल कुट्टी है, तो उसके लिए आप 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति कुंतल की दर से आप इस्पान का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप बटन मशरूम का खेती कर रहे हैं तो इसमें बहुत कम बीज लगता है, यानी 1 कुंतल यदि आप बटन मशरूम का कंपोस्ट लेते हैं तो उसके लिए लगभग 800 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम, यानी 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक बीज आप ये चुनाव करते हैं तो बटन मशरूम के लिए इतना मात्रा पर्याप्त होता है।
1: तो डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को इसकी मात्रा का ख्याल रखने के लिए भी कहा है, और बातें बहुत सारी हो गई हैं आप सभी के साथ किसान भाइयों और बहनों। और आपको बताना चाहूँगी कि आज बाज़ार में मशरूम का बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक मांग है, और इसलिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में अगर आप मशरूम उत्पादन करते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपनी जीवन यापिका कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और अच्छे तरीके से मशरूम का उत्पादन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: लगाना।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाई, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन RJ अनु के साथ। साथ ही आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूं मैं खास कार्यक्रम आपका उन्नत कृषि। जी हां, हम बात करते हैं इसमें खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें। तो आज भी लेकर आए हैं हम खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें, और साथ ही अच्छी बातें, और वो भी उपयोगी बातें। वैसे दोस्तों, अभी जो जलवायु है वो आप देख रहे हैं कि कितना परिवर्तनशील हो चुका है, और जलवायु को देखते हुए खेती करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सबोर्णा रे चौधरी मैम, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रोनॉमी। साथ ही आप सभी को बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और साथ ही मैम, यहाँ पर जैसा कि हमारा विषय है आज, तो जलवायु के अनुरूप क्या क्या सामान्य तकनीकी हो सकती हैं वो भी खेती करने के लिए, उसके बारे में बताएं सबसे पहले।
10: जी, बहुत ही अच्छा विषय है आज के बात करने के लिए। तो इस बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी, तो एक कॉपी और एक पेन आपके साथ में रखिए, क्योंकि आज के जो विषय है इसमें बहुत सारे ऐसे बात होंगे जो आपको नोट करने की बहुत ज़रूरत होंगे। तो जो भी हो, आज के जो विषय है इस पर हम पहले बात करेंगे सामान्य क्या क्या तकनीकी है। अगर सामान्य तकनीकी की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए जो हमारे पास बीज की प्रभेद है वो तीन तरह के होते हैं, जल्दी प्रभेद, मध्यम प्रभेद और देरी का प्रभेद। सबसे पहले हमें निर्धारित करना है हमें किस तरह के प्रभेद चाहिए, हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, किस क्षेत्र में हमें फसल लगानी है, किस फसल की लगानी है, और कितना एरिया हमारे पास है फसल को लगाने के लिए। तो जो

0: बीज हम खरीद रहे हैं, उस बीज जिस दुकान से भी ले रहे, उस बीज का वैधता खत्म नहीं हो गया है, वैधता समाप्त नहीं हो गया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बीज मिश्रित तो नहीं है, किसी और अन्य बीजों से मिश्रित तो नहीं है, या फिर कोई खरपतवार के बीज उसके साथ, या फिर कोई कूड़े का धूला का दाना तो उसके साथ मिश्रित नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बीज ले रहे वो उपचारित है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बीज लेते वक्त आप बीज का जो पैकेट ले रहे वो खुला हुआ या फटा हुआ है कि नहीं, बीज में टैग है कि नहीं, ये सब चीज़ें देख के ही हम लोग कोई अच्छे जगह से, जैसे कोई ऑथोराइज्ड दुकान से, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन से हम लोग बीज खरीदे। और जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे आधार बीज के लिए सफ़ेद टैग दिया जाता है, प्रमाणित बीज के लिए नीला रंग के टैग दिया जाता है, प्रजनक बीज के लिए पीला और सुनहरा रंग का टैग दिया जाता है। तो जनरली हम लोग जब बुआई करते हैं तो हम लोग प्रमाणित बीज को ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बीज ठीक है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास बीज सही आ गया, अगर आपके पास पता है आप कौन सा फसल को उगाने जा रहे, तो उसी सटीक मात्रा पे बीज लेने की बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात, बीज को जहाँ पे लगाएंगे, मतलब आपकी मिट्टी कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जैसे मिट्टी में वायु संचरण अच्छा है कि नहीं, मिट्टी में जीवाश्म अच्छे से परिमाण में है कि नहीं, पानी निकासी की व्यवस्था है कि नहीं, मतलब जल जमाव कहाँ पर ना हो, क्योंकि जल जमाव ज़्यादा हो जाएंगे तो पौधे में पीलापन आ जाते हैं, तो ये पौधे अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो पानी निकासी व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं गोबर खाद, जैसे कोई ज़मीन अच्छा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से 150 क्विंटल तक गोबर खाद वो अंतिम जुताई के साथ मिला के रख देते हैं, 15 से 20 दिन के बाद ही हम लोग बुआई के तरफ बांटते हैं, तो क्या हुआ, इसमें ज़मीन के जीवाश्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे 2-3 फैक्टर है जिसको हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है। और भी एक, जैसे जलवायु परिवर्तन की बात आता है, तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, मिट्टी को कम से कम उसकी डिस्टर्ब करें, मतलब मिट्टी को बोलते हैं शून्य जुताई, आप लोग सब जानते हैं, मिट्टी को कम डिस्टर्ब करके अगर जो जुताई, मतलब बिना जुताई के हम लोग अगर शोइंग करें, बुआई कर पाएंगे, वो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा है। और भी है, जैसे मालचिंग बोलते हैं, मिट्टी का कहीं कोई भी जगह जो दो पौधे के लाइन के बीच में, दूरी के बीच में जो जगह छूट रहा है, उसको जैसे पुआल से, कोई भी ऐसे चीज़ों से ढक के रखना, ताकि आपकी जो मिट्टी का जो पानी है वो बाहर उड़ के ना जा सके, तो ऐसे कोई भी चीज़ों से ढक के रखना। क्रॉप रेसिड्यू जो है उसको, जैसे खरपतवार पुआल जो हमारे पास ढेर लगा हुआ था, उसको ना जलाना, ये सब सामान्य तौर पर कुछ विधियाँ हैं जो हमें खेती करने के सबसे पहले ये जानना चाहिए।
1: तो यहाँ पर आपने जाना किसान भाइयों की कौन कौन सी विधियाँ हैं, साथ ही मैम मुख्य रबी फसलों के बारे में भी जानना चाहेंगे हम।
0: जी, अभी देखिए जैसे रबी का मौसम चल रहा है, जो ये ठंडी मौसम में मुख्य रूप से क्या क्या फसल होती है, आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि आप लोग गेहूं के फसल करते हैं, मक्का के फसल करते हैं, सरसों के फसल करते हैं, फिर कोई कोई जगह पे आलू भी ले लेते हैं। तो जो हम पहले गेहूं के बात करते हैं, अगर हम गेहूं के बात करें, तो जैसे हम पहले बोले थे एक कॉपी और एक पेन रख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा ऐसे हम लोग पॉइंट पे आएंगे, ऐसे बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे जो आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम अगर गेहूं के बात करते हैं, तो गेहूं के लिए जो सीड रेट की ज़रूरत है, जो मात्रा के सीड की ज़रूरत है, वो है 100 kg, और जितनी दूरी रखना है वो है 20 से 22 सेंटीमीटर। एक लाइन से दूसरी लाइन के गेहूं के जो दूरी रखना है वो 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। गेहूं में जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसकी मात्रा है 120-60-40, 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फॉस्फोरस और 40 kg पोटाशियम। 120 kg जो नाइट्रोजन होता है उसकी आधी मात्रा अंतिम बुआई के समय में, और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पूरी की पूरी मात्रा पोटाशियम अंतिम बुआई के समय में हमें दे देना चाहिए। और आधी मात्रा जो नाइट्रोजन हमारे पास बच रहा है, मतलब 60 kg जो नाइट्रोजन बच रहा है, उसको उसके बाद आफ्टर कोई भी पानी देने के बाद, सिंचाई के बाद, उसको लगातार 40-42 दिनों के बाद, फिर 20-22 दिनों के बाद दे देना चाहिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, गेहूं के लिए पानी देना बहुत ज़रूरी है, तो पानी का प्रबंधन होना बहुत, मतलब जैसे सिंचाई बोलते हैं उसको ध्यान में रखने के लिए 21 से 25 दिनों के बाद पहला सिंचाई, बुआई के 21 से 25 दिन के बाद पहला सिंचाई, फिर 35 से 40 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई, फिर 55 से 60 दिनों के बाद तीसरी सिंचाई करनी है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर गर्मी के मौसम है तो सिंचाई के अंतराल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या आपकी मिट्टी अगर बालू के परिमाण ज़्यादा है, बालू के भाग ज़्यादा है, तो आपको सिंचाई के अंतराल कम कर देनी है, बोलते जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा, अगर बालू उतना

नहीं है तो आपकी इसी अंतराल में पानी देने से ही सही रहेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट इशू आ जाता है, जैसे खरपतवार। खरपतवार बहुत हम लोग जानते हैं गेहूं को बहुत परेशान करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कृष्णनील, बथुआ, गुली डंडा, गेहूं का मामा। गेहूं का मामा तो ऐसा एक खरपतवार है जो बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल गेहूं जैसा दिखने में होता है। बहुत मुश्किल होता है उनको पहचानना और उनको अलग करना कि वो गेहूं ही है कि वो एक उइड है, एक खरपतवार है। तो इसी तौर पे हम कहना चाहते हैं जैसे पेंडीमिथालिन 30 EC, ये 1 kg, जैसे 1 kg AI पर हेक्टर के दौर से अगर 2 से 3 दिन के बुआई के 2 से 3 दिन के बाद हम लोग दे सकते हैं तो ये खरपतवार नियंत्रण हो सकते हैं। अगर और भी ज़्यादा खरपतवार है तो हम लोग पेंडीमिथालिन के साथ साथ 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पेंडीमिथालिन 1 kg AI पर हेक्टर 2 से 3 दिन के बाद देने के बाद 2,4-D 38 EC 0.75 मतलब 75 ग्राम के हिसाब से हम लोग 35 दिनों के बाद, बुआई के 35 दिनों के बाद दे सकते हैं। जैसे एक चीज़ लेकिन ध्यान में रखना है, अगर गेहूं फसल के बाद हम लोग को कोई चारा फसल लेनी है उसके बाद लेना है तो सल्फोसल्फ्यूरॉन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो सल्फोसल्फ्यूरॉन आपके आने वाला जो चारा फसल है उनको नुकसान पहुंचा देंगे। और एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसे जिंक सल्फेट के इस्तेमाल करना, ये क्या किस लिए होता है, जैसे लगातार कोई भी एक ज़मीन पे अब धान की पौधे उसके बाद लगातार गेहूं के ऐसे कोई साइकिल ले रहा है धान गेहूं, तो इसमें आपके जिंक की मात्रा कम हो जाती है मिट्टी में। इसको ठीक करने के लिए 25 केजी के दर से जिंक सल्फेट पर हेक्टर में देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जिंक सल्फेट 25 केजी, उसके साथ 20 केजी यूरिया 1000 लीटर पानी में, मतलब 1000 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्प्रेइंग करेंगे उसमें धूप खिली हुई रहनी चाहिए, मतलब खिली हुई धूप में करना चाहिए। तो मोटा मोटी हम लगता है हम गेहूं के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। अब हम मक्का के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मक्का भी यहाँ पे हमारे इस प्रदेश में बहुत मान्यता प्राप्त एक क्रॉप है। तो मक्का के बारे में जो बात करेंगे, इसमें बहुत 2-3 वैरायटी होता है, जैसे शक्तिमान का कुछ वैरायटी है, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, 3, 4, ये सब वैरायटी है। मोटा मोटी 150 से 155 दिन के वैरायटी होते हैं। इनके मोटा मोटी जो उपज क्षमता है वो 85 से 90 क्विंटल तक जाते हैं। इसके अलावा भी राजेंद्र शंकर मक्का 1 ऐसा भी एक वैरायटी होता है जो थोड़ा सा लंबे अवधि है, 155 से 160 दिन का वैरायटी है। इनका यील्ड के पोटेंशियलिटी मतलब उपज क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, 65 से 70 क्विंटल तक ले लेता है। DHM 117 भी एक वैरायटी है जो 155 से 160 दिन का वैरायटी है, जिसका उपज क्षमता है 90 से 95 क्विंटल पर हेक्टर तक। लेकिन ये सारे रबी फसलों के लिए एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है, ये जितने भी सारे फसल है इसके शुरू के दिन में ठंडे मौसम इनको अच्छा लगता है, और जब बाली निकल जाते हैं तो थोड़ा सा गर्मी लेकिन शुष्क वातावरण, मतलब आपकी पानी नहीं होनी चाहिए, मतलब वर्षा नहीं होनी चाहिए। तो ठंडी के मतलब परिपक्का का टाइम में यहाँ मोटा मोटी बोल सकते हैं बुआई के टाइम में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और परिपक्का का टाइम में 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन शुष्क वातावरण बहुत ज़रूरी है ये जितने भी रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए। तो जो मक्का का हम बात करते हैं, मक्का के बहुत अच्छा जो शोइंग टाइम है, जो लगाने के समय है, वो है 15 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। ये जो है जनरली बोला जाता है हतिया नक्षत्र जो है वो समाप्त होने के बाद ही मक्का का समय आ जाते हैं बुआई के। तो मक्का के लिए हम लोग जो सीड रेट अपनाएंगे वो 20 केजी प्रति हेक्टर के दर से अपनाएंगे। जो दूरी होगा वो लाइन के बीच जो लाइन के दूरी होता है वो 60 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एक मक्का का पौधे से दूसरी मक्का का पौधे का जो दूरी होगा वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो मक्का का पौधे लगाएंगे, मक्का के लिए भी सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंचाई करते हैं उसे 5 से 6 सिंचाई की मिनिमम ज़रूरत है एक मक्का का पौधे के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉन मंजूरी निकलने के बाद से बाली में दाना भरने के टाइम तक पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ये करते हैं ताकि बाली में जब दूध भरने लगते हैं उस टाइम में अगर आपके पौधे को पानी की कमी हो जाएंगे तो आपकी दाना भरने में दिक्कत हो जाएंगे एवं दाना नहीं भी भर सकता है। तो इसलिए पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। मक्का के लिए जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वो मक्का के लिए 150 75 50, 150 kg नाइट्रोजन, 75 kg फॉस्फोरस, 50 kg पोटाशियम देते हैं।
लगभग गेहूं के जैसा ही इसके सेम रूल है, गेहूं के जैसा ही

पे पूरी की पूरी मात्रा फास्फोरस, पूरी की पूरी मात्रा पोटेशियम अंतिम जुताई के साथ ही दे देते हैं, और आधी मात्रा नाइट्रोजन, ये सारा हम अंतिम जुताई के साथ दे देते हैं, और जो बची आधी मात्रा है वो हम लोग आगे के तौर पे देते हैं। किस कहाँ पे देना चाहिए, जहाँ पे गेहूँ इसकी जो प्लांट की हाइट जब 40 से 75 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट हो जाएंगे तो उसकी आधी मात्रा नाइट्रोजन छिड़काव कर सकते हैं, और उसके बाद में भी और आधी मात्रा नॉर्म अंजूरी जब निकलने लगते हैं उसके ठीक पहले हम लोग आधी मात्रा नाइट्रोजन दे सकते हैं। जो जैसे हम लोग खरपतवार के भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, तो खरपतवार के लिए एक बोला जाता है जैसे एट्राजिन, एक मक्का के लिए एकमात्र जरूरी खरपतवार नाशी है एट्राजिन। एट्राजिन 50% ये 1 kg AI पर हेक्टर के दौर से 2 दिन बुआई के 2 दिन के बाद ही हम छिड़क सकते हैं। अगर उससे भी खरपतवार आपके नियंत्रण उतनी अच्छे से नहीं हो रहा है तो 25 से 30 दिन के बाद दोबारा उसी एट्राजिन का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये तो गया हमारी मक्का के बाद, अब थोड़ा आते हैं सरसों। सरसों भी आजकल के ज़माने में बहुत, क्योंकि हम लोग साग के तौर पे भी सरसों को अपनाते हैं, सरसों के बाद आते हैं। सरसों जो जनरली लगाते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक से नवंबर के सेकेंड सप्ताह तक, नवंबर के फर्स्ट सप्ताह से नवंबर के सेकेंड सप्ताह से। लेकिन अगर 15 अक्टूबर तक हम लोग अगर सरसों का बुआई कर देंगे तो कीड़ा लगने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सरसों के लिए जो सीड रेट अपनाते हैं वो जनरली 4 से 5 kg होना चाहिए, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। सरसों के लिए, सरसों क्या सभी तेलहनी फसलों के लिए सल्फर एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। सल्फर की प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सल्फर आपकी तेल की गुणवत्ता बढ़ा देते हैं। तो ये सल्फर की प्रबंधन के लिए 20 से 25 kg सल्फर की बुआई के समय देना बहुत ज़रूरी है, जितने भी तेल की फसलें हैं, तेलधनी फसलें हैं। अच्छा, और अगर हम लोग देखेंगे सरसों में, सरसों में जो पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, 2 इरीगेशन की ज़रूरत है। 28 से 30 दिनों के बाद 1 इरीगेशन की ज़रूरत है सरसों में, और दूसरा इरीगेशन जब फली बनना लगते हैं, फली बनने के समय में दूसरा इरीगेशन देते हैं। सरसों में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है माहू के निशान दिखाई देता है। वो माहू के निशान 2 चीज़ों से जाएगा, एक क्या है खेत में नमी है कि नहीं, खेत में नमी बराबर मेंटेन रखना चाहिए तो माहू के निशान से आप बच सकते हैं। और कभी कभी क्या है मेड़ जो होता है ना फसल के बीच में जो मेड़ है उसमें धुआं करना चाहिए, ये धुआं करने से भी माहू के निशान से आप जुड़ सकते हैं। जैसे एक चौड़ा पत्ती के खरपतवार नाशी की हम बात करें तो सरसों के लिए चौड़ा पत्ती खरपतवार नाशी है मेट सल्फ्यूरन मिथाइल। ये जनरली 8 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करते हैं। क्लोरीडिनोफॉप भी 50% क्लोरीडिनोफॉप सुखड़ी पत्ती के लिए इस्तेमाल करते, इसके डोज है 160 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे साग निकलने लगते हैं, जैसे साग हम लोग सरसों का साग खाते हैं, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, जैसे प्लांट के बीच में जो दूरी है मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको मेंटेन रखिए, उसके बीज वाले जो पौधा है उसी से साग निकाल के ले लीजिए ताकि आपकी दूरी मेंटेन रहे। और जब साग निकालने वाले हो तो नीचे का भारी पत्ता पहले उठाए, तो उसमें 2 फायदा होगा, एक तो आपको साग मिल जाएंगे, नीचे के जो बुढ़ा हो गया है उसे भारी पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आपकी जो कीड़े का आक्रमण, फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट एक बीमारी आता है उसके से भी बच सकते हैं। तो साग निकलते वक्त पहले आपकी जो थोड़ा सा पुराने पत्ते हैं नीचे से उसी को पहले उठाएं। तो हम लोग सरसों के बारे में भी थोड़ा बात करें, और सब शेष जो हम बात करते हैं उस बाद रबी फसल में तो बहुत सारे फसल है, अब बात करते करते बहुत समय भी हो जाएंगे, तो हम सबसे एक और फसल की बात कर देते हैं, वो आलू। आलू के बारे में हम जब बात करेंगे, वो आलू के बारे में ये बोला जाता है आलू सबसे संवेदनशील फसल है, क्योंकि आलू को ना बादल पसंद है, ना आलू को धूप ना निकलना आलू के लिए बहुत क्षतिदायक है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको खिली हुई धूप अच्छा लगता है आलू को। तो आलू के बारे में सबसे ज़्यादा जो हमारे कृषि बंधु प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो है पाछेती झुलसा। पाछेती झुलसा ऐसा एक है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेट ब्लाइट। इस लेट ब्लाइट के साथ जैसे होता है ना पत्ते के नीचे काले या भूए रंग का एक गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं, इसके साथ जुड़ने के लिए आपको मैनकोजेब या फिर जीनेब या फिर डाइएथेन M45 या फिर Z78, ये सारा आप कोई भी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ग्राम कोई भी एक को लेके मिला के इस

0: स्प्रेइंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी फेरोमोन ट्रैप, जैसे आप लोग देखते हो जलवायु परिवर्तन में आजकल बोलते हैं कि केमिकल के इस्तेमाल नहीं करके हम लोग फेरोमोन ट्रैप, मतलब वो जो ट्रैप बनाते हैं कीड़े मकोड़े को फंसाने के लिए, तो वो एक एकड़ के लिए 5-6 फेरोमोन ट्रैप अगर एक एकड़ जमीन में लगा दे तो तना छेदक जितने भी कीट है उनको हम मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा हेक्साकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल के अगर 1 ग्राम हर 1 लीटर पानी में मिला के अगर 12 से 15 दिन के बाद अगर हम आलू के खेती में छिड़काव करते हैं तो सीड ब्लाइट, मतलब सीड ब्लाइट से भी एक बीमारी है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो सीड ब्लाइट हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे जो स्टेम्स है, जो उनके जो शरीर है तन में बड़े बड़े गोल धब्बे मिलेंगे, उसमें बैंगनी रंग का गोला घेरा हुआ गोल मिलेंगे, उसी से पता चलेगा स्टेम ब्लाइट है। उसको मुकाबला करने के लिए हेक्साकोनाजोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे थे पाले की मार, आलू के लिए ये भी बहुत दिखने के लिए मिलता है। ये पहले ही हम बता चुके हैं, खेत में हल्की सिंचाई हमेशा बरकरार रखना पड़ेगा, मेड़ में धुआं करने की ज़रूरत है तो हम इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी इमिडाक्लोरोपीड हम दे सकते हैं, जो 125 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बाली में धूल जैसे गूड़ा जैसा दिखने लगता है उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। अब आलू के बाद थोड़ा फल के पेड़ में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं तना छेदक कीड़ा हो जाते हैं, तो एक सहज सिंपल सा हम तरीका बता सकते हैं। अगर तन में फल के पेड़ के तन में कोई छेद हो जाए, कीड़ा कोई छेद बना ले, तो हम लोग क्या करते हैं उस छेद में वो रुई में मिट्टी का तेल लेके उस छेद में डाल देते हैं और डाल के उसको गीला मिट्टी से ढक देते हैं, उस छेद को बंद कर देते हैं। तो इसी से हम लोग फल के जो तन में जो छेद होता है उसमें से भी मुकाबला कर सकते हैं। ये थोड़ा मोटा मोटी जो भी रबी फसलें हैं हम कोशिश किए हैं उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देने के लिए।
1: हाँ किसान भाइयों, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी, लेकिन जाते जाते मैम आपसे इस विषय से जुड़ी कुछ संदेश जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें।
0: अगर कुछ संदेश के बाद बोले तो जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है और होने वाला है, इसके साथ जुड़ने के लिए हम बस आपसे अपेक्षा करेंगे आप लोग जुताई जो करेंगे उसमें गहरी जुताई पर मत जाइए, मिनिमम जो जुताई जो हल्की जुताई में हो सकता है, जैसे आपकी गेहूँ की फसल, मक्का की फसल हल्की जुताई में आराम से हो सकता है, उस जुताई को अपनाइए, शून्य जुताई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो फसल के बीच में दो फसल की लाइन के बीच में जो दूरी है उसको ऐसे खुला मत छोड़िए, उसको पुआल से, खरपतवार से, किसी भी पुरानी चीजों से ढक के रखिए ताकि मिट्टी की जो अंदर की जो पानी रखने की क्षमता हो वो खत्म ना हो जाए। मिट्टी में ज्यादा से ज्यादातर ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों के यूज कीजिए, रासायनिक पदार्थों को छोड़ के, रासायनिक खादों को छोड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अहम जो बात है, जो जो जो समर के मौसम होता है, गर्मियों के मौसम होता है, उसमें कभी कभी हम लोग फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं है, खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें ऐसे कोशिश कीजिए उसको कहीं ढक के रखिए, या फिर कोई भी सामान्य क्रॉप को लेके भी उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम लोग चारे के रूप में या फिर कोई भी एक फसल से हम लोग उस फील्ड को, खेत को कवर करके रखें ताकि हम लोग जलवायु परिवर्तन को और बढ़ावा ना देने से रोक सके।
1: तो किसान भाइयों आपने बहुत अच्छी जानकारी ली हमसे, यानी कि 90.8 FM ग्रीन पर आज हमारे साथ थी डॉक्टर सबुर्णा रे चौधरी मैम, और बहुत ही अच्छी विषय के साथ ही आई थी और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ ही आई थी। आप सभी ने इनसे बहुत ही अच्छी जानकारी ली, तो आशा करती हूँ कि आप इन जानकारियों को अपनाएंगे, सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि अपनाएंगे और खेती जलवायु के अनुरूप आप खेती कर पाएंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन दे

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।

0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है

0: आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों, आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 60-70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3-7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें नहीं बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20

25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप 30.5 ऐसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंक्रीति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का. और फिलहाल आज जो विषय लेकर आए हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ये बाढ़ की स्थिति की बात करें तो इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं. लेकिन हम एक आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो हम अपने आप के बचाव के लिए ऊँचे स्थान पर जाते हैं, अपने खान पान का पहले से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं. लेकिन जो पशु हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो तो पशुपालक भाइयों पे ही डिपेंड रहते हैं. तो ऐसे में पशुपालक भाई बाढ़ की स्थिति में अपने पशुओं के आहार का, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे, इन सारी जानकारी को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो जैसा कि हमारा विषय है कि बाढ़ग्रस्त इलाके में पशुओं की रख रखाव, तो ऐसे स्थिति में पशुपालक भाई क्या करें, क्योंकि देखा जाता है कि जब बाढ़ आता है तो पशुओं के लिए, उनके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं.
1: जी, ये एक आम समस्या है और ख़ासकर भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के में जल जमा के जल नदियों के पानी में जब काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है. तो जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रत्येक वर्ष आती है वहां के पशुपालक अपने पशुओं पशुपालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके रखते हैं. लेकिन उन क्षेत्रों में जहां अचानक बाढ़ आ जाती है वहाँ पशुओं को के रख रखाव में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. जो मनुष्य तो छत पर जाके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऊंचे स्थान पर ले जाना आवश्यक होता है. तो इसके लिए सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा, कई ऐसे स्थान हैं जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में चिन्हित स्थान होते हैं, जहां से पूर्व से ही वो स्थान निर्धारित है जहां आप अपने पशुओं को बाढ़ के अचानक स्थिति में अगर पानी आ गया तो वहाँ से आप अपने पशुओं को निकाल कर ले जा सकते हैं और वहाँ रख सकते हैं. वहाँ वैसे जगहों पर उनके पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रति व्यस्क पशु 3 से 5 किलो सूखा चारा और सूखा भूसा और कुछ दाना की व्यवस्था की जाती है, जो प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है. तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वैसे जगहों पर जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो वहां के पशुपालक अपने पशुओं के चारे के लिए ऊंचे स्थान पर चारा पहले से सुरक्षित रखते हैं. लेकिन वैसे स्थानों पर जहां अचानक बाढ़ आती है तो पूरी तरह से चारा भींग जाता है, भूसा भींग जाता है, हरा चारा डूब जाता है. तो उस स्थिति में हमारे पशुपालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके पशुओं के चारे प्रबंध में. तो वैसे जगहों पर आप देखेंगे कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं या जो ऊंची सड़कें हैं वहाँ अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लेके जाते हैं या ऊंची स्थान पर लेके जाते हैं. लेकिन पशु को ले तो जाते हैं लेकिन उनके सारा जो चारा है वो डूब जाता है. और भींगा हुआ चारा आप अगर अपने पशुओं को खिलाएंगे तो उनमें कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है. तो आप पहले से इसका निर्धारण करें, अगर बाढ़ आती है तो सूखे स्थान पर चारा का व्यवस्था करके रखें, अन्यथा ऊंचे स्थान पर जो सरकार के द्वारा चिन्हित है, पशुपालन विभाग के द्वारा, राज्य जिला प्रशासन के द्वारा, वैसे जगहों पर पूर्व से ही बाढ़ के समय जब आने की संभावना हो पूर्व से ही अपने पशुओं को ले जाकर रखें तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लें.
0: जी, तो ये बात हो गई कि कैसे रख रखाव करना है. अब देखा जाता है डॉक्टर साहब कि जब बाढ़ आता है तो चारे का काफ़ी अभाव हो जाता है, जो कि मुख्य यूँ कहें कि आहार है हमारे पशुओं का. तो ऐसे में पशुपालक भाई कैसे खाने का प्रबंधन करें?
1: जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब चारा एकाएक बाढ़ आने के बाद जब